हमारी प्रकृति हमें जीने के हमेशा नियम बताती है, सिखाती है। पानी को ही लीजिए ना, पानी जहां जिस चीज से मिल जाता है उसका रंग रूप वैसा हो जाता है। और ये हमें सिखाता है कि पानी जैसे हो जाओ, जैसी परिस्थितियां हो उस तरह से ढल जाओ।

ये जो जिंदगी है ना दोस्त, ऐसी ही है। किसी राह को पकड़कर चल लीजिए, चार कदम पे फिर एक चौराहा मिल जाएगा और फिर वही हालो हालात हो जाएंगे कि अब किधर मुड़े, कौन सी राह चुने। यानी जिंदगी हर कदम पर एक चुनौती है जहां हमें चुनना पड़ता है और फिर संभल कर फैसले लेने होते हैं और उसके बाद आगे बढ़ जाना होता है। और आगे बढ़ते बढ़ते हम भी भोर सुहाने के किनारे पे पहुंचे हैं। जी हाँ, इस आखिरी गीत के साथ यही भोर सुहाने का ये सफर समाप्त होगा।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की सातवीं तिथि, तदनुसार 29 अगस्त 2026 सुबह के 5:53 और 35 सेकंड हो चुके हैं। हमारे प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

आइए अब आपको अवगत करा दें आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों से। सुबह 6:10 पर सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्पण। बबीता शर्मा होंगी आपके साथ। 6:44:30 पर आप सुन सकते हैं श्री रामचरितमानस कांड। आज आप सुनेंगे अयोध्या कांड भाग 37। सुबह 7:10 पर होगा कार्यक्रम गोल्ड सुप्रभात। 8:45 पर शुरू होगा कार्यक्रम म्यूजिकल दिल लगी। सुबह के 10:30 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम दिल का मेल बॉक्स, जिसे लेकर भावना होंगी आपके साथ। ये एक रिक्वेस्ट शो है। 11:10 पर आप देखेंगे तस्वीर। जी हाँ, कार्यक्रम तस्वीर। आज आप जानेंगे श्री शैलम के बारे में, जो आंध्र प्रदेश में है। 12:10 पर सुनिए आकाशवाणी FM गोल्ड विमेन एंड फैमिली शो घर आंगन। 1:10 का समय होगा कार्यक्रम कलाकार बेमिसाल का, जिसमें आज के कलाकार हैं लीना चंद्रावरकर। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे संगीता राय के साथ। दोपहर के 2:30 पर होगा कार्यक्रम संगीत.com। 3:25 पर सुनिए मन भावन। ये एक रिक्वेस्ट शो है, जिसमें आप अपनी पसंद के गीत सुन सकते हैं। कार्यक्रम में आपके साथ होंगी सीमा वर्मा। शाम के 5:10 पर सुनिए कार्यक्रम गाते गुनगुनाते। शाम के 7:25 पर होगा कार्यक्रम सांझ ढले विभा लक्ष्मी के साथ। 8:10 का वक्त होगा

ये थी जानकारी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। यह आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल है। 6 बजने वाले हैं। अब समाचार होंगे।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ में नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियायोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद जा रहे हैं। ये प्रधानमंत्री की उज्बेकिस्तान की 4थी यात्रा है। श्री मोदी यात्रा के दौरान भारत और उज्बेकिस्तान के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियायोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे।
1: इस यात्रा के दौरान दोनों नेता ताशकंद में द्विपक्षीय महत्व के सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत उज्बेकिस्तान के शीर्ष 10 व्यापारिक साझेदारों में से एक है, जिनके बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग $1 अरब का है। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच कारोबार तेजी से बढ़ा है। चिकित्सा, खनन और रक्षा कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनमें सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। रक्षा क्षेत्र में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच व्यापक सहयोग की शुरुआत हो चुकी है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
0: उज्बेकिस्तान में भारत की राजदूत स्मिता पंत ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध तेजी से मजबूत हो रहे हैं और प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हो गई है। 1545 लोग अभी भी लापता हैं। दक्षिणी पश्चिमी चीन में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद फिर से बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल की बाढ़ के बाद अब तक 84 भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया है। इनमें त्रिशूली वन परियोजना के 63 कर्मचारी और तमिलनाडु के 21 लोग शामिल हैं। मंत्रालय ने बताया कि 320 भारतीयों से अभी भी कोई संपर्क नहीं हो सका है। मंत्रालय ने बताया कि 149 लोग चीन से नेपाल पहुंचे हैं। चीन में लगभग 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं। भारतीय दूतावास इन लोगों के संपर्क में है और उन्हें वहां से निकालने के लिए काम कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप के 3 दिन के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वो शिक्षा, सार्वजनिक सेवा, सांस्कृतिक विरासत, उद्योग, अकादमिक सहयोग, मछली पालन को बढ़ावा देने से संबंधित कार्यक्रमों के अलावा कुछ प्रमुख सार्वजनिक समारोहों में भी भाग लेंगे। श्री राधाकृष्णन आज तमिलनाडु के ईरोड में कोंगु विल्लालर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रस्ट के स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद वो बेंगलुरु जाएंगे, जहां वो राज्य विधानसभा में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी के मूल्यों में लगभग 20% की गिरावट आई है और खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के 84 विषयों के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने इस वर्ष जून में हुई अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों की परीक्षा नए सिरे से आयोजित करने की घोषणा की है। पुनर्परीक्षाएं 9 और 10 सितंबर को होंगी। इसके लिए परीक्षार्थियों को अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 137वां संस्करण होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। मौसम विभाग ने उड़ीसा के कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने आज बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के मैदानी इलाकों, झारखंड, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। राजधानी में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। भारत के वेल्वन सेंथिल कुमार ने PSA बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन का खिताब जीत लिया है। फाइनल में कल सेंथिल ने हंगरी के बालास फारकाश को लगातार गेम में 3-0 से हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। सेंथिल कुमार ने बालास फारकाश को 11-4, 11-2, 11-3 से हराकर ट्रॉफी जीती। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी। द न्यूज रेड बाय सरबजीत कौर। Prime Minister Narendra Modi will embark on a four-day visit to Uzbekistan and Kyrgyz Republic beginning today. On the first leg of his two-day visit, he will reach Uzbekistan today. He will visit Tashkent at the invitation of the President of Uzbekistan, Mr. Shavkat Mirziyoyev. This will be Mr. Modi's fourth visit to Uzbekistan. The Prime Minister's office in a statement said that during his visit, he will hold delegation-level talks with President Mirziyoyev to further strengthen the strategic partnership between India and Uzbekistan. Our correspondent has the details.
1: During the visit, both leaders will have discussions on the entire gamut of issues of bilateral importance in Tashkent. India is among top 10 trade partners of Uzbekistan with bilateral trade of around 1 billion, which is the result of the manifold increase of the trade in last few years. Medical, mining and defense are few of the important sectors in which there is a lot of potential for cooperation. India has long-standing and wide-ranging cooperation with Uzbekistan in the field of defense. A joint working group on defense was established in 2019. India and Uzbekistan regularly participate in joint military exercises, Dostlik, and the seventh edition of this exercise was conducted in Uzbekistan in April 2026. Sushil Chandra Tiwari, Akashwani News, Tashkent.
2: On the second leg of his visit, the Prime Minister will travel to Bishkek on a two-day visit to participate in the 26th Shanghai Cooperation Organization SCO Summit at the invitation of the President of Kyrgyz Republic, Sadir Japarov. The summit marks the 25th anniversary of the SCO, of which India has been a full member since the year 2017. The death toll from the devastating flash floods in Nepal and Tibet has risen to 579, with 1,924 people still missing. According to the data released by the Nepal's National Disaster Risk Reduction and Management Authority, 579 bodies have been recovered so far, while 101 injured people are undergoing treatment in hospitals. The missing figure of 1,924 includes people from hydropower projects, foreign nationals, civilians and security and government personnel. As many as 933 people from hydroelectric projects are reported missing, while 517 foreign nationals remain unaccounted for. Meanwhile, India has stepped up humanitarian assistance to Nepal affected by flash floods, as the third flight carrying 10 tons of humanitarian assistance has departed for Kathmandu last evening. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar informed this in a social media post that the assistance includes portable generator sets, dignity kits, food packets and water purification tablets. Dr. Jaishankar said that an 11-member team of doctors, paramedics and recce team for tunnel rescue operations is also on board. The government has said that there is no shortage of sugar in the country and all necessary measures will be taken for adequate availability of sugar at reasonable prices. Consumer Affairs Ministry said that ex-mill sugar prices have declined by around 20% in recent days, while retail sugar prices have also started coming down. The ministry said it has taken a series of proactive measures to ensure adequate availability of sugar and prevent artificial tightening of supplies in the domestic market. The results of the UGC National Eligibility Test, NET, for 84 subjects have been announced, with more than 4,000 candidates qualifying for the Junior Research Fellowship. The National Testing Agency, NTA, had ordered fresh examinations for candidates who appeared for the English, Commerce and Sociology papers in June this year, after an expert committee found factual, typographical, translation and language-related errors in the question papers. The re-examinations are scheduled for September 9 and 10, for which candidates will not be required to pay additional fees. India's Velavan Senthilkumar won the PSA Budapest Squash Open title in Hungary after defeating home favourites Bals Farkas 3-0 in the final. He had an impressive run to the title, beating world number 18 and Asian Games gold medalist Yan Wong Ning 3-0. And that is the end of this news bulletin.

शनिवार की सुहानी सुबह और एफएम गोल्ड का साथ। आइए अपनी श्रद्धा, भक्ति और विश्वास को संगीत के रूप में ढालते हैं और लेते हैं आनंद भक्ति संगीत का अर्पण के जरिए। आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल पर आज साथ हूं मैं आपके बबीता। नमस्कार, सुप्रभात।

हमें याद रखना चाहिए कि सबसे बड़ा हमारा प्रेरणा का स्रोत हमारा विश्वास है, क्योंकि जिस चीज में हमें विश्वास होता है वही कार्य हम पूर्णता से कर सकते हैं।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी।

0: आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: वक्त चला है 6:25 आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत से परिपूर्ण अर्पण आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

गुस्सा और मतभेद बारिश की तरह होना चाहिए जो बरसे और खत्म हो जाए, और प्रेम हवा की तरह होना चाहिए जो खामोश हो लेकिन सदैव आसपास ही रहे।

ईश्वर के हर फैसले पर खुश रहें, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि ईश्वर वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है।

प्रयाग क्षेत्र को तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। गंगा यमुना तथा सरस्वती के संगम पर स्थित इस पुण्य भूमि पर पहुंचकर सबके मनोरथ सफल हो जाते हैं। ऐसी पावन भूमि के दर्शन कर श्री रामचंद्र ने परम सुख का अनुभव किया। उन्होंने सीता, लक्ष्मण तथा सखा निषाद राज को तीर्थराज प्रयाग की महिमा कह सुनाई। सभी ने त्रिवेणी के दर्शन किए, वहां स्नान कर विधि पूर्वक शिव तथा तीर्थ देवताओं की पूजा की और फिर भरद्वाज मुनि के आश्रम पहुंचे। श्री राम ने भरद्वाज मुनि को दंडवत प्रणाम किया तो मुनिराज ने उन्हें हृदय से लगा लिया। आनंदातिरेक में आशीर्वाद देते हुए उन्हें यह प्रतीति हुई कि देवी सीता और लक्ष्मण सहित श्री राम के दर्शन कराकर विधाता ने उनके संपूर्ण पुण्यों का फल लाकर आंखों के सामने रख दिया है। प्रेम सहित पूजन करके भरद्वाज जी ने उन्हें कंद मूल फल खिलाए और स्नेह सनी वाणी में अपने उद्गार प्रकट किए। आपके दर्शन कर आज मेरी तपस्या, जप योग, तीर्थ सेवन और त्याग, वैराग्य सभी सफल हो गए। प्रभु दर्शन के अतिरिक्त लाभ और सुख की कोई अन्य सीमा नहीं है। जब तक मनुष्य मन, वचन और कर्म से छल कपट त्याग कर आपका दास नहीं हो जाता, तब तक कोटि उपाय करके भी उसे स्वप्न में भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती।

0: मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे।
1: इस यात्रा के दौरान दोनों नेता ताशकंद में द्विपक्षीय महत्व के सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत उज्बेकिस्तान के शीर्ष 10 व्यापारिक साझेदारों में से एक है, जिनके बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग $1 अरब का है। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच कारोबार तेजी से बढ़ा है। चिकित्सा, खनन और रक्षा कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनमें सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। रक्षा क्षेत्र में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच व्यापक सहयोग की शुरुआत हो चुकी है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
0: नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 579 हो गई है। 1924 लोग लापता हैं। अब तक 579 शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि 101 घायल लोगों का अस्पतालों में इलाज चल रहा है। लापता लोगों में पनबिजली परियोजनाओं से जुड़े लोग, विदेशी नागरिक, आम नागरिक और सुरक्षा तथा सरकारी कर्मी शामिल हैं। इस बीच भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को मानवीय सहायता तेज कर दी है। मानवीय सहायता सामग्री के साथ तीसरा विमान कल शाम काठमांडू पहुंचा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने बताया कि बचाव अभियान के लिए चिकित्सकों, पैरामेडिक्स और रेकी टीम सहित 11 सदस्यीय दल भी मौके पर मौजूद हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नेपाल बाढ़ के बाद से 320 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो सका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि लगभग 100 भारतीय मूल के लोग अब भी लापता हैं। नई दिल्ली में कल श्री जायसवाल ने कहा कि त्रिशूली वन जल विद्युत परियोजना में लगे 63 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बचाया गया है। तमिलनाडु के 21 भारतीय नागरिक काठमांडू से कल नई दिल्ली पहुंचे। पश्चिम बंगाल सरकार ने विदेश मंत्रालय से नेपाल में आई बाढ़ में लापता राज्यों के लोगों की तलाश के लिए एक प्रतिनिधिमंडल भेजने की अनुमति मांगी है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने बताया कि अनुमति मिलते ही एक प्रतिनिधिमंडल काठमांडू भेजा जाएगा। इसमें राज्य के एक मंत्री, एक विधायक, महानिरीक्षक स्तर के पुलिस अधिकारी और भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन आज तमिलनाडु, कर्नाटक, केरलम और लक्षद्वीप के 3 दिन के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वे शिक्षा, सार्वजनिक सेवा, सांस्कृतिक विरासत, उद्योग, अकादमिक सहयोग, मछली पालन को बढ़ावा देने से संबंधित कार्यक्रमों के अलावा कुछ प्रमुख सार्वजनिक समारोह में भी वे भाग लेंगे। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी के मूल्यों में लगभग 20% की गिरावट आई है और खुदरा चीनी की कीमतें अभी भी कम होने लगी हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के 84 विषयों के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने इस वर्ष जून में हुई अंग्रेजी, वाणिज्य और समाज शास्त्र विषयों की परीक्षा नए सिरे से आयोजित करने की घोषणा की है। विशेषज्ञ समिति के प्रश्न पत्रों में तथ्यात्मक टाइपिंग, अनुवाद और भाषा संबंधी त्रुटियां पाई जाने के बाद यह निर्णय लिया गया। पुनर्परीक्षाएं 9 और 10 सितंबर को होंगी। इसके लिए परीक्षार्थियों को अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का ये 137वां संस्करण होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। मौसम विभाग ने उड़ीसा के कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने आज बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के मैदानी इलाकों, झारखंड, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। राजधानी में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। भारत के वेलवन सेंथिल कुमार ने PSA बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन का खिताब जीत लिया है। फाइनल में कल सेंथिल ने हंगरी के बालाज फारकाश को लगातार गेम में 3-0 से हराकर यह ऐतिहासिक जीत दर्ज की। सेंथिल कुमार ने बालाज फारकाश को 11-4, 11-2, 11-3 से हराकर ट्रॉफी जीती। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani. The news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi will embark on a four-day visit to Uzbekistan and Kyrgyz Republic beginning today. On the first leg of his two-day visit, he will reach Uzbekistan today. He will visit Tashkent at the invitation of the President of Uzbekistan, Mr. Shavkat Mirziyoyev. This will be Mr. Modi's fourth visit to Uzbekistan.

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

प्रथम खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की बर्थ एनिवर्सरी है। उनकी गेंद पर अद्भुत पकड़ और गोल करने की असाधारण क्षमता के कारण उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। उन्होंने 1928 में, 1932 में और 1936 के ओलंपिक खेलों में भारत को हॉकी में स्वर्ण पदक दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये दिन हमें खेलों के प्रति समर्पण, अनुशासन और मेहनत की प्रेरणा देता है। मेजर ध्यानचंद का जीवन आज भी हर खिलाड़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत।

0: नमस्कार। आज सवेरे के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। सरबजीत के साथ आज मैं हूं नवीन सक्सेना। और सरबजीत, हमारे सुनने वालों के लिए एक बार फिर एक खूबसूरत दिन अपनी बाहें फैलाकर खड़ा हुआ है और कह रहा है अपनी तमाम ख्वाहिशें जो रह गई हैं वो आज ही के दिन पूरी कर लीजिए। वो कह रहा है कि मैं एक बार फिर आज पूरा दिन आपके साथ चलने को तैयार हूं। सरबजीत के साथ एक बार फिर मैं आपको याद दिला दूं, मैं हूं नवीन सक्सेना आज के इस अंक में। और सरबजीत, आज राष्ट्रीय खेल दिवस भी है।
1: एब्सोल्युटली नवीन, यू वेरी वेल यू नो रिमेंबर दैट यस, टुडे इज द नेशनल स्पोर्ट्स डे। एंड इन फैक्ट इन द ईयर 2019 द फिट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड ऑन दिस डे एंड एन एफर्ट वाज मेड टू इनकल्केट अ स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप, इनकल्केट अ स्पिरिट ऑफ यू नो मूवमेंट, फिजिकल एक्टिविटी एज अ डेली रूटीन इन एवरी डे लाइफ।
0: और ये हमारे खिलाड़ियों में दिख भी रहा है। कॉमनवेल्थ में जब पदक आते हैं, हमारे खिलाड़ी विश्व रिकॉर्ड बनाते हैं, तो नजर आता है ये प्रयास। आज महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती है। दुनिया भर में हॉकी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध भारत के महान और कालजयी हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद, जिन्होंने भारत को ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक दिलवाया, उनके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए उनके जन्मदिन यानी आज ही के दिन हर वर्ष भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ऐसी बहुत सी जानकारियां सरबजीत आज हमने सुनने वालों को देंगे
1: जी।
0: लेकिन सबसे पहले हम नजर डाल लेते हैं हफ्ते की खास खबरों पर, और वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर आज से उज्बेकिस्तान रवाना होंगे। प्रधानमंत्री आज और कल ताशकंद में होंगे और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत भी करेंगे। प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर उज्बेकिस्तान के लोगों में और वहां में रहने वाले भारतवंशियों में बहुत उत्साह है। और सरबजीत, बड़ी संख्या में उज्बेकिस्तान में भारतीय जो छात्र हैं मेडिकल की पढ़ाई के लिए पहुंचते हैं। इसके अलावा बहुत से जो लोकल स्टूडेंट्स हैं, स्थानीय छात्र भी हैं, भारत के विश्वविद्यालयों की यहाँ खोली गई कई शाखाओं में पढ़ रहे हैं। और इन छात्रों से प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर हमारे संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी ने बातचीत की है। आइए सबसे पहले वही सुनते हैं।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज से शुरू हो रही यात्रा को लेकर स्थानीय लोगों और भारतीय मूल के लोगों दोनों ही समुदायों में काफी उत्साह है। ताशकंद में मेडिकल की पढ़ाई करने वाली इंशा नाहिद ने आकाशवाणी समाचार से खास बातचीत में कहा कि यह उनके लिए खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी यहाँ आ रहे हैं। उन्होंने उज्बेकिस्तान के लोगों के दोस्ताना रवैये की भी तारीफ की।
3: ये जो अवसर है, जब हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर उज्बेकिस्तान में आ रहे हैं, तो हमारी दोनों कंट्री के कनेक्शन और ज्यादा मजबूत हो जाएंगे, तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं।
2: समरकंद में मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्र इंद्रजीत सिंह ने आकाशवाणी समाचार से कहा कि उन्हें बेहद खुशी है कि प्रधानमंत्री ताशकंद आ रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि इस यात्रा से यहाँ पढ़ने वाले भारतीय छात्रों को भी कुछ न कुछ बेहतर हासिल होगा।
4: मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि एज ए इंडियन स्टूडेंट में पता चला है कि मोदी जी SCO मीटिंग के लिए ताशकंद में आ रहे हैं। हम यहाँ पर एजुकेशन ले रहे हैं और इंडिया का एजुकेशन मेडिकल में आपको सबको पता है कि देश में अव्वल नंबर पे आता है।
2: सिर्फ भारतीय मूल के छात्र ही नहीं बल्कि उज्बेकिस्तान की रहने वाली लिलिलिया को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी प्रभावित करते हैं। उन्होंने आकाशवाणी के साथ बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री युवाओं के साथ कनेक्ट करते हैं और उनके उज्बेकिस्तान आने को लेकर वो काफी उत्साहित हैं।
5: I'm really happy that our partnership of India and Uzbekistan growing and I saw a lot of information about Prime Minister that he's coming short time in Uzbekistan and the major example of our partnership is growing is our university, MIT University.
2: आज सवेरे के लिए ताशकंद से सुशील चंद्र तिवारी।
1: After that update, let's look at the big news of the day. The government has said that there is no shortage of sugar in the country and all necessary measures will be taken for adequate availability of sugar at reasonable prices. Consumer Affairs Ministry said that ex-mill sugar prices have declined by around 20% in recent days, while retail sugar prices have also started coming down. The ministry said it has taken a series of proactive measures to ensure adequate availability of sugar.
0: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के 84 विषयों के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने इस वर्ष जून में हुई अंग्रेजी, वाणिज्य और समाज शास्त्र विषयों की परीक्षा नए सिरे से आयोजित करने की घोषणा की है। पुनर्परीक्षाएं 9

0: 10 सितंबर को होंगी और इसके लिए परीक्षार्थियों को अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा।
1: एडिशनल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिशन डायरेक्टर नेशनल हेल्थ मिशन आराधना पटनायक चेयर्ड हाई लेवल रिव्यू मीटिंग टू असेस द कंट्रीज प्रोग्रेस टुवर्ड्स अचीविंग मलेरिया इलिमिनेशन टारगेट बाय 2030। द रिव्यू फोकस्ड ऑन द 33 हाई बर्डन डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस 9 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज विच अकाउंटेड फॉर 64% ऑफ मलेरिया केसेस एंड 54% ऑफ मलेरिया डेथ्स रिपोर्टेड इन 2025। The National Human Rights Commission, NHRC, will conduct a two-day open hearing and camp sitting at Gandhinagar, Gujarat on the 2nd and 3rd of next month to hear cases of alleged human rights violations of the state, NHRC Chairperson, Justice V. Ramasubramanian and members Justice Dr. Bidyut Ranjan Sarangi and Vijay Bharti Sayani will hear the cases at the National Forensic Sciences University.
0: पीएसए बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन के फाइनल में भारत के वेलवन सेंथिल कुमार ने बालाज फारकस को 3-0 से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया है। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने विश्व में 18वीं वरीयता प्राप्त और एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता एनयोन एनजी को 3-0 से हराया था। तो ये थी वो तमाम खबरें जिन पर आज दिन भर आपकी और हमारी नजर रहेगी। और अब खबरें आपके शहर की।
1: Let's begin with the news from Chennai, Naveen. The Bureau of Indian Standards, Chennai branch office, conducted a two-day capsule training course on August 27th and 28th for quality control personnel of licensed footwear manufacturing units. The program focused on Indian standards for sports footwear as well as sandals and slippers. In a significant push towards circular economy and sustainable manufacturing, CSIR Central Leather Research Institute, Chennai, signed a licensing agreement on August 27th with Bengaluru-based firm Messrs. Husk & Hyde to transfer its technology for producing leather-like material from coffee husk. India generates over 1 lakh tons of coffee husk annually out of a total production of roughly 3.5 lakh metric tons. And Tamil Nadu Chief Minister C. Joseph Vijay paid a surprise visit to the central prison at Puzhal near Chennai. He reviewed the functioning of the prison, facilities, awareness on drugs, disease control measures and community classes.
0: Sarabjit, Delhi ki khabron par nazar dalein to Delhi ki Mukhyamantri Rekha Gupta ne kaha hai ki Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana ne gareeb parivaron ke parishram ko पहचान दी है और उनकी बचत को सुरक्षा दी है। इस योजना के 12 वर्ष पूरे होने पर श्रीमती गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज 59 करोड़ से अधिक जनधन खाते खोले जा चुके हैं, जिसमें लगभग 56% हिस्सेदारी महिलाओं की है। बात वयो आनंद योजना की। दिल्ली सरकार राजधानी के बुजुर्ग नागरिकों के लिए वयो आनंद योजना शुरू करने जा रही है। इस योजना के अंतर्गत ऐसे केंद्र विकसित किए जाएंगे जहां बुजुर्ग नागरिकों को खाली समय में आराम करने, इंडोर गेम खेलने, एक दूसरे से मिलने जुलने और सामाजिक गतिविधियों में शामिल होने के लिए बेहतर माहौल उपलब्ध हो चुके सके। वयो आनंद योजना है दिल्ली के बुजुर्ग लोगों के लिए। और कहीं ना कहीं सरबजीत, ऐसा में महसूस होता है कि जब हम उम्र के उस पड़ाव पर पहुंचते हैं ना, तो अकेले रह जाते हैं, क्योंकि आपके अपने चाहने वाले या आपसे छोटे हैं या आपके परिवार वाले सब अपने अपने कामों में बिजी होते हैं। देन यू नीड अ पर्सन जो आपकी बात को सुन सके और आप जैसा हो।
1: आई बिलीव नवीन, दैट्स व्हाट कम्युनिटी बिल्डिंग एंड कम्युनिटी प्रोएक्टिव स्टेप्स इज ऑल अबाउट।
0: शायद यही वयो आनंद योजना भी है कि अगर सामुदायिक रूप से और सामाजिक रूप से एक दूसरे से जुड़ने के लिए इस योजना का जरूर हिस्सा बने। बात दिल्ली के संस्कृत सप्ताह महोत्सव की। जामिया मिल्लिया इस्लामिया में संस्कृत दिवस के अवसर पर संस्कृत सप्ताह महोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को संस्कृत भाषा के अध्ययन अध्यापन को प्रोत्साहित करना और भारतीय परंपरा, साहित्य और संस्कृति के प्रति जागरूकता का संवर्धन करना था।
1: मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, दैट इज फ्रॉम बेंगलुरु। कर्नाटका डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर डॉ जी परमेश्वर हैज मेड इट क्लियर दैट द स्टेट गवर्नमेंट विल नॉट अलाउ द कस्तूरी रंगन रिपोर्ट टू बी इंप्लीमेंटेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। ही चार्ज्ड दैट द यूनियन गवर्नमेंट नोटिफिकेशन for the seventh time to declare 1,449 villages across 10 districts in the Western Ghats as ecologically sensitive areas as per Kasturi Rangan report has caused concern among lakhs of families living in Malnad,

0: सरकार ने चीनी विक्रेताओं, वितरकों और थोक उपभोक्ताओं पर भंडार सीमा लागू कर दी है। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अनुसार चीनी विक्रेताओं को वितरकों को किसी भी समय या किसी भी स्थान पर 4000 क्विंटल से अधिक चीनी रखने की अनुमति नहीं होगी। अगली खबर, भारतीय वायुसेना ने सेखो इंडियन एयरफोर्स मैराथन 2026 के लिए पंजीकरण शुरू कर दिए हैं, जो 4 अक्टूबर को भारत के 7 शहरों में एक साथ आयोजित की जाएगी। मुंबई संस्करण का आयोजन जो होगा वो आईएएफ के मुख्यालय रखरखाव कमान द्वारा फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सेखो पीवीसी के सर्वोच्च बलिदान की स्मृति में किया जाएगा।
1: And news now from Hyderabad, Telangana Deputy Chief Minister Bhatti Vikramarka has directed Singareni officials to explore a joint venture with Karnataka's Hatti Gold Mines for future gold mining projects. He gave these instructions during a visit to the Hatti and UTI gold mines in Raichur district, Karnataka, on the second day of his tour to the region. The Deputy CM, who also holds the finance and energy portfolio, said, Combining the technical expertise of both public sector companies could improve India's domestic gold production.
0: अपनी मेट्रो रेल को घुमाते और हैदराबाद से सीधे आपको कोलकाता लिए चलते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने नेपाल में आई बाढ़ में लापता हुए राज्य के निवासियों का पता लगाने के लिए काठमांडू में प्रतिनिधिमंडल भेजने के लिए केंद्रीय विदेश मंत्रालय से अनुमति मांगी है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि अनुमति मिलते ही राज्य मंत्री, विधायक, पुलिस महानिरीक्षक और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सहित 4 सदस्यीय दल को नेपाल भेजा जाएगा। तो ये थी आपके शहर की खबरें। के शहर की खबरें हो और उसमें आपके शहर का मौसम ना हो तो भाई मजा कुछ अधूरा सा रहता है। ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा अखबार आपने पढ़ लिया और यही नहीं बताया गया कि छतरी लेकर बाहर जाना है कि नहीं जाना। दिल्ली, सबसे पहले बात दिल्ली, उमस भरी रहेगी आज भी, बादल छाए रहेंगे। कल दिन भर जो उमस थी वो आज भी जारी रहेगी। पता ही नहीं लगता है सरबजीत, इतनी बारिश होती है तो जाती कहाँ है, आसमान बरस जाते हैं, बादल फट रहे हैं जगह जगह, दिल्ली बेचारी सूखी पड़ी हुई है। अधिकतम तापमान 36 डिग्री, न्यूनतम तापमान 26 डिग्री, यानी 36 और 26 डिग्री के बीच आज आपको इस पूरी दिल्ली में घूमना है। मुंबई की बात करें तो 33 डिग्री और 27 डिग्री। मौसम कह रहा है कि बादल थोड़े मेहरबान रहेंगे, हल्की बारिश हो सकती है, और कोलकाता वही 33 डिग्री और 25 डिग्री। तो लगभग लगभग तीनों स्टेट्स का, तीनों शहरों का लगभग लगभग वही हाल है। बाकी हिस्सों का क्या हाल सरबजीत?
1: वेल, नवीन, चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव पार्टली क्लाउडी स्काई विद पॉसिबिलिटी ऑफ मॉडरेट रेन और थंडरस्टॉर्म। टेम्परेचर्स 27 डिग्री सेल्सियस टू 37 डिग्री सेल्सियस। बेंगलुरु इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ जनरली क्लाउडी स्काई विद लाइट रेन। द टेम्परेचर्स विल हावर बिटवीन 20 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस। एंड हैदराबाद इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ पार्टली क्लाउडी स्काई विद पॉसिबिलिटी ऑफ रेन और थंडरस्टॉर्म और डस्ट स्टॉर्म। टेम्परेचर अपडेट 24 डिग्री सेल्सियस टू 31 डिग्री सेल्सियस।
0: और सरबजीत, मजा तो तब आता है जब इस तरह के मौसम में भी कोई मौसम का मजा ले लेता
1: जी,
0: है।
1: जी बिल्कुल,
0: उमस भरी हुई है लेकिन फिर भी आप चाय पी रहे हैं, गर्मी है लेकिन फिर भी आप चाय का आनंद ले रहे हैं, तो शायद इससे ज्यादा मौज आप कर ही नहीं सकते इस मौसम में। और अब मैं और सरबजीत पलटते हैं एक और पन्ना आज सवेरे का और ढूंढ लाते हैं वो घटनाएं, वो व्यक्ति जो जुड़े हुए हैं आज के दिन से, जिन्हें हम आज याद करेंगे और एक साल बाद जब आप आज खोलेंगे ना कहेंगे अरे ये तो मुझे पहले से ही पता था, है ना सरबजीत?
1: बिल्कुल।
0: कहां से शुरू कर रखी हो?
1: सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल नवीन फ्लिप द पेजेस ऑफ हिस्ट्री एज यू जस्ट राइटली सेड एंड सी दैट ऑन वेरियस इयर्स ऑन दिस डेट व्हाट हैपेंड, व्हाट वर द लैंडमार्क हिस्टोरिकल इवेंट्स दैट टुक प्लेस। सो लेट्स बिगिन विद द ईयर 1885, 29th August, जर्मन इन्वेंटर गॉटलिब देलमेर patented the Rittwagen, generally regarded as the world's first motorcycle powered by an internal combustion engine.
0: सरबजीत, मैं थोड़ा सा और पीछे चलता हूँ। विज्ञान की बात हो रही है तो अपने सुनने वालों को विज्ञान की प्रयोगशाला में ही ले चलें। बात 1831 की, इंग्लैंड के वैज्ञानिक माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक महत्वपूर्ण प्रयोगात्मक प्रदर्शन किया था। नाम थोड़ा सा भारी है लेकिन इसका असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत गहरा है। सोचिए, बिजली पैदा करने वाले जनरेटर और ट्रांसफार्मर जैसी तकनीकों में बुनियादी जो है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सिद्धांत, जो बहुत महत्वपूर्ण है। यानी जिस बिजली

0: से आज हमारा रेडियो चल रहा है उसकी कहानी में आज का दिन एक अध्याय के रूप में जुड़ा हुआ है।
1: सो स्टिल बीइंग यू नो ऑन द रूट ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट स्पेस टेलीकम्युनिकेशन 1965 ऑन दिस डे द जेमिनी 5 स्पेसक्राफ्ट रिटर्न टू अर्थ आफ्टर इट्स हिस्टोरिक स्पेस फ्लाइट।
0: इतिहास की कहानी को सरब जी थोड़ा सा गंभीर कर लेते हैं, थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं। बात 29 अगस्त 1949 की। सोवियत संघ ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया और यह परीक्षण कजाकिस्तान के ऐसे क्षेत्र में हुआ जिसे फर्स्ट लाइटनिंग यानी आरडीएस के नाम से जाना जाता है। इस घटना ने अमेरिका और सोवियत संघ के बीच परमाणु हथियारों की होड़ को और तेज कर दिया और शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर में इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ आया। लेकिन इतिहास कभी सिर्फ घटनाएं नहीं बताता, वो हमें चेतावनी भी देता है। और सरबजीत ऐसी ही चेतावनी दी गई थी जब परमाणु परीक्षण हुआ, इसलिए संयुक्त राष्ट्र ने आज के दिन को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट घोषित किया। और ये साल ये दिवस 2009 में स्थापित किया गया और पहली बार 2010 में मनाया गया।
1: एंड नवीन, सिंस वी आर स्टिल इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट, द मंथ ऑफ फ्रीडम, सो 29th August 1947 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपॉइंटेड द ड्राफ्टिंग कमिटी विद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एट इट्स चेयरमैन टू प्रिपेयर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया।
0: एक ही तारीख, कहीं विज्ञान की उपलब्धि, कहीं विज्ञान की शक्ति से खतरों की याद। लेकिन माहौल को थोड़ा सा बदलते हैं, चलते हैं संगीत की दुनिया में। बात बीटल्स की। 29 अगस्त 1966 अमेरिकी शहर के सैन फ्रांसिस्को कैंडलस्टिक पार्क, दुनिया के सबसे मशहूर बैंडों में से एक द बीटल्स ने पेइंग ऑडियंस यानी अगर बात करें तो टिकट लेके खरीदने वाली ऑडियंस के सामने अपना आखिरी कमर्शियल कॉन्सर्ट किया। यानी बीटलमेनिया का एक बड़ा लाइव चैप्टर यहीं खत्म हो गया। सोचिए, हजारों प्रशंसक सामने और सरबजीत चार संगीतकार मंच पर, और किसी को भी शायद उस वक्त इतना भी अंदाजा नहीं रहा होगा कि ऐतिहासिक ये आखिरी कॉन्सर्ट बनने जा रहा है।
1: वेल, फ्रॉम म्यूजिक टू स्पोर्ट्स, 1998 ऑन दिस डे सचिन तेंदुलकर रिसीव द राजीव गांधी खेल रत्न।
0: तो ये थी वो इतिहास की तमाम घटनाएं जो जुड़ी हुई थी आज के दिन से। और इतने डिटेल में मैंने और सरबजीत ने बताया है कि आप कभी नहीं भूलेंगे इसको। और अब बात करते हैं उन व्यक्तियों की जो जुड़े हुए हैं आज के दिन से। सबसे पहले बात प्रसिद्ध बांग्ला कवि, संगीत सम्राट, संगीतज्ञ और दार्शनिक काजी नजरुल इस्लाम की।
1: जी, काजी नजरुल इस्लाम, टुडे इज हिज डेथ एनिवर्सरी। नजरुल साहब रोट ऑन अ वैरायटी ऑफ थीम्स इंक्लूडिंग इक्वालिटी, जस्टिस, एंटी इंपीरियलिज्म, ह्यूमैनिटी, रिबेलियन अगेंस्ट ऑपरेशन एंड रिलीजियस डिवोशन।
0: साहित्य और संगीत के क्षेत्र में योगदान के लिए उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। नजरुल ने लगभग 3000 गानों की रचना की और साथ ही अधिकांश को स्वर भी दिया। इनके संगीत के आजकल नजरुल संगीत या नजरुली गीति के नाम से जाना जाता है।

0: और अब बात एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी की जिनका नाम था माधव श्रीहरि अणे। भारत की आजादी के लिए संघर्ष करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। आज उनकी जन्म जयंती है। माधव श्रीहरि लोकमान्य तिलक से बहुत प्रभावित थे और वो कुछ समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य भी रहे। गांधी जी के नमक सत्याग्रह में इन्होंने जेल भी की सजा काटनी पड़ी और 1943 से 1947 तक ये श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त भी रहे।
1: Listeners, we are remembering today the great, performer dubbed as the King of Pop, Michael Joseph Jackson. Today is his birth anniversary.

कहते हैं ना कि ना कुछ चेहरे सिर्फ पर्दे पर दिखाई देते हैं, कुछ नाम इतिहास में दर्ज हो जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो वक्त बीत जाने के बाद भी यादों में मुस्कुराते हैं। आज की इस छोटी सी महफिल आज सवेरे में अलग अलग रंग, तो सबसे पहले बात अब हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की।

0: 29 अगस्त 1905 इलाहाबाद आज का प्रयागराज, यही जन्म हुआ था हॉकी के जादूगर खिलाड़ी ध्यानचंद का। मेजर ध्यानचंद रात में बहुत अभ्यास करा करते थे सरबजीत, इसीलिए उनके साथियों ने उनका उपनाम रख दिया चांद। असली नाम उनका ध्यान सिंह था। हॉकी में ध्यानचंद सा खिलाड़ी ना तो कभी हुआ और ना होगा। वो जितने बड़े खिलाड़ी थे उतने ही बड़े नेक दिल इंसान भी थे। बचपन से ही खेलों के प्रति लगा, फिर सेना में भर्ती और हॉकी से ऐसा रिश्ता बना कि देखते ही देखते दुनिया उन्हें हॉकी का जादूगर कहने लगी। 1928, 1932 और 1936 के ओलंपिक और फिर स्वर्ण पदक। और सरबजीत कहते हैं कि उनकी हॉकी में ऐसा जादू था कि बॉल चिपक कर रह जाती थी। एक बार वो बर्लिन में एक हॉकी टेस्ट खेलने गए तो उनकी स्टिक को चुंबक से, मैग्नेट से चेक कराया गया कि कहीं उसके अंदर कोई ऐसा कुछ छुपा तो नहीं हुआ कि बॉल चिपक जाती है।
1: And if I may add, Naveen, here that Major Dhyanchand had extraordinary control over the ball, and his precision and his ability to read the game earned him the legendary title, the Wizard of Hockey.
0: मैंने और सरबजीत ने प्रसार भारती की लाइब्रेरी से एक छोटा सा इंटरव्यू लिया है मेजर ध्यानचंद का, जो लखनऊ दूरदर्शन को उन्होंने दिया था। सुनते हैं उनकी आवाज से।
2: मैंने देखा है वहाँ के हॉलैंड के अंदर और जर्मन के अंदर, जिस वक्त हम लोग प्रैक्टिस करने के लिए जाते थे ग्राउंडों पर, तो उनके टेलीविजन वगैरह, फोटोग्राफ्स वगैरह, ये स्लो मोशन और फास्ट मोशन लेने के लिए हमारे पीछे पीछे लग जाते थे। लेकिन हम लोग खिलाड़ी थे, हमको इन बातों के जरा सा भी ख्याल नहीं होता था कि क्या है। एक फोटो मांग लेते थे, बाकी वो अपना सीक्रेट हर एक चीज लड़कों को खिलाने के लिए खींच लेते थे। और वो फोटोज ये मैंने 63 में देखा, जब मैं 63 में बर्लिन में गया, फिर ये देखा स्क्रीन के अंदर। बच्चों को वो स्क्रीन के ऊपर उसको गोस्ट करते थे और उनको उसी वक्त साथ में बोलते भी जाते थे।
1: That was the voice of the legendary Major Dhyanchand in his exclusive interview to Akashvani. Moving on further, we are paying tributes to Ingrid Bergen. Today is his birth anniversary. And in fact, she was a Swedish actress with a career spanning 5 decades. And Bergen is often regarded as one of the most influential actresses in the history of cinema. Bergen won numerous accolades, including 3 Academy Awards, 2 Primetime Emmy Awards and a Tony Award, and these accolades made her the youngest performer to achieve the Triple Crown of acting and one of only 4 actresses to have received at least 3 Acting Academy Awards. Moving on further in our list, Naveen, today we are wishing many good wishes to the great Richa Sharma. She has a beautiful voice. She is known for her lovely renditions of devotional music and very thoughtful songs she's been rendering. So let's hear this beautiful number by Richa.

0: Yes, indeed. Many, many good wishes to Richa Sharma from the entire team of Taj Savere. Moving on further in the program, we are paying tributes to John Locke, English philosopher and physician, widely regarded as one of the most influential of the Enlightenment thinkers and commonly known as the father of liberalism.
1: और सरब जी, तब बात उस दौर की जब रेडियो पर गीत बजता था तो लोग काम छोड़कर बस सुनने बैठ जाते थे। बात कर रहे हैं उस एक्ट्रेस की जिसकी एक मुस्कान पर एक जमाने में तमाम सिने प्रेमी फिदा थे। नाम लीना चंद्रावरकर का। लीना चंद्रावरकर का आज जन्मदिन है। लीना चंद्रावरकर का नाम लेते ही सामने आता है एक चंचल, खूबसूरत और मुस्कुराती हुई अभिनेत्री। धारवाड़ कर्नाटक में आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था। बहुत कम उम्र में उन्होंने फिल्मों में कदम रखा और उनकी खूबसूरती के साथ उनकी बासूमियत और चुलबुलापन दर्शकों को बहुत पसंद आया और फिर उनके ऊपर फिल्माए गए गीत और उस दौर का ये गीत आज भी लोगों की जुबान पर है। जाने की उन लोग मोहब्बत करती हैं।

0: और चलते चलते हम अपने सुनने वालों को एक बार फिर बता दें कि अगर इस समय अगर आप जानना चाहते हैं कि दिल्ली में क्या कुछ हो रहा है, तो मैं और सरबजीत बहुत जल्दी जल्दी आपको टिप्स देते हैं कि आप अपनी शाम और दिन कैसे बिता सकते हैं।
1: एब्सोल्युटली, एंड मोस्ट ऑफ इट बीइंग अ वीकेंड नवीन, सो द फर्स्ट कल्चरल इवेंट दैट इज हैपनिंग इज एट द रशियन हाउस। इट्स द फेस्टिवल ऑफ रशियन सिनेमा। द टाइमिंग्स ऑफ कोर्स 11 AM to 6 PM।
0: शाम को 6:30 बजे यानी 6:30 आप कमानी ऑडिटोरियम के आसपास हैं तो आप वहां पे देख सकते हैं श्रीराम भारतीय कला केंद्र द्वारा प्रस्तुत कृष्णा डांस ड्रामा। और अगर लिटरेचर टॉक के शौकीन हैं तो आप भाषावाद सुन सकते हैं नेशनल ट्रांसलेशन कॉन्फ्रेंस मल्टीपर्पज हॉल। ये होगा इंडिया इंटरनेशनल मैक्स मुलर मार्ग पर, एंट्री फ्री, मेट्रो स्टेशन जोर पार्क।
1: यू कैन ऑफकोर्स ऑल्सो विजिट डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर एट जनपद फॉर साउंडस्केप्स ऑफ इंडिया शोकेस फेस्टिवल एंड म्यूजिक।
0: और अगर आपको खरीदारी करनी है, हैंडमेड फेस्टिवल लगा हुआ है बाबा खड़क सिंह मार्ग पर, चलेगा 8 सितंबर तक। बहरहाल इतनी सारी जानकारी आज के लिए बहुत है। अब इजाजत दीजिए मुझे और सरबजीत को इस प्रोग्राम को यहीं समाप्त करने की।
1: नमस्कार।

0: आज देश में हर एक सेकंड में होते हैं 1 करोड़ रुपए के यूपीआई पेमेंट्स और हैं 81 करोड़ से ज्यादा यूपीआई पेमेंट पॉइंट्स।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक क्यूआर कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल आत्मनिर्भर बेफिक्र।
2: मेरी बैंक हमेशा मेरे साथ चलती है। सुबह उठती हूँ तो पैसे जमा कर आती है, कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है, आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया है। जनधन बैंक खाता क्या मिला मुझे तो उंगलियों के छोर पर बीमा पेंशन।

0: डीबीटी सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई हैं।
1: 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले, जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। पीएम जनधन योजना के 12 साल, ज्यादा बचत, ज्यादा काम।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए आज से 4 दिन की उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की यात्रा पर। भारत ने अमेरिका से जैवलिन टैंक रोधी मिसाइल प्रणाली खरीदने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। नेपाल बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 589, 1924 लोग अब भी लापता। भारत पड़ोसी देश को मानवीय सहायता बढ़ा रहा है। सरकार चीनी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सितंबर से पखवाड़े के आधार पर चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करेगी। और भारत के वेलवन सेंथिल कुमार ने हंगरी के बालास फारकश को हराकर पीएसए बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन का खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए आज से 4 दिन की उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की यात्रा पर रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद जा रहे हैं। ये प्रधानमंत्री की उज्बेकिस्तान की 4थी यात्रा है। श्री मोदी यात्रा के दौरान भारत और उज्बेकिस्तान के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे।
3: इस यात्रा के दौरान दोनों नेता ताशकंद में द्विपक्षीय महत्व के सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत उज्बेकिस्तान के शीर्ष 10 व्यापारिक साझेदारों में से एक है, जिनके बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग $1 अरब का है। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच कारोबार तेजी से बढ़ा है। चिकित्सा, खनन और रक्षा कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनमें सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। रक्षा क्षेत्र में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच व्यापक सहयोग की शुरुआत हो चुकी है। 2019 में रक्षा मामलों पर एक संयुक्त कार्य समूह की स्थापना की गई थी। भारत और उज्बेकिस्तान नियमित रूप से संयुक्त सैन्य अभ्यास दोस्तलिक में हिस्सा लेते हैं और इसका 7वां संस्करण अप्रैल 2026 में उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया था। इन सभी क्षेत्रों के लिहाज से प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा अत्यंत महत्वपूर्ण है और इससे दोनों देशों के बीच रणनीतिक और व्यापारिक साझेदारी को और मजबूत करने की नींव रखी जाएगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
2: उज्बेकिस्तान में भारत की राजदूत स्मिता पंत ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध तेजी से मजबूत हो रहे हैं और प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी।
4: रिलेशनशिप ऑलरेडी बहुत अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में है। 2011 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोर्ज हुई थी, उसके बाद 2015 में प्रधानमंत्री जी का पहला दौरा हुआ था। 2026 तक बहुत सारे एरियाज में हम लोग फॉरवर्ड मूवमेंट कर चुके हैं, चाहे आप ट्रेड की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, डेवलपमेंट कोऑपरेशन की बात करें, डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें। ट्रेड में ही करीबन 300% इंक्रीज हुई है 2015 से।
2: भारत ने अमेरिका के साथ जेवलिन टैंक रोधी मिसाइल प्रणाली की खरीद के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों देश भारत में इसके संयुक्त उत्पादन की दिशा में काम कर रहे हैं। भारत में अमेरिकी दूतावास और वाणिज्य दूतावास ने कहा है कि भारतीय सेना ने जेवलिन की खरीद के लिए प्रस्ताव और स्वीकृति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि यह समझौता भारतीय सेना के लिए अमरीकी समर्थन दर्शाता है। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 1924 लोग अब भी लापता हैं, जबकि 101 घायल लोगों का अस्पतालों में उपचार चल रहा है। लापता लोगों में पनबिजली परियोजनाओं से जुड़े लोग, विदेशी नागरिक, आम नागरिक और सुरक्षा तथा सरकारी कर्मी शामिल हैं। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को मानवीय सहायता तेज कर दी है। मानवीय सहायता सामग्री के साथ 3रा विमान कल शाम काठमांडू पहुंचा।
5: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बताया कि सहायता सामग्री में पोर्टेबल जनरेटर, खाद्य सामग्री और जल शोधन की गोलियां शामिल हैं। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि बचाव अभियान के लिए चिकित्सकों, पैरामेडिक्स और रेकी टीम सहित 11 सदस्यीय दल भी मौके पर मौजूद है। उन्होंने नेपाल में राहत और बचाव कार्यों के लिए भारत का समर्थन दोहराया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि नेपाल बाढ़ के बाद से 320 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो सका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि लगभग 100 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। नई दिल्ली में कल श्री जायसवाल ने कहा कि त्रिशूली, वन जल विद्युत परियोजना में लगे 63 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। तमिलनाडु के 21 भारतीय नागरिक काठमांडू से कल नई दिल्ली पहुंचे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में कल इन 21 तीर्थयात्रियों से मुलाकात की। उन्होंने बचाव प्रयासों के लिए नेपाल सरकार और सेना को धन्यवाद दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जायसवाल ने बताया कि चीन

0: और लगभग 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और अपने परिवारों के संपर्क में हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि सरकार ने विदेश मंत्रालय में 2400 घंटे कार्यरत एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि काठमांडू और पेचिंग में भारतीय दूतावासों ने भी 24 घंटे कार्यरत हेल्पलाइन शुरू की है। समाचार कक्ष से मैं चंद्रशेखर शर्मा।
1: विदेश मंत्रालय के नियंत्रण कक्ष के टेलीफोन नंबर हैं 0112308-8718, 0112308-8719। आप व्हाट्सएप नंबर 9968291988 और ईमेल situationroom@mea.gov.in के जरिए भी संपर्क कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास के आपातकालीन संपर्क नंबर 9779851316807 पर संपर्क कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने विदेश मंत्रालय से नेपाल में आई बाढ़ में लापता राज्य के लोगों की तलाश के लिए एक प्रतिनिधिमंडल भेजने की अनुमति मांगी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अनुमति मिलते ही एक प्रतिनिधिमंडल काठमांडू भेजा जाएगा। इसमें राज्य के एक मंत्री, एक विधायक, महानिरीक्षक स्तर के पुलिस अधिकारी और भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। नेपाल बाढ़ से सुरक्षित बचे 21 पर्यटक कल रात चेन्नई पहुंच गए। पर्यटकों ने सुरक्षित चेन्नई वापसी के लिए केंद्र और राज्य सरकारों का आभार व्यक्त किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर्ट @AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने चीनी की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा मासिक कोटा प्रणाली के स्थान पर अगले महीने से पखवाड़े के आधार पर चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत चीनी मिलों को पहले सप्ताह में कम से कम 40% आवंटन और शेष मात्रा अगले सप्ताह में बेचनी होगी।
3: सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी मिलों से बाहर चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी है। नए सीजन के लिए गन्ने की पेराई 15 अक्टूबर से शुरू होगी और इस दौरान 10,00,000 टन से अधिक चीनी के उत्पादन का अनुमान है। सरकार ने चीनी मिलों को अक्टूबर में उत्पादित चीनी को बिना किसी प्रतिबंध के बेचने की अनुमति दे दी है। इससे ये सुनिश्चित हो सकेगा कि नए सीजन का उत्पादन शीघ्र घरेलू बाजार में उपलब्ध हो सके। नवंबर में चीनी उत्पादन लगभग 45,00,000 टन रहने की संभावना है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में CNG के मूल्य में 3.89 रुपए प्रति किलोग्राम की वृद्धि की गई है। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजधानी में CNG की कीमत 86.98 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। संशोधित CNG कीमतें आज सुबह 6 बजे से लागू हो गई हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज तमिलनाडु, कर्नाटक, केरलम और लक्षद्वीप के 3 दिन के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वे शिक्षा, सार्वजनिक सेवा, सांस्कृतिक विरासत, उद्योग, अकादमिक सहयोग, मत्स्य पालन को बढ़ावा देने से संबंधित कार्यक्रमों के अलावा कुछ प्रमुख सार्वजनिक समारोह में भी भाग लेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 6 दिन की अमरीका यात्रा पर हैं, जहां वे G20 वित्त मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगी और निवेश के अवसरों पर मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं से बातचीत करेंगी। श्रीमती सीतारामन बृहस्पतिवार को कनाडा के 3 दिन के दौरे के बाद शिकागो पहुंची, जहां उन्होंने भारत कनाडा आर्थिक और वित्तीय संवाद किया था।
4: वित्त मंत्री शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी। इन बैठकों में भारत में निवेश के अवसर, आर्थिक दृष्टिकोण और भारत अमेरिका व्यापार तथा निवेश साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होगी। श्रीमती सीतारामन शिकागो विश्वविद्यालय के पोल्सकी सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन का दौरा करेंगी। वित्त मंत्री अपनी यात्रा के दौरान शिकागो में भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत करेंगी। एशविले में सुश्री सीतारामन की अध्यक्षता में आयोजित G20 सदस्य देशों के वित्त मंत्री, केंद्रीय बैंक गवर्नर तथा वरिष्ठ आर्थिक अधिकारी वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ये बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को होगी। समाचार कक्ष से मैं वीरेंद्र कौशिक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक

0: कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। मौसम विभाग ने बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल में गंगा किनारे वाले क्षेत्र, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में भी कल तक तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने उड़ीसा के कई जिलों के लिए तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। भारत के विल्वन सेंथिल कुमार ने पीएसए बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन का खिताब जीत लिया है। फाइनल में कल सेंथिल ने हंगरी के बालाज फारकश को लगातार गेम में 3-0 से हराकर यह ऐतिहासिक जीत दर्ज की। सेंथिल कुमार ने बालाज फारकश को 11-4, 11-2, 11-3 से हराकर ट्रॉफी जीती। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने विश्व में 18वीं वरीयता प्राप्त और एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता एन योव एनजी को 3-0 से हराया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: हर खबर से जुड़े रहिए, जहां भी हो expert@airnews हिंदी को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
2: धन्यवाद फरहत। विनाशकारी जल प्रलय से जूझ रहे नेपाल की त्रासदी की तस्वीरें सभी समाचार पत्रों ने सचित्र दी हैं। राजस्थान पत्रिका लिखता है, पल पर प्रलय का खौफ, झील टूटी तो घर छोड़कर पहाड़ों पर भागे लोग। जनसत्ता ने त्रिशूली में नेपाली सेना द्वारा लोगों को बचाए जाने की तस्वीरें दी हैं। पत्र लिखता है, अब भी 320 भारतीय लापता। चीन में फंसे 400 लोग सुरक्षित। नवभारत टाइम्स ने नेपाल में सैलाब शीर्षक से बचाव अभियान पर लिखा है, चुनौतियों के बीच अब जिंदगी बचाने की जंग। अमेरिका से 100 जेवलिन मिसाइलें खरीदेगा भारत, अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर ने दी जानकारी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, हिंदुस्तान ने रक्षाबंधन के अवसर पर बच्चों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राखी बांधने की तस्वीर साझा की है। पत्र लिखता है, पीएम मोदी की कलाई पर सजा, बच्चों के प्यार का धागा। नशे के खिलाफ एकजुट हो रही देहरादून के थानी गांव की महिलाएं, नशे के कारोबार से गांव को बचाना है लक्ष्य, जनसत्ता की सुर्खी है। सोना 26 साल बाद सबसे बड़े मासिक उछाल की तरफ, अगस्त में दाम 14% बढ़ चुके, दैनिक भास्कर की खबर है। अमर उजाला ने अपने कारोबारी पन्ने पर शेयर बाजार से जुड़ी खबर प्रकाशित की है, आईटी शेयरों ने दिया बाजार को सहारा, सेंसेक्स निफ्टी में 2 दिन की गिरावट थमी। शिक्षा की दीवार से आसान हो रही पढ़ाई, सरकारी स्कूल में नवाचार, निजी स्कूलों से हटा सरकारी में कराया प्रवेश। मध्य प्रदेश के सीहोर में इस योजना के माध्यम से अंग्रेजी सीखने के सरल तरीके को अपनाया जा रहा है, राजस्थान पत्रिका की खबर है।
0: धन्यवाद नवीन। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए आज से 4 दिन की उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की यात्रा पर। भारत ने अमेरिका से जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम खरीदने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। नेपाल बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 579 हुई, 1924 लोग अब भी लापता। भारत पड़ोसी देश को मानवीय सहायता बढ़ा रहा है। सरकार चीनी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1 सितंबर से पखवाड़े के आधार पर चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करेगी। और भारत के विल्वन सेंथिल कुमार ने हंगरी के बालाज फारकश को हराकर पीएसए बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन का खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to embark on a 4-day visit to Uzbekistan and Kyrgyz Republic beginning today to enhance economic and defense cooperation. India signs deal with United States to procure Javelin anti-tank guided missile systems. Death toll in Nepal flash floods rises to 579, while 1,924 people still missing. India steps up humanitarian assistance to the neighboring country. Government to introduce fortnightly sugar allocation system from next month to ensure availability of sugar in market on time. And India's Vilavan Senthil Kumar wins PSA Budapest Swash Open title, beating Balázs Farkas of Hungary. And now the news in detail. Prime Minister Narendra

0: अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज से दो दिन के दौरे पर उज़्बेकिस्तान जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ियोयेव की दावत पर ताशकंद का दौरा करेंगे। यह वज़ीर-ए-आज़म का उज़्बेकिस्तान का चौथा दौरा होगा। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर ने एक बयान में बताया कि अपने दौरे के दौरान जनाब मोदी भारत और उज़्बेकिस्तान के दरमियान स्ट्रेटेजिक साझेदारी को मजीद मुस्तहकम बनाने की खातिर सदर मिर्ज़ियोयेव के साथ वफ्द की सतह की बातचीत करेंगे। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: इस दौरे के दौरान दोनों रहनुमा ताशकंद में दो तरफा अहमियत के हामिल मामलात के पूरे मंजरनामे पर बातचीत करेंगे। भारत उज़्बेकिस्तान के 10 सरकर्दा तजारती शराकत दारों में शामिल हैं, जिसकी दो तरफा तजारत तकरीबन $1 अरब है और ये गुज़श्ता चंद बरसों में तजारत में कई गुना इजाफे का नतीजा है। मेडिकल, कानकनी और दिफा अहम शोबे हैं, जिनमें बाहमी ताउन के बहुत से इम्कान मौजूद हैं। दिफा के शोबे में भारत का उज़्बेकिस्तान के साथ देरीना और कसीर जेती इश्तराक है। साल 2019 में दिफा से मुतालिक एक मुश्तरका वर्किंग ग्रुप कायम किया गया था। भारत और उज़्बेकिस्तान मुश्तरका फौजी मशकों दोस्तलिक में हिस्सा लेते रहे हैं और इस सिलसिले की सातवीं मशक इस साल अप्रैल में उज़्बेकिस्तान में हुई थी। इस तनाजुर में वज़ीर-ए-आज़म मोदी का दौरा बहुत अहम है और तवक्को है कि इससे दोनों मुल्कों के दरमियान स्ट्रेटजिक और कारोबारी साझेदारी को मजीद मजबूत बनाने की बुनियाद उस्तवार होगी। ताशकंद से सुशील चंद तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: उज़्बेकिस्तान में भारतीय सफीर स्मिता पंत ने आकाशवाणी न्यूज के साथ खसूसी गुफ्तगु में कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात तेजी के साथ मुस्तहकम हो रहे हैं और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे के मौके पर सभी शोबों में इश्तराक बढ़ाने पर तबादले ख्याल किया जाएगा।
2: डिस्पाइट कनेक्टिविटी बॉटलनेक्स, इंडिया और उज़्बेकिस्तान नेचुरल मार्केट्स हैं। हम ज्यादा निर्यात कर सकते हैं। हम इक्विपमेंट, मशीनरी, टेक्सटाइल मशीनरी, केमिकल, डाइस, सर्जिकल इक्विपमेंट्स, इसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हम उनसे ज्यादा इंपोर्ट भी कर सकते हैं। बिकॉज़ ये रिसोर्स रिच नेशन है। स्टम्बलिंग ब्लॉक जो है वो है कनेक्टिविटी। तो इसको लेके दोनों लीडर्स बात करेंगे, देखेंगे कि क्या किया जा सकता है।
0: मोहतरमा स्मिता पंत ने यह भी कहा कि गुज़श्ता कुछ बरसों में भारत और उज़्बेकिस्तान के दरमियान कारोबार में कई गुना इजाफा हुआ है और वज़ीर-ए-आज़म के इस दौरे में दोनों मुल्क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने और रुकावटों को दूर करने पर बातचीत करेंगे। भारत ने जेवलिन टैंक शिकन गाइडेड मिसाइल निज़ाम खरीदने के लिए अमरीका के साथ एक समझौते पर दस्तखत किए हैं। इस तरह भारत इस मिसाइल निज़ाम का बाज़ाब्ता खरीदार बन गया है और दोनों मुल्क भारत में इसे मुश्तरका तौर पर तैयार करने की समत काम करेंगे। भारत में अमरीकी सिफारतखाने और कौंसिल खाने ने एक बयान में कहा है कि भारतीय फौज ने जेवलिन टैंक शिकन गाइडेड मिसाइल निज़ाम खरीदने के लिए पेशकश और मंजूर करने से मुतालिक दस्तावेज पर दस्तखत किए हैं। सिफारतखाने ने कहा है कि अमरीका भारतीय फौज के इस कदम का खैर मकदम करता है। भारत में अमरीका के सफीर सर्गियो गौर ने कहा है कि इस समझौते से भारतीय फौज के लिए अमरीका की मदद की मजबूती का इजहार होता है और इससे दोनों मुल्कों की दिफाई सनतों के लिए मिलकर काम करने के नए मौके पैदा होंगे। नेपाल और तिब्बत में अचानक तबाहकुन सैलाब आने से मरने वालों की तादाद 579 तक पहुंच गई है, जबकि 1924 अफराद अब भी लापता हैं। नेपाल सरकार की तरफ से जारी किए गए आदादोशुमार के मुताबिक मुख्तलिफ अस्पतालों में 101 अफराद जेरे इलाज हैं। इसके अलावा जो 1924 अफराद लापता हैं, उनमें पन बिजली प्रोजेक्टों पर काम करने वाले एहलकार, गैर मुल्की शहरी, सिविलियन अफराद और सिक्योरिटी और सरकारी एहलकार शामिल हैं। पन बिजली प्रोजेक्टों पर काम करने वाले 933 अफराद के लापता होने की खबर है, जबकि 517 गैर मुल्की शहरियों से अब तक राबता कायम नहीं हो सका है। भारत ने नेपाल के लिए इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद तेज कर दी है। 10 टन इमदादी सामान लेकर तीसरी परवाज कल शाम काठमांडू के लिए रवाना हुई। वजीर खारजा डॉक्टर एस जी शंकर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि डॉक्टरों तिब्बी अमले के एहलकारों और टनल में फंसे हुए अफराद का पता लगाकर उन्हें बाहर निकालने के लिए 11 अरकान पर मुश्तमिल एक टीम भी भेजी गई है। उन्होंने नेपाल में जारी राहत और बचाव कोशिशों में भारत की मदद का इरादा भी किया। वजारत खारजा ने कहा है कि नेपाल में बुध के रोज अचानक सैलाब आने के सानहे के बाद से 320 भारतीय शहरियों से राबता कायम नहीं हो सका है या उनके लापता होने की खबर है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये माहाना रेडियो प्रोग्राम का 137वां नशरिया होगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी दस्तियाब होगा। इसके अलावा इसे आकाशवाणी न्यूज, DD न्यूज, PMO और इत्तलात नशरियात की वजारत के YouTube चैनलों पर भी बराह रास्त नशर किया जाएगा। आकाशवाणी से हिंदी नशरिये के फौरन बाद ये प्रोग्राम इलाकाई जबानों में नशर होगा। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। हुकूमत ने कहा है कि मुल्क में शकर की कोई कमी नहीं है और मुनासिब कीमत पर शकर की खातिरख्वाह दस्तियाबी के लिए तमाम जरूरी इकदामात किए जाएंगे। सारिफिन के उमूर की वजारत ने कहा कि हालिया दिनों में शकर मिलों से बराह रास्त हासिल होने वाली शकर की कीमतों में तकरीबन 20% की कमी आई है, जबकि शकर की खुर्दा कीमत में भी कमी आनी शुरू हो गई है। वजारत ने बताया कि उसने शकर की खातिरख्वाह दस्तियाबी और घरेलू मंडी में उसकी सप्लाई की मस्नूई कमी की रोकथाम को यकीनी बनाने के लिए कई सरगर्म इकदामात किए हैं। हुकूमत मुल्क भर में शकर की कीमत, जखीरे और नकलो हरकत पर करीबी नजर रख रही है। हुकूमत ने अगले महीने से हर 15 दिन पर शकर अलॉट किए जाने के निजाम को मुतारिफ कराने का फैसला किया है और इस तरह मौजूदा माहाना कोटा निजाम खत्म हो जाएगा, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि शकर बर वक्त मार्केट में पहुंच सके। ज़राअत, किसानों की बहबूद और देही तरक्की के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत विकसित पंजाब के बगैर विकसित भारत नहीं बन सकता। उन्होंने पंजाब के किसानों को यकीन दहानी कराई है कि मरकजी हुकूमत उनके मफादात के साथ कोई समझौता नहीं करेगी। अमृतसर जिले में रखड़ पूनिया प्रोग्राम के दौरान बाबा बकाला के मकाम पर किसानों और दीगर से खिताब करते हुए जनाब चौहान ने कहा कि किसी भी मुल्क के साथ तय पाने वाले हर मुआहदे में उनकी फलाह बहबूद को अव्वलियत दी जाएगी। जनाब चौहान ने कहा कि वजीर आजम की क्यादत में पंजाब को मुख्तलिफ स्कीमों के तहत 8,20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की मरकजी इमदाद मिल चुकी है। उन्होंने बताया कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन जी राम जी योजना के तहत इस साल 1,341 करोड़ रुपए फराहम किए गए हैं।
3: वो ये कह रहे हैं कि अगर दूसरे देशों से हमारे कोई समझौते हो रहे हैं तो उसमें किसानों को अहित होगा। मैं आज पंजाब की इस पवित्र धरा से किसान भाइयों आपको ये संदेश देने आया हूँ, नरेंद्र मोदी जी के होते हुए दुनिया के किसी देश से ऐसा समझौता नहीं हो सकता जो किसान के हितों के खिलाफ जाए।
0: दिल्ली कौमी राजधानी खित्ते में CNG की कीमत में 3.89 रुपए फी किलोग्राम का इजाफा किया गया है। इस तरह कौमी राजधानी में अब CNG की कीमत 86.98 रुपए फी किलोग्राम हो गई है। नई कीमत का इतलाक आज सुबह से हो गया है। NTA ने 84 मजामीन के लिए UGC कौमी अहलियत इम्तिहान के नतीजों का ऐलान कर दिया है। 4,000 से ज्यादा उम्मीदवारों ने जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए क्वालिफाई किया है। इधर इम्तिहान के इनेकाद से मुतालिक एजेंसी NTA ने इस साल जून में अंग्रेजी, कॉमर्स और सोशियोलॉजी का इम्तिहान देने वाले उम्मीदवारों के लिए फिर से इम्तिहान का हुक्म दिया है, क्योंकि माहिरीन की एक कमेटी ने सवाल नामों में हकाइक, टाइपिंग, तर्जुमे और जबान से मुतालिक गलतियों का पता लगाया था। यह दोबारा इम्तिहान 9 और 10 सितंबर को होगा, जिसके लिए उम्मीदवारों को कोई इजाफी फीस नहीं देना होगी। तेलंगाना के नायब वज़ीर-ए-आला भट्टी विक्रमार्का ने सिंगरैनी के अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो मुस्तकबिल में सोने की कानकनी से मुतालिक प्रोजेक्टों के लिए कर्नाटक की हट्टी गोल्ड माइंस के साथ इश्तराक पर गौर करें। उन्होंने कर्नाटक के रायचूर जिले में हट्टी और UTI सोने की कानों के दौरे के दौरान ये हिदायत दी। शिमाल मगरबी खलीज बंगाल के ऊपर हवा के कम दबाव का हल्का बनने का इम्कान है और इसके जेर असर उड़ीसा में तेज बारिश का सिलसिला फिर शुरू होने की पेशगोई की गई है। भारतीय मौसमियात महकमे ने कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उड़ीसा में अगले 5 दिन तक बारिश का सिलसिला जारी रहने और समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठने का इम्कान है, इसलिए माहीगीरों से कहा गया है कि वो समंदर में न जाएं। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
4: उड़ीसा में भारतीय मौसमियात महकमे ने शुमाल मगरबी खरीज बंगाल के ऊपर मौसम की तब्दीली के जेर असर बालासोर, केवंझर और मयूरभंज जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में कहीं कहीं शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश होने का इम्कान है। इतवार के लिए भी 6 जिलों में ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है। इनमें भद्रक, जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा और मयूरभंज भी शामिल हैं। ओडिशा से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
0: भारत के वेलवन सेंटर

0: नंबर 5 जर्मनी की टीम को 1-3 से हराकर संगे मील हासिल किया। क्रिकेट में आज दुबई में खवातीन के T20 एशिया कप में ग्रुप बी के एक मैच में श्रीलंका का मुकाबला मुत्तहिदा अरब इमारात से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 8 बजे शुरू होगा। इधर कल रात खेले गए ग्रुप ए के मैच में थाईलैंड ने हांगकांग को 6 रन से हरा दिया। 2026 के खवातीन एशिया कप के लिए 8 टीमों को 2 ग्रुपों में रखा गया है। भारत और पाकिस्तान ग्रुप ए में हैं। इस ग्रुप की दीगर टीमों में हांगकांग और थाईलैंड शामिल हैं। इधर ग्रुप बी श्रीलंका, बांग्लादेश, मुत्तहिदा अरब इमारात और इंडोनेशिया पर मुश्तमिल है। भारतीय खवातीन की क्रिकेट टीम कल थाईलैंड के खिलाफ मैच के साथ अपनी मुहिम का आगाज करेगी, जबकि पाकिस्तान के खिलाफ उसका मैच 5 सितंबर को होगा। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया कौनन। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने नेपाल सैलाब से मुतालिक वजारत खारजा की मीडिया ब्रीफिंग को अपनी शहसुर्खी बनाया है। अखबार प्रताप की शहसुर्खी है, नेपाल में 320 भारतीय लापता, 21 को वतन वापस लाया गया। भारतीय इमदाद की तीसरी खेप नेपाल पहुंची। अखबार इनकलाब की सुर्खी है, नेपाल में फिर सैलाब का खतरा, मजीद बांध टूटने का अंदेशा। अखबारात ने भारतीय फौज के जरिए अमरीकी जेवलिन टैंक शिकन मिसाइल खरीदे जाने की खबर को सफ़े अव्वल पर जगह दी है। जनधन योजना में यकसर तब्दीली लाने वाले रोल की वजीर आजम की सताइश, इस खबर को भी अखबारात ने अहमियत दी है। इसके अलावा अखबारात ने मुल्क भर में रक्षाबंधन का त्यौहार धूमधाम से मनाए जाने की खबर को तस्वीरों के साथ शाया किया है। अखबारात की अहम बैन अलाक़वामी खबरें इस तरह हैं, ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई अभी ख़त्म नहीं हुई, ट्रंप का बयान। बरतानिया के फौजी अड्डे हमारे निशाने पर हैं, यूक्रेन को मिसाइलों की फराहमी पर रूस का सख्त इंतबाह।
0: आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज उज्बेकिस्तान और किर्गिज जमहूरिया के 4 दिन के दौरे पर जा रहे हैं, ताकि इक्तिसादी और दिफाई इश्तराक को बढ़ाया जा सके। भारत ने जेवलिन टैंक शिकन गाइडेड मिसाइल निजाम खरीदने के लिए अमेरिका के साथ एक समझौते पर दस्तखत किए हैं। नेपाल में अचानक सैलाब आने से मरने वालों की तादाद 579 तक पहुंच गई है, जबकि 1924 अफराद अब भी लापता हैं। भारत ने नेपाल के लिए इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद तेज कर दी है। सरकार अगले महीने से हर 15 दिन में शकर अलॉट करने का निजाम शुरू करेगी, ताकि मार्केट में शकर की बरवक्त दस्तियाबी को यकीनी बनाया जा सके। और भारत के वेलवन सेंथिल कुमार ने हंगरी के बाला फरकास को हराकर PSA बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन का टाइटल जीत लिया है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।

आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर आप सुन रहे हैं म्यूजिकल दिल लगी। स्वागत है आप सभी का। वक्त हो चला है 8:46 और 3 सेकंड और आज के सुरीले सफर पर मैं हूं आपके साथ बबीता। नमस्कार, सुप्रभात।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल।

0: के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: जीवन में हमेशा मुस्कुराते रहें क्योंकि सुंदर वस्त्र और आभूषण हमें उतना खूबसूरत नहीं बनाते जितनी एक प्यारी सी मुस्कुराहट बनाती है। जब तक हम स्वयं नहीं महकेंगे दूसरों को कैसे बहका सकते हैं, इसलिए खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें और बने रहें FM गोल्ड पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए आज से 4 दिन की उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की यात्रा पर रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद जा रहे हैं। ये प्रधानमंत्री की उज्बेकिस्तान की चौथी यात्रा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री यात्रा के दौरान भारत और उज्बेकिस्तान के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे।
1: इस यात्रा के दौरान दोनों नेता ताशकंद में द्विपक्षीय महत्व के सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत उज्बेकिस्तान के शीर्ष 10 व्यापारिक साझेदारों में से एक है, जिनके बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग $1 अरब का है। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच कारोबार तेजी से बढ़ा है। चिकित्सा, खनन और रक्षा कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनमें सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। रक्षा क्षेत्र में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच व्यापक सहयोग की शुरुआत हो चुकी है। 2019 में रक्षा मामलों पर एक संयुक्त कार्य समूह की स्थापना की गई थी। भारत और उज्बेकिस्तान नियमित रूप से संयुक्त सैन्य अभ्यास दोस्तलिक में हिस्सा लेते हैं और इसका 7वां संस्करण अप्रैल 2026 में उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया था। इन सभी क्षेत्रों के लिहाज से प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा अत्यंत महत्वपूर्ण है और इससे दोनों देशों के बीच रणनीतिक और व्यापारिक साझेदारी को और मजबूत करने की नींव रखी जाएगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
0: उज्बेकिस्तान में भारत की राजदूत स्मिता पंत ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध तेजी से मजबूत हो रहे हैं और प्रधानमंत्री के दौरे के समय सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 579 हो गई है।

0: 1924 लोग अब भी लापता हैं। अब तक 579 शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि 101 घायल लोगों का अस्पतालों में उपचार चल रहा है। लापता लोगों में पनबिजली परियोजनाओं से जुड़े लोग, विदेशी नागरिक, आम नागरिक और सुरक्षा तथा सरकारी कर्मी शामिल हैं। इस बीच भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को मानवीय सहायता तेज कर दी है। मानवीय सहायता सामग्री के साथ तीसरा विमान कल शाम काठमांडू पहुंचा। सहायता सामग्री में पोर्टेबल जनरेटर, खाद्य सामग्री और जल शोधन की गोलियां शामिल हैं। भारत ने अमेरिका के साथ जेवलिन टैंक रोधी मिसाइल प्रणाली की खरीद के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों देश भारत में इसके संयुक्त उत्पादन की दिशा में काम कर रहे हैं। भारत में अमरीकी दूतावास और वाणिज्य दूतावास ने कहा है कि भारतीय सेना ने जेवलिन की खरीद के लिए प्रस्ताव और स्वीकृति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि यह समझौता भारतीय सेना के लिए अमरीकी समर्थन दर्शाता है। सरकार ने चीनी की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा मासिक कोटा प्रणाली के स्थान पर अगले महीने से पखवाड़े के आधार पर चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत चीनी मिलों को पहले सप्ताह में कम से कम 40% आवंटन और शेष मात्रा अगले सप्ताह में बेचनी होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 6 दिन की अमेरिका यात्रा पर हैं, जहां वे G20 वित्त मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगी और निवेश के अवसरों पर मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं से बातचीत करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने राष्ट्रीय खेल दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री राधाकृष्णन ने भारतीय हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि दृढ़ संकल्प, अनुशासन और उत्कृष्टता की भावना भारत की इस खेल संस्कृति की पहचान है। उन्होंने कहा कि देश की बढ़ती खेल व्यवस्था हर स्तर पर प्रतिभाओं के पोषण की प्रतिबद्धता दर्शाती है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे शिक्षा, सार्वजनिक सेवा, सांस्कृतिक विरासत, उद्योग, अकादमिक सहयोग, मछली पालन को बढ़ावा देने से संबंधित कार्यक्रमों के अलावा कुछ प्रमुख सार्वजनिक समारोह में भी भाग लेंगे। भारत के वेलवेन सेंथिल कुमार ने पीएसएलए बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन का खिताब जीत लिया है। फाइनल में कल सेंथिल ने हंगरी के बालास फारकाश को लगातार गेम में 3-0 से हराकर यह ऐतिहासिक जीत दर्ज की। सेंथिल कुमार ने बालास फारकाश को 11-4, 11-2, 11-3 से हराकर ट्रॉफी जीती। वहीं दुबई में महिला एशिया कप T20 क्रिकेट प्रतियोगिता में श्रीलंका का सामना आज संयुक्त अरब अमीरात से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सरबजीत कौर। Prime Minister Narendra Modi will embark on a 4-day visit to Uzbekistan and Kyrgyz Republic beginning today. On the first leg of his 2-day visit, he will reach Uzbekistan today. He will visit Tashkent at the invitation of the President of Uzbekistan, Mr. Shavkat Mirziyoyev. This will be Mr. Modi's 4th visit to Uzbekistan. The Prime Minister's office in a statement said that during his visit, he will hold delegation-level talks with President Mirziyoyev to further strengthen the strategic partnership between India and Uzbekistan. Our correspondent brings us the details.
2: During the visit, both leaders will have discussions on the entire gamut of issues of bilateral importance in Tashkent. India is among top 10 trade partners of Uzbekistan with bilateral trade of around 1 billion, which is the result of the manifold increase of the trade in last few years. Medical, mining and defense are few of the important sectors in which there is a lot of potential for cooperation. India has long-standing and wide-ranging cooperation with Uzbekistan in the field of defense. A joint working group on defense was established in 2019. India and Uzbekistan regularly participate in joint military exercises, Dostlik, and the 7th edition of this exercise was conducted in Uzbekistan in April 2026. In view of this, the visit of PM Modi becomes very important and is expected to lay the foundation for further cementing strategic and business partnership between both countries. Sushil Chandra Tiwari, Akashwani News, Tashkent.
1: On the second leg of his visit, the Prime Minister will travel to Bishkek on a 2-day visit to participate in the 26th Shanghai Cooperation Organization

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। यह है प्रोग्राम म्यूजिकल दिल लगी और मैं हूं आपके साथ भावना।

करती है प्यार मुझसे पर जताती नहीं, वल्लाह बड़ी शर्मीली है बताती ही नहीं, निगाहों ही निगाहों में कहती है बहुत कुछ, बात

होठों पर मगर कभी लाती ही नहीं, साथ रहती है हर पल मेरी यादों में, पर हकीकत में सामने कभी आती ही नहीं। किताबों के फलसफे उसको याद हैं ज़बानी, किताबों के फलसफे उसको याद हैं ज़बानी, पर ठाई आखर प्रेम के वो पढ़ पाती ही नहीं। हाय, वो पढ़ पाती ही नहीं।

0: कदम।
1: दिल पास आए, सब एक दूसरे के पास आए, दूरी ना बने, लोग दूर ना जाएं, क्योंकि जब दूरियां होती हैं तो बहुत सारी परेशानियां बीच में आ जाती हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हम बातों से सुलझा सकते हैं, लेकिन लड़ाई के दरवाजे तक हमें जाना पड़ता है अगर हम बातों से अपनी जो समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, उनको सॉल्व ना कर पाएं। और प्रॉब्लम तब हो जाती है जब ये दो देशों के बीच हो या फिर बहुत सारे देशों के बीच लड़ाई हो जाए। तो परमाणु परीक्षण के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस है आज, यानी कि इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट्स। यानी हर साल 29 अगस्त को ये दिन मनाया जाता है ताकि सुरक्षित और परमाणु मुक्त दुनिया बन सके। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2009 में प्रस्ताव पारित करके इस दिन की शुरुआत कर दी थी और परमाणु हथियारों के परीक्षणों के हानिकारक प्रभावों के प्रति जनता को, लोगों को, विश्व के लोगों को जागरूक करने की एक शुरुआत की थी। तो आज के दिन हम ये कोशिश करते हैं कि युद्ध का, खासकर परमाणु युद्ध का कितना बुरा प्रभाव हो सकता है। परमाणु परीक्षण जो है वो पहला चरण होता है, तो इसी चरण को हमें यहीं पर समाप्त कर देना चाहिए, ऐसा माना जाता है। ये जो दिन है आज का, कजाकिस्तान के परमाणु परीक्षण स्थल को 29 अगस्त 1991 में बंद करने की याद दिलाता है, हम सबको प्यार से एक दूसरे के साथ रहने की याद दिलाता है।

आज है 29 अगस्त और आज का दिन बहुत है खास। आज का दिन काजी नजरूल इस्लाम की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है हर साल। इन्हें विद्रोही कवि भी कहा जाता था। इन्होंने अपनी कविताओं, अपने गीतों में समता, विद्रोह, प्रेम और सांप्रदायिक सद्भाव का संदेश दिया। उनकी रचनाओं में से कुछ पंक्तियां हम इस वक्त कहना चाहते हैं। गाता हूँ साम्यता का गान, गाता हूँ साम्यता का गान, जहां आकर एक हो गए सब बाधा व्यवधान, जहां मिल रहे हैं हिंदू, बौद्ध, मुस्लिम, ईसाई, गाता हूं साम्यता का गान।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

मिला लीजिए 9:32 और 8 सेकंड हो गए हैं। 100.1 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल, प्रोग्राम म्यूजिकल दिल लगी और मैं आपके साथ भावना।

कभी कभी ख्यालों में दिल खो जाता है, हम रास्ते पर चल रहे हैं ये भी भूल जाता है। जब हमारा कोई अपना सामने हो या फिर हमारे साथ हो तो फिर बात थोड़ी सी अलग हो जाती है। सड़क पर चलते वक्त किंतु खासकर वाहन चलाते वक्त पूरा ध्यान सड़क और यातायात पर ही होना चाहिए। अगर कोई खुशी की बात है जो आपके दिमाग में घूम घूम कर आ रही है, या फिर कोई परेशानी है, दुविधा है, या फिर किसी की याद सता रही है, तो भी उन सब बातों को भूलकर केवल सड़क पर ध्यान रखिए, क्योंकि सावधानी में ही सुरक्षा है। यातायात के नियमों का पालन करिए, खुश रहिए।

0: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: NCREPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।

चार दिन। प्यार के दो चार दिन यूं ही निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता। खासकर उन बेटियों के जो अपने बाबुल के आंगन में बढ़ती हैं, पढ़ती हैं और अपने सपने सजाती हैं, है ना। और माँ बाप भी चाहते हैं कि उनकी बेटियों को अच्छे से अच्छी शिक्षा मिले और उनकी शादी बहुत अच्छी सी जगह हो, धूमधाम से हो। ये सपना हर बाबुल का होता है, हर माता पिता का होता है। और इसीलिए सरकार लेकर आई है सुकन्या समृद्धि योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस अभियान के तहत बेटियों के भविष्य, उनकी उच्च शिक्षा और उनकी शादी के लिए इस समृद्धि योजना को शुरू किया गया है। मतलब 10 साल से कम की जब लड़की होती है तो आप खाता अपना खुलवा सकते हैं। और एक परिवार में एक बेटी के नाम से खुलता है ये, दो बेटियों तक की छूट है वैसे। और अगर ट्विंस हैं यानी जुड़वा हैं तो फिर ये छूट थोड़ी सी आगे बढ़ जाती है। आप हर साल एक वित्तीय वर्ष में 250 रुपए मिनिमम और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं और 15 साल तक पैसे जमा करने होते हैं। और अच्छी खासी जो है वो दर पर ब्याज मिलता है। सालाना जो गणना होती है ब्याज की वो चक्रवृद्धि आधार पर होती है। लड़की 21 साल की पूरी हो जाए या फिर 18 साल के बाद उसकी शादी हो तो आप पैसा निकाल सकते हैं। 18 साल की उम्र पूरी होने पर अगर आपको उसकी हायर एजुकेशन के लिए पैसे निकालने हैं तो 50% तक निकाल सकते हैं या फिर 15% तक आप आंशिक निकासी भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत निवेश, मिलने वाला ब्याज और परिपक्वता राशि तीनों पूरी तरह कर मुक्त होते हैं, बिल्कुल टैक्स फ्री। यानी अब सब बेटियां आगे बढ़ें, पढ़ें और अपनी सपनों को साकार करें।

आज 29 अगस्त है और आज हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन मनाया जाता है। उनकी जयंती आज के दिन मनाई जाती है और भारत में हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में उनके जन्मदिन को यानी 29 अगस्त को मनाया जाता है। 1928, 1932 और 1936 इन तीन साल में 3 स्वर्ण पदक भारत को ओलंपिक में इन्होंने दिलवाए थे। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन बहुत सारे लोग हमें विश भी कर रहे हैं, मेल्स पर भी और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी संदेश आ रहे हैं। 10:30 बजे दिल का मेल बॉक्स हमारा प्रोग्राम होगा जिसमें आप हमारे साथ जुड़ेंगे, हमसे बातें करेंगे। हमारा ईमेल आईडी नोट कर लीजिए fmgoldairdelhi@gmail.com और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868886753। तो हमें इंतजार रहेगा आपके संदेशों का, आपके ईमेल्स यानी खत का।

इसी के साथ म्यूजिकल दिल लगी से अब भावना लेती है आपसे विदा। मैं कहीं नहीं जा रही, 10:30 बजे दिल का मेल बॉक्स लेकर मैं भावना आपके साथ ही रहूंगी, लेकिन उससे पहले समय है समाचारों का।

0: अनुराग शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की 4 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए। श्री मोदी ने रवाना होने से पहले कहा कि उनकी उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की यात्रा से मध्य एशिया में भारत की रणनीतिक साझेदारियां मजबूत होंगी तथा इस क्षेत्र के साथ सभ्यतागत जुड़ाव और गहरा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ व्यापार और निवेश, डिजिटल संपर्क, रक्षा तथा ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग और मजबूत करने के साथ साथ विकसित भारत तथा यांगी उज्बेकिस्तान के साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इस यात्रा के दौरान दोनों नेता ताशकंद में द्विपक्षीय महत्व के सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत उज्बेकिस्तान के शीर्ष 10 व्यापारिक साझेदारों में से एक है, जिनके बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग $1 अरब का है। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच कारोबार तेजी से बढ़ा है। चिकित्सा, खनन और रक्षा कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनमें सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। रक्षा क्षेत्र में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच व्यापक सहयोग की शुरुआत हो चुकी है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
0: उज्बेकिस्तान में भारत की राजदूत स्मिता पंत ने आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष साक्षात्कार में कहा कि उज्बेकिस्तान में प्राकृतिक संसाधनों का समृद्ध भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की ताशकंद यात्रा के दौरान निवेश और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर भी चर्चा होने की संभावना है।
2: रिलेशनशिप ऑलरेडी बहुत अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में है। 2011 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोर्ज हुई थी, उसके बाद 2015 में प्रधानमंत्री जी का पहला दौरा हुआ था। 2026 तक बहुत सारे एरियाज में हम लोग फॉरवर्ड मूवमेंट कर चुके हैं, चाहे आप ट्रेड की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, डेवलपमेंट कोऑपरेशन की बात करें, डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें। ट्रेड में ही करीबन 300% इंक्रीज हुई है 2015 से।
0: भारत अर्जेंटीना संयुक्त व्यापार समिति की चौथी बैठक ब्यूनस आयर्स में हुई। बैठक में वर्ष 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अर्जेंटीना यात्रा के दौरान तय कार्य योजना की समीक्षा की गई। दोनों देशों ने रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। बैठक में खनन, ऊर्जा और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में निवेश के अवसरों पर भी चर्चा हुई। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या 626 हो गई है, जबकि 2000 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि 320 भारतीय नागरिकों से अभी तक संपर्क नहीं हो पाया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि त्रिशूली वन जल विद्युत परियोजना में कार्यरत 63 भारतीय नागरिकों को प्रभावित क्षेत्र से सुरक्षित निकाल लिया गया है। श्री जायसवाल ने कहा कि चीन की ओर करीब 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और अपने परिवारों के संपर्क में हैं। उन्होंने बताया कि एक नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है। केंद्रीय भंडारण निगम ने महाराष्ट्र के नासिक से तमिलनाडु के चेन्नई तक इस सीजन की दूसरी प्याज एक्सप्रेस रवाना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में CEWC ने कहा कि इस पहल से आपूर्ति श्रृंखला और मजबूत होगी और सभी बाजारों में प्याज की समय पर उपलब्धता भी सुनिश्चित होगी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड IGL ने CNG की कीमत में 3.89 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। कीमत बढ़ने के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में CNG अब 86.98 रुपए प्रति किलोग्राम मिलेगी। गुरुग्राम में CNG की कीमत 92.01 रुपए और गाजियाबाद तथा नोएडा में 95.59 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजश्कियान ने कहा है कि तेहरान अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन अमेरिका को लेकर सतर्क भी है। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका समझौते की शर्तों का पालन करता है तो ईरान भी अपनी प्रतिबद्धताएं पूरी करेगा। श्री पेजश्कियान की ये टिप्पणी ऐसे समय आई है जब ईरान घरेलू स्तर पर आर्थिक दबावों का सामना करना पड़ रहा है। आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। हर वर्ष 29 अगस्त को भारत के महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन

वक्त हो चला है 1:10 आकाशवाणी दिल्ली का ये एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 MHz पर। और कार्यक्रम कौन सा है? कार्यक्रम है कलाकार बेमिसाल। और कलाकार बेमिसाल में आज हम किसको याद करने वाले हैं? तो आज हम बात करेंगे 70 के दशक की उस चुलबुली खूबसूरत और मासूम मुस्कान वाली अदाकारा का, जिसने अपनी पहली फिल्म से दर्शकों को अपना दीवाना बना लिया था। बिल्कुल सही समझा आपने, हम आज बात करेंगे लीना चंद्रवरकर की। और आज है 29 अगस्त और आज लीना चंद्रवरकर का जन्मदिन भी है, तो हम उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। और शुभकामनाओं के साथ हम यही कहते हैं कि आप स्वस्थ रहें और आपकी फिल्मों के जरिए तो हम आपको हमेशा याद करते ही रहते हैं। और क्या कहना चाहेंगे हम, बस ये कहना चाहेंगे कि आज भी सारे शहर में आप सा कोई नहीं। हाँ, मैं संगीता हूं इस कार्यक्रम में आप सभी के साथ, बने रहिए एफएम गोल्ड के साथ।

करता हूँ आशिक मेरा नाम है, ऐशिकर नाम

कार्यक्रम है कलाकार बेमिसाल, और कलाकार बेमिसाल में आज हम याद कर रहे हैं बेहद कमाल की खूबसूरत अदाकारा, टैलेंटेड अदाकारा लीना चंद्रवरकर की। और लीना चंद्रवरकर की अगर बात करें तो फिल्मी दुनिया में कदम रखने से पहले लीना ने विज्ञापनों में काम किया था, और इसके बाद उन्होंने देशभर में आयोजित फिल्म फेयर फ्रेश फेस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था और उप विजेताओं में शामिल हुई थी। और यहीं से बॉलीवुड में उनके लिए जो दरवाजे खुलते चले गए। और बात है साल 1968 की, जब सुनील दत्त साहब अपनी फिल्म बना रहे थे। फिल्म का नाम था मन का मीत, और इस फिल्म के लिए उन्हें एक नए चेहरे की तलाश थी। तो उन्होंने एक विज्ञापन के जरिए लीना जी को चुना था, और फिल्म जो है सुपरहिट रही थी, और रातों रात लीना चंद्रवरकर हर दिल की धड़कन बन गई थी। उनकी सादगी और बेहतरीन एक्टिंग ने सबको हैरान कर दिया था। तो चलिए सुनते हैं उनकी फिल्म, किस फिल्म से गाना सुनाएं आपको, रखवाला, रखवाला से सुनाएं। चलिए सुनते हैं ये गीत।

तमाम मुश्किलों और तमाम परेशानियों के बाद, जिंदगी के तमाम उतार चढ़ाव के बाद, लीना चंद्रवरकर मजबूती से खड़ी रहीं, कभी घुटने नहीं टेके। और आज भी जब हम उनकी फिल्मों को देखते हैं ना, तो वो मासूम मुस्कान हमें जिंदगी जीने का हौसला देती है। तो हम सलाम करते हैं सिनेमा के इस बेमिसाल अदाकारा को, और एक बार फिर से उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं।

फिलहाल तो हमें भी जाना है, इजाजत दीजिए संगीता को। आप बने रहिए एफएम गोल्ड के साथ, थोड़ी देर में आप सुनेंगे उर्दू में समाचार। लेकिन हाँ, 2:30 पर एक बार फिर से हम हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम संगीत.com और होंगे कमाल के गाने। तो बने रहिए एफएम के साथ।

आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ, मैं हबीब रहमान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी उज़्बेकिस्तान और किर्गिज़ जम्हूरिया के 4 दिन के दौरे पर रवाना हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि उनके दौरे से अहम नौवियत की साझेदारी मुस्तहकम होगी

0: और वस्ती एशिया के साथ तहजीबी रवाबित गहरे होंगे। नेपाल में अचानक सैलाब आ जाने के वाकये में मरने वालों की तादाद बढ़कर 626 हो गई है, जबकि 2000 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। भारत ने इंसानी बुनियाद पर दी जाने वाली इमदाद में इजाफा कर दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के साथ सबसे बड़े तेल मुआहदे का ऐलान किया है। ईरान के सदर पेदिशकियान ने कहा है कि ईरान अमरीका के साथ बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन वो इंतहाई मोहतात है। आज खेल कूद का कौमी दिन मनाया जा रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद को खराज अकीदत पेश किया है और खेलों से वाबस्ता अफराद की लगन को सराहा है। और IMD ने ओडिशा में अगले 2 से 3 दिन के दौरान शदीद से इंतहाई शदीद बारिश से मुतालिक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह उज्बेकिस्तान और किर्गिज जमहूरिया के अपने 4 दिन के दौरे पर रवाना हो गए। रवाना होने से पहले अपने बयान में जनाब मोदी ने एतमाद जाहिर किया कि उनके दौरे से वस्ती एशिया में भारत की स्ट्रेटजिक साझेदारी मुस्तहकम होगी और खित्ते से तहजीबी रवाबित गहरे होंगे। उन्होंने कहा है कि हालिया बरसों में भारत और उज्बेकिस्तान के दरमियान स्ट्रेटजिक साझेदारी में खातिरख्वाह पेशरफ्त हुई है। वजीर आजम ने कहा है कि वो तजारत और सरमायाकारी, डिजिटल कनेक्टिविटी, दिफा, तवानाई के शोबों में बाहमी ताउन को मजीद बढ़ाने और विकसित भारत और यांगी उज्बेकिस्तान के मुश्तरक विजन को आगे बढ़ाने के सिलसिले में उज्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्जियोव के साथ बातचीत के मुंतजर हैं। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: भारत और उज्बेकिस्तान ने 2011 में अपने ताल्लुकात को अहम नौयत की साझेदारी की सतह तक बढ़ाया है। इसके बाद से दो तरफा ताल्लुकात में कई शोबों में बड़े पैमाने पर इजाफा हुआ है। वज़ीर आज़म के इस दौरे से भारत और उज्बेकिस्तान के दरमियान करीबी, कसीर रुखी और बढ़ती हुई सियासी साझेदारी में इजाफा होगा। बातचीत के दौरान बाहमी इश्तराक के कई शोबों को शामिल किए जाने और दो तरफा तआवुन को मुस्तहकम किए जाने के तरीके तलाश किए जाने की उम्मीद है। ताशकंद उज्बेकिस्तान से सुशील चंद तिवारी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं रजी अहमद।
0: वजीर आजम ने कहा है कि किर्गिज जमहूरिया के सदर सादिर जापारोफ की दावत पर शंघाई ताउन तंजीम की 26वीं सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए बिश्केक जाएंगे। जनाब मोदी ने कहा है कि वह सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी और मवाकिब की बुनियाद पर खित्ते के लिए भारत के विजन को तेजी से आगे बढ़ाने और दहशतगर्दी, अलहदगी पसंदी और इंतहा पसंदी की लानत से पाक खित्ते के लिए साथी अरकान के साथ मिलकर काम करने के मुंतजर हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। यह माहाना रेडियो प्रोग्राम का 137वां नशरिया होगा। यह प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर दस्तयाब होगा। इसके अलावा इसे आकाशवाणी न्यूज, DD न्यूज, PMO और इत्तलात नशरियात की वजारत के YouTube चैनलों पर भी बराह रास्त नश्र किया जाएगा। आकाशवाणी से हिंदी नशरिया के फौरन बाद यह प्रोग्राम इलाकाई जबानों में नश्र होगा। नेपाल और तिब्बत में तबाहकुन अचानक सैलाब से मरने वालों की तादाद बढ़कर आज सुबह तक 626 हो गई थी, जबकि 2000 से ज्यादा अफराद लापता बताए जाते हैं। पुलिस ने चितवन से 233, नवलपरासी ईस्ट से 158, गोरखा से 48, नवलपरासी वेस्ट से 47, धादिंग से 45, नोआकोट से 41, तनूह से 31 और रसुआ से 13 लाशें बरामद की हैं। मुतासर अजला में बचाव और इमदादी कामों के साथ साथ लापता अफराद की तलाश जारी है। बचाए गए अफराद को महफूज जगहों पर ले जाया जा रहा है। वजारत खारजा ने कल बताया था कि 320 भारतीय बाशिंदों का अभी तक कुछ पता नहीं चला है या वो बुध को अचानक सैलाब में लापता हो गए थे। वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने बताया कि तकरीबन 100 भारत नजाद अफराद से भी, जिनके पास दूसरे मुल्कों की शहरियत है, कोई राबता कायम नहीं हो सका है। वजारत खारजा के तर्जुमान जनाब जायसवाल ने बताया कि त्रिशूली पनबिजली प्रोजेक्ट पर काम करने वाले 63 भारतीय बाशिंदों को बचा लिया गया है। जनाब जायसवाल ने कहा है कि चीन की तरफ वाले इलाके में 400 के करीब भारतीय बाशिंदे महफूज हैं और उन्होंने अपने कुंबे वालों से राबता कायम कर रखा है। सरकार ने वजारत खारजा में कंट्रोल रूम कायम किया है जो रात दिन काम कर रहा है। काठमांडू और बीजिंग में भारत के सफारतखाने बाहमी तालमेल से काम कर रहे हैं। काठमांडू में वाक़ भारत के सफारतखाने का ये नंबर है +9779851306007, +9779701071050, +9779813261117। पीचिंग में भारत के सफारतखाने का नंबर यह है +86185182849045। इसी दौरान भारत ने नेपाल को इंसानी बुनियाद पर दी जाने वाली इमदाद के काम में और तेजी कर दी है। 10 टन की इमदादी सामान लेकर भारत की तीसरी परवाज कल शाम काठमांडू पहुंची। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के साथ सबसे बड़े तेल मुआहदे का ऐलान किया है। वेनेजुएला के साथ ये तारीखी मुआहदा अमरीका को 65 अरब बैरल से ज्यादा के तस्दीक शुदा खाम तेल के जखाए पर अक्सरियती कंट्रोल फराहम करेगा। उन्होंने कहा है कि यह मुआहदा अमरीकी टैक्स दहिंदगान के किसी खर्च के बगैर हासिल किया गया है और इससे कुल अमरीकी तेल के जखायर 2 गुना से भी ज्यादा हो जाएंगे। भारत के खेलों की एक अदीम शान शख्सियत मेजर ध्यानचंद का यौम पैदाइश आज मुल्क भर में खेलों के दिन के तौर पर मनाया जा रहा है। भारत के खेलों के मालामाल विरसे की अहमियत को उजागर करने के लिए यह दिन मनाया जाता है और लोगों की इस बात के लिए हौसला अफजाई की जाती है कि वो खेलों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाएं। आज का दिन 1 घंटा खेल के मैदान में मौजू के तहत मनाया जा रहा है और इसके 3 अहम सुतून तय किए गए हैं, प्ले, ट्रिब्यूट और मूव। इस मौके पर मुल्क भर में मुख्तलिफ खेलों का एहतमाम किया जा रहा है। दिल्ली में मरकजी वोदरा डॉक्टर मनसुख मांडविया और अर्जुन राम मेघवाल ने क्रिकेट मैच में हिस्सा लिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज खेलकूद के कौमी दिन के मौके पर भारतीय हॉकी के मायानाज खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को खराज अकीदत पेश किया है। सोशल मीडिया के एक पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि भारतीय हॉकी में मेजर ध्यानचंद की शानदार कारकर्दगी आने वाली नस्लों को हौसला फराहम करती रहेगी। नौजवानों के उमूर और खेलों के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में खेलकूद के कौमी दिन के मौके पर भारतीय हॉकी के मायानाज खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को गुलहाय अकीदत नजर किए। मीडिया से बातचीत करते हुए डॉक्टर मांडविया ने कहा कि मेजर ध्यानचंद का यौम पैदाइश मनाने के लिए हर साल खेलकूद का कौमी दिन मनाया जाता है।
2: आज नेशनल स्पोर्ट्स डे के अवसर पर सारे देश में फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए 1 घंटे खेल के मैदान में कार्यक्रम दिया है। आज सुबह से मुझे सूचना मिल रही है लाखों की संख्या हर गली में मैदान में देश के युवा 1 घंटे के लिए खेलने के लिए आए हैं। मुझे खुशी है मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल रहा।
0: ईरान के सदर मदूद पिशरकियान ने कहा है कि तेहरान अमेरिका के साथ गुफ्तगू के लिए तैयार है, साथ ही वो मोहतात भी है। उन्होंने अपने एक टीवी इंटरव्यू में यह भी कहा है कि अगर अमेरिका समझौते का एहतराम करता है तो ईरान भी उसकी पासबानी करेगा। ईरान के सदर ने कहा है कि जून के अमन समझौते के मफाहमतनामे को फिर से सरगर्म करने के लिए सिफारती कोशिशें मरकूज की जा सकती हैं। भारत के महकमे मौसमियात ने पीर तक के लिए ओडिशा में शदीद से इंतहाई शदीद बारिश से मुतालिक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आइंदा 2 से 3 दिन के दौरान बिहार, मगरबी बंगाल के गंगा वाले इलाके, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और शिमाल मशरकी रियासतों के कुछ हिस्सों में भी शदीद बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और सिक्किम में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। महकमे मौसमियात ने कहा है कि कौमी राजधानी में अगले 7 दिन के दौरान ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत में किसी खातिर खा तब्दीली का कोई इम्कान नहीं है। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान और किर्गिज जमहूरिया के 4 दिन के दौरे पर रवाना हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि उनके दौरे से अहम नौइयत की साझेदारी मुस्तहकम होगी और वस्ती एशिया के साथ तहजीबी रवाबित गहरे होंगे। नेपाल में अचानक सैलाब आ जाने के वाकये में मरने वालों की तादाद बढ़कर 626 हो गई है, जबकि 2000 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। भारत ने इंसानी बुनियाद पर दी जाने वाली इमदाद में इजाफा कर दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के साथ सबसे बड़े तेल मुआहदे का ऐलान किया है। ईरान के सदर मसूद पेदशकियान ने कहा है कि ईरान के साथ अमरीका के साथ बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन वो इंतहाई मुहतात है और आज खेलकूद का कौमी दिन मनाया जा रहा है। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
3: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम शगुन चोपड़ा विद द मिडडे न्यूज। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi embarks on a four-day visit to Uzbekistan.

0: Central Warehousing Corporation or CWC has successfully dispatched the second Onion Express of the season from Nashik, Maharashtra to Chennai, Tamil Nadu. In a social media post, CWC said the initiative will further strengthen the supply chain and ensure the timely availability of onions across markets. National Sports Day is being celebrated across the country today to commemorate the birth anniversary of one of India's greatest sporting icons, Major Dhyan Chand. The day celebrates India's rich sporting heritage and encourages people to make sports a regular part of their daily lives. More from our correspondent.
1: National Sports Day 2026 is being observed as a three-day nationwide campaign under the pillars of tribute, play and move. This year, National Sports Day is being celebrated under the call Ek Ghanta Khel Ke Maidan Mein. Various in Delhi Union Ministers Dr. Mansukh Mandviya and Arjun Ram Meghwal participated in a cricket match under the campaign. Talking to media, Dr. Mandviya called upon people to spend at least 1 hour on the sports field to remain fit and healthy.
2: Aaj National Sports Day ke avsar par.
3: The occasion of National Sports Day, a one-hour sports activity has been organized across the country to promote the fit India movement. Since this morning, I have been receiving information that lakhs of young people across the country have come out to play for an hour in playgrounds and in every street. I am happy to see that the country is changing under the leadership of Prime Minister Narendra Modi.
2: Mujhe khushi hai, Modi ji ke netrutva mein desh badal raha.
1: Mr. Meghwal said he plays badminton every day. He said sports help people remain healthy and fit and also help in keeping stress away. The government has been making sustained investments in India's sporting ecosystem, with the results increasingly visible on the global stage. India's performances at major international sporting events reflect the country's growing strength across Olympic, Paralympic and multi-sport disciplines. India's Olympic journey has witnessed a significant transformation in the recent years. The country won 2 medals at Rio 2016, 7 at Tokyo 2020 and 6 medals at Paris 2024. India's performance at the Paralympic Games has also improved remarkably. The medal tally rose from 4 at 20 at Rio 2016 to 19 at Tokyo 2020. At Paris 2024, India recorded its best ever Paralympic performance with 29 medals. Saklan Akhtar for Akashwani News, Delhi.
0: Prime Minister Narendra Modi today paid homage to the Indian hockey legend Major Dhyan Chand on the occasion of National Sports Day. In a social media post, Mr. Modi said, Major Dhyan Chand's brilliance in Indian hockey continues to inspire generations. Union Minister for Finance and Corporate Affairs Nirmala Sitharaman today highlighted India's broad-based growth, reform momentum and expanding opportunities for long-term investment in Chicago. The Finance Minister today addressed a high-level business roundtable with leading investors and business leaders. A key focus of the meeting was manufacture in India, for India and for the world, with opportunities across manufacturing, AI and digital, financial services, infrastructure, food processing, defense and advanced technologies. The India Meteorological Department IMD has issued an orange colour warning for heavy to very heavy rainfall over Odisha till Monday. Heavy rainfall is also likely to hit Bihar, Gangetic West Bengal, Jharkhand, Madhya Pradesh, Chhattisgarh and parts of northeastern states for the next 2 to 3 days. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi embarks on 4-day visit to Uzbekistan and Kyrgyz Republic, says visit will strengthen strategic partnerships and deepen civilizational ties with Central Asia. Death toll in Nepal flash floods rises to 626, over 2,000 people still missing. India steps up humanitarian assistance. US President Donald Trump announces biggest oil deal with Venezuela. Iranian President Masoud Pezeshkian says Tehran is open to negotiations with Washington but remains deeply cautious. National Sports Day being observed today, Prime Minister Modi pays tribute to Major Dhyan Chand and salutes dedication of sportspersons. Orange alert issued for heavy to very heavy rainfall in Odisha for next 2 to 3 days. And with that, we end the midday news.
4: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज़्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना। कहा, इस यात्रा से मध्य एशिया के साथ रणनीतिक साझेदारी मजबूत होगी और सभ्यतागत जुड़ाव और गहरा होगा। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ में मरने वालों की संख्या 626 हुई, 2000 से अधिक लोग अब भी लापता। भारत ने मानवीय सहायता बढ़ाई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के साथ अब तक के सबसे बड़े तेल समझौते की घोषणा की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजश्कियान ने कहा, ईरान अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार लेकिन अत्यधिक सतर्क भी है। आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की और खिलाड़ियों के समर्पण को सराहा। और ओडिशा में अगले 2 से 3 दिनों के लिए मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की 4 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए। श्री मोदी ने रवाना होने से पहले कहा कि उनकी उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की यात्रा से मध्य एशिया में भारत की रणनीतिक साझेदारियां मजबूत होंगी तथा इस क्षेत्र के साथ सभ्यतागत जुड़ाव और गहरा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ व्यापार और निवेश, डिजिटल संपर्क, रक्षा तथा ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग और मजबूत करने के साथ साथ विकसित भारत और यांगी उज्बेकिस्तान के साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। और अब बात करते हैं ताशकंद में मौजूद हमारे संवाददाता सुशील चंद तिवारी से। जी सुशील, ताशकंद पहुंचने पर प्रधानमंत्री के स्वागत की क्या तैयारियां हैं वहां पर और लोगों में कितना उत्साह देख रहे हैं आप?
5: विशाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की ताशकंद में जबरदस्त तैयारियां हो रही हैं। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में जगह जगह पर भारतीय झंडे लहरा रहे हैं। जिस होटल में प्रधानमंत्री रुकेंगे वहां भी चारों तरफ तिरंगा ही नजर आ रहा है। विशाल, देर शाम प्रधानमंत्री का भारतीय और उज्बेकिस्तान के लोगों की ओर से पारंपरिक अंदाज में स्वागत भी होगा। हम जानते हैं कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच रिश्ते बहुत दोस्ताना हैं और यहाँ के लोग जो हैं वो भारतीय फिल्मों, गानों और फिल्मी सितारों के दीवाने हैं, तो उसकी एक झलक भी यहाँ के स्वागत में जरूर नजर आएगी। विशाल,
4: सुशील, इस यात्रा के दौरान किन प्रमुख विषयों पर चर्चा होने की संभावना है वहां पर?
5: विशाल, प्रधानमंत्री की जो ये मध्य एशियाई देश उज्बेकिस्तान की यात्रा है, ये उनकी चौथी यात्रा है और इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव के बीच तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी जिससे दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ सके। लेकिन जो प्रमुख मुद्दे हैं उनमें निवेश बढ़ाने, व्यापार को दोगुना करने, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और लोगों के बीच आपसी सहयोग और संवाद बढ़ाने को लेकर खास बातचीत होगी। विशाल, दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी भी एक बहुत बड़ी अड़चन है व्यापार को आगे बढ़ाने में, तो इस विषय पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। विशाल,
4: बहुत धन्यवाद सुशील इस जानकारी के लिए। उज्बेकिस्तान में भारत की राजदूत स्मिता पंत ने आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष साक्षात्कार में कहा कि उज्बेकिस्तान में प्राकृतिक संसाधनों का समृद्ध भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की ताशकंद यात्रा के दौरान निवेश और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर भी चर्चा होने की संभावना है।
6: रिलेशनशिप ऑलरेडी बहुत अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में है। 2011 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोर्ज हुई थी, उसके बाद 2015 में प्रधानमंत्री जी का पहला दौरा हुआ था। 2026 तक बहुत सारे एरियाज में हम लोग फॉरवर्ड मूवमेंट कर चुके हैं, चाहे आप ट्रेड की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, डेवलपमेंट कोऑपरेशन की बात करें, डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें। ट्रेड में ही करीबन 300% इंक्रीज हुई है 2015 से।
4: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज शिकागो में भारत की व्यापक विकास दर, सुधारों की गति और दीर्घकालिक निवेश के बढ़ते अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने प्रमुख निवेशकों और व्यापारिक नेताओं के साथ एक उच्चस्तरीय व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित किया। बैठक में भारत में विनिर्माण, भारत और विश्व के लिए विषय पर चर्चा हुई। इसमें विनिर्माण, AI और डिजिटल प्रौद्योगिकी, वित्तीय सेवाएं, अवसंरचना, खाद्य प्रसंस्करण, रक्षा और उन्नत प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में उपलब्ध अवसर शामिल हैं। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या 626 हो गई है, जबकि 2000 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। इस बीच भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को मानवीय सहायता तेज कर दी है। मानवीय सहायता सामग्री के साथ तीसरा विमान कल शाम काठमांडू पहुंचा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 320 भारतीय नागरिकों से अभी तक संपर्क नहीं हो पाया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने

0: नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में कहा कि भारतीय मूल के करीब 100 अन्य लोगों से भी संपर्क नहीं हो पाया है। एक रिपोर्ट।
1: श्री जायसवाल ने बताया कि त्रिशूली वन जल विद्युत परियोजना में कार्यरत 63 भारतीय नागरिकों को प्रभावित क्षेत्र से सुरक्षित निकाल लिया गया है। उन्होंने कहा कि चीन की ओर करीब 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और अपने परिवारों के संपर्क में हैं। उन्होंने बताया कि एक नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है। काठमांडू और बीजिंग स्थित भारतीय दूतावासों ने भी 24 घंटे हेल्पलाइन शुरू की है। नियंत्रण कक्ष के टेलीफोन नंबर है 011-230-88-719 और 011-230-12-113। व्हाट्सएप नंबर है 9968291988 और ईमेल है situationroom@mea.gov.in। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास के आपातकालीन नंबर है +977-9851-31-6807 +977-970-910-7500 और प्लस
2: इस समय में आई है जब ईरान घरेलू स्तर पर आर्थिक दबावों का सामना कर रहा है। अमेरिका और ईरान ने 18 जून को क्षेत्र में लेबनान सहित सभी मोर्चों पर युद्ध समाप्ति का समझौता किया था, जिसकी समय सीमा 17 अगस्त को समाप्त हो गई। इन वार्ताओं का उद्देश्य अंतिम समझौते तक पहुंचना था, लेकिन पिछले महीने तनाव बढ़ने के बाद इनका भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू 31 अगस्त से सर्बिया के बेलग्रेड में आयोजित होने वाली उच्च स्तरीय स्मृति बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। बैठक का विषय है गुट निरपेक्षता की विरासत, आज की दुनिया के लिए सबक। सरकार ने चीनी की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा मासिक कोटा प्रणाली के स्थान पर अगले महीने से पखवाड़े के आधार पर चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत चीनी मिलों को पहले सप्ताह में कम से कम 40% आवंटन और शेष मात्रा अगले सप्ताह में बेचनी होगी। केंद्रीय भंडारण निगम CWC ने महाराष्ट्र के नासिक से तमिलनाडु के चेन्नई तक इस सीजन की दूसरी प्याज एक्सप्रेस रवाना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में CWC ने कहा कि इस पहल से आपूर्ति श्रृंखला और मजबूत होगी और सभी बाजारों में प्याज की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड IGL ने CNG की कीमत में 3.89 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। कीमत बढ़ने के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में CNG अब 86.98 रुपए प्रति किलोग्राम मिलेगी। गुरुग्राम में CNG की कीमत 92.01 रुपए और गाजियाबाद तथा नोएडा में 95.59 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। सरकार ने व्हाट्सएप की निगरानी के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों से संबंधित एक फर्जी दावे का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि सरकार ने ऐसे कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए expert@AIRnews हिंदी को
0: के साथ। तूफान जारी रहने की संभावना है। उधर बिहार, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ हिस्सों में भी अगले 2 से 3 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि दिल्ली में आज आसमान में बादल छाए रहेंगे, जबकि एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना। कहा, इस यात्रा से मध्य एशिया के साथ रणनीतिक साझेदारी मजबूत होगी और सभ्यतागत जुड़ाव और गहरा होगा। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ में मरने वालों की संख्या 626 हुई। 2000 से अधिक लोग अब भी लापता। भारत ने मानवीय सहायता बढ़ाई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के साथ अब तक के सबसे बड़े तेल समझौते की घोषणा की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजश्कियान ने कहा, ईरान अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार, लेकिन अत्यधिक सतर्क भी है। आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की और खिलाड़ियों के समर्पण को सराहा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: FM Gold, खरा सोना।
1: आप सांभळी रह्या छो 100.1 FM गोल्ड खरा सोना अने न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लिकेशन पर खरा सोना जेवो कार्यक्रम गीत गुर्जरी अने कार्यक्रम में आज आपनी साथे छे तरुलता करोड़िया। तमाम मित्रों ने तरुलता करोड़िया ना सस्नेह नमस्कार अने प्रणाम। मित्रों आज छे 29मी ऑगस्ट एटले के नेशनल स्पोर्ट्स डे, मेजर ध्यानचंद नो जन्मदिवस, जेमने आपणे हॉकी ना जादूगर तरीके ओळखता छे। आ मेजर ध्यानचंद एमनी स्पीड ना कारणे एमने हॉकी ना जादूगर एवुं बिरुद आपवामां आव्युं हतुं, जेमने भारत माटे 3 सुवर्ण पदक जीत्या हता। मित्रों विएना स्पोर्ट्स क्लब मां

मेजर ध्यानचंद ने चार हाथ वाली अने ए चारे हाथ में एक हॉकी स्टीक होय एवी मूर्ति आवेली छे। अने आ मूर्ति ने जोता एवुं लागे छे के जाने के कोई देवतानी मूर्ति होय एवुं प्रतीत थतुं होय छे। 1926 मां राणी एलिजाबेथ हॉकीनी मैच जोवा माटे गया हता अने मेजर ध्यानचंद गोल उपर गोल फटकारी रहा हता। राणी एलिजाबेथ जोईने खुश थई रहा हता अने दर्शकों ताड़ीओनो गड़गड़ाट करी रहा हता। अर्धी मैच पूरी थई एटले राणी एलिजाबेथ अने मेजर ध्यानचंदनी ओळखाण करवामां आवी। राणी एलिजाबेथे कह्युं के तमे खूब सरस रमो छो, परंतु तमे सरस रमो छो एवं हूँ त्यारे ज मानीश ज्यारे तमे मारी छत्री थी हॉकी रमशो। पछी शो चैलेंज एक्सेप्टेड अने मेजर ध्यानचंद छत्रीनी स्टीक साथे मैदान में उतरी पड़ा अने छत्रीनी स्टीक साथे एमणे बे गोल कर्या। इंग्लेंडना मीडियाए तरत ज आ समाचार ने छाप्या अने एमणे ज मेजर ध्यानचंद ने हॉकीना जादूगर एवं पहली वार बिरुद आप्युं हतुं। मित्रों 14 ऑगस्ट 1936 रोज बर्लिन खाते ओलिम्पिक हॉकी फाइनल थवानी हती, परंतु ते दिवसे बन्यो एवुं के खूब मुसळधार वरसाद पड्यो अने मैच कैंसल थई अने एवो नक्की थयो के मैच हवे 15 ऑगस्ट 1936 एटले के बीजा दिवसे रमाशे। लगभग 40,000 जेटला दर्शकों हता अने आ दर्शकोनी वच्चे जर्मनना शासक एडोल्फ हिटलर पण मौजूद हता। मैदान भीनू हतु अने आपणा जे खेलाड़ीओ हता एमना जे बूट हता ए स्पाइकवाड़ा नहोता, एमना सपाट तळियावाड़ा रबरना बूट हता जेना कारणे तेओ वारंवार लपसी रहा हता। अर्धी मैच पूरी थई एटले मेजर ध्यानचंद जेओ हॉकी टीमना कैप्टन हता तेमणे पोताना बूट उतारी दीधा अने उघाड़ा पगेज मैच रमवा लाग्या। ज्यारे हिटलरे जोयुं के भारत जीती रह्यो छे त्यारे तेओ अर्धी मैच छोड़ीने ज ऊभा थई गया अने त्यांथी जता रह्या अने भारत 8-1 थी जीती गयुं अने भारत ने सुवर्ण पदक मळ्युं। बीजा दिवसे हिटलरे मेजर ध्यानचंद ने मळवा बोलाव्या अने एमणे एमने ऑफर आपी, तमे भारतीय सेना में नहीं परंतु जर्मनीनी सेना में काम करो, तमे भारत तरफ थी नहीं परंतु जर्मन तरफ थी हॉकी रमो अने तमे हवे पछी जर्मनी में ज रहो। परंतु मेजर ध्यानचंदे पोतानी देशभक्ति पोतानी मातृभक्ति ने आगळ राखी अने हिटलर ने आना माटे ना पाड़ी दीधी। मित्रों आवा हता मेजर ध्यानचंद।

मित्रों फरी एक वार आपनी कसोटी। मित्रों दुनियानो सौथी जूनो स्टेडियम कयो? हाँ, दुनियानो सौथी जूनो स्टेडियम कयो आपे मने जणावानुं छे। एटलुं ज नहीं, भारत में एवा चार स्टेडियम आवेला छे के जे दुनियाना बधा ज स्टेडियम

आप सांभळी रह्या छो 100.1 FM गोल्ड खरासोना कार्यक्रम छे गीत गुर्जरी। मित्रों घणा मित्रों फोन हता अने घणा मित्रों स्टेडियम ना नाम आप्या परंतु जवाब साचा न मळ्या। मने एवुं लाग्युं तो को एटलीस्ट हवे जे हुं स्टेडियमनी वात करवानी छुं ने ए स्टेडियम तो बधा श्रोता मित्रों ओळखी जशे परंतु कोई ज न ओळखी शक्यो। चलो हुं ज जणावी दो, नरेन्द्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम अमदावाद। हाँ मित्रों दुनियानो सौथी मोटू स्टेडियम छे आ, जेमा दर्शकोनी क्षमता 1,10,000 छे। 63 एकर जमीन में आ स्टेडियम बनावामां आवेलो छे अने एनी डिजाइन 360 डिग्रीनी करवामां आवी छे, जेथी तमे स्टेडियमना गम्मे ते खूणे हो तमे मैच पूरी जोई शको ने पूरेपूरो आनंद माणी शको।

सोगती मारी, ले जो भी चारी, आ सोगती मारी।

आप सांभळी रह्या छो 100.1 एफएम गोल्ड खरा सोना कार्यक्रम छे गीत गुर्जरी। मित्रों, वाराणसीमां इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनी रह्यो छे अने लगभग 95% जेटलुं काम पूरुं थई चूक्युं छे। एटले एवुं कहेवाय छे कि 2027 थी ए मेच रमवा माटे एकदम तैयार हशे। दुनियाथी आ स्टेडियम जुदो पड़े छे, एनुं कारण छे एनी शिव थीम। अहीं तमने त्रिशूळ, डमरू, बिलीपत्र जेवा शिवना प्रतीकों जोवा मळशे। दर्शकोनी क्षमता छे 32,000 जेटली। अहीं जे स्ट्रीट लाइट छे ने ए पण डमरो आकारनी छे, एलईडी लाइट। हाँ मित्रों, तमे जे शेरीमांथी पसार थशो ए शेरीमां पण डमरो आकारनी लाइट तमने जोवा मळशे, ए त्यांनी खासियत छे। एटलुं ज नहीं, अहीं 4 फ्लड लाइट लगाड़वामां आवी छे जे त्रिशूल आकारनी छे, जेनी ऊंचाई 50 मीटर छे अने जेनो वजन 100 टन छे। पेवेलियन अने मीडिया गेलरी ए डमरो आकारनी छे। तो पछी अहीं जे एंट्री गेट छे ए बिलीपत्र आकारनो छे। एटलो ज नहीं, अहींनी दीवालो पर बिलीपत्रना चित्रों पण दोरवामां आव्या छे। अहीं जे छत एटले के रूफ छे ए अर्धचंद्राकार छे अने दर्शकों जे बेसे ए गंगा घाटनो एनो फील आवे ने एम गंगा घाटनी सीढ़ी के दादरा के पगथिया उतरता होय एम उतरता क्रमे दर्शकोनी बेसवानी बैठको राखवामां आवी छे। तो मित्रों, आ थया 4 स्टेडियम। 2 प्रश्नों हजी त्याने त्या

मित्रों, आपने मैं प्रश्न कर्यो हतो कि दुनियानो सौथी जूनो स्टेडियम क्यू छे, तो मित्रों ए भारत में आवेलो छे अने ए पण आपणा गुजरातना कच्छ में आवेलो छे अने ए छे धोळावीरा खाते आवेलो रमत गमतनु मैदान। अने एवो कहेवाय छे के आ मैदान ईस्वीसन पूर्वे 2000 BC पहेलानुं छे, जे सिंधु घाटीना अवशेषो मळ्या एमांथी आ रमत गमतनु मैदान मळी आव्युं छे। अने आ रमतगमतना मैदाननो उपयोग, एवो कहेवाय छे कि रमतगमत अने जाहेर कार्यक्रमोमां लोको ज्यारे एकठा थाय एना माटे करवामां आवतो हतो। अने आ मैदान हवे सक्रिय नथी, परंतु दुनियानुं सौथी जूनुं एक बीजुं स्टेडियम छे जे हजु पण सक्रिय छे, ए छे इंग्लेंडनुं सेफिल्ड शहેરમાં આવેલું સેન્ડિગેટ સ્ટેડિયમ। મિત્રો, 1804 સાલમાં આ સ્ટેડિયમ બનાવવામાં આવ્યું હતું। 1804 જ્યારે આ સ્ટેડિયમ બનાવવામાં આવ્યું ત્યારે એને ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ તરીકે

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह उज़्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की 4 दिन की यात्रा पर रवाना हुए। श्री मोदी ने रवाना होने से पहले कहा कि उनकी इस यात्रा से मध्य एशिया में भारत की रणनीतिक साझेदारियां मजबूत होंगी तथा इस क्षेत्र के साथ सभ्यतागत जुड़ाव और गहरा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्ज़ियोयेव के साथ व्यापार और निवेश, डिजिटल संपर्क, रक्षा तथा ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग और मजबूत करने के साथ साथ विकसित भारत और यांगी उज़्बेकिस्तान के साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। नेपाल में आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या 626 हो गई है और 2000 से अधिक लोग लापता हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बंद सड़कों को साफ करने का काम भी तेजी से चल रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि 320 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो पाया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारतीय मूल के करीब 100 अन्य लोगों से भी संपर्क नहीं हो रहा है। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने भारत सरकार की ओर से सहायता के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आभार व्यक्त किया है। राष्ट्रपति पौडेल ने विनाशकारी बाढ़ में भारतीय नागरिकों की मौत पर शोक व्यक्त किया।

0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के साथ अब तक के सबसे बड़े तेल समझौते की घोषणा की है। इस समझौते से अमेरिका को 65 अरब बैरल से अधिक कच्चे तेल के भंडार पर नियंत्रण प्राप्त हो जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि ये समझौता अमेरिका करदाताओं पर बिना किसी बोझ के हासिल किया गया है और इससे अमेरिका के कुल तेल भंडार दोगुने से भी अधिक हो जाएंगे। अमेरिकी प्रशासन का दावा है कि तेल आपूर्ति में इस वृद्धि से घरेलू गैसोलीन की कीमतें कम होंगी और वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था को आर्थिक सुधार में मदद मिलेगी। ये घोषणा वेनेजुएला के तेल निर्यात पर महीनों से चल रहे अमेरिकी राजनयिक दबाव प्रतिबंधों के प्रवर्तन के बाद हुई है। ये समझौता ट्रंप के आदेश पर किए गए अमेरिकी सैन्य अभियान के 9 महीने बाद हुआ है, जिसमें वेनेजुएला के नेता निकोलस मादुरो को गिरफ्तार किया गया था और उन पर मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप लगाकर उन्हें अमेरिका को सौंप दिया गया था। समाचार कक्ष से भूपेंद्र सिंह।
0: ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कहा है कि ईरान अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन अमेरिका को लेकर सतर्क भी है। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका समझौते की शर्तों का पालन करता है तो ईरान भी अपनी प्रतिबद्धताएं पूरी करेगा। श्री पेजेश्कियन ने कहा कि राजनयिक प्रयासों का केंद्र बिंदु जून में हुए शांति समझौते को फिर लागू करना हो सकता है। उन्होंने कहा कि समझौता लागू रहने के दौरान ईरान ने करीब 9 करोड़ बैरल तेल का निर्यात किया था। श्री पेजेश्कियन की ये टिप्पणी ऐसे समय आई है जब ईरान घरेलू स्तर पर आर्थिक दबावों का सामना कर रहा है। एक अलग संदेश में ईरान के सर्वोच्च नेता मुश्तबा खामेनेई ने महंगाई, बेरोजगारी और कीमतों तथा बाजार के प्रबंधन सहित आर्थिक और जनजीवन से जुड़ी चुनौतियों पर गंभीरता से ध्यान देने का आह्वान किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज शिकागो में भारत की व्यापक विकास दर, सुधारों की गति और दीर्घकालिक निवेश के बढ़ते अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने आज प्रमुख निवेशकों और व्यापारिक नेताओं के साथ उच्च स्तरीय व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित किया। बैठक में भारत में विनिर्माण, भारत और विश्व के लिए विषय पर चर्चा हुई। वित्त मंत्री ने भारत क्यों अभी क्यों रूपरेखा भी प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर भारतीय हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारतीय हॉकी की श्रेष्ठतम प्रतिभा के रूप में मेजर ध्यानचंद आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करते हैं। प्रधानमंत्री ने सभी खेल प्रेमियों को राष्ट्रीय खेल दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनका समर्पण, जुनून और दृढ़ संकल्प देश को गौरवान्वित करता है। श्री मांडविया ने कहा कि मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में हर वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। मौसम विभाग ने ओडिशा में सोमवार तक मूसलाधार बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

यह आकाशवाणी का एफएम गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1 है। आइए अब आपको बताते हैं आपके मनपसंद एफएम गोल्ड पर आने वाले घंटों में आप कौन कौन से कार्यक्रमों का आनंद ले सकते हैं। साथियों, आपसे कुछ ही देर बाद यानी 4:20 पर आप सुन सकते हैं एम्प्लॉयमेंट न्यूज और रोजगार समाचार। 4:30 का वक्त न्यूज सर्विसेज डिवीजन के कार्यक्रम परिक्रमा का रहेगा। और जैसे आप जानते हैं, एफएम गोल्ड

100.1 पर हर घंटे आप और हम मिलकर समाचार सुनते हैं। तो इसी कड़ी में शाम 5 बजे हिंदी में समाचार होंगे, 5:05 पर अंग्रेजी में समाचार होंगे और 5:10 का वक्त कार्यक्रम गाते गुनगुनाते का रहेगा, जिसमें आपके साथ मैं सीमा वर्मा रहूंगी और हमारे बीचों बीच बहुत खूबसूरत कुछ रेट्रो गीत रहेंगे। मेरा साथ आपके साथ गाते गुनगुनाते तक रहेगा। शाम 6 बजे एक बार फिर हम हिंदी में समाचार सुनेंगे, 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार होंगे और 6:10 पर आप सुन सकते हैं विश्लेषण। साथियों, शाम 6:20 पर संस्कृत में समाचार होंगे, वहीं 6:30 का वक्त मार्केट मंत्रा का रहेगा। आगे की जानकारी हम आपको जरूर देंगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत खूबसूरत गीत हम सुन लेते हैं 1955 की फिल्म सीमा से।

लता जी का गाया हुआ अभी फिल्म सीमा से हमने ये शास्त्रीय अंग का गीत सुना। और आइए अब एक बार फिर आपको याद दिला दें, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड 100.4।

0: स्वागत एक बार फिर आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1 में। आइए साथियों, अब आपको बताते हैं शाम के कुछ कार्यक्रम जिसमें आप फिल्मी गीतों के साथ साथ जानकारियां भी हासिल कर सकते हैं। शाम 7:25 पर सुनना ना भूलिएगा कार्यक्रम सांझ ढले, जिसे आप तक पहुंचाएंगी विभा लक्ष्मी। इस कार्यक्रम में जानकारियों के साथ साथ बहुत खूबसूरत अपने समय के मशहूर चर्चित फिल्मी गीतों का आप आनंद ले सकते हैं। और 7:45 पर आप सुन सकते हैं प्रादेशिक समाचार। रात 8:00 हिंदी में समाचार, 8:05 पर अंग्रेजी में समाचार और 8:10 पर सुनना ना भूलिएगा कार्यक्रम मधुरिमा, जिसमें हम गीतों के साथ साथ उनके शास्त्रीय अंग की भी बात करते हैं कि किस शास्त्रीय राग को आधार बनाकर गीत की रचना हुई है, और बहुत सारी बातें आपसे करेंगी विभा लक्ष्मी। 8:30 का वक्त स्पॉट स्कैन का रहेगा, वहीं 8:45 पर आप सुन सकते हैं समाचार संध्या। रात 9:00 News@9 आप सुन सकते हैं, और आगे अगर हम बढ़ें तो 9:15 पर कार्यक्रम स्पॉटलाइट होगा, और कुछ फिल्मी गीतों के कार्यक्रम की ओर अगर हम बढ़ते हैं तो 10:30 साथियों हर सिंगार कार्यक्रम सुनना ना भूलिएगा, आपके साथ रहेंगी नूपुर गुप्ता। रात 11:10 पर मार्केट मंत्र आप सुन सकते हैं, और 11:40 रात गीत मेरे मनमीत, वही गीत मनमीत बनते हैं जो जुबां पर आते हैं। इस कार्यक्रम में नूपुर गुप्ता एक बार फिर से आपके साथ रहेंगी। तो ये तो जानकारी हमने आपको दी। हमने आपसे शुरू में कहा था कि 4:20 पर हम एम्प्लॉयमेंट न्यूज सुनेंगे, वक्त हो चला है, सुनते हैं एम्प्लॉयमेंट न्यूज।
1: Welcome to Employment News, your ultimate gateway to career success. I am Lucy Gabriel and I'm here to guide you through the latest job vacancies across various sectors and government recruitment updates to help you navigate the competitive job market. We begin with Dr. B.R. Ambedkar University of Delhi is inviting online applications for 89 regular faculty positions, professor, associate professor, assistant professor across various schools and disciplines as per the recruitment notice dated 31st July 2026. The posts include 24 professors, 28 associate professors and 37 assistant professors. Two positions are reserved for persons with benchmark disabilities. Vacancies span multiple disciplines including arts, design, social sciences, law, management, education and more, and are distributed across several university schools. Full details, eligibility and the application process is available on the university website, that is at www.aud.delhi.gov.in. Online applications are open with a deadline of 3 weeks from the date of publication of this advertisement in the Employment News. I repeat the website, kindly go on to www.aud.delhi.gov.in. The Publications Division, DPD, Ministry of Information and Broadcasting, seeks a business manager level 11 in New Delhi on deputation basis. Responsibilities include managing sales, publicity and distribution of government publications. Applicants must be government officers or from PSUs, statutory or autonomous bodies, universities, research institutes with relevant experience and commerce degree with a maximum age of 56 years. Kindly send in your applications within 60 days to the Deputy Director Admin, Publications Division, Ministry of Information and Broadcasting, Suchana Bhavan, CGO Complex, New Delhi, with required certificates. Incomplete or late applications will not be considered. For details, kindly look up the website at www.mib.gov.in. Sainik School, Sambalpur, Odisha, under the aegis of the Ministry of Defence, Government of India has invited applications for regular and contractual posts. Vacancies include PGT Physics, Chemistry, Biology, Mathematics and Computer Science at Pay Level 8, TGT Social Science, General Science, Mathematics and English at Pay Level 7 and contractual posts at PEM PTI cum Matron Female, Art Master, Lab Assistant Biology and LDC carrying consolidated remuneration of 40,000, 70,500, 30,000 and 30,000 per month respectively. The age limit is 21 to 40 years for PGTs, 21 to 35 years for TGTs, 21 to 50 years for PEM PTI cum Matron, Art Master and Lab Assistant and 18 to 50 years for LDC as on 31st August 2026. Contractual appointments will initially be for 11 months, extendable subject to performance and institutional requirements, or with the total tenure not exceeding 3 years. Candidates should check the detailed eligibility requirements, application procedures and deadlines on the official Sainik School Sambalpur website. The last date for applications is 7th September 2026. For details, kindly look up www.sambalpur.sainikschoolsociety. National Institute of Ocean Technology, an institution under the Earth System Sciences Council, an autonomous body under the Ministry of Earth Sciences, Government of India, has invited online applications from Indian nationals for one post of technician grade A on a direct recruitment basis. The post is in Group C, pay level 2, as per the 7th CPC and is unreserved. The last date for submission of online applications is 14 September 2026. Candidates can check the detailed advertisement, eligibility criteria and application procedure on the official NIOT website, that is at www.niot.res.in. And now we have the employment news in Hindi.
2: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंधन संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ सेक्रेटेरिएट ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट में आवश्यकता है इन दो पदों को भरने की। उपनिदेशक सतर्कता पाठ्यक्रम तथा सहायक निदेशक कार्यालय प्रबंधन। पात्रता शर्तों के विवरण और शैक्षणिक योग्यता, आरक्षण, तैनाती के स्थान एवं वेतनमान आदि की विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.istm.gov.in। संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान में आवश्यकता है स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर ग्रेड 2 के पद को भरने की। योग्यता, अनुभव, आयु तथा अन्य नियम और शर्तों के बारे में विस्तृत विज्ञापन संस्थान की इस वेबसाइट पर देखा जा सकता है www.sgpgims.org.in। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय भारतीय नागरिकों से भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI में सदस्य के 2 पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। सदस्य को 5,00,000 रुपए का समेकित मासिक वेतन देय होगा। उन्हें आवास तथा सरकारी वाहन की सुविधा का अधिकार नहीं होगा। आवेदन प्रपत्र, अर्हता शर्तों, अपेक्षित शैक्षणिक

0: योग्यता और अन्य विवरणों के लिए देखिए कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइट www.mca.gov.in। संघ लोक सेवा आयोग इन पदों पर चयन द्वारा सीधी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित कर रहा है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में सहायक भविष्य निधि आयुक्त के पद के लिए 80 रिक्तियां उपलब्ध हैं। योग्य एवं इच्छुक उम्मीदवार इस वेबसाइट के माध्यम से आवश्यक नियमों, शर्तों, योग्यता, आरक्षण, वेतन और तैनाती के स्थान के विषय में जानकारी ले सकते हैं। वेबसाइट है upsconline.nic.in। इन पदों के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आयोग की वेबसाइट upsconline.nic.in पर जाएं और चयन द्वारा भर्ती हेतु उम्मीदवारों के लिए अनुदेश तथा अतिरिक्त सूचना के साथ विस्तृत भर्ती विज्ञापन आप उस पर देख सकते हैं। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सहायक कमांडेंट परीक्षा 2025 का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया गया है। नियुक्ति के लिए अनुशंसित उम्मीदवारों की योग्यता क्रम में सूची सहित परिणाम आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। आयोग की वेबसाइट का पता है www.upsc.gov.in। कश्मीर विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों, संस्थानों, केंद्रों में उपलब्ध सहायक प्रोफेसर के शिक्षक पदों के लिए पात्र उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। विषयों और विभागों का विवरण इस प्रकार है: अरबी, जैव रसायन, जैव सूचना विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, मध्य एशियाई अध्ययन केंद्र, दूरस्थ एवं ऑनलाइन शिक्षा, अर्थशास्त्र, शिक्षा, खाद्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विदेशी भाषाएं, भू सूचना विज्ञान, इतिहास, गृह विज्ञान, इकबाल संस्कृति एवं दर्शन संस्थान, विधि, आजीवन अधिगम, फारसी, राजनीति विज्ञान, उर्दू एवं प्राणी विज्ञान। अनिवार्य अर्हताओं, पदों के आरक्षण तथा अन्य नियम और शर्तों से संबंधित विस्तृत विज्ञापन और सूचनाएं आप देख सकते हैं विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर। वेबसाइट है www.kashmiruniversity.net। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: This program was produced and presented by the New Services Division of Archive.

0: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
1: नमस्कार, शाम का ये सुहाना वक्त एक बार फिर लेकर आया है देश दुनिया की खबरों, रोचक जानकारियों और दिन भर की प्रमुख हलचलों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा। अगले आधे घंटे में होगी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचारों पर नजर, क्षेत्रीय संवाददाताओं से खास जानकारी, खेल जगत की प्रमुख गतिविधियां और उन विशिष्ट व्यक्तित्वों का स्मरण जिनकी आज जयंती, जन्मदिन या पुण्यतिथि है। तो आइए शुरू करते हैं आज की परिक्रमा। मैं हूँ वैष्णवी और मेरे साथ है मेरी सहयोगी रेनु कटारिया।
2: हेलो, यस, हेलो वैष्णवी एंड हेलो टू एवरीवन हु इज लिसनिंग अस एंड आर ट्यून्ड टू परिक्रमा ऑन आकाशवाणी गोल्ड एट 100.1 मेगाहर्ट्ज। आई एम रेनु कटारिया एंड विद मी टुडे इज माय ब्यूटीफुल एंड क्यूट लिटिल को होस्ट वैष्णवी। सो लेट्स बिगिन विद द न्यूज हेडलाइंस फर्स्ट वैष्णवी।
1: जी बिल्कुल।
2: Prime Minister Narendra Modi embarks on a four-day visit to Uzbekistan and Kyrgyz Republic, says visit will strengthen strategic partnerships and deepen civilizational ties with Central Asia.
1: नेपाल में विनाशकारी बाढ़ में मरने वालों की संख्या 626 हुई, 2000 से अधिक लोग अब भी लापता, भारत ने मानवीय सहायता बढ़ाई।
2: US President Donald Trump announces biggest oil deal

0: विद वेनेजुएला।
1: ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्किन ने कहा, ईरान अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार लेकिन अत्यधिक सतर्क भी है।
0: National Sports Day being observed today, Prime Minister Modi pays tribute to Major Dhyan Chand and salutes dedication of sportspersons.
1: और उड़ीसा में अगले 2 से 3 दिनों के लिए मूसलाधार वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी।
0: And now, dear listeners, it is time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. And today, we are going to talk about National Sports Day.

0: Today is August 29, a day when the entire nation celebrates the spirit of sports, fitness, determination, and of course, the legendary hockey player Major Dhyan Chand.
1: रेनु खेल जो है वो केवल मेडल, ट्रॉफी और टूर्नामेंट तक सीमित नहीं है. ये हमें अनुशासन, मुश्किलों का सामना करने, टीम के साथ मिलकर काम करने यानी टीम वर्क और कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ते रहने का हौसला सिखाते हैं.
0: वेरी ट्रू वैष्णवी. एंड वेदर इट इज अ चाइल्ड किकिंग अ फुटबॉल, अ टीनेजर रनिंग ऑन एन एथलेटिक्स ट्रैक, एन एडल्ट पिकिंग अप अ बैडमिंटन रैकेट और अ सीनियर सिटीजन एंजॉयिंग अ मॉर्निंग वॉक, स्पोर्ट्स ट्रूली बिलोंग्स टू Everyone.
1: बिल्कुल सही कहा आपने. 29 अगस्त को भारत के महानतम खिलाड़ियों में से एक मेजर ध्यानचंद की जयंती मनाई जाती है. उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है.
0: जी, his name is synonymous with an era when Indian hockey dominated the world. ध्यानचंद was at the heart of India's Olympic gold winning campaigns in 1928, 1932 and 1936.
1: अपने शानदार करियर के दौरान उन्होंने सैकड़ों गोल किए और असाधारण कौशल, अनुशासन और खेल भावना के प्रतीक बन गए.
0: एंड यस प्लीज कैरी ऑन.
1: रेनु, अगर हम वैसे ही ध्यानचंद के बारे में बात हो ही रही है तो हम अक्सर ये जानते ही हैं कि सुना भी है कई बार कि उनके खेल की इतनी सटीक, मतलब ये होता था गोल की लोग सोचते थे कि कहीं उनके स्टिक में किस तरह का मैग्नेट तो नहीं लगा हुआ है कि बॉल उसी के साथ जैसे वो खेलते हैं उसी तरह.
0: वेरी ट्रू. एंड यस वी हैव आल्सो हर्ड अबाउट दिस कि उनकी स्टिक को एक बार जो है देखा गया था कि कहीं इसके अंदर कोई मैग्नेट तो नहीं है. तो यहाँ पर क्यों ना वी हैव अ स्मॉल स्निपेट फ्रॉम प्रसार भारती जहाँ पर मेजर ध्यानचंद अपने बारे में कुछ बताना चाह रहे हैं. तो लेट्स लिसन इनटू दैट फर्स्ट.
1: बिल्कुल.
2: रिसेंटली यूरोप कंट्री के खेलों को कि वो हमारे मुकाबले में थोड़ा थोड़ा ड्रिबलिंग करने लगे हैं बजाय एक मारने के. अभी ड्रिबलिंग भी शुरू कर दिया हम लोग.
3: जी हां, काफी इंप्रूवमेंट्स हैं उनके.
2: तो इसमें शक नहीं है कि सीखा हम लोगों से है.
3: जी.
2: और इसमें हमारे लोगों की, हमारे हिंदुस्तान की अभी तक वो कंट्री तारीफ करती है कि हाँ, हिंदुस्तान जो खेलती है हॉकी वो हिंदुस्तान के सिवा और कोई नहीं खेल सकता.
0: And you know, that is why National Sports Day is not simply about remembering a sporting hero. We have heard Major Dhyanchand speak about this himself over here. It is about remembering the values he represented: dedication, excellence, humility and a never give up attitude.
1: वैसे तो राष्ट्रीय खेल दिवस की शुरुआत आधिकारिक रूप से वर्ष 2012 में हुई थी. हर साल ये दिन देश की खेल उपलब्धियों का जश्न मनाने और लोगों को शारीरिक गतिविधियों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित करता है.
0: एंड दिस डे आल्सो सेलिब्रेट्स इंडियाज रिच स्पोर्टिंग हेरिटेज एंड एनकरेजेस पीपल टू मेक स्पोर्ट्स अ रेगुलर पार्ट ऑफ देयर डेली लाइव्स. वी हैव मोर फ्रॉम आवर कॉरेस्पोंडेंट.
4: National Sports Day 2026 is being observed as a three-day nationwide campaign under the pillars of tribute, play and move. This year, National Sports Day is being celebrated under the call Ek Ghanta Khel Ke Maidan Mein. Various in Delhi Union Ministers Dr. Mansukh Mandviya and Arjun Ram Meghwal participated in a cricket match under the campaign. Talking to media, Dr. Mandviya called upon people to spend at least 1 hour on the sports field to remain fit and healthy.
5: Aaj National Sports Day ke avsar par.
4: The occasion of National Sports Day, a 1 hour sports activity has been organized across the country to promote the fit India movement.

0: Since this morning, I have been receiving information that lakhs of young people across the country have come out to play for an hour in playgrounds and in every street. I am happy to see that the country is changing under the leadership of Prime Minister Narendra Modi.
1: मुझे खुशी है मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल रहा.
0: Mr. Meghwal said he plays badminton every day. He said sports help people remain healthy and fit and also help in keeping stress away. The government has been making sustained investments in India's sporting ecosystem with the results increasingly visible on the global stage. India's performances at major international sporting events reflect the country's growing strength across Olympic, Paralympic and multi-sport disciplines. India's Olympic journey has witnessed a significant transformation in the recent years. The country won 2 medals at Rio 2016, 7 at Tokyo 2020 and 6 medals at Paris 2024. India's performance at the Paralympic Games has also improved remarkably. The medal tally rose from 4 at 20 at Rio 2016 to 19 at Tokyo 2020. At Paris 2024, India recorded its best ever Paralympic performance with 29 medals. Saklan Akhtar for Akashwani News, Delhi.
2: And Prime Minister Narendra Modi today paid homage to the Indian hockey legend Major Dhyan Chand on the occasion of National Sports Day. In a social media post, Mr. Modi also extended his greetings to all sports lovers. The Prime Minister said that their dedication, passion and determination makes the nation proud.
3: Sports mein koi loser nahi hota. Sports mein sirf winners aur learners hote. Sports ki language यूनिवर्सल स्पिरिट यूनिवर्सल स्पोर्ट ह्यूमैनिटी को अपने विस्तार का अवसर देता है. स्पोर्ट्स हमारे वसुधैव कुटुंबकम यानी वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर के भाव को भी सशक्त करता है. देश मेडल तब प्राप्त करता है जब देश में स्पोर्ट्स कल्चर खेलो इंडिया जैसे अभियान गांव, गरीब आदिवासी और लोअर मिडिल क्लास परिवारों के युवाओं के सपने साकार कर रहे हैं. 2014 में हमने टॉप्स यानी टीओपीएस यानी टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम को लॉन्च किया था. इसके जरिए हमने टॉप एथलीट की ट्रेनिंग इंटरनेशनल एक्सपोजर और बड़े स्पोर्ट्स इवेंट्स में उनका पार्टिसिपेशन सुनिश्चित किया.
4: रेणु लेकिन खेल इतना महत्वपूर्ण क्यों है?
2: ये बता देते हैं हम आपको. फॉर स्टार्टर्स वैष्णवी स्पोर्ट्स कीप आवर बॉडीज हेल्दी. रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी कैन इम्प्रूव कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस स्ट्रेंथन मसल्स एंड बोन्स हेल्प मेंटेन अ हेल्दी वेट एंड रिड्यूस द रिस्क एसोसिएटेड विद एन इनएक्टिव लाइफस्टाइल. एंड दिस इज वेरी ट्रू व्हेन इट कम्स टू अस इंडियंस. हमने देखा है कि धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है हमारी मसल डिजेनरेशन होती जाती है. सो unless and until we don't keep ourselves fit through sports, चाहे वो morning walks हो, चाहे आप थोड़ा yoga कर रहे हैं, चाहे आप कोई भी sport खेल रहे हैं, we cannot maintain a healthy lifestyle.
4: बिल्कुल. और शारीरिक सेहत तक ही नहीं बल्कि ये हमारे मन को भी स्वस्थ रखते हैं. इससे हमें तनाव कम करने, आत्मविश्वास बढ़ाने और जीत के साथ साथ हार को भी स्वीकार करना सीखने में मदद मिलती है.
2: एंड देन देर आर लाइफ lessons also वैष्णवी ओवर हियर ऑन अ स्पोर्ट्स फील्ड. यू लर्न दैट सक्सेस रेयरली कम्स ओवरनाइट. आपको बहुत ही persistent इसके ऊपर काम करना होता है. सो लेट्स लिसन इन टू दिस इंस्पिरेशनल डायलॉग इन द वॉइस ऑफ ऋतिक रोशन फ्रॉम द मूवी वॉर.
5: मैच खत्म होने से पहले जीतने की पूरी कोशिश करो. भागो, दौड़ो, खेलो, लड़ो, सब कुछ. पर एक बार मैच खत्म हो जाए ये मत सोचो कि तुम हारे या जीते, बल्कि अपने आप से ये पूछो कि डिड आई गिव इट माई वेरी बेस्ट और नॉट. और अगर तुम्हारा जवाब हाँ है then you're a winner.
4: रेणु कितनी सही बात कही है इस मूवी में और कितना इंस्पिरेशनल है. खेल हमें अभ्यास करना सिखाते हैं, हार को स्वीकार करना सिखाते हैं, कोच के बात सुनना और टीम के साथियों पर भरोसा करना सिखाते हैं. और सबसे जरूरी बात, खेल हमें असफलता के बाद फिर से उठकर आगे बढ़ना सिखाते हैं.
2: एंड दैट इज आई थिंक द वेरी वेरी कोर ऑफ स्पोर्ट्स एंड ऑफ डिसिप्लिन. एंड दैट इज रेजिलियंस, दैट इज टीम वर्क. एंड दैट इज वाई स्पोर्ट्स आर इम्पोर्टेंट not just for athletes but for the society as a whole.
4: बिल्कुल, अगर खेलों में भारत के प्रदर्शन की बात की जाए तो देश का खेल जगत तेजी से बदल रहा है।
2: एब्सोल्युटली, फ्रॉम एथलेटिक्स एंड शूटिंग टू बॉक्सिंग, रेसलिंग, बैडमिंटन, वेटलिफ्टिंग, हॉकी एंड सेवरल अदर डिसिप्लिन्स, इंडियन एथलीट्स आर इंक्रीजिंगली मेकिंग देयर प्रेजेंस फेल्ट ऑन द ग्लोबल स्टेज।
4: बिल्कुल, जैसे हाल ही में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स ने भी देश को जश्न मनाने का एक और मौका दिया। रेनू, अगर हम ग्लासगो 2026 राष्ट्रमंडल खेलों के भारत में प्रदर्शन की बात करें तो भारत ने कुल 29 पदक जीते थे जिनमें 13 स्वर्ण पदक शामिल है। भारत पदक तालिका में संयुक्त रूप से चौथे स्थान पर रहा।
2: एंड हियर बॉक्सिंग प्रोड्यूस्ड अ पर्टिकुलरली स्पेक्टेक्युलर परफॉर्मेंस। इंडिया वन 7 बॉक्सिंग गोल्ड मेडल्स, इज बेस्ट एवर बॉक्सिंग गोल्ड हॉल एट अ सिंगल कॉमनवेल्थ गेम।

0: मेजर ध्यानचंद ने दुनिया को दिखाया कि खेल के प्रति समर्पण और मेहनत से क्या हासिल किया जा सकता है। आज भारतीय खिलाड़ियों की नई पीढ़ी भी दुनिया को बता रही है कि भारत क्या कर सकता है। खेल के मैदान से लेकर अंतर्राष्ट्रीय पोडियम तक और स्थानीय प्रतियोगिताओं से लेकर कॉमनवेल्थ गेम्स तक भारत की खेल यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है। आज जब देश के अलग अलग मैदानों में नई पीढ़ी सपनों के पीछे दौड़ रही है तो उनमें कहीं ना कहीं उस जादूगर की छवि भी दिखाई देती है जिसने एक सदी पहले हॉकी की स्टिक से भारत का नाम दुनिया के खेल मानचित्र पर दर्ज किया था।
1: एंड हियर वैष्णवी, इट इज नॉट अबाउट द बिगेस्ट विक्ट्री विच इज नॉट ऑलवेज अ गोल्ड मेडल बिकॉज स्पोर्ट्स टीचर्स अस समथिंग दैट स्टेज विद अस लॉन्ग आफ्टर द फाइनल विसल। सो डियर लिसनर्स एंड ऑल द एल्डरली पीपल ऑल्सो ऑल लिसनिंग टू अस, प्लीज प्ले हार्ड एंड स्टे हेल्दी एंड प्लीज आस्क योर सेल्फ नॉट द क्वेश्चन कैन आई बिकम अ चैंपियन बट what sport or physical activity can I make a part of my life?

0: रेणु, अब समय है कार्यक्रम के आगे बढ़ाने का और अगले पढ़ाव पे जाने का। अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास आज क्या खास है।
1: एंड वी ऑल नो दैट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज ऑन रूट टू उज़्बेकिस्तान फॉर अ टू डे विजिट। द प्राइम मिनिस्टर विल विजिट ताशकंद एट द इन्विटेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान मिस्टर शफकत मिर्ज़ियोयेव।
0: उज़्बेकिस्तान में भारतीय फिल्मों, गानों, टीवी सीरियल की दीवानगी तो है ही, इसके अलावा लोगों में भारतीय भाषा को सीखने का भी बहुत उत्साह है। यहाँ बड़ी संख्या में छात्र हिंदी पढ़ते हैं और तमाम अध्यापक भी भारत में पढ़ाई कर चुके हैं। जनवरी 2023 में 4 उज़्बेक हिंदी विद्वानों ने नाडी यानी फिजी में विश्व हिंदी सम्मेलन में भाग लिया। ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी फॉर ओरिएंटल स्टडीज की निलुफर खोदजेवा को विदेश मंत्री द्वारा हिंदी सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आकाशवाणी समाचार से खास बातचीत में डॉक्टर नीलूफर ने बताया कि कैसे हिंदी के प्रति वे आकर्षित हुई, उन्होंने किस तरीके से प्रेमचंद के साहित्य पर अपनी शोध किया और आज वे ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी में हिंदी पढ़ रही हैं, वहां के हिंदी विभाग की डायरेक्टर हैं।
2: मेरे लिए हिंदी केवल एक भाषा नहीं है, ये भारत की समृद्धि, संस्कृति, साहित्य, परंपराओं और यहाँ के लोगों को समझने का एक माध्यम है। हिंदी ने मुझे भारत से जोड़ा है और मेरे जीवन तथा मेरी शैक्षणिक यात्रा में इसका एक विशेष स्थान है। मेरी शैक्षणिक और शोध यात्रा भी हिंदी तथा भारतीय साहित्यकार से गहराई से जुड़ी हुई है। मैंने महान हिंदी साहित्यकार प्रेमचंद की रचनाओं के उज़्बेकी अनुवादों पर पीएचडी की है। मेरे शोध का मुख्य विषय प्रेमचंद की रचनाओं के हिंदी से उज़्बेकी अनुवाद का भाषिक और शैलीगत अध्ययन रहा है। इसके साथ ही हिंदी उज़्बेकी अनुवाद, अनुवाद कला और दोनों भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन के क्षेत्र में भी मैं निरंतर कार्य करती रहती हूँ। आज मेरी सबसे बड़ी इच्छा यही है कि उज़्बेकिस्तान में

0: exploitation and taxation. His movement for the establishment of a Naga state was spearheaded in the North Kachar Hills, Manipur and the Naga Hills. He mobilized people and many Naga tribes against the British. He urged his followers to stop paying taxes to the British administration. Jadunang was inspired by Mahatma Gandhi and composed a song in his honor. Jadunang was hanged on the banks of Nambul River in Imphal on August 29, 1931.
1: गुजराती साहित्य में मनुभाई राजाराम पंचोली दर्शक का नाम एक ऐसे लेखक के रूप में लिया जाता है जिन्होंने साहित्य के साथ साथ शिक्षा और समाज के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण काम किया। आज उनकी पुण्यतिथि है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वे सक्रिय रहे और जेल भी गए। बाद में उन्होंने लेखन और शिक्षा को अपना प्रमुख कार्य क्षेत्र बनाया। उनके चर्चित उपन्यासों में सोक्रेटिस और झेर तो पीधा ते छाणी जाणी शामिल है। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार और मूर्ति देवी पुरस्कार भी मिला। साथ ही उन्हें पद्म भूषण और रंजीत राम सुवर्ण चंद्रक सहित कई सम्मान प्राप्त हुए। स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रहे और लोकमान्य तिलक के विचारों से प्रभावित नेता थे माधव श्रीहरि अणे। उनका जन्म 29 अगस्त 1880 को महाराष्ट्र के वणी में हुआ था। वैसे तो उन्हें प्यार और सम्मान से बाबूजी अणे और लोकनायक अणे भी कहा जाता था। वे स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रहे और नमक सत्याग्रह के दौरान जेल भी गए। संस्कृत के विद्वान अणे ने लोकमान्य तिलक पर संस्कृत में विस्तृत रचना भी की। उनके योगदान के लिए उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।
2: And today is the birth anniversary of Liam James Payne, who was an English singer and songwriter. He was a member of the pop band One Direction, one of the best-selling boy bands of all times, alongside Niall Horan, Zayn Malik, Harry Styles and Louis Tomlinson. Payne twice auditioned as a solo artist on the British television series The X Factor in 2008 and 2010. But here we are listening to a beautiful song, Remember, by

0: भारतीय सेना के इतिहास में कुछ वीरों की पहचान उनके पद से नहीं बल्कि उनके अदम्य साहस से होती है। मेजर सुधीर कुमार वालिया ऐसे ही जाबाज सैनिक थे। आज ही के दिन 1999 को जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकवादियों के खिलाफ चलाए गए एक अभियान के दौरान वे शहीद हुए। ये अभियान कुपवाड़ा के जंगलों में छिपे आतंकवादियों को पकड़ने के लिए चलाया जा रहा था। मुठभेड़ के दौरान उन्होंने आतंकवादियों को डटकर मुकाबला किया और अपने साथियों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। उनकी वीरता के सम्मान में उन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। उन्हें सेना मेडल और बार्टो सेना मेडल भी मिला। आगे बढ़ते हैं। करगिल युद्ध की वीरगाथा में मेजर मनोज तलवार का नाम साहस और बलिदान के साथ लिया जाता है। भारतीय सेना में रहते हुए उन्होंने करगिल युद्ध के दौरान दुश्मन के खिलाफ बहादुरी से मोर्चा संभाला। 13 जून 1999 को टुरटुक क्षेत्र में एक सैन्य अभियान के दौरान उन्होंने अदम्य साहस का परिचय दिया और देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। उनकी वीरता के लिए उन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। उनकी कहानी हमें बताती है कि सैनिक के लिए देश की सुरक्षा सबसे ऊपर होती है।
1: जी बिल्कुल। एंड टुडे वी आर आल्सो रिमेम्बरिंग डीना वॉशिंगटन हु वाज एन अमेरिकन सिंगर एंड पियानिस्ट हु हैज बीन साइटेड एज द मोस्ट पॉपुलर ब्लैक फीमेल रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट ऑफ द 50s। एंड हियर वी आर गोइंग टू लिसन टू व्हाट डिफरेंस अ डे मेक्स बाय डीना वॉशिंगटन हु गेव हरसेल्फ द टाइटल ऑफ क्वीन ऑफ द ब्लूज़।

आज जन्मदिन है भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले वैज्ञानिक डॉक्टर के राधाकृष्णन का। वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के अध्यक्ष रहे और उनके कार्यकाल में भारत ने चंद्रयान 1

0: with Lionel Richie, Jackson co-wrote the charity single We Are the World, which raised money for the poor in the US and Africa. And let's listen into this another beautiful song, We Are the World.
1: There are people dying, oh, when it's time to lend a hand to life.
2: और श्रोताओं, इसी खूबसूरत गीत के साथ अब समय हो चला है आपसे इजाजत लेने का, तो वैष्णवी और रेनू को अनुमति दीजिए परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की. नमस्कार.
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर रवाना हुए. श्री मोदी ने रवाना होने से पहले कहा कि उनकी इस यात्रा से मध्य एशिया में भारत की रणनीतिक साझेदारियां मजबूत होंगी तथा इस क्षेत्र के साथ सभ्यागत जुड़ाव और गहरा होगा. प्रधानमंत्री ने कहा कि वे उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जी योयेव के साथ व्यापार और निवेश, डिजिटल संपर्क, रक्षा तथा ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग और मजबूत करने के साथ साथ विकसित भारत और यांगी उज्बेकिस्तान के साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने पर चर्चा करेंगे. श्री मोदी किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादिर झपारोफ के निमंत्रण पर बिश्केक में 26वें शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे. प्रधानमंत्री ने कहा कि वे सुरक्षा, संपर्क और अवसर पर आधारित क्षेत्र के लिए भारत के विजन को आगे बढ़ाने और SCO के अन्य सदस्य देशों के साथ मिलकर आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद से मुक्त क्षेत्र के लिए काम करने को लेकर उत्सुक हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक कंपनियों को अपनी आपूर्ति श्रृंखला और पूंजी आवंटन का फिर से आकलन करना चाहिए, क्योंकि भारत न केवल विशाल बाजार उपलब्ध कराता है बल्कि दीर्घकालीन निवेश और संचालन मंच का भी आधार है. अमेरिका के शिकागो में प्रमुख निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ एक उच्च स्तरीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भारत में निवेश का तात्पर्य व्यापक बाजार, सतत आर्थिक विकास और कौशल युक्त प्रतिभा, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और एक दशक के सुधार से है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत न केवल एक प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है बल्कि अपनी सभ्यागत विरासत, संस्कृति और क्षमताओं में दृढ़ विश्वास रखने वाला राष्ट्र भी है. लखनऊ में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि आज जब भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है. रक्षा मंत्री ने कहा कि नए भारत में सबसे बड़ा परिवर्तन यह है कि देश अब केवल वैश्विक नियमों का अनुसरण नहीं कर रहा बल्कि नियम बनाने में भी योगदान दे रहा है. उन्होंने कहा कि भारत में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास किया है.
4: पिछले 12 वर्षों में शिक्षा की क्वालिटी, एसेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी बढ़ी. भारत का रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पहले के कंपेरिजन में 2 गुना हो गया. 34 ईयर्स में पहली बार हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई है. शिक्षा के क्षेत्र में हुए बदलाव

0: और अच्छी पॉलिसीज का ही ये परिणाम है कि आज देश के नौजवान स्टार्टअप खड़े कर रहे हैं, यूनिकॉर्न कंपनियां बना रहे हैं। 2015 में हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 81वें स्थान पर, हमने अब 38वें स्थान पर अपनी पहुंच हासिल कर ली है।
1: नेपाल में आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या 626 हो गई है और 2000 से अधिक लोग लापता हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बंद सड़कों को साफ करने का काम भी तेजी से जारी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 320 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो पाया है। इस बीच नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने बाढ़ के बाद भारत सरकार की सहायता के लिए आभार व्यक्त किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि नेपाल में संकट की स्थिति को देखते हुए भारत चिंतित है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नेपाल की सभी जरूरतों में भारत मदद उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत पड़ोसी देश को लगातार सहायता भेज रहा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आज संयुक्त CSIR UGC नेट परीक्षा के सभी 5 विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी। परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अपने पहचान पत्रों का उपयोग करके लॉगिन कर अपने विषयों से संबंधित अंतिम उत्तर कुंजी देख सकते हैं। पंजाब सरकार ने 27 अगस्त को महाहड़ताल के अंतर्गत सामूहिक आकस्मिक अवकाश पर जाने वाले लाखों कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। सरकार ने सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागों के प्रमुखों को अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने वाले सभी कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं। लाखों राज्य सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगियों ने महंगाई भत्ता जारी करने, पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने और सेवा से संबंधित कई अन्य लंबित मांगों को लेकर महाहड़ताल की थी। मौसम विभाग ने ओडिशा में सोमवार तक मूसलाधार बारिश के ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिनों तक बिहार, पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर भारतीय हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय हॉकी के श्रेष्ठतम प्रतिभा के रूप में मेजर ध्यानचंद आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi is en route to Uzbekistan for a 2-day visit. The Prime Minister is visiting Tashkent at the invitation of President of Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev. Both leaders will have discussions on the entire gamut of issues of bilateral importance in Tashkent. In his departure statement, Mr. Modi expressed confidence that his visit to Uzbekistan and the Kyrgyz Republic will strengthen India's strategic partnerships in Central Asia and deepen the civilizational connect with the region. He said in recent years, India-Uzbekistan strategic partnership has seen significant advancement. Prime Minister Modi said he is looking forward to having discussions with President Mirziyoyev of Uzbekistan on further deepening cooperation in trade and investment, digital connectivity, defence, energy and on advancing the shared visions of Vikasit Bharat and Yangi Uzbekistan. Mr. Modi said he will also visit the Shastri Memorial and the Mahatma Gandhi Center at the Tashkent State University of Oriental Studies, which is a tribute to the close cultural and people-to-people ties that bind the two countries. The death toll from devastating flash floods in Nepal and Tibet has risen to 626, while over 2,000 people remain missing. Police have recovered 233 bodies in Chitwan, 158 in Nawalparasi East, 48 in Golkha, 47 in Nawalparasi West, 45 in Thading, 41 in Nuwakot, 31 in Tanahun and 13 in Rasuwa. Search and rescue operations are underway across the affected districts of the Himalayan nation. Officials said the police are coordinating with residents and other agencies to locate missing people and assist those stranded by the floods. Rescued people are being taken from high-risk areas to safer locations. Search and rescue officials are working to clear the roads blocked by flood debris and landslides to reopen access and facilitate relief operations. India has stepped up humanitarian assistance to Nepal. The Ministry of External Affairs yesterday said

बहुत जरूरी है एक मुलाकात, और बार बार मुलाकातें करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए आपसे मिलने आ गए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1 पर। शुरू होता है जी गाते गुनगुनाते शनिवार की शानदार जानदार शाम में आपके साथ। आज मैं सीमा वर्मा पूरी ऊर्जा के साथ, आप भी आइए आगे बढ़ते हैं और खूबसूरत गीतों से हम शराबोर होते हैं।

बहुत जरूरी है दोस्ती को, मोहब्बत को जिंदा रखने के लिए और तरोताजा रखने के लिए ये मुलाकातें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं, और इसी वजह से हम आपसे मुखातिब होते हैं और आपसे मिलने आते हैं और अच्छी अच्छी बातें जो हैं वो लेकर आते हैं, बहुत खूबसूरत गीत आपके लिए लेकर आते हैं। तो कव्वाली से हमने आज शुरुआत की अपने इस प्रोग्राम की, और गाते गुनगुनाते हमने आगे बढ़ना बिल्कुल शुरू कर दिया है। और जब ये मुलाकात होती है तो बहुत सारी बातें होती हैं, और इन बातों ही बातों में कहीं ना कहीं जो हुस्न और जो इश्क होता है उसके जो नाज उठाए जाते हैं उसमें कहीं ना कहीं दिल ये कह ही उठता है कि साहब लाजमी है तेरा खुद पर गुरूर करना, लाजमी है तेरा खुद पर गुरूर करना, हम जिसे चाहें वो मामूली हो नहीं सकता। आइए सुनते हैं एक और खूबसूरत गीत प्यार की चाशनी में लिपटा हुआ।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस

0: महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: NCREPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।

सूरज धीरे धीरे मध्यम हो रहा है और धीरे धीरे हमारा फिल्मी गीतों का कारवां भी आगे चल रहा है। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1 पर गाते गुनगुनाते आज सीमा वर्मा के साथ।

भाई खुशी का आलम तो उसका कोई ठिकाना नहीं होगा, क्योंकि कल रक्षाबंधन हम लोगों ने मनाया और जितनी भी बहनें हैं उनके लिए क्या कहें, वो तो क्लाउड नाइन में होंगे, खूब भाइयों से गिफ्ट्स मिले होंगे, पैसे मिले होंगे, है ना। चलिए हम तो यही उम्मीद करते हैं और यही चाहते हैं दिल से कि भाई बहनों का ये प्यार पावन पर्व जो है ये हर साल आप इसी खुशी के साथ मनाते रहें। ये देना लेना तो एक रिवाज है, वो तो कोई बात नहीं, लेकिन प्यार बरकरार रहना चाहिए। आइए एक और खूबसूरत गीत के साथ गाते गुनगुनाते में आगे बढ़ते हैं।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

देखिए चलते चलते कहना होगा कि 5:42:42 हो गए हैं और वक्त का बिल्कुल पता नहीं चलता है साथियों। जब हम किसी भी काम में रम जाते हैं, किसी भी चीज में हम पूरे के पूरे 100% देते हैं अपना, तो फिर टाइम का नहीं पता चलता। फिर चाहे वो आपका पर्सनल काम हो, आपका ऑफिशियल काम हो, या फिर ये गपशप हो ये बातचीत हो, है ना। तो चलिए आपको याद दिला दें, आप FM गोल्ड 100.1 के साथ हैं, शनिवार की शानदार जानदार शाम आपके साथ सीमा वर्मा। और ये मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी तक के गीत आपको बहुत भाए होंगे, और ये भी।

कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

आप सुन रहे हैं गाते गुनगुनाते सीमा वर्मा के साथ। आज शनिवार की शाम है, अब तो शाम हो ही गई है कहना होगा, बिल्कुल हो गई है। आप हो सकता है चाय की चुस्कियों के साथ मुझे सुन रहे हों, हो सकता है कि आप अपनी गाड़ी चलाते हुए मुझे सुन रहे हों, लेकिन खुशी की बात यह है कि आप साथ हैं FM गोल्ड 100.1 के, और यहाँ पर हम आप तक पहुँचाते हैं शुद्ध मनोरंजन गीतों और जानकारियों के जरिए। मैं अभी थोड़ी देर पहले सोच रही थी कि अभी तक जो मैंने आपको गीत सुनाए हैं, पहुंचाए हैं आप तक, उसमें से ज़्यादातर गीत कुमार सानू और अलका याज्ञिक जी की आवाज़ों में हैं, और वो इसीलिए भी हैं क्योंकि 90s में कुमार सानू, अभिजीत दा, फिर उदित नारायण साहब, अलका याज्ञिक और कविता कृष्णमूर्ति जी, अनुराधा पौडवाल जी, ये वो सिंगर्स रहे जिन्होंने 90s के दौर में बहुत बहुत बहुत काम किया। और कुमार सानू और अलका जी, उदित नारायण जी की तो ऐसी तिगड़ी रही कि तकरीबन हर म्यूजिक स्टूडियो में ये मिल जाते थे, और 3 से 4 गाने तो रोज़ के रिकॉर्डिंग में ये लोग मिलते ही थे। लेकिन इसके साथ साथ एक बॉन्डिंग भी इनकी नज़र आती है। आप जब इनके गाने सुनते हैं एज ए सिंगर प्रोफेशनली, वो एक अलग बात है कि आप एक्सप्रेशन दे रहे हैं और आप अपना पूरा पोटेंशियल जो है वो उसमें दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब हम उनके ड्यूएट सुनते हैं तो वो बॉन्डिंग जो है वो नज़र आती है, और वो ही अपने आप में बहुत बहुत बड़ी बात है। चलिए, एक ठंडी हवा का झोंका है जो सोनू निगम के नाम का आ रहा है, क्योंकि 90s के एंड में, टुवर्ड्स द एंड ऑफ 90s, सोनू निगम का भी आगमन हो गया था बॉलीवुड इंडस्ट्री में, और रेस्ट इज हिस्ट्री। आज हम उन्हें पद्मश्री सोनू निगम जी कहते हैं। आइए उनका एक गीत सुनते हैं।

चलिए साहब, वक्त की बात हम समय समय पर करते रहते हैं और अब क्या कहूँ आपसे, 5:55 और बस 56 मिनट हो गए हैं। देखिए, अगर मैं ये कहती रहूँगी ऐसे ही वक्त आगे बढ़ता रहेगा। और अब हमको कहना है आपसे कि अच्छा तो हम चलते हैं, हमने जाना है क्योंकि किसी और ने आना है। विभा लक्ष्मी आ गई हैं स्टूडियो में और अब वक्त है आज के प्रोग्राम के लास्ट गाने का, यानी अंतिम प्रस्तुति का। और मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा फ्लेवर चेंज करते हैं, गीतों का फ्लेवर चेंज करते हैं और आशा जी और उदित नारायण साहब को सुनते हैं। तो कह दूँ आपसे, शाद रहिए, आबाद रहिए, इसी तरह मुस्कुराते रहिए। जब आप मुस्कुराते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। सीमा वर्मा को इजाजत, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर रवाना हुए। श्री मोदी ने रवाना होने से पहले कहा कि उनकी इस यात्रा से मध्य एशिया में भारत की रणनीतिक साझेदारियां मजबूत होंगी तथा इस क्षेत्र के साथ सभ्यतागत जुड़ाव और गहरा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ व्यापार और निवेश, डिजिटल संपर्क, रक्षा तथा ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग और मजबूत करने के साथ साथ विकसित भारत और यांगी उज्बेकिस्तान के साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। श्री मोदी किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादोर जापारोव के निमंत्रण पर बिश्केक में 26वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे सुरक्षा, संपर्क और अवसर पर आधारित क्षेत्र के लिए भारत के विजन को आगे बढ़ाने और एससीओ के अन्य सदस्य देशों के साथ मिलकर आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद से मुक्त क्षेत्र के लिए काम करने को लेकर उत्सुक हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक कंपनियों को अपनी आपूर्ति श्रृंखला और पूंजी आवंटन का फिर से आकलन करना चाहिए, क्योंकि भारत न केवल विशाल बाजार उपलब्ध कराता है बल्कि दीर्घकालीन निवेश और संचालन मंच का भी आधार है। अमेरिका के शिकागो में प्रमुख निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ उच्च स्तरीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भारत में निवेश का तात्पर्य व्यापक बाजार, सतत आर्थिक विकास, कौशल युक्त प्रतिभा, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और एक दशक के सुधार से है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत न केवल प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है बल्कि अपनी सभ्यतागत विरासत, संस्कृति और क्षमताओं में दृढ़ विश्वास रखने वाला राष्ट्र भी है। लखनऊ में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि आज जब भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है। उन्होंने कहा कि भारत में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास हुआ है।
1: पिछले 12 वर्षों में शिक्षा की क्वालिटी, एसेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी बढ़ी है। भारत का रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पहले के कंपेरिजन में 2 गुना हो गया है। 34 ईयर्स में पहली बार हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई है। शिक्षा के क्षेत्र में हुए बदलावों और अच्छी पॉलिसीज का ही यह परिणाम है कि आज देश के नौजवान स्टार्टअप खड़े कर रहे हैं, यूनिकॉर्न कंपनियां बना रहे हैं। 2015 में हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 81वें स्थान पर, हमने अब 38वें स्थान पर अपनी पहुंच हासिल कर ली है।
0: नेपाल में आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या 626 हो गई है और 2000 से अधिक लोग लापता है। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बंद सड़कों को साफ करने का काम भी तेज

0: तेजी से चल रहा है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि 320 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो पाया है। नेपाल सरकार ने संकट की इस घड़ी में भारत की तत्काल मदद की सराहना की है। नेपाल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को असाधारण रूप से उदार बताया है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने भी भारत की सहायता के लिए आभार व्यक्त किया है। वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले ने कहा कि बाढ़ के बाद भारत से राहत सामग्री भेजी गई और भारत ने पुनर्निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने का संकेत दिया। 26 अगस्त से भारत ने प्रभावित क्षेत्रों में 57 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है। नेपाल के अनुरोध पर चिकित्सा कर्मियों और सुरंग बचाव विशेषज्ञों सहित 11 सदस्य भारतीय दल भी स्थानीय अधिकारियों की सहायता के लिए नेपाल पहुंचा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि नेपाल में संकट की स्थिति को देखते हुए भारत चिंतित है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नेपाल की सभी जरूरतों में भारत मदद उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। भारत पड़ोसी देश को लगातार सहायता भेज रहा है। सरकार ने कहा है कि इस वर्ष जुलाई तक प्रति बूंद अधिक फसल योजना के अंतर्गत 115 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को लघु सिंचाई प्रणाली में लाया गया है। योजना का उद्देश्य खेत स्तर पर पानी के प्रयोग में दक्षता लाना और उसमें सुधार करना है। ये योजना जनवरी 2006 में केंद्र सरकार ने लघु सिंचाई के लिए शुरू की थी। मौसम विभाग ने ओडिशा में सोमवार तक मूसलाधार बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिनों तक बिहार पश्चिम बंगाल में तेज बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi is en route to Uzbekistan for a two-day visit. The Prime Minister will reach Tashkent this evening at the invitation of President of Uzbekistan, Mr. Shavkat Mirziyoyev. Both leaders will have discussions on the entire gamut of issues of bilateral importance in Tashkent. In his departure statement, Mr. Modi expressed confidence that his visit to Uzbekistan and the Kyrgyz Republic will strengthen India's strategic partnerships in Central Asia and deepen the civilizational connect with the region. He said in recent years, the India-Uzbekistan strategic partnership has seen significant advancement. Prime Minister Modi said he is looking forward to having discussions with the President of Uzbekistan on further deepening cooperation in trade and investment, digital connectivity, defense, energy, and on advancing the shared visions of Vikasit Bharat and Yangi Uzbekistan. Mr. Modi said he will also visit the Shastri Memorial and Mahatma Gandhi Center at the Tashkent State University of Oriental Studies, which is a tribute to the close cultural and people-to-people ties that bind the two countries. The death toll from devastating flash floods in Nepal and Tibet has risen to 626, with over 2,000 people missing. Search and rescue operations are underway across the affected districts of the Himalayan nation. Officials said the police are coordinating with residents and other agencies to locate missing people and assist those stranded by the floods. India has stepped up humanitarian assistance to Nepal. The Ministry of External Affairs yesterday said 320 Indian nationals remain uncontactable or are reportedly missing following the flash flood tragedy on Wednesday. Ministry spokesperson Randhi Jaiswal said around 100 people of Indian origin holding other nationalities also remain uncontactable. Defence Minister Rajnath Singh today said India is concerned about the crisis situation in Nepal, talking to reporters in Lucknow. Mr. Singh said Prime Minister Narendra Modi has stated India is ready to provide all assistance needed by Nepal. The Defence Minister added that India has been continuously sending assistance to the neighbouring country. Nepal President Ramchandra Pawdel today expressed gratitude to his Indian counterpart Draupadi Murmu for her concern and the support extended by the government of India following the devastating flash floods in Nepal. Nepal praised India's efforts towards helping it in times of crisis and described the Prime Minister Modi as exceptionally generous in the wake of the devastating flood in the country. Nepal's Finance Minister Swarnim Wagle said special supplies had also been flown in from New Delhi following floods and that India had indicated it would provide very generous assistance for reconstruction.

0: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूँ वैष्णवी। श्रोताओं, 29 अगस्त का दिन भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिन हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर खेलों के प्रति उनके योगदान को याद करने का अवसर है। मेजर ध्यानचंद ने उस दौर में भारतीय हॉकी को दुनिया के शीर्ष पर पहुंचाया जब भारत स्वतंत्र भी नहीं हुआ था। आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे कि मेजर ध्यानचंद की हॉकी यात्रा कैसी रही, किस तरह उन्होंने भारतीय हॉकी को दुनिया में पहचान दिलाई और उनकी विरासत आज भारत में खेलों को बढ़ावा देने की कोशिशों से किस तरह जुड़ती है। इसके साथ ही जानेंगे कि खेलों को केवल पदक जीतने तक सीमित न रखकर युवाओं, फिटनेस और देश के विकास से जोड़ने की दिशा में क्या प्रयास किए जा रहे हैं। श्रोताओं, भारतीय खेल इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जिन्हें किसी एक उपलब्धि तक सीमित नहीं किया जा सकता। मेजर ध्यानचंद भी ऐसे ही खिलाड़ियों में शामिल है। हॉकी के मैदान पर उनके खेल ने भारत को एक अलग पहचान दी। गेंद पर उनकी पकड़, खेल को समझने की क्षमता और गोल करने की उनकी कला ने उन्हें दुनिया के महान हॉकी खिलाड़ियों में शामिल किया। आइए जानते हैं कि एक युवा खिलाड़ी से हॉकी के महान नायक बनने तक का उनका सफर कैसा रहा।
2: मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को तत्कालीन इलाहाबाद में हुआ था। उनके बचपन का नाम ध्यान सिंह था। उन्होंने बहुत कम उम्र में पढ़ाई छोड़ दी और 16 वर्ष की उम्र के आसपास सेना में भर्ती हो गए। ध्यान सिंह के बचपन का एक बड़ा हिस्सा झांसी में बीता। हॉकी के प्रति उनका लगाव शुरू से ही दिखाई देने लगा था। दोस्तों और भाइयों के साथ खेलते हुए वे पेड़ की डाल से हॉकी की स्टिक बना लेते थे और घंटों खेलते रहते। सेना में आने के बाद उनकी इस प्रतिभा को आगे बढ़ाने का मौका मिला। दिन में सेना की जिम्मेदारियां पूरी करने के बाद ध्यान सिंह अक्सर चांदनी रात में अकेले मैदान पर अभ्यास करते। इसी आदत के कारण उनके गुरु सूबेदार मेजर बाले तिवारी ने उन्हें ध्यानचंद का नाम दिया। 1920 के दशक में सेना की हॉकी टीम के साथ खेलते हुए उनका नाम तेजी से सामने आने लगा। अपने बेहतरीन प्रदर्शन की बदौलत 1926 में न्यूजीलैंड दौरे से उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय करियर का आगाज किया। भारतीय टीम ने उस दौरे में 21 मैच खेले, इनमें 18 में जीत मिली, 2 मैच बराबरी पर रहे और केवल 1 में हार हुई। टीम ने कुल 192 गोल किए और सिर्फ 24 गोल खाए। ध्यानचंद ने इस दौरे में करीब 100 गोल किए। अब अगली बड़ी मंजिल थी ओलंपिक। 1928 में एम्स्टरडैम ओलंपिक खेलों में भारतीय हॉकी को पहली बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक मिला। फाइनल में भारत ने नीदरलैंड्स को 3-0 से हराया। ध्यानचंद ने इस फाइनल में 2 गोल किए और पूरे टूर्नामेंट में

0: 14 गोल के साथ सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी रहे, लेकिन इस जीत तक पहुंचना आसान नहीं था। उस समय भारतीय हॉकी टीम के पास विदेश जाकर खेलने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं था। खिलाड़ियों को ओलंपिक तक पहुंचने के लिए अलग अलग संगठनों से मदद लेनी पड़ी। टीम ने समुद्री रास्ते से एम्स्टर्डम जाते वक्त रास्ते में कई मैच खेले और इस तरह यात्रा के खर्च को पूरा करने की कोशिश की। एम्स्टर्डम की सफलता के बाद भारतीय हॉकी टीम की पहचान पूरी दुनिया में मजबूत हुई। 1932 में लॉस एंजलिस ओलंपिक गेम्स में भारत ने एक बार फिर स्वर्ण पदक जीता। जापान के खिलाफ भारत ने 11-1 और अमेरिका के खिलाफ 24-1 से जीत हासिल की। अमेरिका के खिलाफ ये जीत आज भी ओलंपिक हॉकी में सबसे बड़ी जीतों में गिनी जाती है, लेकिन ध्यानचंद की सबसे बड़ी परीक्षा भी बाकी थी, 1936 में बर्लिन ओलंपिक गेम्स। इस बार ध्यानचंद भारतीय टीम के कप्तान थे। ओलंपिक से पहले भारतीय टीम जर्मनी से एक अभ्यास मैच हार गई थी। टीम के लिए ये सबसे बड़ा झटका था। ध्यानचंद ने महसूस किया कि टीम को और मजबूत तैयारी की जरूरत है। फाइनल 15 अगस्त 1936 को हुआ और सामने थी कुछ दिन पहले ही मात देने वाली जर्मन टीम। इस मैच से जुड़ी कई कहानियां आज भी सुनाई जाती हैं। इसमें मेजर ध्यानचंद चोटिल होने, दूसरे हाफ में बिना जूतों के खेलने और गेंद पर उनके असाधारण नियंत्रण की बातें शामिल हैं। लेकिन इन कहानियों से अलग जो बात सबसे महत्वपूर्ण है वे है उनके खेल के प्रति रवैया। मैच के दौरान जर्मन गोलकीपर की टक्कर से मेजर ध्यानचंद का एक दांत टूट गया। चोट के बावजूद वे मैदान पर लौटे। इसके बाद भारतीय टीम ने शानदार खेल दिखाया और जर्मनी को 8-1 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इस मुकाबले में ध्यानचंद ने 3 गोल किए। उनकी खेल भावना और नेतृत्व ने इस जीत को और खास बना दिया।
1: श्रोताओं, मेजर ध्यानचंद के दौर में आज जैसी खेल सुविधाएं, आधुनिक प्रशिक्षण व्यवस्था या बड़े स्तर की सरकारी सहायता नहीं थी, फिर भी एक खिलाड़ी की प्रतिभा, लगातार अभ्यास और टीम भावना ने भारतीय हॉकी को दुनिया की सबसे मजबूत टीमों में शामिल कर दिया। आज करीब एक सदी बाद परिस्थितियां बदल चुकी हैं। अब सवाल ये है कि क्या हम खेलों में ऐसी व्यवस्था तैयार कर सकते हैं जिसमें किसी एक असाधारण खिलाड़ी के उभरने का इंतजार ना करना पड़े, बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से हजारों बच्चों और युवाओं को खेलों में आगे बढ़ने का अवसर मिले। यहीं से राष्ट्रीय खेल दिवस की दूसरी तस्वीर सामने आती है।
0: इस वर्ष के राष्ट्रीय खेल दिवस अभियान का विषय है ट्रिब्यूट प्ले एंड मूव, यानी श्रद्धांजलि खेल और सक्रियता। इसमें एक ओर मेजर ध्यानचंद जैसे खिलाड़ियों को श्रद्धांजलि देने की बात है तो दूसरी ओर लोगों को खेल और शारीरिक गतिविधियों से जोड़ने का संदेश। भारत में खेलों को व्यापक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए पिछले वर्षों में खेलो इंडिया जैसे कार्यक्रम पर जोर दिया गया। इसका उद्देश्य देश के अलग अलग हिस्सों में खेल प्रतिभाओं की पहचान करना और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए अवसर तथा सहायता देना है। 27 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलो इंडिया संवाद के जरिए देश भर के युवाओं और खिलाड़ियों से बातचीत की। इस कार्यक्रम से देश भर के 5000 से अधिक संस्थान के युवा जुड़े। प्रधानमंत्री ने कहा कि खेलों को केवल पदक जीतने तक सीमित नहीं किया जा सकता। उनके अनुसार खेलों की ताकत और युवाओं की ऊर्जा को देश के विकास के साथ जोड़ना जरूरी है। उन्होंने कहा कि जो खेलेगा वो खिलेगा।
2: जब मैं स्पोर्ट्स की बात करता हूँ तो ये केवल मेडल जीतने तक सीमित नहीं है, ये विकसित भारत के निर्माण में भारत की खेल शक्ति और भारत की युवा शक्ति को एक साथ जोड़ने का अभियान है। मैं हमेशा कहता आया हूँ जो खेले वो खिले, और खेल में खिलना सिर्फ मैदान पर जीतना नहीं है, खेल में खिलना मतलब व्यक्तित्व का खिलना और देश का गौरव बढ़ाना।
0: साथ ही उन्होंने कहा कि भारत को खेलों में अपनी भागीदारी का दायरा बढ़ाना होगा। जिन खेलों में देश अभी मजबूत नहीं है उनमें भी खिलाड़ियों को तैयार करने और बेहतर प्रदर्शन पर ध्यान देना होगा। ये सोच वर्ष 2036 के ओलंपिक को लेकर भारत की तैयारियों से भी जुड़ी है। लक्ष्य केवल ओलंपिक में पहुंचना नहीं बल्कि अलग अलग खेलों में बड़ी संख्या में ऐसे खिलाड़ियों को तैयार करना है जो वहां अच्छा प्रदर्शन कर सकें। इस दिशा में खेलों की व्यवस्था के साथ खेल प्रशासन को बेहतर बनाने पर भी ध्यान दिया जा रहा है। खेलों में बदलाव केवल व्यवस्था के स्तर पर नहीं बल्कि सोच के स्तर पर भी दिखाई देता है। इसका एक उदाहरण है पैरा स्पोर्ट्स। 2024 पैरालंपिक्स की कांस्य पदक विजेता शीतल देवी ने खेलो इंडिया संवाद में बताया कि पैरा खिलाड़ियों को लेकर लोगों की सोच बदली है। जो सवाल कभी ये था कि ये खिलाड़ी क्या कर सकते हैं, आज वही खिलाड़ी देश के लिए पदक जीतने की उम्मीद का हिस्सा बन चुके हैं। खेल किसी बच्चे के लिए केवल प्रतियोगिता नहीं है, इससे अनुशासन, टीम के साथ काम करने की आदत और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। वही नियमित शारीरिक गतिविधियां स्वस्थ जीवन के लिए जरूरी हैं। इसलिए खेलों को केवल खिलाड़ियों तक सीमित रखने की बजाय आम लोगों तक पहुंचाने पर भी जोर दिया जा रहा है। फिट इंडिया आंदोलन इसी सोच का हिस्सा है।

0: इसका उद्देश्य लोगों को रोजमर्रा के जीवन में अधिक सक्रिय रहने और फिटनेस को जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित करना है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: श्रोताओं, खेलों को आगे बढ़ाने के लिए केवल मैदान पर खिलाड़ी की मेहनत जरूरी नहीं है, उसके पीछे प्रशिक्षण, उपकरण, व्यवस्था, सही मार्गदर्शन और खेल के प्रति समाज की सोच भी उतनी ही जरूरी है। और यही वो जगह है जहां मेजर ध्यानचंद की विरासत आज के भारत से जुड़ती है। ध्यानचंद ने एक ऐसे समय में भारत का नाम दुनिया में रोशन किया जब संसाधन सीमित थे। उन्होंने अपनी प्रतिभा और मेहनत से एक पूरी पीढ़ी को प्रभावित किया। आज भारत की कोशिश उस विरासत को एक बड़े स्तर पर आगे बढ़ाने की है, ताकि खेल किसी एक खिलाड़ी की असाधारण कहानी न रह जाए, बल्कि देश के ज्यादा से ज्यादा बच्चों और युवाओं के जीवन का हिस्सा बने। इसी के साथ कार्यक्रम विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम को तैयार किया अनिकेत ने, प्रस्तुति सहायक दानिश जैदी।

0: Good evening and welcome to the Saturday edition of Market Mantra. Today we'll also be taking calls from you, our listeners, on market-related queries. But do remember that we do not address stock or company-specific queries. The numbers to call us on are 2331-4444, 2331-0481, and 2371-7106. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
1: Namaskar. मार्केट मंत्र में आपका अभिनंदन श्रोताओं व्यापार अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी प्रश्न पूछने के लिए आप डायल कीजिए 2331-4444 2331-0481 और 2371-7106 दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी जरूर डायल करें श्रोताओं चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार से जुड़े विषयों पर गहरी समझ रखने वाले पत्रकार शिशिर सिन्हा शिशिर जी कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन
2: जी नमस्कार थैंक यू नमस्कार
1: चर्चा शुरू करेंगे श्रोताओं मगर उससे पहले आइए जानें सुर्खियां
0: Benchmark domestic indices fall for the third consecutive week. Sensex and Nifty drops over 0.3%. US stock market indices register weekly gains and global crude oil prices decline this week.
1: प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों में लगातार तीसरे सप्ताह गिरावट सेंसेक्स और निफ्टी लगभग 0.3% फिसले अमरीकी शेयर बाजारों में इस सप्ताह बढ़त हुई और इस सप्ताह वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल के दाम घटे
0: Here's a disclaimer. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: आइए श्रोताओं बिना विलंब किए जानते हैं कि सप्ताह के दौरान हमारे दोनों ही यानी कि प्रमुख शेयर सूचकांक यानी कि बाजार ने कैसा

0: जो कि शेयर बाजार में हैं, और अभी एक चर्चा ये चल रही है कि जो 25,000 रुपये से कम के स्मार्टफोन है उस पर GST की दर 18% से घटा करके 5% कर दिया जाए। तो इस समय में जो मोबाइल हैंडसेट का मार्केट है उसमें थोड़ी हमने गिरावट देखी है, करीबन मतलब बीते कुछ समय में बहुत तेजी थी लेकिन अभी कुछ समय से गिरावट आ रही है क्योंकि कीमतें बढ़ी हैं, और कीमत बढ़ने की एक बड़ी वजह यह है कि मोबाइल हैंडसेट में लगने वाले जो एक खास कलपुर्जा होता है वो उसकी कमी दुनिया के बाजारों में देखने को मिल रही है। तो अब 12 सितंबर को जब GST काउंसिल की बैठक बुलाई गई है और अगर मोबाइल हैंडसेट में दरें कम की जाती हैं GST की तो वो उन कंपनियों के लिए बेहतर होगा। तो मुझे लगता है कि 2 सप्ताह इंतजार कर लें, उसके बाद अगर उसमें आप जाते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा।
1: ये तो रही मोबाइल की बात, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं ईवी पर, तो ईवी पर आपकी क्या राय रहेगी?
0: देखिए, ईवी को लेकर के थोड़ा सा बुलिश मैं इसलिए हूँ क्योंकि कई तरह के प्रोत्साहन की बात चल रही है, कई तरह की योजनाओं की बात चल रही है, यहाँ तक कि अगर मैं दिल्ली सरकार की बात करूँ उन्होंने भी प्रोत्साहन योजनाएं की बात की है। तो ईवी सेक्टर से जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं या जो भी हमारी ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं उनके लिए स्थिति बेहतर तो नजर आ रही है, लेकिन एक चीज अभी ध्यान में रखना है कि जो हमने कहा कि चिप की बात है और कीमतों को लेकर के बढ़ाने का सिलसिला चल रहा है, और अभी भी हमारे यहाँ ईवी में एक कंसर्न आता है
1: इंफ्रास्ट्रक्चर की बात।
0: तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो थोड़ा सा उसको पीछे खींचती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे लगता है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर और खासतौर पे जो ईवी बनाने वाली कंपनियां हैं उनके लिए स्थिति बेहतर है।
1: और ईवी का विजन खाली यही तो नहीं है ना कि हम अभी वो बुलिश हो रहा है या वो नया इंट्रोड्यूस हुआ है, तो हम एक ग्लोबल लेवल पर भी देखते हैं अगर
0: बिल्कुल,
1: तो ईवी बहुत किफायती भी है हाउस होल्ड के लिए।
0: नहीं, कीमत के लिहाज से अगर आप सोचेंगे तो ईवी आपको एक सामान्य जो फॉसिल फ्यूल बेस्ड है उससे थोड़ा महंगा होता है
1: शुरुआत में।
0: हाँ, लेकिन आप ये भी देखिए कि उसकी जो उसके लिए एक बड़ी चुनौती होती है इंफ्रास्ट्रक्चर की। आप गाड़ी तो ले आते हैं, चार्जिंग कहाँ कराएंगे? और खासतौर पर अगर मैं Tier 2, Tier 3 सिटीज की बात करूँ वहां पर एक समस्या है अभी भी। तो एक कॉशस है, लेकिन चूंकि ये ईवी बनाने वाली जो कई कंपनियां हैं वो फॉसिल फ्यूल भी बनाती हैं और जहां पर हम अच्छी खासी बिक्री देख रहे हैं तो इसीलिए मैंने कहा कि वो स्थिति अच्छी है। वो
1: दिल्ली से हमारे साथ वत्स राज जुड़ रहे हैं। महोदय, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
2: नमस्कार मार्केट मंत्रा। नमस्कार सुशील सिन्हा जी। सर, मेरा सवाल है कि क्या एक कंपनी का कोई शेयर होल्डर जो है वो सिक्योर्ड क्रेडिटर होता है या अनसिक्योर्ड क्रेडिटर होता है, और अगर वो सिक्योर्ड क्रेडिटर होता है तो जब कंपनी डीलिस्ट होती है तो क्या उसको उसके पैसे कुछ वापस मिलते हैं जो उसकी शेयर होल्डिंग होती है उस समय के मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग? प्लीज, थैंक यू।
0: देखिए, कंपनी में दो तरह के शेयर होल्डर होते हैं, एक जिनको हम लोग ऑर्डिनरी शेयर होल्डर कहते हैं, जिनको हम लोग प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर कहते हैं। तो जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर होते हैं उनकी स्थिति कह सकते हैं कि जब कंपनी अगर मान लीजिए कि बंद हो गई, कंपनी का सारा कुछ बिकने की स्थिति में आ गया, तो पहला वहां पर हक क्रेडिटर का बनता है। तो जो आपका मूल सवाल था कि क्या वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है या सिक्योर्ड क्रेडिटर है, एक ऑर्डिनरी शेयर होल्डर जो है वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के कैटेगरी में आएगा। पहली बात, उसको हम क्रेडिटर नहीं कह सकते हैं क्योंकि उसने कर्ज नहीं दिया है, उसने शेयर खरीदे हैं, तो वो क्रेडिटर की कैटेगरी में नहीं आता है। वो उसको पैसा तभी मिलता है जब कंपनी पहले कर्जदारों ने जिससे पैसे लिए उसको चुका दिया, सरकार का जो बकाया है उसको चुका दिया, कर्मचारियों का बकाया है उसको चुका दिया, उसके बाद अगर पैसा बचा तो जो फेस वैल्यू है उस शेयर का, जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर है उसके मान लीजिए 1, 2, 5, 10 जो भी फेस वैल्यू, उतने ही पैसे उसको मिलेंगे। अब दूसरा जो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर है वो एक तरीके से उसका इंटरेस्ट पे भी हक बनता है, और जब कभी भी कंपनी बंद हो जाए या कंपनी डिसॉल्व हो जाए तो उसका हक जो है वो इन ऑर्डिनरी शेयर होल्डर के मुकाबले में आगे रहता है, उनको सबसे पहले भुगतान किया जाता है।
1: दिल्ली से हमारे साथ अमित झा जुड़ रहे हैं। अमित जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
3: जी, मैं दिल्ली से अमित झा बात कर रहा हूँ सर।
0: जी अमित जी बोलिए।
3: सिन्हा सर से मेरा प्रश्न ये है सर कि हमने, बड़ी अच्छी बात है कि हम विकसित भारत की परिकल्पना कर रहे हैं 2047 तक हम विकसित अर्थव्यवस्था बन जाए सर, परंतु सर पिछले 4-5 साल का अगर हम डेटा उठा के देखें तो सर हमारी GDP की रफ्तार वही है, उतनी ही रफ्तार से हम बढ़ रहे हैं। उसके बाद इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन जो है औद्योगिक उत्पादन का आंकड़ा भी कोई खास उत्साहजनक है नहीं सर। तीसरी चीज सर, ये करंट अकाउंट डेफिसिट जो

0: चालू खाता घाटा है, अगर हम निर्यात बढ़ता है हमारा निर्यात तो हमें खुशी मिलती है, तो साथ में आयात भी बढ़ जाता है, तो ट्रेड बैलेंस वहीं पे रह जाता है जस के तस है। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस गति से अगर हम वृद्धि कर रहे हैं जीडीपी और आईआईपी में, तो क्या चमत्कारी कोई होने वाला है कि 2047 में हम एकदम से विश्व में अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ जाए, हमारी कोई जादू की छड़ी है इस हिसाब से रफ्तार से? तो मुझे लग नहीं रहा कि सर हम
1: अमित जी आपकी आशंकाएं गलत नहीं है कि इस तरह के विकास की रफ्तार से क्या हम 2047 में 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हम बन सकते हैं कि नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरीके से विकास हमारी रही है कि देखिए 6% के ऊपर या 6.5% के ऊपर, फिर से अगर आप 6.5% की दर से विकास करते हैं तो वो एक संतोषजनक स्थिति है। ये ध्यान जरूर रखिए कि जो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां हैं वो बहुत ही प्रतिकूल हैं, और उनके बावजूद भी अगर हम 7% या उससे ऊपर की दर से विकास करते हैं तो हमारे लिए एक बेहतर स्थिति है। अब रहा सवाल कि क्या इसी रफ्तार से हम 2047 में 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन पाएंगे, मेरा जवाब होगा नहीं। यहां पर आपको विकास की रफ्तार ऊंची चाहिए, आपको 8% या 8% के ऊपर चाहिए, 9% का चाहिए, लेकिन वो केवल आपके हाथ में नहीं है। अगर कोई कहे कि केवल और केवल सरकार ही सब कुछ करेगा, जो वैश्विक परिस्थितियां हैं वो अगर आपके हिसाब से नहीं है, कच्चे तेल के भाव काफी ऊपर चल रहे हैं तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है, लेकिन फिर भी मैं आपकी आशंकाओं से सहमति रखता हूं। मैं
2: जॉइनिंग अस फ्रॉम बेंगलुरु इज एनआर प्रसाद, अ वार्म वेलकम।
3: Hi, good evening, Market Tantra. This is Anar Prasad from Bangalore. Hello, Rajesh ji. Hello, Prachi ji.
2: Hello, how are you?
3: Mr. Sinha, just one question. What is exactly this CAS starting from the SEBI closing action session and from 3:15 to 3:30 p.m.? And in that first 5 minutes is called IEP. Really, I don't know how it works. My broker is starting this new session from Monday onwards. Can you just detail on this, what exactly how it works? Thank you. This is my question.
1: Mr. Prasad, I may not be able to give you much detail about the CAS, but I can tell you that CAS is basically all talking about the price discovery during the last 15 minutes of the session, trading session, which is between 3:15 and 3:30. And that is based on the future, and that's basically on the derivative trading. So that is one thing. There are a lot of, differences are there. There are a lot of issues are there because this is a new system. So of course, there will be some teething problem and what we have seen during last 15 days. But when we were talking to SEBI chairperson, he made it very clear that we are not going to make much change into that. But of course, all the views and all the suggestions are most welcome. So if I just summarize it into just one sentence, it is a new mechanism for the price discovery. There are some issues because the brokers are not very much aware about this new system, so there are some problems like what happened on Friday also. But trust me that within 15 days or within a month or so, we believe that this system will stabilize and there will be a proper price discovery which is going to benefit the market.
4: दिल्ली से योगेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। योगेश जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन है, कृपया अपना सवाल पूछिए।
5: जी नमस्कार आप सभी को। मेरा सवाल ये है कि जैसे कहा जाता है कि मार्केट में, शेयर मार्केट में खासतौर पर, कि जो लार्ज कैप है उनका ग्रोथ रेट स्मॉल कैप और मिड कैप से थोड़ा कम रहता है, और आने वाले 10 साल या 15 साल या 12 साल में स्मॉल कैप और मिड कैप लार्ज कैप को बीट कर देते हैं। तो एक डिटेल इन्वेस्टर के लिए क्यों जरूरी है कि वो लार्ज कैप में एलोकेशन ले, यानी कि क्यों ना वो अपना 50% ज्यादा एलोकेशन मिड और स्मॉल कैप में ले, अगर उसने निश्चित कर ही लिया है कि उसको 15 से 20 साल का इन्वेस्टेड रहना है।
1: योगेश जी, यहाँ पर मुद्दा यह है कि आप खरगोश की रफ्तार से रखना चाहते हैं या कछुए की रफ्तार से चलना चाहते हैं। बाजार में बहुत तेज उतार चढ़ाव अगर आए वो आपके लिए अच्छी बात नहीं है। स्मॉल कैप और मीडियम कैप के साथ, मिड कैप के साथ एक बड़ी समस्या क्या आती है कि उसमें बहुत ज़्यादा हम तेजी से उतार चढ़ाव देखते हैं, और इसीलिए आपको लगता है कि उसमें जो फायदा हो रहा है या उसकी जो कीमतों में अंतर है वो लार्ज कैप के मुकाबले ज़्यादा बेहतर है। ध्यान रखिए कि लार्ज कैप के रास्ते में बैरिक जो कहते हैं ना कि स्पीड ब्रेकर्स उस तरीके के नहीं होते हैं जैसे आपको स्पीड ब्रेकर्स मिड कैप और स्मॉल कैप में देखने को मिलता है। तो मिड कैप और स्मॉल कैप गलत नहीं है, अगर गलत होते तो बाजार में उसकी अनुमति ही नहीं होती, बाजार में वो हैं, यानी कि वो

0: सर बस ये दो चीज बताइए कि सर जैसे भी कौन सा सेक्टर मतलब थोड़ा सा भी सस्ता है हम लॉन्ग टर्म के लिए ले, ऐसे तो मैंने आईटी में शुरू कर दिया है आईटी में, इसके अलावा?
1: तो आपका ये पहला प्रश्न है, आपने कहा दो प्रश्न पूछने हैं।
0: नहीं,
1: अच्छा एक ही प्रश्न है। अच्छा अच्छा जितेंद्र जी, देखिए आपने बहुत अच्छा किया है कि आईटी में आपने शुरू किया है, क्योंकि मेरी अपने व्यक्तिगत तौर पे जो है वो राय रही है कि आईटी सेक्टर एक बेहतर दिशा में बढ़ रहा है, संभावनाएं काफ़ी अच्छी बन रही हैं, तो उसमें आप किस्तों में आप निवेश करते हैं तो वो एक अच्छा विकल्प है। दूसरा, जैसा पब्लिक सेक्टर बैंक्स मुझे लगता है कि इस समय में आकर्षक हैं, और तीसरा फार्मा भी है, और इसके साथ साथ अगर डिफेंस में भी आप थोड़ा कर सकते हैं, क्योंकि डिफेंस को लेकर के बहुत सारी योजनाएं आई हैं, और अभी आपको बताएं कुछ दिन पहले DRDO की तकनीक जो है वो प्राइवेट सेक्टर को देने की बात कही गई थी, यानी कि वहां पर भी डिफेंस सेक्टर्स की कंपनियों के लिए एक अच्छे दिन है। तो आप ये चार सेक्टर्स को ध्यान में रख करके आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन हमेशा आपको मैं एक छोटा सा सुझाव जरूर दूंगा, पैसा आपका अपना है, थोड़ा सा पैसे पे मेहनत जरूर करिएगा, अपने स्तर पर भी थोड़ा शोध करिएगा। हमने आपको शुरुआती सुझाव दिए हैं, अंतिम स्वरूप आपको खुद देना है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको अतिरिक्त मेहनत करनी।
2: शिशिर जी, लेकिन गौरतलब बात यह भी है कि अभी जब जितेंद्र जी हमसे सवाल पूछ रहे थे तो उन्होंने कहा कि कौन सा क्षेत्र सस्ता है, यानी उनके शायद कहने का अर्थ ये हो कि सस्ते इवैल्यूएशन के जो शेयर होते हैं वो कहाँ है। तो ये कितना सही है कि हम किसी को कोई अगर शेयर 17 रुपए का हमें मिल रहा है तो हम इस इंटाइंसमेंट में चले जाएं कि इस लालच में चले जाएं कि अरे ये तो 17 रुपए का है, चलो खरीद लो इसे?
1: नहीं नहीं,
2: क्या ये सही है?
1: नहीं नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। मुझे लगता है कि आप उसकी जिसको कहते हैं ना उस कंपनी और उस क्षेत्र की संभावनाओं को ध्यान में रख करके उस कंपनी की कीमत को आप आंके,
2: क्योंकि हो सकता है कि 17 रुपए आपने जो लगाए हैं वो भी आपके डूब जाए।
1: बिल्कुल। और आपको एक चीज बताऊं कि हमारे जो शेयर बाजार है उसमें 68 जो है वो सरकारी कंपनियों के शेयर हैं। सरकारी कंपनियों के शेयर अपने बराबर के जो दूसरे उसी क्षेत्र में काम करने वाले निजी कंपनियों के जो शेयर है उससे काफी सस्ते में मिल जाते हैं। तो क्या सरकारी कंपनियों के शेयरों में स्थिति अच्छी नहीं है? वो स्थिति अच्छी है, क्योंकि वहां पर संभावनाएं अगर अच्छी बन रही है तो मुझे लगता है कि कीमत उसी हिसाब से आंकिए। केवल और केवल आप ये मत देखिए कि वो 4 रुपए का है, 5 रुपए का, 6 रुपए का है, तो उसके हिसाब से तो आप चेन्नई शेयर में चले जाइए, जिसको लोग पेनी स्टॉक्स कहते हैं।
3: मूविंग ऑन, मेजर US स्टॉक इंडेक्सेस एंडेड लोअर यस्टरडे एज इन्वेस्टर्स टर्न कॉशियस आफ्टर द फेडरल रिजर्व चेयर केविन वॉश रिइटरेटेड द सेंट्रल बैंक्स फोकस ऑन फाइटिंग इन्फ्लेशन इंक्रीजिंग प्रॉस्पेक्ट्स फॉर अ रेट हाइक। The Nasdaq Composite Index slipped over 0.5%. The S&P 500 dipped more than 0.2%, while the Dow Jones Industrial Average ended almost flat with a negative bias. However, for the week, the Nasdaq rose 0.8%, the Dow climbed over 0.5%, and S&P 500 gained 0.5%. Meanwhile, in his debut speech at the Central Bank's annual symposium in Jackson Hole, Fed Chair Kevin Warsh said that the Fed's predominant focus should be on prices, noting that inflation remains above its target. He added, better than expected inflation readings over the summer had not convinced him that underlying price pressures had meaningfully improved. The Fed Chair said the central bank needs to be confident that the underlying price pressures are moving towards its 2% target at a sufficient pace, or further policy action may be required. We will discuss if time permits on this. In the meantime, we are joined in by Shankar from Bhopal. A warm welcome, Shankar.
4: Good evening, sir.
3: Good evening.
4: So my question is about interest rate, which you have said it is likely to go up. Is the interest low interest rate era will be over, because RBI thought it will be good to have a lower interest rate, ministry thought, government thought lower interest rate will boost the business thoda bahut to boost hua hoga, but jyada tar to real estate prices have gone up like anything, because necessity commodities have been under control more or less, but the real estate prices have gone up by leaps and bounds. So is this the reason they are controlling going to increase interest rate, number one? Number two, sir, ये NCLT के क्या लॉज अभी इतने टाइट नहीं है कि पीपल आर एबल टू गेट अवे विथ अगेन विथ इजीली विदाउट हैविंग एक्चुअली पेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी? आई एम टॉकिंग अबाउट द रिसेंट केस विच इज इन द लाइमलाइट, सर थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे तो अच्छा होगा।
1: Going by your first question about the lower interest rate, see, I mean the primary responsibility of Reserve Bank of India is to control the inflation, and if the inflation is high, that

0: there are various tools, and one of the important tools is the interest rate. And not just in India, but if you talk about any country, I believe you are taking cue from what Federal Reserve Chief has said. So he has talked about indicated that interest rate could go up because of the inflation. And in India, we are seeing that now the inflation is, of course, below 5%. It is around 4.5%. But because of the monsoons and because of the some other regions, we are likely to see some hike or some rise in the interest rate. If it happens, then of course there will be some issue on that. Going to your second question, of course I don't have any comment to offer about that particular case, but I can say you that NCLT has a set rules and regulation, and it decides on that only.
1: Global crude oil prices logged weekly losses amid hopes of a possible agreement to facilitate shipping through the Strait of Hormuz. Meanwhile, the traders also assessed comments from the US Fed chair on inflation. During the week at the Intercontinental Exchange, Brent crude October futures fell by 5.4% to settle at $89.31 per barrel. West Texas Intermediate crude October futures dropped 4.2% to end at $83.40 per barrel.
2: Mumbai se hamare saath Ratnakar jud rahe hain. Ratnakar ji, karyakram mein aapka abhinandan. Kripya apna sawal poochiye.
3: Hello. मेरा सवाल है कि आने वाले समय में एफएमसीजी, डिफेंस और फार्मा सेक्टर, कौन से सेक्टर में निवेश करना उचित रहेगा? थैंक यू.
0: हम रत्नाकर जी के सवाल के जवाब के पहले एक छोटी सी बात जोड़ना चाहेंगे जो एनसीएलटी की बात की थी. एनसीएलटी से कोई भी अगर नाराज है या उनको लगता है कि शायद उनके प्रश्नों का समाधान नहीं हुआ है तो एनसीलैट में जा सकते हैं, जो एपिलेट है. वहां से भी अगर उनको संतोषजनक उनकी जो निर्णय है वो नहीं है तो उनके पास सुप्रीम कोर्ट का रास्ता होता है, जो इस मामले में हम देख रहे हैं. अब आपका जो प्रश्न है रत्नाकर जी, आपने एफएमसीजी की बात करी, आपने डिफेंस की बात की,
2: फार्मा
0: की बात की. दो जो बात के हैं, डिफेंस और फार्मा, मैंने अभी दो श्रोताओं के प्रश्न के जवाब में खास तौर पर उसका जिक्र किया था कि आप फार्मा में और डिफेंस में जा सकते हैं. इसके अलावा आईटी सेक्टर है और पब्लिक सेक्टर बैंक है, तो फाइनेंशियल सेक्टर में स्थिति थोड़ी अच्छी मुझे लग रही है. तो ये चार क्षेत्र हैं जहां पर आप मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं.
1: Prime Minister Narendra Modi has arrived in Tashkent, Uzbekistan today on a two-day visit. The business between both the countries has increased manifold in recent years, and the visit of PM Modi is expected to further increase the business opportunity. We have a report from a correspondent.
4: India is among top 10 partners of Uzbekistan with bilateral trade of around 1 billion. Both countries want to double this figure in the next 3 years. Talking to Akashvani News, Alisher Shaikhov, advisor to the chairman of the Chamber of Commerce and Industry of Uzbekistan, said that both countries have the potential to double their business in the coming years.
5: With India, of course, the first is the pharmaceutical, healthcare, tourism, and the medical tourism especially, and also IT, AI, and digital transformation. Because all the countries now are just moving to the digital transformation, and that's the where is we easily can find a lot of the potential to realize and just to get a huge profit just providing services not only to Uzbekistan, Central Asia, CIS countries, but also to Europe, and also it can be Japan, South Korea, this where is the aging society is giving potential for us just to be present there.
4: Speaking to Akashvani News, Smita Pant, the ambassador of India in Uzbekistan, said that both countries will also discuss off-connectivity issues.
6: Despite connectivity bottlenecks, India or Uzbekistan natural markets hain. Hum zyada niryat kar sakte hain. Hum equipment, machinery, textile machinery, chemical, dyes, surgical equipments, इसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं. हम उनसे ज्यादा इंपोर्ट भी कर सकते हैं, बिकॉज ये रिसोर्स रिच नेशन है. स्टम्बलिंग ब्लॉक जो है वो है कनेक्टिविटी. तो इसको लेके दोनों लीडर्स बात करेंगे, देखेंगे कि क्या किया जा सकता है.
4: फॉर मार्केट मंत्रा, दिस इज सुशील चंद्र तिवारी फ्रॉम ताशकंद, उज्बेकिस्तान.
2: केंद्रीय वित्त और कंपनी मामलों की मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक कंपनियों को अपनी आपूर्ति श्रृंखला और पूंजी आवंटन का फिर से आकलन करना चाहिए, क्योंकि भारत न केवल विशाल बाजार उपलब्ध कराता है बल्कि दीर्घकालीन निवेश और संचालन मंच का भी आधार है। उन्होंने अमरीका के शिकागो में प्रमुख निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ एक उच्च स्तरीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही।

0: ये किस तरीके से हम इसके प्रोस्पेक्ट्स देख पा रहे हैं शिशु जी?
1: अभी आपने एक प्रश्न आया था कि हम जो परिस्थितियां देख रहे हैं उसमें विकास की स्थिति क्या रहेगी। आप देखिए, एक मंत्री निर्मला सीतारमण जी और पीयूष गोयल जी दोनों ही बाहर से ज्यादा निवेश लाने में जुटे हुए हैं। ये उसी दिशा में उठाया गया एक कदम है।
0: शिशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जितने भी श्रोता जुड़े हैं उनके सवालों के जवाब देने के लिए, मेरे और राजेश के सवालों के जवाब देने के लिए।
1: जी धन्यवाद, नमस्कार।
2: एंड बिफोर वी क्लोज द हेडलाइंस वंस अगेन, benchmark domestic indices fall for the third consecutive week. Sensex and Nifty drops over 0.3%. US stock market indices register weekly gains and global crude oil prices decline this week. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर ताशकंद पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियायेव ने उनका स्वागत किया। श्री मोदी ने रवाना होने से पहले कहा कि उनकी इस यात्रा से मध्य एशिया में भारत की रणनीतिक साझेदारियां मजबूत होंगी तथा इस क्षेत्र के साथ सभ्यता का जुड़ाव और गहरा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे श्री मिर्जियायेव के साथ व्यापार और निवेश, डिजिटल संपर्क, रक्षा तथा ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग और मजबूत करने के साथ साथ विकसित भारत और यांगी उज्बेकिस्तान के साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। श्री मोदी किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादोर जापरोव के निमंत्रण पर बिश्केक में 26वें शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे सुरक्षा, संपर्क और अवसर पर आधारित क्षेत्र के लिए भारत के विजन को आगे बढ़ाने और SCO के अन्य सदस्य देशों के साथ मिलकर आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद से मुक्त क्षेत्र के लिए काम करने को लेकर उत्सुक हैं। नेपाल में आए भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या 626 हो गई है और 2000 से अधिक लोग लापता हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल में अब तक 88 भारतीय नागरिकों को बचाया जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 287 भारतीय नागरिक लापता हैं। उन्होंने कहा कि 128 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। रसुवा स्थित एक जल विद्युत परियोजना से 4 भारतीय नागरिकों को बचाया गया। आज 120 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल में दाखिल हुए। मंत्रालय ने कहा कि शवों की पहचान के लिए DNA नमूनों के विश्लेषण में सहायता हेतु भारत से 6 फॉरेंसिक विशेषज्ञ दल आज काठमांडू पहुंचने वाला है। सुरंग बचाव के लिए एक विशेष तकनीकी दल कल काठमांडू पहुंचा। नेपाल सरकार ने संकट की इस घड़ी में भारत के तत्काल मदद की सराहना की है। नेपाल ने प्रधानमंत्री मोदी को असाधारण रूप से उदार बताया है। राष्ट्रपति रामचंद्र पोडेल ने भी भारत की सहायता के लिए आभार व्यक्त किया है। वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले ने कहा कि बाढ़ के बाद भारत से राहत सामग्री भेजी गई है और भारत ने पुनर्निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने का संकेत दिया है। 26 अगस्त से भारत ने प्रभावित क्षेत्रों में 57 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत नेपाल को लगातार सहायता भेज रहा है।
1: नेपाल में जो क्राइसिस पैदा हुई है उससे केवल नेपाल ही चिंतित नहीं है, भारत चिंतित है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा है कि जितनी भी सहायता की आवश्यकता होगी या जो भी सहायता आवश्यक होगी वह सब भारत उपलब्ध कराने के लिए तैयार है।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक कंपनियों को अपनी आपूर्ति श्रृंखला और पूंजी आवंटन का फिर से आकलन करना चाहिए, क्योंकि भारत न केवल विशाल बाजार उपलब्ध कराता है बल्कि दीर्घकालीन निवेश और संचालन मंच का भी आधार है। अमेरिका के शिकागो में उन्होंने कहा कि भारत में निवेश का तात्पर्य व्यापक बाजार, सतत आर्थिक विकास, कौशलयुक्त प्रतिभा, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और एक दशक से सुधार है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत न केवल एक प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है बल्कि अपनी

सभ्यता का विरासत, संस्कृति और क्षमताओं में दृढ़ विश्वास रखने वाला राष्ट्र भी है। लखनऊ में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि आज जब भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है। उन्होंने कहा कि भारत में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास हुआ है। सरकार ने कहा है कि इस वर्ष जुलाई तक प्रति बूंद अधिक फसल योजना के अंतर्गत 115 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को लघु सिंचाई प्रणाली में लाया गया है। योजना का उद्देश्य खेल स्तर पर पानी के प्रयोग में दक्षता लाना और उसमें सुधार करना है। ये योजना जनवरी 2006 में केंद्र सरकार ने लघु सिंचाई के लिए शुरू की थी। मौसम विभाग ने ओडिशा में सोमवार तक मूसलाधार बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिनों तक बिहार, पश्चिम बंगाल के गांगई क्षेत्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: सुर्खियों में
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री की उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की महत्वपूर्ण यात्रा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार और आकाशवाणी संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी। कार्यक्रम का संचालन कर रही है सोनू सूद।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्थिक और रणनीतिक सहयोग बढ़ाने के लिए आज उज्बेकिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर पहुंचे हैं और यात्रा के दूसरे चरण में 31 अगस्त और 1 सितंबर को वे किर्गिज गणराज्य जाएंगे और बिश्केक में 26वें शंघाई सहयोग संगठन SCO में भाग लेंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा से मध्य एशिया में भारत की रणनीतिक साझेदारियां मजबूत होंगी। क्या है इस यात्रा के विभिन्न पहलू, क्या है उनका महत्व भारत के लिए, किस तरह से ये हमें लाभान्वित करेगा, इन सभी विषयों पर चर्चा के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हैं, पूर्व एम्बेसडर अशोक सज्जनहार और ताशकंद से आकाशवाणी संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी। आप दोनों का, एम्बेसडर सज्जनहार और सुशील जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी में।
3: जी बहुत धन्यवाद सोनू जी मुझे आमंत्रित करने के लिए।
2: सर सुशील जी, आप ताशकंद में अभी हैं, हमें बताएं कि किस तरह का वहाँ माहौल है, किस तरह का उत्साह है और वहाँ पर किस तरह की उम्मीदें हैं प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय यात्रा जो वो उज्बेकिस्तान में कर रहे हैं।
4: जी देखिए, ऐसा है कि प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर उत्साह तो जबरदस्त है क्योंकि उज्बेकिस्तान में बड़ी संख्या में भारतीय लोग रहते हैं और उनमें भी लगभग एक मेजॉरिटी, आप कहें कि मोस्टली जो है वो छात्र हैं, बड़ी संख्या में युवा हैं, जेंजी हैं, वो बहुत उत्साहित हैं। 2 दिनों से हम लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं, व्यापारी वर्ग बहुत उत्साहित है, छात्र, डॉक्टर, मेडिकल प्रैक्टिशनर, फार्मा कंपनियों में काम करने वाले लोग, तो भारतीय समुदाय बहुत उत्साहित है, लेकिन साथ के साथ उज्बेकी समुदाय भी काफी उत्साहित है। यहाँ के लोग भारतीयों से एक तरीके से कहें तो बेहद ही दोस्ताना व्यवहार रखते हैं, भारतीयों से एक अपना रिश्ता महसूस करते हैं जो कि सदियों पुराना है। सिल्क रूट की वजह से भी पहले के जमाने में लोगों का आना जाना बहुत होता था और बॉलीवुड फिल्मों, बॉलीवुड के गानों, बॉलीवुड के सीरियल्स, यहां तक कि रामायण और महाभारत के सीरियल की भी बहुत ज्यादा यहां पर लोकप्रियता रही है। हमने बहुत से लोगों से हिंदी गाने गुनगुनाते हुए सुने और लोगों से बातचीत की, तो यहाँ पर चारों तरफ होर्डिंग्स लगे हुए हैं प्रधानमंत्री जी के और बैनर्स लगे हुए हैं, तिरंगा लहरा रहा है, तो बहुत ही अच्छा माहौल है।
2: तो आपने तो हमें भी उत्साहित कर दिया। एम्बेसडर सज्जनहार, अगर मैं आपसे थोड़ा सा और ब्रॉडली पूछूं, मध्य एशिया का भारत के लिए क्या महत्व है, अगर आप संक्षेप में हमें बता सके।
3: जी बहुत धन्यवाद सोनू जी मुझे आमंत्रित करने के लिए।
2: जी
3: आपने देखिए बिल्कुल ठीक कहा है, ये 4थी यात्रा है प्रधानमंत्री मोदी की उज्बेकिस्तान में और वो पहले भारत के प्रधानमंत्री हैं जो 5 देशों की यात्रा कर चुके। 2015 में अगर देखा जाए, 1 साल के बिल्कुल बाद जब वो सत्ता उन्होंने संभाली थी, तो प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहला देश जो वो गए थे वो 2015 जुलाई में उज्बेकिस्तान था, उसके बाद कजाकिस्तान और फिर 3 और देशों में भी। तो हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसा कि सुशील जी ने अभी बिल्कुल अच्छी तरीके से बताया, जो वहां पर हमारा सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रहा है। अगर देखा जाए सम्राट अशोक के समय से ये

0: पूरा जो मध्य एशिया का, सेंट्रल एशिया का जो क्षेत्र है, ये सम्राट अशोक के राज्य में ये मिलता था। और अगर देखें तो यहाँ से सिल्क रोड का न केवल जिसे कहा जाए गुड्स, बट आइडियाज, फिलोसफी, थॉट और बुद्धिज्म भी यहाँ से ही निकलकर चीन के पश्चिमी क्षेत्र में पहुंचा। परंतु जब से आजादी मिली है इनको सोवियत संघ से 1991 में, तब से हमारे जो संबंध हैं इतनी तेजी से आगे नहीं उभर पाए हैं, जिसका एक सबसे बड़ा कारण है जिसे हम कहा जाए कनेक्टिविटी, जिसे हम कहें जो हमारे इनसे लैंड बॉर्डर्स नहीं मिलते
1: जी।
0: जो ये सब देश जब से रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ है, तब से इन देशों की जो है, इससे पहले भी इन देशों की शक्ति बढ़ती जा रही है। और इन्होंने, ये पांचों देशों ने पहली बार 2018 से कहा जाए अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी इस्टैब्लिश करना शुरू किया है। और हालांकि इससे पहले बहुत ही ये निर्भर थे चीन पर और रूस पर, अब वो चाहते हैं जो और देशों के साथ भी इनके जो संबंध हैं और भी सुदृढ़। और इसमें भारत चाहे अपनी सुरक्षा के लिए, चाहे अपने आर्थिक व्यवस्था के लिए, यहाँ पर इन देशों के पास तेल, गैस, यूरेनियम और जो मिनरल्स हैं, खनिज पदार्थों का बहुत ही बड़ा भंडार है। तो वो हम इनको इनसे कैसे ले सकते हैं? और हमारी जो शक्ति है, चाहे ट्रेड हो, निवेश हो, फिनटेक हो, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ग्रीन एनर्जी हो, इन सब क्षेत्रों में हम इनमें कैसे, इनके साथ कैसे सहयोग कर सकते हैं, तो ये विन विन सिचुएशन होगी। क्योंकि ये देश भी चाहते हैं जो अपने दायरे से बाहर निकलकर और देशों के साथ सहयोग को आगे ले जाए।
1: एम्बेसडर सज्जनहार, प्रधानमंत्री ने जब वो जा रहे थे उससे पहले कहा कि उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ वे व्यापार और निवेश, जैसे आपने कहा डिजिटल संपर्क, रक्षा तथा ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने के साथ साथ विकसित भारत और यांगी उज्बेकिस्तान के साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने पर भी चर्चा करेंगे। तो किस तरह के आपको लगता है कि आउटकम्स एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं, किस तरह के विषयों या कहें कि क्षेत्रों में समझौते जमीनी तौर पर होने की उम्मीद है आपको?
0: देखिए सोनू जी, इसमें दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। एक तो जो है बायलैटरल रिश्ते, द्विपक्षीय सहयोग जो है भारत का और उज्बेकिस्तान का, वो बहुत महत्वपूर्ण है। हमने देखा है पिछले कुछ सालों में जब से प्रधानमंत्री मोदी की सरकार आई है, वहां पर तीन बड़े बड़े भारतीय विश्वविद्यालय उज्बेकिस्तान में हमने इस्टैब्लिश की है। एक तो एमिटी यूनिवर्सिटी की है, एक शारदा यूनिवर्सिटी की है जो है, और वहां पर हॉस्पिटल भी उन्होंने बनाया है इसमें फरगना वैली अंदिजान के क्षेत्र में, जहां से आपके सुनने वालों को याद होगा जहां से बाबर यहां पर भारत में आया था 1526 में
1: जी।
0: उसी क्षेत्र में हमने शारदा यूनिवर्सिटी का एक एस्टेब्लिशमेंट किया है। उसके बाद एमिटी यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश हुई है ताशकंद में, और एक और यूनिवर्सिटी संभ्राम यूनिवर्सिटी, वो भी वहां पर एस्टेब्लिश की गई है। तो एक तो जो द्विपक्षीय संबंध है, चाहे वो टेक्सटाइल हो, फार्मास्यूटिकल्स हो, एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो, ये सब क्षेत्र हैं जिनमें हम उज्बेकिस्तान के साथ सहयोग कर सकते हैं
1: जी।
0: दूसरा परिपेक्ष सोनू जी है भारत का और मध्य एशिया के देशों का, और इसमें मैं बताना चाहूंगा जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल ली गई थी 2022 में, जब प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार जिसे कहा जाता है इंडिया सेंट्रल एशिया समिट लेवल पर, मतलब वहां के पांचों देशों के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री, इन्होंने वर्चुअली एक समिट ऑर्गेनाइज किया था, उसमें बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे। और उसमें ये बात तय की गई थी जो इस समिट का आयोजन किया जाएगा हर साल दो साल के बाद, और 2022 के बाद अभी तक बहुत कारणों की वजह से ये अभी तक दूसरा समिट, दूसरा शिखर सम्मेलन हम नहीं कर पाए। तो मैं समझता हूं जो अगर अपने संबंधों को हमने और आगे गति देनी है, तेजी लानी है
1: जी,
0: तो
1: जी।
0: इस शिखर सम्मेलन को हमें आयोजित आगे जल्दी करना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होगी शौकत मिर्जायेव से ताशकंद में और नेताओं से बिश्केक में, जिसका आपने जिक्र किया वहां पर 26वां एससीओ का शिखर सम्मेलन हो रहा है, तो हमको ये द्वितीय शिखर सम्मेलन को भारत में आयोजित करने में इसको और गति मिलेगी और ऊर्जा मिलेगी, और वो हमारे रिश्तों को एक नए सतह पर एक नए लिमिट की

0: तरफ और लेकर जा सकते।
1: बिल्कुल सुशील जी, अगर आपके पास आए इससे पहले कि हम बिश्केक में होने वाले शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो होने वाला है समिट उस पे बात करें, पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे प्रमुख क्षेत्र हैं जिसमें समझौते हो सकते हैं जो भारत को भी लाभान्वित करेंगे और उज्बेकिस्तान को भी लाभान्वित करेंगे?
2: देखिए, कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं। हमारी यहाँ की जो एम्बेसडर हैं स्मिता पंत जी से भी बात हुई और उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि जो उज्बेकिस्तान है वो मिनरल रिच कंट्री है, तो रेयर अर्थ जो कि आज की टेक्नोलॉजी के जमाने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण खनिज है और जिसकी बहुत दुनिया में मांग है, वो यहाँ पर प्रचुर मात्रा में है और उसको लेकर के कोई समझौते की गुंजाइश हो सकता है कि बन भी सकती है, उस पर बातचीत होगी, ऐसा एम्बेसडर महोदया ने भी कहा। और दूसरी चीज है, रक्षा में बहुत सहयोग है दोनों देशों के बीच में
1: जी।
2: डस्ट लीक करके उनका आपस में एक साझा संयुक्त सैनिक अभ्यास भी होता है। भारत के पूर्व रक्षा प्रमुख मनोज पांडे भी, जो थलसेना प्रमुख थे, वो भी यहाँ आ चुके। तो दोनों देशों के बीच रक्षा है। एक महत्वपूर्ण निवेश का क्षेत्र और व्यापार का क्षेत्र जो है वो एग्रीकल्चर है। इसके अलावा कनेक्टिविटी को लेकर के भी जो है वो कुछ कॉन्क्रीट चीजें हो सकती हैं, क्योंकि ईरान से पहले सामान यहाँ पर लोग मंगाते थे और अब वो रास्ता लगभग बंद हो चुका है ईरान युद्ध के बाद से, तो चीन के रास्ते माल आता है तो वो महंगा पड़ता है। हमारी स्थानीय व्यापारिक समुदाय के लोगों से ही बात हुई। दूसरा महत्वपूर्ण सेक्टर है मेडिकल का, फार्मा का। यहाँ पर हॉस्पिटल्स भी, कई भारतीय छात्र ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ से पढ़ाई की, यहीं पर अपने हॉस्पिटल्स और फार्मा सेक्टर के जो फैक्ट्रियां हैं वो स्थापित की, तो वो भी एक बड़ा सेक्टर है। पर्सन टू पर्सन जो बड़ी संख्या में लड़के आते हैं यहाँ पर पढ़ने के लिए, एक बड़ी आबादी जो यहाँ रहने वाले भारतीयों की है उसमें लगभग 80-90% तो सिर्फ छात्र हैं जो मेडिकल की पढ़ाई करते हैं। हमारी बहुत से छात्रों से बातचीत हुई तो उन्हें भी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जब आ रहे हैं तो उनके आने जाने को लेकर के, उनके प्रोफेशन को लेकर के हो सकता है कि कुछ अच्छी पॉजिटिव चीजें निकल करके आए।
1: और इसके बाद का जो सेकंड लेग है इस यात्रा का प्रधानमंत्री जी का, जिसमें वो किर्गिज गणराज्य जा रहे हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में पार्ट लेने, उसके समिट में, आप हमें बताएं एम्बेसडर सज्जनहार की जो उन्होंने विजन दिया है भारत का, उन्होंने कहा है कि सिक्योरिटी, SCO, सिक्योरिटी कनेक्टिविटी अपॉर्चुनिटी, इसको आप कितना कहें कि एक सटीक एक उम्मीद की किरण मानते हैं? हर एक पहलू पे आप किस तरह से आपसी सहयोग आगते हैं, आगे के क्या पोटेंशियल है?
3: जी देखिए, मेरे विचार से संभावनाएं तो बहुत हैं इसमें, परंतु इसको ये भी देखा जाए जो इसमें लिमिटेशंस भी हैं। भारत ने इसके दो सबसे महत्वपूर्ण उच्च श्रेणी के ये शिखर सम्मेलन होते हैं, एक प्राइम मिनिस्टर लेवल पर, क्योंकि ये सब जो देश हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, भारत और पाकिस्तान को अगर आप छोड़ दीजिएगा तो सबके प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, तो वहां पर प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट अलग होते हैं। तो हमने, भारत ने शिखर सम्मेलन किया था प्राइम मिनिस्टर के लेवल पर 2020 में, और सबसे उच्च स्तर पर, उच्च श्रेणी का जो शिखर सम्मेलन होता है वो हेड ऑफ स्टेट का होता है, जो कि 2023 में हमने उसकी अध्यक्षता की थी, और उसमें हमने बहुत से वो लिए थे, नए इनिशिएटिव्स लिए थे, जैसे कि बुद्धिज्म के ऊपर, जैसे पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस, जैसे मिलेट्स को, क्योंकि आजकल इतना ज्यादा हम कहें एग्रीकल्चर में फूड स्केयरसिटी, फूड सिक्योरिटी को प्रमोट करने के लिए, तो बहुत हमने अच्छे इसमें इनिशिएटिव्स लिए। तो मैं समझता हूँ संभावना इसमें बहुत है। सिक्योरिटी अच्छी बात है, क्योंकि इसको एस्टैब्लिश ही इसीलिए किया गया था, जो ये वाला सभी जो क्षेत्र है इसको पूरी तरीके से सुरक्षा प्रदान की जाए, जो कैसे ये देश मिलकर एक दूसरे की सुरक्षा के लिए सहायता कर सकते हैं। दूसरी बात है कनेक्टिविटी, और उसमें हम कहते रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया जो पाकिस्तान के थ्रू तो हम नहीं आ सकते, तो हमने चाबहार के ऊपर बहुत अधिक जोर देना शुरू किया था, और उसके बाद इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। परंतु जब से ईरान के ऊपर इतनी अंकुश लगे हैं, इतने सैंक्शंस आए हैं, तो उसको हम आगे ठीक तरीके से नहीं ले जा पा रहे हैं। परंतु कजाकिस्तान का जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है सोनू जी, और उज्बेकिस्तान, ये दोनों देश इनमें बहुत रुचि रखते हैं, जो INSTC और चाबहार को आगे हम और ज्यादा प्रगति की ओर ले जा सके। तो काफी, अगर नॉमिनल टर्म में देखा जाए तो हमारी करीब 30% से ऊपर हमारी अर्थव्यवस्था है, तो ये अगर एक साथ मिलकर काम करें तो ये बहुत ही अच्छा इनमें सहयोग की संभावनाएं हैं। और मैं समझता हूं जो बातचीत होगी उसमें इन सभी

0: के पहलुओं को हम आगे ले जाने में सक्षम होंगे।
1: एम्बेसडर सज्जनहार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुशील चंद्र तिवारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में भाग लेने के लिए।
0: बहुत धन्यवाद सोनू जी, मुझे आमंत्रित करने, धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री की उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की महत्वपूर्ण यात्रा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार और आकाशवाणी संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: सुर्खियों में

सूरज भले ही ढल गया हो पर आपके चेहरे की मुस्कुराहट कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। यह वक्त है सांझ ढले का और साथ है आपके विभा, बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। शुरुआत करते हैं साल 1955 की फिल्म सीमा के उस भावपूर्ण गीत से जिसे आवाज दी मन्ना डे साहब ने। संगीत शंकर जयकिशन का है और बोल शैलेंद्र के हैं।

वक्त बदल गया, दौर बदल गया, मगर इस गीत का जादू आज भी वैसा ही है। कुछ गीत कानों तक आते हैं और कुछ कानों के रास्ते सीधे दिल तक उतर जाते हैं। अगला नगमा उन्हीं में से एक है। साल 1956 की फिल्म चोरी चोरी से मन्ना दा और लता दी की आवाज़ में।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

ये गीत था साल 1956 की फिल्म सीआईडी से। सांझ चले सुन रहे हैं आप विभा के साथ। सुरों का सिलसिला जारी है तो यादों के कारवां को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं साल 1957 की फिल्म पेइंग गेस्ट से एक और खूबसूरत तराना किशोरदा की आवाज में। संगीत एस टी बर्मन साहब का है।

0: नहीं है वल्ला जवाब तुम्हारा।
1: आज सांझ चले में बस इतना ही। अब से कुछ ही देर में आप सुन सकेंगे प्रादेशिक समाचार। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं वैष्णवी। मुख्य समाचार। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने एनएनआरएल, एनआईआरएल, एनसीआरटीसी, रेन्यूएबल्स लिमिटेड के साथ 110 मेगावाट के कैप्टिव सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए बिजली खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए। दिल्ली में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को मजबूत करने की पहल। दिल्ली नगर निगम आयुक्त संजीव खिरवार ने विश्व बैंक विशेषज्ञों के साथ की बैठक। सरकार चीनी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सितंबर से पखवाड़े के आधार पर चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करेगी। सीएनजी की कीमत में 3.89 रुपए की बढ़ोतरी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज सुबह से नई दरें लागू की। आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की और खिलाड़ियों के समर्पण को सराहा। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर की लगभग 60% बिजली की जरूरत को अब कैप्टिव सौर ऊर्जा से पूरा किया जाएगा। इसके लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम एनसीआरटीसी ने एनएनआरएल, एनआईआरएल, एनसीआरटीसी, रिन्यूएबल्स लिमिटेड के साथ 110 मेगावाट के कैप्टिव सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए बिजली खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
1: इस सौर संयंत्र का विकास एनएनआरएल द्वारा उत्तर प्रदेश के जालौन में किया जाएगा। संयंत्र में उत्पन्न बिजली उत्तर प्रदेश राज्य ग्रिड के माध्यम से दिल्ली और उत्तर प्रदेश में स्थित एनसीआरटीसी के रिसीव सबस्टेशनों पर पहुंचाई जाएगी। एनसीआरटीसी ने बताया कि इस परियोजना की अनुमानित लागत करीब 450 करोड़ रुपए है। संयंत्र से मिलने वाली बिजली से नमो भारत कॉरिडोर बिजली खर्च में लगभग 25% की कमी आने का अनुमान है। इस परियोजना से हर वर्ष लगभग 1,77,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आने की संभावना है। यह परियोजना ऊर्जा लागत को कम करने के साथ साथ दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा को भी मजबूत करेगी। यह पहल भविष्य के शहरी और क्षेत्रीय ट्रांजिट नेटवर्क के लिए एक मॉडल का काम करेगी। एनसीआरटीसी ने बताया कि वर्तमान में इस कॉरिडोर पर लगभग 1,00,000 यात्री प्रतिदिन सफर कर रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए अक्षित वैद्यान।
0: दिल्ली नगर निगम एमसीडी आयुक्त संजीव खिरवार ने आज राजधानी में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को मजबूत करने के लिए विश्व बैंक के विशेषज्ञों के साथ बैठक की। बैठक में दिल्ली की स्थानीय जरूरतों के अनुरूप टिकाऊ अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने पर चर्चा हुई। इस दौरान विश्व बैंक की टीम ने टोक्यो, न्यूयॉर्क और बार्सिलोना में अपनाए जा रहे विभिन्न प्रबंधन मॉडलों की जानकारी दी। श्री खिरवार ने कहा कि दिल्ली के लिए समयबद्ध, व्यापक और टिकाऊ अपशिष्ट प्रबंधन रणनीति जरूरी है, जिसमें कौशल संग्रहण, परिवहन, प्रसंस्करण, वैज्ञानिक निस्तारण शामिल है। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने आज भलसवा लैंडफिल साइट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वहां चल रहे बायो माइनिंग और कचरा निस्तारण कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि भलसवा लैंडफिल साइट पर प्रतिदिन करीब 15,000 टन कचरे का निस्तारण किया जा रहा है। श्री वाही ने कहा कि फिलहाल लगभग 4 से 5 लाख टन कचरा शेष बचा है और इसे जल्द हटाने के लिए कार्य की गति बढ़ाई जाएगी। उन्होंने बताया कि लैंडफिल साइट पर कचरे से ईंधन संयंत्र लगाने का कार्य भी जारी है। श्री वाही

0: श्रीमती गुप्ता ने विश्वास जताया कि नवनियुक्त पदाधिकारी और जिला अध्यक्ष अपने सेवाभाव, सक्रियता और जनसंपर्क के जरिए दिल्ली के पूर्वांचल समाज की अपेक्षाओं और हितों को प्रभावी ढंग से सामने रखेंगे तथा जनसेवा के संकल्प को और मजबूत करेंगे। दिल्ली सरकार और दिल्ली भाजपा संयुक्त रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर अगले महीने की 17 तारीख से 17 अक्टूबर तक दिल्ली में सेवा संकल्प अभियान चलाएंगे। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा की अध्यक्षता में आज हुई बैठक के दौरान ये घोषणा की गई। श्री मल्होत्रा ने बताया कि इस अभियान के राष्ट्रीय पर्यवेक्षक एनडीएमसी के उपाध्यक्ष कुलजीत चहल होंगे, वहीं दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा इसके नोडल मंत्री होंगे। अभियान की शुरुआत अगले महीने की 17 तारीख को रक्तदान शिविर से होगी। दिल्ली सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाएगी। इस दौरान राजधानी में परिवहन, सड़क, सीवरेज, जल शोधन, शिक्षा, बिजली और नागरिक सुविधाओं से जुड़ी कई विकास परियोजना का उद्घाटन किया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि सेवा पखवाड़े के दौरान 1635 करोड़ रुपए की लागत से तैयार बारापुला एलिवेटेड रोड के तीसरे चरण का भी उद्घाटन किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। सरकार ने चीनी की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा मासिक कोटा प्रणाली के स्थान पर अगले महीने से पखवाड़े के आधार पर चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत चीनी मिलों को पहले सप्ताह में कम से कम 40% आवंटन और शेष मात्रा अगले सप्ताह में बेचनी होगी।
1: सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी मिलों से बाहर चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी है। नए सीजन के लिए गन्ने की पेराई 15 अक्टूबर से शुरू होगी और इस दौरान 10 लाख टन से अधिक चीनी के उत्पादन का अनुमान है। सरकार ने चीनी मिलों को अक्टूबर में उत्पादित चीनी को बिना किसी प्रतिबंध के बेचने की अनुमति दे दी है। इससे ये सुनिश्चित हो सकेगा कि नए सीजन का उत्पादन शीघ्र घरेलू बाजार में उपलब्ध हो सके। नवंबर में चीनी उत्पादन लगभग 45 लाख टन रहने की संभावना है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड IGL ने CNG की कीमत में 3.89 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की है। नई दर आज सवेरे से लागू हो गई है। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में CNG अब 86.98 रुपए प्रति किलोग्राम मिलेगी। गुरुग्राम में CNG की कीमत 92.01 रुपए और गाजियाबाद तथा नोएडा में 95.59 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। IGL ने कहा कि कीमत बढ़ने के बावजूद दिल्ली में CNG उपभोक्ताओं के लिए अब भी सबसे किफायती ईंधन विकल्पों में शामिल है। कंपनी ने कीमतों में बढ़ोतरी का कारण पश्चिम एशिया संकट के फिर से गहराने को बताया है। कंपनी के अनुसार तनाव बढ़ने से हॉर्मुज जलडमरू मध्य के रास्ते LNG की आवाजाही प्रभावित हुई है। इससे वैश्विक LNG कीमतें संकट से पहले के स्तर की तुलना में करीब दोगुनी हो गई हैं। इसके अलावा सर्दियों का मौसम नजदीक आने के कारण यूरोप में प्राकृतिक गैस का भंडार बढ़ाने और फिर से भरने की जरूरत भी बढ़ गई है। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि गोबर धन योजना के अंतर्गत बायोगैस के लिए संशोधित मूल्य निर्धारण ढांचा इसके उत्पादकों को स्थिर और किफायती मूल्य प्रदान करने के लिए बनाया गया है। मंत्रालय ने बताया कि मौजूदा ढांचे के अंतर्गत बायोगैस उत्पादकों को प्रति मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट लगभग 1,478 रुपए दिए जाते हैं, जबकि गोबरधन योजना के अंतर्गत संशोधित क्रय मूल्य 2,110 रुपए है। यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने कई स्पेशल रेलगाड़ियों के परिचालन की अवधि में वर्तमान समय और ठहराव के अनुसार विस्तार करने का निर्णय लिया है। इनमें हजरत निजामुद्दीन प्रयागराज, इंदौर हजरत निजामुद्दीन, भावनगर शकुरबस्ती, ओखा शकुरबस्ती, कोटा हजरत निजामुद्दीन, हरिद्वार साबरमती समेत कई स्पेशल रेलगाड़ियां शामिल है। यात्री रेलवे मदद हेल्पलाइन नंबर 139 अथवा रेलवे पूछताछ वेबसाइट www.inquiry.indianrail.gov.in पर विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आज संयुक्त सी

0: एनआईआर यूजीसी नेट परीक्षा के सभी 5 विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अपने पहचान पत्रों का उपयोग करके लॉगिन कर अपने विषय से संबंधित अंतिम उत्तर कुंजी देख सकते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के 84 विषयों के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने इस वर्ष जून में हुई अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों की परीक्षा नए सिरे से आयोजित करने की घोषणा की है। पुनर्परीक्षाएं 9 और 10 सितंबर को होंगी। इसके लिए परीक्षार्थियों को अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsoneir.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन विस्टा के अंतर्गत भारत में निर्धारित अवधि से अधिक समय में से रह रहे 4 विदेशी नागरिकों को द्वारका जिले के उत्तम नगर इलाके से हिरासत में लिया। पुलिस ने बताया कि पूछताछ के दौरान चारों विदेशी नागरिक भारत में अपने वैध प्रवास से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। पुलिस के अनुसार FRR2 द्वारा स्थापन प्रक्रिया पूरे करने के दौरान चारों को दिल्ली के शाहजहांबाग स्थित सेवा सदन डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने आज दक्षिण पूर्वी दिल्ली सरिता विहार उपमंडल में जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया। ये आयोजन सरिता विहार, ओखला औद्योगिक क्षेत्र और कालिंदी कुंज पुलिस थाना क्षेत्रों में किया गया। पुलिस ने बताया कि इस तरह की सुनवाई प्रत्येक शनिवार को आयोजित की जाएगी। इसका उद्देश्य लोगों की शिकायतों का शीघ्र निपटान और पारदर्शी समाधान करना है। भारतीय हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर देशभर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।
1: राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 को 3 दिवसीय राष्ट्रव्यापी अभियान के रूप में मनाया जा रहा है। इस अभियान के 3 प्रमुख स्तंभ हैं ट्रिब्यूट, प्ले एंड मूव। इस वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस 1 घंटा खेल के मैदान में के आह्वान के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न खेल गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान के तहत दिल्ली में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और अर्जुन राम मेघवाल ने क्रिकेट खेला। मीडिया से बातचीत में डॉक्टर मांडविया ने लोगों से स्वस्थ और फिट रहने के लिए हर सप्ताह कम से कम 1 घंटा खेल के मैदान में बिताने का आह्वान किया।
2: आज नेशनल स्पोर्ट्स डे के अवसर पर सारे देश में फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए 1 घंटे खेल के मैदान में कार्यक्रम दिया है। मुझे खुशी है, मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल रहा, देश आगे बढ़ रहा, नया भारत का निर्माण हो रहा।
1: श्री मेघवाल ने कहा कि खेल लोगों को स्वस्थ और फिट रखने के साथ साथ तनाव से दूर रखने में भी मदद करता है। सरकार द्वारा खेल पारिस्थितिकी तंत्र में लगातार निवेश किया जा रहा है, जिसके परिणाम वैश्विक मंच पर भी दिखाई दे रहे हैं। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में भारत का प्रदर्शन, ओलंपिक, पैरालंपिक और बहु खेल प्रतियोगिताओं में देश की बढ़ती ताकत को दर्शाता है। खेलो इंडिया, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम और खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन जैसी पहलें देश के खेल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत कर रही है और खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करने में मदद कर रही है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री ने सभी खेल प्रेमियों के जुनून और दृढ़ संकल्प के समर्पण को सराहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 137वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, AIR न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। राजधानी दिल्ली में आज दिन के समय उमस बनी रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 36.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने बताया है कि कल राजधानी में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। वहीं कल का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने NNRL, NIRL, NCRTC रिन्यूअल्स लिमिटेड के साथ 110 मेगावाट के कैप्टिव सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए बिजली खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए। दिल्ली में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को मजबूत करने की पहल। दिल्ली नगर निगम आयुक्त संजीव खिरवार ने विश्व बैंक विशेषज्ञों के साथ बैठक की।

0: सरकार चीनी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सितंबर से पखवाड़े के आधार पर चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करेगी। सीएनजी की कीमत में 3.89 रुपए की बढ़ोतरी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज सुबह से नई दरें लागू की। आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर आज उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद पहुंचे। राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी की उज्बेकिस्तान की ये 4थी यात्रा है। उनके स्वागत में पूरे ताशकंद शहर को भारतीय झंडों और स्वागत संदेशों से सजाया गया है। दोनों नेता कल राष्ट्रपति भवन में द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल संपर्क, ऊर्जा, शिक्षा और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने के क्षेत्रों में सहयोग पर भी विचार विमर्श होगा। नेपाल में आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या 626 हो गई है और 2000 से अधिक लोग लापता हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि बुधवार को नेपाल में आई बाढ़ के बाद अभी तक 88 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि 287 भारतीय नागरिक लापता हैं। उन्होंने कहा कि अन्य देशों के राष्ट्रीयता रखने वाले भारतीय मूल के तकरीबन 128 लोग भी लापता हैं। श्री जायसवाल ने बताया कि रासुआ में जल विद्युत परियोजना से आज 4 भारतीय नागरिकों को बचाया गया। इसके अलावा आज चीन से 120 भारतीय नागरिक नेपाल आ गए। मंत्रालय ने कहा कि भारत से 6 फॉरेंसिक विशेषज्ञों के आज काठमांडू पहुंचने की संभावना है। ये विशेषज्ञ मृतकों की पहचान के लिए डीएनए नमूनों की जांच में मदद करेंगे। सुरंग बचाव अभियान में मदद करने के लिए कल एक विशेषज्ञ तकनीकी दल काठमांडू पहुंच गया। इसके अलावा संबंधित उपकरणों से सुसज्जित सुरंग बचाव अभियान दल के आज काठमांडू पहुंचने की संभावना है। नेपाल सरकार ने संकट की इस घड़ी में भारत की तत्काल मदद की सराहना की है। नेपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को असाधारण रूप से उदार बताया है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने भी भारत की सहायता के लिए आभार व्यक्त किया। वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले ने कहा कि बाढ़ के बाद भारत से राहत सामग्री भेजी गई है और भारत ने पुनर्निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने का संकेत दिया है। 26 अगस्त से भारत ने प्रभावित क्षेत्रों में 57 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत नेपाल को लगातार सहायता भेज रहा है।
2: नेपाल में जो क्राइसिस पैदा हुई है उससे केवल नेपाल ही चिंतित नहीं है, भारत चिंतित है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा है कि जितनी भी सहायता की आवश्यकता होगी और जो भी सहायता आवश्यक होगी वह सब भारत उपलब्ध कराने के लिए तैयार है।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक कंपनियों को अपनी आपूर्ति श्रृंखला और पूंजी आवंटन का फिर से आकलन करना चाहिए, क्योंकि भारत न केवल विशाल बाजार उपलब्ध कराता है बल्कि दीर्घकालीन निवेश और संचालन मंच का भी आधार है। अमेरिका के शिकागो में उन्होंने कहा कि भारत में निवेश का तात्पर्य व्यापक बाजार, सतत आर्थिक विकास, कौशल युक्त प्रतिभा, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और एक दशक के सुधार से है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत न केवल एक प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है बल्कि अपनी सभ्यतागत विरासत, संस्कृति और क्षमताओं में दृढ़ विश्वास रखने वाला राष्ट्र भी है। लखनऊ में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि आज जब भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है। उन्होंने कहा कि भारत में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास हुआ है। सरकार ने कहा है कि इस वर्ष जुलाई तक प्रति बूंद अधिक फसल योजना के अंतर्गत 115 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को लघु सिंचाई प्रणाली में लाया गया है। योजना का उद्देश्य खेत स्तर पर पानी के प्रयोग में दक्षता लाना और उसमें सुधार करना है। ये योजना जनवरी 2006 में केंद्र सरकार ने लघु सिंचाई के लिए शुरू की थी। वर्ष 2015-16 से 2021-22 तक इसका आधिकारिक नाम प्रति बूंद अधिक फसल किया गया और इसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के प्रमुख घटक के रूप में लागू किया गया। योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार 5 हेक्टेयर तक लाभार्थी

स्वागत है आपका आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर मधुरिमा में। नमस्कार, मधुरिमा में आज बात राग भैरव की। राग भैरव प्रभात बेला का प्रसिद्ध राग है। इस राग को भैरव थाट का आश्रय राग माना जाता है, साथ ही ये भक्ति रस से भरपूर एक गंभीर राग है। फिलहाल सुनते हैं गीत इसी राग पर आधारित और बाकी की बातें गीत के बाद।

मधुरिमा में बात चल रही है राग भैरव की। राग भैरव एक गंभीर प्रकृति का राग है, तो जाहिर सी बात है इसके गीत भी गंभीर प्रकृति के होंगे। इसमें आपको द्रुपद, ख्याल, तराने आदि सुनने को मिल जाएंगे। साथ ही इस राग के और भी कई प्रकार प्रचलित हैं, जैसे राग प्रभात भैरव, अहीर भैरव, शिवमत भैरव, बैरागी भैरव वगैरह वगैरह। अब अगर बात करें राग अहीर भैरव की, तो राग भैरव और प्राचीन दुर्लभ राग अहीर का ये एक मिश्रण है, यानी राग अहीर भैरव दो रागों को मिलाकर बनाया गया है। और इस राग का खूबसूरत उदाहरण है साल 1981 की फिल्म एक दूजे के लिए का ये गीत। लीजिए सुनिए।

0: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

अंतराल के बाद फिर हाजिर है मधुरिमा में। मधुरिमा का आज का आखिरी गीत है साल 1985 की फिल्म एतबार से। इस फिल्म से जिस गाने को हमने चुना है वो है राग भैरव के एक और प्रकार, राग बैरागी भैरव पर आधारित। ऐसा माना जाता है कि इस राग को पंडित रवि शंकर जी ने प्रचलित किया। ये राग बेहद कर्णप्रिय है, साथ ही इस राग में किसी भी तरह का बंधन नहीं है, इसलिए ये तीनों सप्तकों में उन्मुक्त रूप से गाया जा सकता है। और अब बारी है गाने की।

मधुरिमा में आज बस इतना ही। अब से कुछ ही देर में आप सुन सकेंगे स्पोर्ट्स कैन। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर इस विशेष अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति सिंह और मेरे साथ हैं विशेष शुक्ला। आज स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में बात होगी खेल के मैदान की उन तमाम उपलब्धियों की जिन्होंने देश के भीतर से लेकर सात समंदर पार तक भारत को गौरवान्वित किया।
1: इसके साथ ही कार्यक्रम में आज बताएंगे हॉकी के उस जादूगर मेजर ध्यानचंद की कहानी जिसने भारत में खेलों की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया।
0: कार्यक्रम में चर्चा की जाएगी उन तमाम पहलों की, उन लक्ष्यों की जो प्रतिबद्ध है भारत को खेलों की महाशक्ति बनाने के लिए। तो शुरू करते हैं आज का स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम।

0: श्रोताओं, आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। हर वर्ष ये दिवस 29 अगस्त को दिग्गज हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में बनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, खेल मंत्री मनसुख मांडविया, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन समेत पूरे देश भर ने आज इस महान भूति को याद किया है। भारतीय हॉकी मेजर ध्यानचंद के बिना अधूरी है। देश भर में आज दिग्गज हॉकी खिलाड़ी और पद्म भूषण से अलंकृत हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती पर खेल दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन भारत की समृद्ध खेल विरासत का उत्सव मनाने का प्रतीक है।
1: मेजर ध्यानचंद भारतीय हॉकी को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने वाले चैंपियन खिलाड़ी थे। ध्यानचंद जब मैदान पर खेलते थे तो ऐसा लगता था कि गेंद उनकी स्टिक से किसी चुंबक की तरह चिपक गई हो। ऐसा कहा जाता है कि हॉकी के जादूगर की कलाइयों की जादूगरी देखकर एक दफा हिटलर तक ने उन्हें जर्मनी से खेलने तक का ऑफर दिया था। 29 अगस्त 1905 को तत्कालीन इलाहाबाद में जन्मे ध्यान सिंह का बचपन से ही झुकाव हॉकी के प्रति रहा। पिता ब्रिटिश सेना में थे और आसपास के माहौल ने ध्यान सिंह के शौक को जुनून में तब्दील कर दिया। महज 16 वर्ष की उम्र में वो सिपाही के तौर पर सेना से जुड़े और यहीं से शुरुआत हुई विश्व के महानतम खिलाड़ी की कहानी की। हॉकी से लगाव ऐसा कि वे दिन में सेना की नौकरी करते और रात को दूधिया रोशनी में मैदान पर अभ्यास। जैसे जैसे ये सिलसिला आगे बढ़ता गया, ध्यान सिंह ध्यानचंद बनते चले गए। सेना में अपनी सेवाएं देने के दौरान ध्यानचंद ने रेजिमेंटल मैच खेलने शुरू किए। वर्ष 1922 से लेकर 1926 के बीच ध्यानचंद ने अपने खेल से हर किसी को प्रभावित किया और आखिरकार भारतीय हॉकी टीम की जर्सी में इस उभरती प्रतिभा को न्यूजीलैंड दौरे के लिए मौका दे ही दिया। ध्यानचंद आज से 100 वर्ष पहले जब न्यूजीलैंड के मैदान पर उतरे तो उनकी हॉकी स्टिक के करतब बता रहे थे। ना जाने कितने दिनों से ध्यानचंद इस दिन का इंतजार कर रहे हैं। भारतीय सेना ने न्यूजीलैंड में 18 मैच जीते और सिर्फ एक ही मुकाबले में हार का सामना किया और इस ऐतिहासिक प्रदर्शन का श्रेय जाता है ध्यानचंद के जादुई खेल को। भारतीय हॉकी महासंघ ने 1928 ओलंपिक के लिए जब टीम भेजने का निर्णय लिया तो ध्यानचंद को ट्रायल के लिए बुलाया गया। ओलंपिक में ध्यानचंद ने 5 मुकाबलों में शानदार 14 गोल दागे और टूर्नामेंट में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बने। वो ध्यानचंद का खेल ही था कि भारतीय टीम पूरा टूर्नामेंट में अजय रही और स्वर्ण पदक जीतकर स्वदेश लौटी। विश्व स्तर पर ध्यानचंद के खेल की चर्चा होने लगी। वर्ष 1932 और 1936 के ओलंपिक में भी ध्यानचंद ने अपने खेल के करिश्मे से हर किसी को दीवाना बना दिया और भारत को दोनों मौकों पर स्वर्ण पदक जिताया। ध्यानचंद ने अपने जादुई खेल की बदौलत इस पूरे काल को भारतीय हॉकी का स्वर्णिम युग बना दिया। टीम के साथ मैदान पर अटूट समर्पण, संतुलन ऐसा कि मैदान पर कोई अभेदय किला बन जाए और

0: हॉकी स्टिक से वो जादूगरी कि ध्यानचंद के पास आई गेंद सिर्फ गोल पोस्ट पर जाकर रुकी। इसी दौरान वर्ष 1936 के ओलंपिक में भारत और जर्मनी का मुकाबला आज भी किस्सों कहानियों में अमर है। मैच में ध्यानचंद ने दमदार प्रदर्शन करते हुए 3 गोल दागे और भारत ने जर्मनी को 8-1 से रौंद दिया। कहा जाता है कि उस दिन स्टेडियम का आलम ये था कि बीच मुकाबले में ही अपनी टीम को हारता देख हिटलर स्टेडियम छोड़कर चले गए। इसके बाद हिटलर ने ध्यानचंद को बुलाया और उन्हें अपनी सेना में बड़ा पद ऑफर करते हुए जर्मनी से खेलने को कहा। हालांकि जो ऐसे प्रलोभनों में आ जाए वो ध्यानचंद कैसा। ध्यानचंद ने भारत को 34 साल तक सेवाएं दी और लेफ्टिनेंट के तौर पर रिटायर हुए। 22 वर्षों के करियर में ध्यानचंद ने भारत के लिए 400 गोल किए। 3 दिसंबर 1979 को ध्यानचंद कैंसर से लड़ते हुए जिंदगी की जंग हार गए, लेकिन आज भी ये खिलाड़ी किसी भी खेल के मैदान पर सैकड़ों खिलाड़ियों की जीत का आदर्श है। वैष्णवी स्पोर्ट्स कैन।
1: तो देश आज याद कर रहा है अपने इस चैंपियन खिलाड़ी को। श्रोताओं, खेल सिर्फ मैदान पर बढ़त बनाना या जीत की बाजी नहीं है, इसके पीछे छुपे होते हैं सैकड़ों अनचाही हार के अनुभव। मैदान पर गिरकर उठने का जज्बा, न जाने कितनी चोटों के दर्द जिन सब पर पार पाकर एक खिलाड़ी मुकाबले में जीत हासिल करता है। ये वो जीतें हैं जो इतिहास के पन्नों में एक बार लिखी जाती हैं तो वापस कभी कोई इन्हें मिटा नहीं सकता। बर्लिन में ध्यानचंद का करिश्मा तो आपने सुना, जिस यात्रा में ऐसे कई पड़ाव रोज जुड़ते हैं, जहां 1960 के ओलंपिक में 400 मीटर के ट्रैक पर दौड़ता फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह 1 सेकंड के 100वें हिस्से से पोडियम पर पहुंचने से चूक जाता है। 1975 का हॉकी विश्व कप, जहां चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान पर भारत की जीत ऐतिहासिक बन जाती है। 1983 में काली सफेद टीवी स्क्रीन पर हिंदुस्तान अपने हीरो कपिल देव को पहली बार क्रिकेट विश्व कप उठाते हुए देखता है, तो कहीं कोई अंजू बॉबी जॉर्ज, कोई पीटी उषा सैकड़ों लड़कियों का आदर्श बन जाती है।
2: 16 साल का लड़का एक बार क्रिकेट के रिकॉर्ड को ध्वस्त करता है तो 100 शतक लगाकर भारत रत्न सचिन रमेश तेंदुलकर बन जाता है। विश्वनाथ आनंद की चेस की बाजियों से लेकर सानिया मिर्जा, लिएंडर पेस, भाईचंद भूटिया, सुनील छेत्री, राजवर्धन सिंह राठौर, अभिनव बिंद्रा, विजेंद्र सिंह और फोगाट परिवार, न जाने कितने ऐसे नाम दुनिया को बताते हैं कि कुश्ती की मिट्टी से लेकर हॉकी के टर्फ तक आज भारत का हर खेल खेल के लिए तैयार है।
3: सुरजीत ने खूबसूरती से अजीत पाल ने गेंद अपने टीम में से बाहर कर दी बाएं फ्लैंक में और यह खेल खत्म। भारत 2-1 से जीत गया।
4: And that's out. Yes, it's all over this time. The 40 all out. West Indies, India race into the pavilion with the Prudential Cup players.
5: Silver medal representing India, Rajavardhan Singh Rathore.
6: In the air, Srijan takes it. India win. Finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup. After 28 years, the parties start in the dressing room.
7: Pehla gold medal Bharat ke naam athletics mein Olympic Games ke andar aur wo aaya hai Tokyo 2020 mein.
8: Match point. Gold medal PV Sindhu ke naam. Aur ye hai inke career ka pehla Commonwealth Games women's singles gold medal.
9: Go back to the javelin and Sumit with his second throw after a 69-11.
10: Another gold. Preeminent athlete in this event, the men's javelin in Tokyo. He's repeated the feat here in Paris.
11: No.
12: Yes, sahi hai.
11: Art.
12: Yes, sahi hai, guru.
11: Che.
9: Medal winning lift attempt.
11: Much better.
1: वो तमाम लम्हे जो हम वापस जब भी सुनते हैं तो गौरवान्वित होते हैं। खेलों का एक बहुत सीधा और सटीक गणित है कि चैंपियन एक दिन में नहीं बना करते।
2: देश में बीते कुछ वर्षों में शासन प्रशासन की तरफ से विश्वास की नई राह दिखी है। केंद्र सरकार की टॉप योजना हो या खेलो इंडिया का मंच या फिट इंडिया की मुहिम, भारत एक खेलों की नई नर्सरी के रूप में तैयार हो रहा है।
1: आपकी जीत पर आपकी पीठ सैकड़ों लोग थपथपाते हैं, लेकिन ये विश्वास तब परिभाषित होता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2023 क्रिकेट विश्व कप की हार के बाद अपनी टीम का मनोबल बढ़ाने पहुंच जाते हैं उनके ड्रेसिंग रूम। लक्ष्य स्पष्ट है, सरकार प्रतिबद्ध है देश को खेलों की महाशक्ति बनाने के लिए।
2: सिर्फ प्रतिभाग तक नहीं, भारत अब

0: आयोजनों का नया मंच बन रहा है। 2030 राष्ट्रमंडल खेल इस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है जो भारत की ओलंपिक मेजबानी की राह मजबूत कर रहा है।
1: तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में कहते हैं, जो खेलेगा वो खिलेगा।
2: स्पोर्ट्स में कोई लूजर नहीं होता, स्पोर्ट्स में सिर्फ विनर्स और लर्नर्स होते हैं। स्पोर्ट्स की लैंग्वेज यूनिवर्सल, स्पिरिट यूनिवर्सल। स्पोर्ट्स ह्यूमैनिटी को अपने विस्तार का अवसर देता है।
3: देश मेडल तब प्राप्त करता है जब देश में स्पोर्ट्स कल्चर।
4: मैं देख रहा हूँ मेरे देश का युवा मन अब सर्वश्रेष्ठ की तरफ अपने आप को केंद्रित कर रहा है।
1: तो ये तो थे प्रधानमंत्री के विचार, और आज हम जानेंगे कि हमारी आज की ये युवा पीढ़ी क्या सोचती है, खेल को लेकर उसके अनुभव कैसे हैं।

0: स्पोर्ट्स फॉर मी इज फन.
1: स्पोर्ट्स फॉर मी इज लाइक सीक्रेट फॉर फिटनेस.
2: खेल मेरे लिए स्कूल का यादगार दिन, जो हम क्लासेस बंक करके खेलते थे और खेलों में बहुत खुशी मिलती है.
3: खेल का मतलब मेरे लिए वो खूबसूरत पल हैं जो मैंने अपनों के साथ बिताए, जैसे कि मेरे फ्रेंड्स हो या फिर मेरे पेरेंट्स हो. जब मैंने उनके साथ बैडमिंटन खेला या वो डॉज बॉल खेला या वॉलीबॉल खेला, तो उस समय जब मैं खेलने के टाइम जो मेरे को रिफ्रेश फील होता था या फिर मेंटली फ्री फील करती थी मैं, सब चीजें भूल जाना, वो मेरे लिए सबसे स्पेशल रहेगा.
4: खेल मेरे लिए मेरे बचपन का वो हिस्सा है जो मैंने अनजाने में जिया है.
5: स्पोर्ट्स फॉर मी इज रोहित शर्मा, अ सिंबल ऑफ कामनेस, एक्सीलेंस एंड लीडरशिप, जर्सी नंबर 45.
4: खेल मेरे लिए मेरे जीवन का वो महत्वपूर्ण हिस्सा है जो मैंने बचपन में जिया है, जो मुझे खुशी देता है, जो मुझे सुकून देता है.
6: स्पोर्ट्स इंप्रूव्स फिजिकल हेल्थ, शार्पन्स द माइंड, इट बिल्ड्स फिटनेस, रिड्यूसेस स्ट्रेस, इंप्रूव्स फोकस एंड बूस्ट्स कॉन्फिडेंस, इट ब्रिंग्स डिसिप्लिन इन लाइफ.
7: तो सबके अपने किस्से हैं, सबकी अपनी यादें हैं. राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर आज देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया.
8: राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 को 3 दिवसीय राष्ट्रव्यापी अभियान के रूप में मनाया जा रहा है. इस अभियान के 3 प्रमुख स्तंभ हैं, ट्रिब्यूट, प्ले एंड मूव. इस वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस 1 घंटा खेल के मैदान में के आह्वान के साथ मनाया जा रहा है. इस अभियान के तहत दिल्ली में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और अर्जुन राम मेघवाल ने क्रिकेट खेला. मीडिया से बातचीत में डॉक्टर मांडविया ने लोगों से स्वस्थ और फिट रहने के लिए हर सप्ताह कम से कम 1 घंटा खेल के मैदान में बिताने का आह्वान किया.
9: आज नेशनल स्पोर्ट्स डे के अवसर पर सारे देश में फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए 1 घंटे खेल के मैदान में कार्यक्रम दिया है. मुझे खुशी है, मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल रहा, देश आगे बढ़ रहा.
8: सरकार द्वारा खेल पारिस्थितिकी तंत्र में लगातार निवेश किया जा रहा है, जिसके परिणाम वैश्विक मंच पर भी दिखाई दे रहे हैं. प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में भारत का प्रदर्शन, ओलंपिक, पैरालंपिक और बहु खेल प्रतियोगिताओं में देश की बढ़ती ताकत को दर्शाता है. खेलो इंडिया टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम और खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन जैसी पहले देश के खेल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत कर रही है और खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करने में मदद कर रही है. सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली.
7: चाहे ओलंपिक हो, राष्ट्रमंडल हो या विश्व का कोई बड़ा खेल आयोजन, पोडियम पर राष्ट्रगान के साथ लहराता तिरंगा हर तस्वीर में कहानी बयां करता है. उन संघर्षों की, अभ्यासों की, जो शायद कभी दुनिया के सामने नहीं आते. हर खिलाड़ी मैदान पर उतना ही होता है जितना घड़ी की सुइयों में बंधे मुकाबलों के स्कोरबोर्ड में नजर नहीं आ सके. खेल हमें मैदान से इतर बहुत कुछ सिखाते हैं. अब कार्यक्रम में अंत में आज की कुछ खबरों की भी बात कर ली जाए तो विशेष क्या है आपके पास?
10: भारत के लिए खुशखबरी आई है हंगरी से, जहां आयोजित पीएसए बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन फाइनल में भारत के वेलविन सेंथिल कुमार ने घरेलू दावेदार बलास फाकर्स को 3-0 से हराकर खिताब अपने नाम किया. हालांकि एशियन गेम्स से ठीक पहले भारत की पदक की उम्मीदों को झटका भी लगा है, जहां 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा घुटने की चोट के कारण एशियाई खेलों से बाहर हो गए हैं. नीरज चोपड़ा ने आज घोषणा की कि अभ्यास के दौरान चोट लगने के कारण वह एशियाई खेलों के साथ साथ 2026 के बाकी सत्र में नहीं खेल पाएंगे.
7: जी बिल्कुल.

0: तो कह सकते हैं कि एक पदक का नुकसान हुआ, साथ ही वो तमाम खेल प्रेमी जो नीरज को देखना चाहते हैं उनके लिए थोड़ी सी बुरी खबर। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। आज का विशेषांक आपको कैसा लगा, इस पर अपनी राय और अपने सुझाव आप हमें स्पोर्ट्स कैन की ईमेल आईडी sportscan.air@gmail.com पर भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमको अनुमति दीजिए, नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत और उज्बेकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए 2 दिन के दौरे पर ताशकंद पहुंचे। नेपाल में बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 669 हुई, 287 भारतीय नागरिकों सहित 2000 से अधिक लोग अब भी लापता। नेपाल ने भारत के राहत प्रयासों की सराहना की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अमेरिका के शिकागो बिजनेस राउंड टेबल सम्मेलन में भारत के विशाल बाजार आकार और दीर्घकालिक निवेश क्षमता को रेखांकित किया। इस वर्ष जुलाई तक 115 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को प्रति बूंद अधिक फसल लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत लाया गया। यूक्रेन के बुचा जिले पर रूस के ड्रोन हमले में 37 लोग मारे गए। और ओडिशा में सोमवार तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट, बिहार, पश्चिम बंगाल के गांगे क्षेत्र, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में भी तेज बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की उज्बेकिस्तान की यात्रा पर आज शाम राजधानी ताशकंद पहुंचे। राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव ने उनका स्वागत किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी के स्वागत के लिए ताशकंद शहर में विशेष प्रबंध किए गए हैं।
2: पूरा ताशकंद शहर भारतीय झंडों और होर्डिंग से सजा हुआ है। हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चौथी यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव सदियों पुराने आपसी संबंधों को और मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। दोनों नेता राष्ट्रपति भवन में व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और जन संबंधों के क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे। वे विकसित भारत 2047 और उज्बेकिस्तान 2030 के साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर भी अपने विचार साझा करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
1: उज्बेकिस्तान में भारत की राजदूत स्मिता पंत ने आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष साक्षात्कार में कहा कि उज्बेकिस्तान में प्राकृतिक संसाधनों का समृद्ध भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की ताशकंद यात्रा के दौरान निवेश और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर भी चर्चा की संभावना है।
3: रिलेशनशिप ऑलरेडी बहुत अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में है। 2011 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोर्ज हुई थी, उसके बाद 2015 में प्रधानमंत्री जी का पहला दौरा हुआ था। 2026 तक बहुत सारे एरियाज में हम लोग फॉरवर्ड मूवमेंट कर चुके हैं, चाहे आप ट्रेड की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, डेवलपमेंट कोऑपरेशन की बात करें, डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें। ट्रेड में ही करीबन 300% इंक्रीज हुई है 2015 से।
1: उज्बेकिस्तान के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादोर जापारोव के निमंत्रण पर बिश्केक में 26वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। नेपाल में आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या 669 हो गई है और 2000 से अधिक लोग लापता हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बंद सड़कों को साफ करने का काम भी तेजी से चल रहा है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल में अब तक 88 भारतीय नागरिकों को बचाया जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 287 भारतीय नागरिक लापता हैं। उन्होंने कहा कि 128 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। रसुवा स्थित एक जल विद्युत परियोजना से 4 भारतीय नागरिकों को बचाया गया। आज 120 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल में दाखिल हुए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: नेपाल में बुधवार को आई भीषण बाढ़ की त्रासदी के बाद से वहां फंसे भारतीय नागरिकों को खोजने और बचाने के लिए भारत ने अपने प्रयास तेज कर दिए हैं। भारत की 6 फोरेंसिक विशेषज्ञ टीम मृत लोगों के शवों की पहचान करने के लिए डीएनए सैंपल की जांच में मदद करेंगी। इसके अलावा सुरंग में बचाव कार्य की जांच करने वाली एक विशेष तकनीकी टीम कल काठमांडू पहुंची, जिसने प्रभावित क्षेत्र में सुरंग से लोगों को बचाने के काम में सहायता शुरू कर दी है। वहीं विदेश मंत्रालय ने बचाव

0: आभार व्यक्त किया। वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले ने कहा कि बाढ़ के बाद भारत से राहत सामग्री भेजी गई है और भारत ने पुनर्निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने का संकेत दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत नेपाल को लगातार सहायता भेज रहा है।
1: नेपाल में जो क्राइसिस पैदा हुई है उसमें केवल नेपाल ही चिंतित नहीं है, भारत भी चिंतित है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा है कि जितनी भी सहायता की आवश्यकता होगी और जो भी सहायता आवश्यक होगी वह सब भारत उपलब्ध कराने के लिए तैयार है।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक कंपनियों को अपनी आपूर्ति श्रृंखला और पूंजी आवंटन का फिर आकलन करना चाहिए, क्योंकि भारत न केवल विशाल बाजार उपलब्ध कराता है बल्कि दीर्घकालीन निवेश और संचालन मंच का भी आधार है। अमेरिका के शिकागो में प्रमुख निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ एक उच्च स्तरीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भारत में निवेश का तात्पर्य व्यापक बाजार, सतत आर्थिक विकास, कौशल युक्त प्रतिभा, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और एक दशक के सुधार से है। उन्होंने कहा कि देश का अगला आर्थिक विकास एआई, इंजीनियरिंग, एनालिटिक्स, उत्पाद विकास, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स में निहित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए expert@airnewshindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि इस वर्ष जुलाई तक प्रति बूंद अधिक फसल योजना के अंतर्गत 115 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को लघु सिंचाई प्रणाली में लाया गया है।
3: योजना का उद्देश्य खेत स्तर पर पानी के प्रयोग में दक्षता लाना और उसमें सुधार करना है। ये योजना जनवरी 2006 में केंद्र सरकार ने लघु सिंचाई के लिए शुरू की थी। वर्ष 2015-16 से 2021-22 तक इसका आधिकारिक नाम प्रति बूंद अधिक फसल किया गया और इसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के प्रमुख घटक के रूप में लागू किया गया। जना के अंतर्गत केंद्र सरकार 5 हेक्टेयर तक लाभार्थी को लघु सिंचाई प्रणाली लगाने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। छोटे और सीमांत किसानों को 55% और अन्य किसानों को 45% तक वित्तीय सहायता मिलती है। केंद्र सरकार ने पिछले 3 सालों में 8,123 करोड़ रुपए से अधिक की राशि इस योजना में जारी की है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत न केवल एक प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है बल्कि अपनी सभ्यतागत विरासत, संस्कृति और क्षमताओं में दृढ़ विश्वास रखने वाला राष्ट्र भी है। लखनऊ में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि आज जब भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है। उन्होंने कहा कि भारत में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास हुआ है।
4: पिछले 12 वर्षों में शिक्षा की क्वालिटी, एसेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी बढ़ी। भारत का रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पहले के कंपैरिजन में 2 गुना हो गया। 34 ईयर्स में पहली बार हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई है। शिक्षा के क्षेत्र में हुए बदलावों और अच्छी पॉलिसीज का ये परिणाम है कि आज देश के नौजवान स्टार्टअप खड़े कर रहे हैं, यूनिकॉर्न कंपनियां बना रहे हैं। 2015 में हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 81वें स्थान पर, हमने अब 38वें स्थान पर अपनी पहुंच हासिल कर ली है।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज बेंगलुरु में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। उपराष्ट्रपति ने उन्हें एक ऐसा राजनेता बताया जो विकेंद्रीकरण, त्रिस्तरीय शासन, सुदृढ़ संघवाद और लोकायुक्त की मजबूती के लिए खड़ा रहा। उन्होंने कहा कि रामकृष्ण हेगड़े का कार्यालय विश्वास का प्रतीक था। भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस पार्टी पर दलित समुदाय को राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। भाजपा के प्रवक्ता डॉ. गुरु प्रकाश पासवान ने नई दिल्ली में कहा कि कांग्रेस का दलित समुदाय को अपमानित करने का इतिहास रहा है। उन्होंने कहा कि इसके विपरीत नरेंद्र मोदी सरकार ने B.R. अम्बेडकर की विरासत का सम्मान किया और उनसे जुड़े स्थलों को तीर्थ स्थल का दर्जा दिया है। पार्टी के एक अन्य प्रवक्ता डॉ. सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर राजनीतिक लाभ के लिए हिंदुओं को बांटने का आरोप लगाया। उन्होंने अनुच्छेद 370 का उल्लेख किया और कहा कि इसके प्रावधान जम्मू कश्मीर में वाल्मीकि समुदाय के साथ भेदभाव करते थे। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दलित समुदाय के खिलाफ भेदभाव का मुद्दा उठाया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं।

0: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, एक्स पर @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
1: ये आकाशवाणी है। यूक्रेन की राजधानी कीव के पास बुचा जिले में आज हुए एक भीषण रूसी ड्रोन हमले में 37 लोगों की मौत हो गई। हमले में 50 आवासीय इमारतें क्षतिग्रस्त हुई और कई घर और एक रेस्तरां भी भीषण आग की चपेट में आ गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा कि बुजुर्गों और विकलांगों के लिए बने एक देखभाल केंद्र और आवासीय इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर भारतीय हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय हॉकी की श्रेष्ठतम प्रतिभा के रूप में मेजर ध्यानचंद आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करते हैं। श्री मांडविया ने लोगों से स्वस्थ और फिट रहने के लिए हर सप्ताह कम से कम एक घंटा खेल के मैदान में बिताने का आह्वान किया।
2: आज नेशनल स्पोर्ट्स डे के अवसर पर सारे देश में फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए एक घंटे खेल के मैदान में कार्यक्रम दिया है। मुझे खुशी है, मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, नया भारत का निर्माण हो रहा है।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार खेल और खिलाड़ियों के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
3: देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार निवेश कर रही है, जिसका असर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दिखाई दे रहा है। ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और अन्य बड़ी खेल प्रतियोगिताओं में भारत का बेहतर प्रदर्शन दिखाता है कि देश खेलों के क्षेत्र में लगातार मजबूत हो रहा है। केंद्रीय बजट 2026-27 में खेल मंत्रालय के लिए 4,400 करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया गया है। भारत ने रियो 2016 में 2 पदक, टोक्यो 2020 में 7 पदक और पेरिस 2024 में 6 पदक जीते थे। वहीं पैरा ओलंपिक खेलों में भी भारत के प्रदर्शन में उल्लेख सुधार हुआ है। पदकों की संख्या रियो 2016 में 4 से बढ़कर पेरिस 2024 में 29 हो गई है। इसके अलावा एशियाई खेलों में भी भारत का प्रदर्शन लगातार बेहतर हुआ है। देश ने 2014 के एशियाई खेलों में 57 पदक जीते थे, वहीं 2023 में भारत ने रिकॉर्ड 107 पदक जीतकर इतिहास रचा। सकलेन अख्तर के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आज संयुक्त CSIR UGC नेट परीक्षा के सभी 5 विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अपने पहचान पत्रों का उपयोग करके लॉगिन कर अपने विषय से संबंधित अंतिम उत्तर कुंजी देख सकते हैं। पंजाब सरकार ने 27 अगस्त को महाहड़ताल के अंतर्गत सामूहिक आकस्मिक अवकाश पर जाने वाले लाखों कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। सरकार ने सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागों के प्रमुखों को अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने वाले सभी कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं। मौसम विभाग ने ओडिशा में अगले 2 दिनों के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गंगा के तटवर्ती क्षेत्र में कल मूसलाधार बारिश की चेतावनी है। इसके अलावा बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और विदर्भ में भी कल तेज बरसात की आशंका है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल के गंगा के तटवर्ती क्षेत्र और ओडिशा में बिजली चमकने तथा आंधी तूफान के आसार जताए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत और उज्बेकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए 2 दिन के दौरे पर ताशकंद पहुंचे। नेपाल में बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 669 हुई। 287 भारतीय नागरिकों सहित 2000 से अधिक लोग अब भी लापता। नेपाल ने भारत के राहत प्रयासों की सराहना की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अमेरिका के शिकागो बिजनेस राउंड टेबल सम्मेलन में भारत के विशाल बाजार आकार और दीर्घकालिक निवेश क्षमता को रेखांकित किया। इस वर्ष जुलाई तक 115 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को प्रति बूंद अधिक फसल लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत लाया गया। और ओडिशा में सोमवार तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट, बिहार, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में भी तेज बारिश की संभावना। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: Good evening. This is Akashwani. I am Valsa Williams with the news at 9. the headlines. Prime Minister Narendra Modi arrives in Tashkent on a two-day visit to boost bilateral ties between India and Uzbekistan. Death toll in Nepal flash floods rises to 669, over 2,000 people, including 287 Indian nationals, still missing. Nepal praises India's relief efforts following devastating floods. Finance Minister Nirmala Sitharaman highlights India's vast market size and long-term investment potential at Chicago Business Roundtable. Over 115 lakh hectares brought under per drop, more crop micro-irrigation scheme till July this year. 37 people killed following a Russian attack on Bucha district of Ukraine. And red alert issued for very heavy rainfall in Odisha till Monday. Heavy rainfall also likely over Bihar, Gangetic, West Bengal, Jharkhand and parts of northeastern states. Prime Minister Narendra Modi arrived in Tashkent, the capital of Uzbekistan, this evening on a two-day visit aimed at further strengthening bilateral ties between India and Uzbekistan. He was warmly received by Uzbek President Shavkat Mirziyoyev at the airport. The two leaders are scheduled to hold detailed discussions on the entire gamut of bilateral relations and review progress in key areas of cooperation. Our correspondent covering the Prime Minister's visit reports that the entire Tashkent city has been decked up with Indian flags and colourful hoardings to welcome Prime Minister Modi on his fourth visit to the Central Asian country.
5: The Indian diaspora, comprising mostly of medical students in Tashkent, gathered for a special welcome for Prime Minister Modi. Tomorrow, Prime Minister Narendra Modi and President of Uzbekistan, Mr. Shavkat Mirziyoyev, will reflect upon the entire spectrum of bilateral relationship that are based on civilizational ties and built over centuries and strengthened by strong people-to-people ties. The two leaders would review cooperation in trade and investment, defense, digital connectivity, energy, education and people-to-people domains at the Presidential Palace. They will also share perspectives on advancing the shared development vision of Viksit Bharat 2047 and Uzbekistan 2030. Prime Minister Modi is also expected to visit the Shastri Memorial in Tashkent and the Mahatma Gandhi Center at the Tashkent State University of Oriental Studies. Sushil Chandra Tiwari, Akashvani News, Tashkent, Uzbekistan.
4: The death toll from devastating flash floods in Nepal and Tibet has risen to 669, while over 2,000 people remain missing. Search and rescue operations are underway across the affected districts of the Himalayan nation. Officials said the police are coordinating with residents and other agencies to locate missing people and assist those stranded by the floods. India has stepped up humanitarian assistance to Nepal affected by flash floods. Defense Minister Rajnath Singh today said India is concerned about the crisis situation in Nepal. Talking to reporters in Lucknow, Mr. Singh said India has been continuously sending assistance to the neighboring country.
6: The crisis that has emerged in Nepal is a matter of concern, not only for Nepal, but also for India. Our Prime Minister has made it clear that India is ready to provide whatever assistance is required. Accordingly, we have begun sending assistance from here and will continue to provide all necessary support.
4: The External Affairs Ministry has said 88 Indian nationals have been rescued so far in Nepal following flash flood tragedy on Wednesday. In a social media post, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said 287 Indian nationals are reportedly missing. He said about 128 people of Indian origin holding other nationalities also remain missing. Mr. Jaiswal informed that four Indian nationals were rescued today from a hydropower project in Rasuwa. He added that 120 Indian nationals crossed into Nepal from China today. More from our correspondent.
7: India has intensified efforts to trace and rescue Indian nationals stranded in Nepal following the flash flood tragedy. Six forensic expert teams from India will assist in analyzing DNA samples for the identification of mortal remains. A specialized technical team for tunnel rescue operation also arrived in Kathmandu yesterday and started working to assist in tunnel rescue in the impacted area. The Ministry of External Affairs has set up a

0: नमस्कार, आकाशवाणी की अखिल भारतीय युवा पत्रिका युवा भारती में आपका स्वागत है। मैं हूं नवोदिता। युवा होना केवल उम्र का एक पड़ाव नहीं है, ये अपने शरीर को स्वस्थ रखने, अपने समय की भाषा समझने, स्वयं को पहचानने और अपने सपनों के लिए निरंतर साधना करने का समय है। आज की युवा भारती में हम चलेंगे युवा जीवन की ऐसी ही चार दिशाओं में, जहां सही पोषण है, बदलती अभिव्यक्ति है, स्वयं की तलाश है और सपनों के साथ कला की साधना भी है। सही पोषण सशक्त युवा विकास की पहली शर्त। कहते हैं स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ और सजग मन का निवास होता है, और जब बात युवाओं की हो तो ये केवल एक कहावत नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र के भविष्य से जुड़ा एक महत्वपूर्ण सत्य है। हर साल 1 से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। इसका उद्देश्य होता है लोगों को संतुलित आहार, स्वस्थ खान पान और पोषण के महत्व के प्रति जागरूक करना। साल 1982 में शुरू हुई ये पहल आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, शायद पहले से कहीं अधिक, क्योंकि आज हमारी थालियां भले भरी हुई हों, लेकिन क्या वो पोषण से भरपूर है? तेज रफ्तार जिंदगी, अनियमित दिनचर्या और सुविधा के नाम पर बढ़ता जंक फूड खासकर युवाओं की खान पान संबंधी आदतों को प्रभावित कर रहे हैं। भोजन अब कई बार भूख से अधिक स्वाद और सुविधा का विषय बन गया है। लेकिन पोषण केवल पेट भरने का नाम नहीं है, ये शरीर को शक्ति देता है, मन को सजग रखता है और हमारे सपनों को पूरा करने की क्षमता भी। युवावस्था जीवन का वो दौर है जब शरीर संभावनाओं से भर रहा होता है और मन भविष्य के सपनों को आकार दे रहा होता है। ऐसे में सही पोषण केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य का प्रश्न नहीं बल्कि सामाजिक और राष्ट्रीय विकास की भी पहली शर्त है। हमें अपनी पारंपरिक भोजन पद्धति की ओर भी देखना होगा। दालें, अनाज, मोटे अनाज, हरी सब्जियां, फल और स्थानीय खाद्य पदार्थ हमारी थाली को केवल स्वादिष्ट ही नहीं संतुलित और समृद्ध भी बनाते हैं। और श्री अन्न यानी मिलेट्स को हम कैसे भूल सकते हैं? राष्ट्रीय पोषण सप्ताह हमें यही याद दिलाता है कि स्वस्थ भविष्य किसी बड़े अवसर की प्रतीक्षा में नहीं होता, उसकी शुरुआत रोज हमारी अपनी थाली से होती है। आइए पोषण को अभियान भर ना रहने दें बल्कि अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाएं, क्योंकि सही पोषण से ही बनेगा सशक्त युवा और सशक्त युवा ही रचेंगे स्वस्थ, समर्थ और विकसित भारत का भविष्य। एक स्वस्थ शरीर ही एक सजग मन और सक्रिय जीवन की बुनियाद बनता है। लेकिन युवा होने का अर्थ केवल स्वस्थ और सक्षम होना ही नहीं, अपने समय के साथ संवाद करना भी है। हर पीढ़ी अपनी भाषा गढ़ती है, कभी शब्दों से, कभी संकेतों से और कभी ऐसे छोटे छोटे वाक्यों से जिनमें एक पूरी दुनिया छुपी होती है। तो आज की युवा भाषा का एक दिलचस्प कोट समझने का ही एक प्रयास है हमारी अगली प्रस्तुति, कह तो दिया नो कैप। आलेख और प्रस्तुति ओमवेश उपाध्याय की है, जो प्रसारण पत्रकार और रणनीतिक संचार विशेषज्ञ है।
1: हाय फ्रेंड्स, पिछले साल एक इंटरनेशनल डिक्शनरी ने अपना वर्ड ऑफ द ईयर अनाउंस किया। यह वर्ड था 6-7, बस दो अंक, ना कोई डेफिनेशन ना कोई मीनिंग। डिक्शनरी ने खुद माना कि इसका मतलब बताना मुश्किल है। कई स्कूलों ने इसे क्लास में बोलने पर रोक लगाई और बच्चों ने इसे और ज्यादा बोलना शुरू कर दिया। सुनने में यह मजाक लगता है, लेकिन इसी साल हमारी संसद के भीतर एक विधेयक पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ओर के सांसद इसी किस्म की वोकैब में एक दूसरे को जवाब दे रहे थे।

0: ये जेंजी लिंगो है, सड़क से सांसद तक ओमनी प्रेजेंट। और यंगस्टर्स की अपनी अलग वोकैब कोई नई बात नहीं है। लिंग्विस्ट दशकों से यह कहते आए हैं कि हर पीढ़ी अपनी एक इंटरनल लैंग्वेज गढ़ती है, एक ऐसी वोकैब जो यह तय करती है कि कौन इस समूह के अंदर है और कौन बाहर। अब आप भारत का अपना उदाहरण समझिए। इंग्लिश शब्द पहली बार 1967 में दर्ज हुआ था, यानी 60 साल से हम हिंदी और अंग्रेजी को एक ही वाक्य में मिला रहे हैं। झकास शब्द 1985 की एक फिल्म से निकलकर पूरे देश की जुबान पर चढ़ गया। मुंबईया बोली से बिंदास आया, टाइम पास आया, जुगाड़, दादागिरी, फंडा आया, और आज ये सारे शब्द ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में दर्ज हैं। एक समय जिन शब्दों को गली मोहल्ले की भाषा कहकर नाक भौं सिकोड़ी जाती थी, वे आज दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित डिक्शनरी में इंडियन इंग्लिश की 900 से ज्यादा एंट्रीज का हिस्सा हैं। अब असली सवाल, ये जेंजी ऐसा बोलते क्यों है? दो वजहें हैं। पहली, यह दौर। पहले एक शब्द कॉलेज की कैंटीन से मोहल्ले तक, फिर किसी फिल्म तक, और तब देश भर में पहुंचता था। इसमें सालों लग जाते थे। अब बीच में ना फिल्म है ना अखबार, बस एल्गोरिदम है, और एल्गोरिदम बाजार की तरह काम करता है। जो दिखता है वही बिकता है। जेंजी लिंगो तेज बिकता है, इसलिए आपके सामने है। दूसरी, ब्रेविटी, यानी गागर में सागर भरना। एक पिक्चर, एक लाइन, और पूरी तरह बात कही जा सकती है। जिस बात को कहने में मिलेनियंस को पूरा पैराग्राफ लग जाता है, वे एक मीम में कह देते हैं।
1: मेरा नाम अमृता सिन्हा है, मैं सूरत में रहती हूँ, और मैं एक आईटी कंपनी के साथ एज अ कम्युनिकेशन प्रोफेशनल काम करती हूँ। जेंजी लैंग्वेज कॉन्शियसली बनाई हुई कोई भाषा नहीं है, बल्कि ये हमारे रेगुलर इंटरनेट यूसेज और मीम स्क्रोलिंग से आई है, और अब हमारे जेनरेशन के हर दिन के कॉन्वर्सेशन का एक नेचुरल पार्ट बन चुकी है। और मुझे लगता है जब मैं ऐसा कोई शब्द यूज करती हूँ अपने एल्डर जेनरेशन के सामने और उनका बहुत ही ब्लैंक एक्सप्रेशन आता है, तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं उनके जेनरेशन का कोई स्लैंग या रेफरेंस यूज करके उन्हें समझा पाऊं। जैसे मैंने जब अपनी दादी को बताया कि डेलुली आपके ख्याली पुलाव पकाने का छोटा वर्जन है, तो अब उन्हें बहुत मजा आता है डेलुलू वर्ड यूज करने में।
0: भारत में इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों की संख्या अब लगभग 1 अरब है, यानी 100 करोड़। वहीं जेंजी, यानी 1997 से 2012 के बीच जन्मी जनरेशन, आबादी के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी पीढ़ी है, लगभग 40 से 50 करोड़ के आसपास। और ये अपने आप में एक बड़ा कारण है कि अब आप जेंजी को सीरियसली लें। तो आइए समझते हैं कि जेंजी की भाषा किस तरह की है। पिछले साल दुनिया के बड़े शब्दकोशों ने जो शब्द चुने, उन पर गौर कीजिए। ऑक्सफोर्ड ने चुना रेज बेट, यानी ऐसी सामग्री जो जानबूझकर गुस्सा भड़काने के लिए बनाई जाती है ताकि ज्यादा क्लिक मिले। कैम्ब्रिज ने चुना पैरा सोशल, यानी किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ाव महसूस करना जो आपको जानता तक नहीं। मरियम वेबस्टर ने चुना स्लॉप, यानी मशीन से थोक में बनाया गया घटिया कंटेंट। और उससे पिछले साल ऑक्सफोर्ड का शब्द था ब्रेन रॉट। ये मजाकिया शब्द नहीं, ये इस जनरेशन का डिक्शन है। अब एक दिलचस्प एनालॉजी। 20वीं सदी में रेवोल्यूशन का सबसे पहचाना निशान क्या था? हवा में उठी हुई एक बंद मुट्ठी, एक फिस्ट। ये फिस्ट हर महाद्वीप पर दिखी, बस पिक्चर ही काफी थी। अब इस आइकॉनिक फिस्ट की जगह एक और पिक्चर लेती जा रही है, और यह पिक्चर किसी विचारधारा से नहीं, एक जापानी कॉमिक से आई है। 1997 में जापानी चित्रकार इचिरो ओडा ने एक सीरीज शुरू की, वन पीस। उसका नायक है मंकी डी लूफी, सर पर स्ट्रॉ हैट पहने एक नौजवान समुद्री यात्री जो अपने साथियों के साथ एक भ्रष्ट विश्व व्यवस्था से टकराता है। उसके ग्रुप का निशान है एक कार्टून स्कल, और उस स्कल पर वही स्ट्रॉ हैट है। भारतीय जेंजी के बीच बेहद पॉपुलर लेखक और पॉडकास्टर जेंजी के इस व्यवहार का बेहद अच्छे तरीके से आकलन करते हैं। उनका कहना है कि आज की सटायर से भरी दुनिया में बात तेज फैलती है, और इसीलिए आज के दौर में ये जेंजी का मुख्य औजार भी बन जाता है। जयपुर साहित्य उत्सव में उन्होंने इस जनरेशन को कल्चरल लेबर तक भी कहा। उनका कहना है कि जेंजी एल्गोरिदम, ब्रांड और ट्रेंड के लगातार दबाव में जी रहे हैं। मतलब प्रेशर तो है, पर उन्होंने एक जरूरी चेतावनी भी दी जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। आप जेंजी को कैटेगराइज नहीं कर सकते। दिल्ली का नौजवान किसी इंटरनेशनल पॉप कॉन्सर्ट के लिए उत्साहित हो सकता है, राजस्थान का नौजवान किसी लोक कलाकार के लिए। जेंजी एक सुविधाजनक लेबल है, कोई एक यूनिफॉर्म वॉइस नहीं, और ऐसी ही उसकी भाषा है, किसी भी लेबल से मुक्त। तो जब हम कहते हैं कि आजकल के बच्चों की भाषा समझ में नहीं आती, तो असल में हम भाषा की नहीं, हमारे जनरेशनल गैप की बात कर रहे होते हैं, जो आज से ज्यादा कभी नहीं था। आज ये हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम्स के लिए एक चैलेंज भी है और स्कोप भी। इन सब के बीच हमारे लिए सबसे उम्दा उदाहरण है हमारे प्रधानमंत्री जी, विश्व के सबसे चर्चित चेहरे, मोस्ट फॉलोड पॉलिटिकल लीडर ऑन द प्लैनेट और मास्टर कम्युनिकेटर। बीते कुछ हफ्तों में उनके इंस्टाग्राम की भाषा बदली है, लंबे औपचारिक भाषणों की जगह छोटे

0: डायरेक्ट मोबाइल से बने वीडियोस ने ली है वर्टिकल फ्रेम में सामान्य बोलचाल में। जुलाई के आखिर में एक वीडियो की शुरुआत ही इस तरह हुई, हाय फ्रेंड्स। किसी वीडियो में एक प्रधानमंत्री का हाय फ्रेंड्स कहना कोई छोटी बात नहीं है, यह कम्युनिकेशन अप्रोच के बदलने का संकेत है, क्योंकि इसमें एक एक्सेप्टेंस छिपा है कि जेंजी तक पहुंचना है तो जेंजी की भाषा में पहुंचना होगा। प्लेटफॉर्म वही चलेगा जहां जेंजी पहले से मौजूद है और लिंगो वही चलेगा जो जेंजी का अपना है, नो कैप। दोस्तों ध्यान रहे, कम्युनिकेशन का सबसे पुराना नियम भी यही है। हालांकि हमें ये भी ध्यान देना होगा, जो ब्रेविटी इस भाषा को ताकत देती है वही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। जो वो कैब हर 3 हफ्ते में बदल जाए, बेहद छोटी हो, वह याद कम रहती है। जो सटायर हर बात पर लागू हो, वह धीरे धीरे विषय की गंभीरता छीन लेता है। और जिस मंच पर गुस्सा सबसे तेज बिकता हो, वहाँ गुस्सा भड़काना एक कारोबार बन जाता है। रेज बेट इसी शब्द की सच्चाई है। वायरल हो जाना और बदलाव ले आना दोनों एक चीज नहीं। तो डियर जेंजी, प्लीज टेक अ नोट ऑफ दैट। हाँ, भाषा बदलती रहती है, बदलती रहेगी। टाइम पास और जुगाड़ कभी सड़क की भाषा थे, आज वो कैब का हिस्सा है। जो आज डेलुलू है वह किसी दिन संसदीय बहस का सामान्य शब्द होगा, बल्कि हो भी चुका है। तो इस पूरे शोर के बीच एक बात याद रखने लायक है, शब्द और अंदाज बदल सकते हैं लेकिन संवाद की जरूरत नहीं बदलती। भाषा चाहे कोई भी हो, बात तभी आगे बढ़ती है जब हम एक दूसरे को सुनने की कोशिश करें। तो कह तो दिया, नो कैप।
1: अभी आपने सुना, कह तो दिया, नो कैप। आज की युवा भाषा के दिलचस्प कोड को समझने का प्रयास था ये लघु प्रस्तुति। आलेख और प्रस्तुति थी ओमवेश उपाध्याय की, जो प्रसारण पत्रकार और रणनीतिक संचार विशेषज्ञ हैं। भाषा बदलती है, शब्द बदलते हैं, संवाद के तरीके बदलते हैं, लेकिन एक सवाल शायद हर पीढ़ी के अंदर बना रहता है, मैं कौन हूँ और मैं वास्तव में क्या खोज रहा हूँ। दुनिया को जानने और उसके साथ कदम मिलाने की दौड़ में क्या कभी हम अपने भीतर झांकने के लिए भी ठहरते हैं? इसी तलाश की एक अनोखी यात्रा हमें ले चलती है ऋषिकेश, जहां देश के 14 राज्यों से आए 50 युवाओं ने अद्वैत वेदांत के माध्यम से स्वयं को समझने और स्व की खोज का प्रयास किया। हमारी अगली प्रस्तुति है ये लघु वृत्त चित्र, दुनिया से आगे खुद तक। सौजन्य साहित्य और संस्कृति कर्मी विशाल पांडे, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में सहायक अध्यापक भी हैं।
2: गंगा की अविरल धारा, हिमालय की शांत और विराट उपस्थिति, आश्रम का अनुशासित जीवन, गुरु का सानिध्य और आचार्य शंकर की ज्ञान परंपरा से संवाद, इन सबके बीच 10 दिन ऐसे बीते जिन्होंने मुझे भारतीय दर्शन को समझने का ही अवसर नहीं दिया, स्वयं को देखने और समझने की एक नई दृष्टि भी दी। ये अवसर था अद्वैत वेदांत जागरण शिविर 2026 का। मध्य प्रदेश संस्कृति मंत्रालय द्वारा युवाओं को भारतीय ज्ञान परंपरा और अद्वैत वेदांत से परिचित कराने के उद्देश्य से आयोजित यह 10 दिवसीय शिविर उत्तराखंड के ऋषिकेश में संपन्न हुआ। इस शिविर की एक विशेष बात थी, देश के अलग अलग हिस्सों से आए युवाओं का एक साथ होना। 14 राज्यों के युवा इस शिविर में सहभागी बने। देश से 1200 युवाओं की प्रविष्टियां प्राप्त हुई, उनमें से 300 युवाओं का साक्षात्कार हुआ और अंततः 50 युवाओं का चयन इस शिविर के लिए किया गया। एक साझा जिज्ञासा भारतीय ज्ञान परंपरा को समझने की, और शायद उससे भी बड़ा प्रश्न, मैं कौन हूँ। यही प्रश्न अद्वैत वेदांत की यात्रा का एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार है। 10 दिनों तक शिविर में आदि गुरु आचार्य शंकर द्वारा प्रतिपादित ज्ञान परंपरा से जुड़े महत्वपूर्ण ग्रंथ तत्वबोध का अध्ययन कराया गया। तत्वबोध अर्थात तत्व का बोध, अपने अस्तित्व के मूल को समझने का प्रयास, इस अध्ययन की सबसे बड़ी विशेषता थी गुरु का सानिध्य।

0: स्वामी परमात्मानंद सरस्वती के मार्गदर्शन में तत्वबोध का अध्ययन हुआ। इस पूरे अनुभव को मैं केवल एक कार्यक्रम की तरह या शिविर के रूप में ही नहीं देखता हूँ, स्वयं इस अद्वैत वेदांत जागरण शिविर का एक सहभागी भी रहा हूँ। तत्वबोध के अध्ययन ने मुझे अपने बारे में, अपने मन और अपनी पहचान के बारे में नए ढंग से सोचने का भी अवसर दिया। कई साथियों के साथ रहने, उन्हें जानने और समझने का भी अवसर मिला। असल में इन साथियों और सहपाठियों के लिए भी यात्रा बेहद महत्वपूर्ण रही। ऐसी ही हमारी एक साथी बेंगलोर से जुड़ी हैं, दीक्षा ओम। आइए जानते हैं उनके अनुभव शिविर के बारे में।
1: इस शिविर की जानकारी मुझे अपने कॉलेज डिपार्टमेंट से हुई, जहां पर मैं योग दर्शन की पढ़ाई कर रही हूं। इस शिविर में जाने का अवसर मेरे लिए एक बहुत ही सौभाग्य की बात रही, क्योंकि मैंने वहां पर जाकर बेहद ही खूबसूरत बातें जानी। उन सभी बातों में से सबसे पहली जो बात है वो ये है कि मैंने जीवन को सही प्रकार से देखने के नई दृष्टिकोण को जाना। 90% से भी ज्यादा हमारी समस्याएं एक गलत मेंटेलिटी, गलत थॉट प्रोसेस और एक डिस्टॉर्टेड परसेप्शन के कारण है। स्वामी जी ने हमें सिखाया कि किस तरीके से हम चीजों को एक सही ढंग से देख सकते हैं और जीवन में कर्तव्य क्या है अपने प्रति, समाज के प्रति और विश्व के प्रति। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो मैंने जानी वो ये है, एक गुरु की हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंस होती है। जब हम कोई भी ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से सीखते हैं तो किस प्रकार से वो हमारे भीतर और गहरा उतरता है। तीसरी चीज जो मैंने जानी वो ये है कि किस प्रकार शास्त्र आपके शस्त्र का काम कर सकते हैं। जब हमें सही ज्ञान होता है तो हम उस वीर योद्धा के भांति हैं जो एक युद्ध भूमि में सशक्त खड़ा होता है। उसके सामने चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए वो डरता नहीं है, उसे अपने ज्ञान पर और स्वयं पर आत्मविश्वास होता है। इसलिए मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत रहा ये अनुभव।
0: हम अक्सर स्वयं को अपनी उपलब्धियों से पहचानने लगते हैं। मैं क्या करता हूँ, मेरी नौकरी क्या है, मैं कितना सफल हूँ, मेरे पास क्या है, दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन अद्वैत वेदांत एक क्षण के लिए इन सब प्रश्नों से आगे ले जाकर पूछता है, इन सब के पीछे तुम कौन हो। शायद यही प्रश्न हमें भीतर से स्वतंत्र करता है और यही अद्वैत वेदांत की प्रासंगिकता है। यह केवल सन्यासियों के लिए नहीं, यह केवल किसी विशेष आयु के लोगों के लिए नहीं, यह जीवन को समझने की एक दृष्टि है। एक ऐसी दृष्टि जो हमें बाहरी उपलब्धियों के साथ साथ भीतर की समृद्धि की ओर भी देखना सिखाती है। इस शिविर में मेरे साथ प्रतिभाग कर रहे मेरे एक और सहपाठी जो कैथल हरियाणा में योग के शिक्षक हैं, अमन वर्मा, जानते हैं शिविर में उनका अनुभव।
2: स्वामी जी के प्रवचन दार्शनिक होने के साथ साथ बहुत ज्यादा मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टियों और अनुभवों से भरपूर थे। उस चीज के कारण हम लगातार अपने बारे में भी मनन करते और ग्रंथ के बारे में भी। इतने सारे युवाओं के बीच में एक साथ आकर के पढ़ना, इतने सारे अलग अलग पृष्ठभूमि से आए हुए प्रतिभागियों के बीच में उस ग्रंथ को जानना, पढ़ना, साथ में संवाद करना, वार्ताएं करना, उस चीज के अनुभव ने मुझे इस ग्रंथ के साथ साथ, इस दर्शन के साथ साथ जीवन की जो ऊर्जा है, जीवंतता है, उसका जो यौवन है, उसको भी अनुभव करने का मौका मिला।
0: 10 दिन सुनने में बहुत कम, लेकिन कभी कभी 10 दिन भी जीवन में एक लंबे अध्याय की तरह उतर जाते हैं। ऋषिकेश से लौटते समय हमारे साथ ढेर सारी तस्वीरें और स्मृतियां थीं, और इसके साथ ही हमारे साथ था तत्वबोध का अध्ययन। अद्वैत वेदांत जागरण शिविर 10 दिनों का आयोजन मात्र नहीं, निरंतर चलने वाली एक यात्रा का हिस्सा भी है। यदि आपके भीतर भी भारतीय ज्ञान परंपरा को समझने की जिज्ञासा है, यदि आप आचार्य शंकर के ग्रंथों का अध्ययन करना चाहते हैं, यदि आप गुरुजनों के सानिध्य में रहकर इस परंपरा को निकट से अनुभव करना चाहते हैं, तो आप मध्य प्रदेश संस्कृति मंत्रालय की एकात्म धाम पहल से संबंधित जानकारी उनकी वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं।

0: लघु वृत्त चित्र सौजन्य साहित्य और संस्कृति कर्मी विशाल पांडे जो दिल्ली विश्वविद्यालय में सहायक अध्यापक भी हैं। खुद को जानने की यात्रा भीतर से शुरू होती है लेकिन उसके अर्थ जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देते हैं। अपने सपनों को पहचानना, अपनी राह चुनना और चुनौतियों के बीच उस राह पर बने रहना, यही तो युवा होने की असली परीक्षा भी है। किताबें हैं, करियर की तैयारी है, भविष्य की चिंताएं हैं और इनके बीच एक कला है जिसे केवल समय नहीं समर्पण भी चाहिए। जब मंच पर मोहिनी अट्टम की मुद्राएं आकार लेती हैं और मन में भविष्य की मंजिलें भी साथ साथ चलती हैं, तो जीवन एक खूबसूरत कदम ताल बन जाता है। प्रस्तुत है लघु रूपक मंच पर मोहिनी मन में मंजिल।
1: किताबों के खुले पन्ने, असाइनमेंट की समय सीमा, आने वाली परीक्षाओं का तनाव, ऐसे में जरा सोचिए जब कोई स्टूडेंट कॉलेज के भाग दौड़ के तुरंत बाद अपनी किताबें समेट शाम होते ही सीधे एक शास्त्रीय नृत्य के रियाज में जाकर शामिल हो जाए।
2: आज की जनरेशन सिर्फ डिग्री हासिल करने की रेस में नहीं दौड़ रही। एक तरफ करियर बनाने का प्रेशर है तो दूसरी तरफ अपने अंदर के उस कलाकार को जिंदा रखने की जिद, जो शॉर्टकट नहीं बल्कि घंटों का सब्र और कड़ा रियाज मांगता है। केरल के तटीय क्षेत्रों से विकसित हुई मोहिनीअट्टम 8 भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियों में से एक है।
1: आंदोलन यानी लहरों जैसी सुगम शारीरिक गतियां, सोपानम संगीत की धीमी लय और नयन अभिनय यानी आंखों का बारीक संचालन इसकी मुख्य तकनीकी पहचान है।
2: कथकली की नाटकीयता या भरतनाट्यम की तेज पदचाप के विपरीत मोहिनीअट्टम का मुख्य आधार अति सूक्ष्म ठहराव और शारीरिक संतुलन है।
1: इसीलिए आज के फास्ट पेस्ट दौर में इस विधा की पारंपरिक संरचना को बिना बदले नई पीढ़ी को सौंपना एक बेहद बारीक काम है।

0: एक गुरु के तौर पर आज की व्यवहारिक चुनौतियों के बीच इस क्लासिकल तकनीक को युवा कलाकारों तक कैसे पहुंचाया जा रहा है, आइए सुनते हैं गुरु जयप्रभा मेनन जी से।
1: क्लासिकल में ये मोहिनीअट्टम अकेले एक नृत्य रूप है जो सोलो में और ये सिंगल परफॉर्मेंस में आता है, एकहारिया में आता है। हमारे शास्त्रीय नृत्य रूप के दो तरह के हैं, तांडव और लास्य। तो मोहिनीअट्टम लास्य कैटेगरी में आता है। लास्य मतलब क्या है? लास्या इज जेंटल, सॉफ्ट, ब्यूटिफुल एंड ग्रेसफुल, यानी और एकदम सरलता में बोले कि ये स्त्रैण नृत्य रूप है, फेमिनाइन ब्यूटी इसमें ज्यादा है। मोहिनीअट्टम में बॉडी डिसिप्लिन एंड माइंड डिसिप्लिन की बहुत जरूरत होती है।
2: आज की डिजिटल दुनिया शॉर्टकट और इंस्टेंट रिस्पॉन्स पर चलती है, लेकिन मोहिनीअट्टम जैसी विधा महीनों और सालों का सब्र मांगती है। ऐसे में पढ़ाई के तनाव और रियाज के अनुशासन के बीच टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है? क्या ये कला उनकी पढ़ाई में रुकावट बनती है या उल्टा उनका फोकस और बेहतर करती है?
3: अनश्वर राय एंड अभी मैं 12th क्लास में हूँ। 12 साल से भरतनाट्यम सीख रही हूँ एंड पिछले 5 साल से मोहिनीअट्टम, एंड इट्स बीन अ वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर मी क्योंकि अपार्ट फ्रॉम स्टडीज मैं लाइक ज़्यादा चीज़ों पर फोकस नहीं कर पाती एंड डांस क्लास प्लेज़ अ वेरी ह्यूज रोल। और इसमें नॉट ओनली माई कल्चर बट मैं बाकी चीज़ों को भी एक्सपीरियंस कर पाती हूँ, तो उसका एक्सपोजर मिलता है एंड तुम्हें

पता चलता है कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है. एंड मैंने सोचा भी है कि अगर आगे जाके मैं जस्ट इन केस अपने डांस को प्रमोट करना चाहूँ, आई कैन स्टार्ट टेकिंग डांस क्लासेस एंड ऑल.

0: मंच का आत्मविश्वास सिर्फ उस परफॉर्मेंस तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उनके व्यक्तित्व और सोच में भी झलकने लगता है।
1: माय नेम इज राजश्री आर, आई एम परस्यूइंग बायोकेमिस्ट्री ऑनर्स, इट्स माय सेकंड ईयर ऑफ कॉलेज। क्लासिकल डांस के टूवर्ड्स बहुत अट्रैक्टेड रही, डांसिंग इज माय पैशन, बट कहीं ना कहीं मुझे फ्यूचर को लेके भी थोड़ा बहुत कंसर्न है कि इफ आई एम परस्यूइंग दिस फील्ड मैं कर पाऊंगी कि नहीं। इवन दो आई नो कि मैं कर लूंगी, बट जस्ट टू बी ऑन अ सेफ साइड आई एम परस्यूइंग बायोकेमिस्ट्री। बट अगर मुझे एक मौका मिलता है कि मैं इसको फुल टाइम पे लेके जाऊं, ट्रेडिशनल मोहिनीअट्टम एंड भरतनाट्यम, आई विल डेफिनेटली गो फॉर इट।
0: दिन भर की किताबी पढ़ाई और करियर की आपाधापी के बीच मोहिनीअट्टम के इन कठिन तट्टाडवू और रामायणम इलाकी अट्टम का कड़ा अभ्यास ये साबित करता है कि युवाओं में कला के प्रति समर्पण कितना गहरा है।
2: शास्त्रीयता की मर्यादा को बिना बदले आधुनिक जीवन शैली के साथ इस विधा को साधते इन युवा कलाकारों की ये यात्रा वाकई दिलचस्प है। मंच पर थिरकते ये कदम और मन में अपनी मंजिल को पाने का ये जज्बा यूं ही बना रहे। हमारी शुभकामनाएं।

मंच पर मोहिनी, मन में मंजिल। अभी आपने सुना ये लघु रूपक। आलेख प्रांजल, वाचन स्वर प्रांजल और नेत्रा। प्रस्तुति केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को नमन करते हुए आइए एक नजर डालें उन युवा कदमों पर जो आज भारतीय खेलों को नई रफ्तार दे रहे हैं। हाल के दिनों में भारतीय युवाओं ने दुनिया के अलग अलग खेल मैदानों पर अपनी चमक बिखेरी। 18 वर्षीय अनाहत सिंह ने विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीतकर एक इतिहास रचा। एथलेटिक्स में अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में बसंत कुमार मेघवाल ने ऊंची कूद में रजत और शहनवाज खान ने लंबी कूद में कांस्य पदक जीतकर भारतीय उम्मीदों को नई ऊंचाई दी। कुश्ती के विश्व अंडर 20 मंच पर भी भारतीय बेटियों ने दम दिखाया। मानसी लाठर ने रजत जबकि तन्वी और कोमल ने कांस्य पदक अपने नाम किए। और शतरंज के बिसात पर आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड चेस टूर जीतकर भारतीय प्रतिभा का एक और ऐतिहासिक अध्याय लिखा है। मेजर ध्यानचंद की विरासत हमें याद दिलाती है कि खेल केवल जीत का नाम नहीं, अनुशासन, समर्पण और निरंतर साधना का नाम है। आज का युवा भारत उसी विरासत को आगे बढ़ा रहा है। मैदान बदल रहे हैं, खेल बदल रहे हैं, लेकिन तिरंगे को ऊंचा उठाने का जज्बा वही है। इसी के साथ संपन्न होता है युवा भारती का आज का अंक। नवोदिता मिश्रा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन की उज्बेकिस्तान यात्रा पर आज शाम राजधानी ताशकंद पहुंचे। राष्ट्रपति शबकत मिर्जी योयेफ ने उनका स्वागत किया। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी के स्वागत के लिए ताशकंद शहर में विशेष प्रबंध किए गए हैं।
1: पूरा ताशकंद शहर भारतीय झंडों और होर्डिंग से सजा हुआ है। हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चौथी यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव सदियों पुराने आपसी संबंध

0: बंधों को और मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। दोनों नेता राष्ट्रपति भवन में व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और जन संबंधों के क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे। वे विकसित भारत 2047 और उज्बेकिस्तान 2030 के साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर भी अपने विचार साझा करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
1: उज्बेकिस्तान के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादोर जापारोफ के निमंत्रण पर बिश्केक में 26वें शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। नेपाल में आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या 669 हो गई है और 2000 से अधिक लोग लापता हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बंद सड़कों को साफ करने का काम तेजी से जारी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल में अब तक 88 भारतीय नागरिकों को बचाया जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 287 भारतीय नागरिक लापता हैं। उन्होंने कहा कि 128 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। रसुवा स्थित एक जल विद्युत परियोजना से 4 भारतीय नागरिकों को बचाया गया। आज 120 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल में दाखिल हुए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक कंपनियों को अपनी आपूर्ति श्रृंखला और पूंजी आवंटन का फिर से आकलन करना चाहिए, क्योंकि भारत न केवल विशाल बाजार उपलब्ध कराता है बल्कि दीर्घकालिक निवेश और संचालन मंच का भी आधार है। अमेरिका के शिकागो में प्रमुख निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ एक उच्च स्तरीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भारत में निवेश का तात्पर्य व्यापक बाजार, सतत आर्थिक विकास, कौशल युक्त प्रतिभा, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और एक दशक के सुधारों से है। उन्होंने कहा कि देश का अगला आर्थिक विकास AI, इंजीनियरिंग, एनालिटिक्स, उत्पाद विकास, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स में निहित है। सरकार ने कहा है कि इस वर्ष जुलाई तक प्रति बूंद अधिक फसल योजना के अंतर्गत 115 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को लघु सिंचाई प्रणाली में लाया गया है। योजना का उद्देश्य खेत स्तर पर पानी के प्रयोग में दक्षता लाना और उसमें सुधार करना है। ये योजना जनवरी 2006 में केंद्र सरकार ने लघु सिंचाई के लिए शुरू की थी। 2015-16 से 2021-22 तक इसका आधिकारिक नाम प्रति बूंद अधिक फसल किया गया और इसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के प्रमुख घटक के रूप में लागू किया गया। मौसम विभाग ने ओडिशा में अगले 2 दिनों के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गंगई और तटवर्ती क्षेत्र में कल मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके अलावा बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और विदर्भ में भी कल तेज बरसात की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल के गंगा के तटवर्ती क्षेत्र ओडिशा में बिजली चमकने के साथ आंधी और तूफान के आसार जताए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर भारतीय हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय हॉकी की श्रेष्ठतम प्रतिभा के रूप में मेजर ध्यानचंद आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करते हैं। खेल मंत्री श्री मनसुख मांडविया ने लोगों से स्वस्थ और फिट रहने के लिए हर सप्ताह कम से कम 1 घंटा खेल के मैदान में बिताने का आह्वान किया। हॉकी इंडिया ने बेल्जियम और नीदरलैंड्स में आयोजित FIH महिला हॉकी विश्व कप में 5वें स्थान पर रहने के लिए भारतीय महिला टीम को 50 लाख रुपए के नकद पुरस्कार की घोषणा की है। भारत ने बृहस्पतिवार को एम्स्टरडेम में जर्मनी को 3-1 से हराया था। वर्ष 1974 में पहले विश्व कप में 4थे स्थान पर रहने के बाद ये भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। कप्तान सलीमा टेटे की अगुवाई में भारतीय टीम ने प्रतियोगिता में केवल 1 मैच गंवाया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi arrived in Tashkent, the capital of Uzbekistan, this evening on a 2-day visit aimed at further strengthening bilateral ties between India and Uzbekistan. He was warmly received by Uzbek President Shavkat Mirziyoyev at the airport. The two leaders are scheduled to hold detailed discussions on the entire gamut of bilateral relations and review progress in key areas of cooperation. Our correspondent covering the Prime Minister's visit.

0: Reports that the entire Tashkent city has been decked up with Indian flags and colourful hoardings to welcome Prime Minister Modi on his fourth visit to the Central Asian country.
1: The Indian diaspora, comprising mostly of medical students in Tashkent, gathered for a special welcome for Prime Minister Modi. Tomorrow, Prime Minister Narendra Modi and President of Uzbekistan, Mr. Shavkat Mirziyoyev, will reflect upon the entire spectrum of bilateral relationship that are based on civilizational ties and built over centuries and strengthened by strong people-to-people ties. The two leaders would review cooperation in trade and investment, defense, digital connectivity, energy, education and people-to-people domains at the Presidential Palace. They will also share perspectives on advancing the shared development vision of Viksit Bharat 2047 and Uzbekistan 2030. Prime Minister Modi is also expected to visit the Shastri Memorial in Tashkent and the Mahatma Gandhi Center at the Tashkent State University of Oriental Studies. Sushil Chandra Tiwari, Akashvani News, Tashkent, Uzbekistan.
0: The death toll from devastating flash floods in Nepal and Tibet has risen to 669, with over 2,000 people missing. Search and rescue operations are underway across the affected districts of the Himalayan nation. Officials said the police are coordinating with residents and other agencies to locate missing people and assist those stranded by the floods. India has stepped up humanitarian assistance to Nepal affected by flash floods. Defense Minister Rajnath Singh today said India is concerned about the crisis situation in Nepal. Talking to reporters in Lucknow, Mr. Singh said India has been continuously sending assistance to the neighbouring country. The External Affairs Ministry has said 88 Indian nationals have been rescued so far in Nepal following flash flood tragedy on Wednesday. In a social media post, Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said 287 Indian nationals are reportedly missing. He said around 128 people of Indian origin holding other nationalities also remain missing. Mr. Jaiswal informed that four Indian nationals were rescued today from a hydropower project in Rasuwa. He added that 120 Indian nationals crossed into Nepal from China today. Union Finance and Corporate Affairs Minister Nirmala Sitharaman said today that as global companies reassess their supply chains and capital allocation, India offers not only the scale of a vast market, but also the depth of a long-term investment and operating platform. She made these remarks while addressing a high-level business roundtable with leading investors and business leaders in Chicago in the United States. She highlighted India's broad-based growth, reform momentum, and expanding opportunities for long-term investment. Ms. Sitharaman also emphasized that India's investment appeal lies in the convergence of scale, sustained economic growth, skilled talent, world-class infrastructure, technological advancement, and a decade of consistent reforms. The government has said more than 115 lakh hectares of farmland have been brought under micro-irrigation under the Per Drop More Crop scheme as of July this year. The initiative aims to promote efficient use of water at the farm level and improve water use efficiency in agriculture. The initiative began in January 2006 as the centrally sponsored scheme for micro-irrigation. From 2015-16 to 2021-22, it was officially named Per Drop More Crop and implemented as a core component of the Pradhan Mantri Krishi Sichai Yojana. Under this scheme, the government provides financial assistance of up to 5 hectares per beneficiary to install micro-irrigation systems. Small and marginal farmers receive 55% and other farmers receive 45% financial assistance. And with that, we end this news bulletin.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत और उज्बेकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए 2 दिन के दौरे पर ताशकंद पहुंचे। नेपाल में बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 669 हुई। 287 भारतीय नागरिकों सहित 2000 से अधिक लोग अभी भी लापता। नेपाल ने विनाशकारी बाढ़ के बाद भारत के राहत कार्यों की सराहना की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अमेरिका के शिकागो बिजनेस राउंड टेबल सम्मेलन में भारत के विशाल बाजार आकार और दीर्घकालिक निवेश क्षमता को रेखांकित किया और यूक्रेन के बुखा जिले पर रूस के ड्रोन हमले में 37 लोग मारे गए हैं। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की उज्बेकिस्तान की यात्रा पर आज शाम राजधानी ताशकंद पहुंचे। राष्ट्रपति शफकत मिर्जी योयेव ने उनका स्वागत किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी के स्वागत के लिए ताशकंद शहर में विशेष प्रबंध किए गए हैं।
1: पूरा ताशकंद शहर भारतीय झंडों और होर्डिंग से सजा हुआ है। हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चौथी यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव सदियों पुराने आपसी संबंधों को और मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। दोनों नेता राष्ट्रपति भवन में व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और जन संबंधों के क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे। वे विकसित भारत 2047 और उज्बेकिस्तान 2030 के साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर भी अपने विचार साझा करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
2: उज्बेकिस्तान के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादोर जापारोफ के निमंत्रण पर बिश्केक में 26वें शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। उज्बेकिस्तान में भारतीय राजदूत स्मिता पंत ने आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष साक्षात्कार में बताया कि उज्बेकिस्तान में प्राकृतिक संसाधनों का समृद्ध भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताशकंद यात्रा के दौरान निवेश और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर भी चर्चा होने की संभावना है।
3: रिलेशनशिप ऑलरेडी बहुत अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में है। 2011 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोर्ज भी थी, उसके बाद 2015 में प्रधानमंत्री जी का पहला दौरा हुआ था। 2026 तक बहुत सारे एरियाज में हम लोग फॉरवर्ड मूवमेंट कर चुके हैं, चाहे आप ट्रेड की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, डेवलपमेंट कोऑपरेशन की बात करें, डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें। ट्रेड में ही करीबन 300% इंक्रीज हुई है 2015 से।
2: नेपाल में आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या 669 हो गई है और 2000 से अधिक लोग लापता हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बंद सड़कों को साफ करने का काम भी तेजी से चल रहा है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल में अब तक 88 भारतीय नागरिकों को बचाया जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 287 भारतीय नागरिक लापता हैं। रसुवा स्थित एक जल विद्युत परियोजना से 4 भारतीय नागरिकों को बचाया गया। आज 120 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल में दाखिल हुए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: नेपाल में बुधवार को आई भीषण बाढ़ की त्रासदी के बाद से वहां फंसे भारतीय नागरिकों को खोजने और बचाने के लिए भारत ने अपने प्रयास तेज कर दिए हैं। भारत की 6 फोरेंसिक विशेषज्ञ टीम मृत लोगों के शवों की पहचान करने के लिए DNA सैंपल की जांच में मदद करेंगी। इसके अलावा सुरंग में बचाव कार्य की जांच करने वाली एक विशेष तकनीकी टीम कल काठमांडू पहुंची, जिसने प्रभावित क्षेत्र में सुरंग से लोगों को बचाने के काम में सहायता शुरू कर दी है। वहीं विदेश मंत्रालय ने बचाव, राहत और लापता भारतीय नागरिकों की जानकारी जुटाने के लिए 24 घंटे चलने वाला कंट्रोल रूम बनाया है। काठमांडू और बीजिंग में स्थित भारतीय दूतावासों ने भी 24 घंटे की हेल्पलाइन शुरू की है, ताकि बाढ़ से प्रभावित भारतीय नागरिकों की मदद की जा सके। इसके अलावा भारत ने नेपाल में चल रहे बचाव और राहत कार्यों में मदद के लिए 57 टन से अधिक आपातकालीन राहत सामग्री भेजी है। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: नेपाल सरकार ने संकट की इस घड़ी में भारत की तत्काल मदद की सराहना की है। नेपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को असाधारण रूप से उदार बताया है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने भी भारत की सहायता के लिए आभार व्यक्त किया। वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले ने कहा कि बाढ़ के बाद भारत से राहत सामग्री भेजी गई है और भारत ने पुनर्निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने का संकेत दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत नेपाल को लगातार सहायता भेज रहा है।
5: नेपाल में जो क्राइसिस पैदा हुई है उसमें केवल नेपाल ही चिंतित नहीं है, भारत चिंतित है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा है कि जितनी भी सहायता की आवश्यकता होगी या जो भी सहायता आवश्यक होगी वह सब भारत उपलब्ध कराने के लिए तैयार है।
2: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय

0: वित्त और कंपनी मामलों की मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि वैश्विक कंपनियों को अपनी आपूर्ति श्रृंखला और पूंजी आवंटन का फिर से आकलन करना चाहिए, क्योंकि भारत न केवल विशाल बाजार उपलब्ध कराता है बल्कि दीर्घकालीन निवेश और संचालन मंच का भी आधार है। एक रिपोर्ट।
1: अमेरिका के शिकागो में प्रमुख निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ एक उच्च स्तरीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि भारत में निवेश का तात्पर्य व्यापक बाजार, सतत आर्थिक विकास, कौशल युक्त प्रतिभा, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और एक दशक के सुधार से है। बैठक का मुख्य उद्देश्य भारत में विनिर्माण भारत के लिए और विश्व के लिए था। इस दौरान विनिर्माण, AI और डिजिटल, वित्तीय सेवाओं, बुनियादी ढांचा, खाद्य प्रसंस्करण और आधुनिक प्रौद्योगिकी में संभावनाएं थी। वित्त मंत्री ने कहा कि आधार, UPI, डिजी लॉकर, ONDC तथा इंडिया स्टैक सहित भारत का डिजिटल जन बुनियादी ढांचा बड़ी आबादी के लिए उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि देश का अगला आर्थिक विकास AI, इंजीनियरिंग, एनालिटिक्स, उत्पाद विकास, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स में निहित है। इस गोलमेज सम्मेलन का आयोजन शिकागो में भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने अमेरिका भारत रणनीति भागीदारी मंच के साथ मिलकर किया था। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: यूक्रेन की राजधानी कीव के पास स्थित बुखा जिले में हुए एक भीषण रूसी ड्रोन हमले में 37 लोगों की मौत हो गई। हमले में 50 आवासीय इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं और कई घर और एक रेस्टोरेंट भी भीषण आग की चपेट में आ गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा कि मायला गांव में एक गोदाम पर हमला हुआ जिसके बाद विस्फोट हुआ। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों और विकलांगों के लिए बने एक देखभाल केंद्र और आवासीय इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन में लगातार हवाई हमले तीसरे दिन भी जारी रहे जिससे यूक्रेन की अर्थव्यवस्था ठप हो गई है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC की नौसेना ने हाल ही में दावा किया है कि हुर्मुज जल डमरू मध्य पर उसका निर्णायक नियंत्रण है और अमेरिका का यह दावा झूठा है कि यह मार्ग खुला हुआ है। IRGC ने कहा कि ईरान के बिना समन्वय के कोई भी जहाज इस जलमार्ग से नहीं गुजर सकता। यह प्रतिबंध तब तक जारी रहेगा जब तक अमेरिका अपनी कार्रवाई और नीतियां बंद नहीं करता। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के साथ अब तक के सबसे बड़े तेल समझौते की घोषणा की है। वेनेजुएला के साथ हुए समझौते से अमेरिका को 65 अरब बैरल से अधिक कच्चे तेल के भंडार पर नियंत्रण हासिल हो जाएगा।
2: राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि ये समझौता अमेरिका करदाताओं पर बिना किसी बोझ के हासिल किया गया है और इससे अमेरिका के कुल तेल भंडार दोगुने से भी अधिक हो जाएंगे। अमेरिकी प्रशासन का दावा है कि तेल आपूर्ति में इस वृद्धि से घरेलू गैसोलीन की कीमतें कम होंगी और वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था को आर्थिक सुधार में मदद मिलेगी। ये घोषणा वेनेजुएला के तेल निर्यात पर महीनों से चल रहे अमेरिकी राजनयिक दबाव प्रतिबंधों के प्रवर्तन के बाद हुई है। ये समझौता ट्रंप के आदेश पर किए गए अमेरिकी सैन्य अभियान के 9 महीने बाद हुआ है जिसमें वेनेजुएला के नेता निकोलस मादुरो को गिरफ्तार किया गया था और उन पर मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप लगाकर उन्हें अमेरिका को सौंप दिया गया था। समाचार कक्ष से भूपेंद्र सिंह।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत और उज्बेकिस्तान के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए 2 दिन के दौरे पर ताशकंद पहुंचे। नेपाल में बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 669 हुई। 287 भारतीय नागरिकों सहित 2000 से अधिक लोग अभी भी लापता। नेपाल ने विनाशकारी बाढ़ के बाद भारत के राहत प्रयासों की सराहना की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अमेरिका के शिकागो बिजनेस राउंड टेबल सम्मेलन में भारत के विशाल बाजार आकार और दीर्घकालिक निवेश क्षमता को रेखांकित किया। और यूक्रेन के बुखा जिले पर रूस के ड्रोन हमले में 37 लोग मारे गए। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani. I'm Nina Arakel with the World News. The headlines. Prime Minister Narendra Modi arrives in Tashkent on a 2-day visit to boost bilateral ties between India and Uzbekistan. Death toll in Nepal flash floods rises to 669. Over 2,000 people, including 287 Indian nationals, still missing. Nepal praises India's relief efforts following devastating floods. Finance Minister Nirmala Sitharaman highlights India's vast market size.

नमस्कार, रात के इस खूबसूरत पहर में आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। प्रोग्राम है हरसिंगार और मैं हूं नूपुर। तो रात जैसे जैसे गहरी होती जाती है, शहर की आवाजें धीमी पड़ती जाती हैं, हवा कुछ ज्यादा ही सुहानी लगने लगती है और चांदनी में जाने क्यों पुरानी यादें कुछ ज्यादा ही साफ दिखाई देने लगती हैं, है ना। शायद इसीलिए तो कुछ गीत दिन में सिर्फ गीत होते हैं लेकिन रात में किसी की याद बन जाते हैं। और आज की रात ये महफिल है प्यार की, मोहब्बत की, चांद तारों की, महबूब के ख्यालों की और उन खूबसूरत एहसासात की जो कहे नहीं जाते, बस महसूस किए जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस दौर से जब मोहब्बत में खत लिखे जाते थे, इंतजार किया जाता था और एक नजर मिलना भी पूरी कहानी कह दिया करता था। फिल्म संगम से ये गीत रफी साहब की आवाज में।

क्या कहिएगा, उस जमाने को जब मोहब्बत में जल्दबाजी नहीं थी, मिलने के लिए बहाने होते थे, बिछड़ने के लिए आंसू और इंतजार के लिए पूरी पूरी रातें। कभी चांद से पूछा जाता था क्या वो भी मुझे याद कर रहे होंगे, और कभी हवा से कहा जाता था अगर उसके शहर से होकर गुजरो तो मेरा सलाम कह देना। यही तो खूबसूरती थी उस दौर के प्यार की। और अब जरा सोचिए, खुली खिड़की, हल्की हवा, आसमान में चांद और सामने बैठा कोई अपना, तो ऐसे माहौल में एक खूबसूरत नगमा तो बनता ही है। फिल्म अब्दुल्ला से एक बार फिर मोहम्मद रफी साहब की आवाज में ये प्यारा सा गीत।

0: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

बिल्कुल आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी पर प्रोग्राम हरसिंगार साथ मैं नूपुर। हरसिंगार वो फूल जो रात में खिलता है और सुबह होते होते अपनी खुशबू छोड़ जाता है, बिल्कुल कुछ यादों की तरह जो रात में हमारे पास लौटती हैं और सुबह तक दिल में अपनी महक छोड़ जाती हैं। और शायद प्यार ना, प्यार भी कुछ ऐसा ही है, किसी की आवाज याद रह जाती है, किसी की हंसी याद रह जाती है, किसी का साथ याद रह जाता है, और कभी कभी तो सिर्फ एक मौसम भी ऐसा होता है कि किसी की याद दिलाने को काफी होता है। तो इस सुहानी रात में सुनते हैं एक बेहद रोमांटिक खूबसूरत सा नगमा जो शायद आज की रात अगर आप तक पहुंचे तो किसी की याद ताजा कर जाए आपके जहन में। रुत है मिलन की साथी मेरे आरे, मोहम्मद रफी साहब, लता मंगेशकर जी की आवाजें, फिल्म बेला से ये गीत।

कभी कभी ना मोहब्बत होना कोई बड़ी बात नहीं होती, बस ऐसा लगता है कोई पूछ ले आज चुप क्यों हो और हम मुस्कुरा कर कह दें कुछ भी तो नहीं, जबकि दिल में ना पूरा एक मौसम उतर आया हो। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें नाम देने की जरूरत नहीं, बस एक एहसास काफी होता है, एक नजर, एक मुस्कान, एक खामोश शाम और दूर आसमान में चमकता हुआ चांद। ऐसी ही एक नर्म सी रात के नाम एक प्यारा सा तराना, एक और रफी लता ड्यूएट फिल्म दिल तेरा दीवाना से, जो सामने रख रहा है एक मासूम सा सवाल, मुझे कितना प्यार है तुमसे, और जवाब जवाब मिलता है जनाब अपने ही दिल से पूछो तुम, क्योंकि जिसे दिल दिया है वो तुम हो और मेरी जिंदगी तुम्हारी है।

कच्चे सी हवा के बीच इन्हीं पुरानी यादों के साथ। तब तक के लिए रात को महसूस कीजिए, चांद को निहारिए, और अगर कोई अपना याद आए तो उसे दिल से याद कीजिए। आप सुन रहे थे FM गोल्ड पर हर सिंगर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन की उज्बेकिस्तान की यात्रा पर आज शाम राजधानी ताशकंद पहुंचे। राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव ने उनका स्वागत किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी के स्वागत के लिए ताशकंद शहर में विशेष प्रबंध किए गए हैं।
1: पूरा ताशकंद शहर भारतीय झंडों और होर्डिंग से सजा हुआ है। हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चौथी यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव सदियों पुराने आपसी संबंधों को और मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। दोनों नेता राष्ट्रपति भवन में व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और जन संबंधों के क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे। वे विकसित भारत 2047 और उज्बेकिस्तान 2030 के साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर भी अपने विचार साझा करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
0: उज्बेकिस्तान के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की दो दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादर जापारोव के निमंत्रण पर बिश्केक में 26वें शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। नेपाल में आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या 669 हो गई है और 2000 से अधिक लोग लापता हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बंद सड़कों को साफ करने का काम भी तेजी से चल रहा है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल में अब तक 88 भारतीयों को बचाया जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 287 भारतीय नागरिक लापता हैं। उन्होंने कहा कि 128 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। रसुवा स्थित एक जल विद्युत परियोजना से 4 भारतीय नागरिकों को बचाया गया। आज 120 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल में दाखिल हुए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक कंपनियों को अपनी आपूर्ति श्रृंखला और पूंजी आवंटन का फिर से आकलन करना चाहिए, क्योंकि भारत न केवल विश्व बाजार उपलब्ध कराता है बल्कि दीर्घकालीन निवेश और संचालन मंच पर भी आधार है। अमेरिका के शिकागो में प्रमुख निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ एक उच्च स्तरीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भारत में निवेश का तात्पर्य व्यापक बाजार, सतत आर्थिक विकास, कौशल युक्त प्रतिभा, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और एक दशक के सुधार से है। उन्होंने कहा कि देश का अगला आर्थिक विकास AI, इंजीनियरिंग, एनालिटिक्स, उत्पाद विकास, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स में निहित है। सरकार ने कहा है कि इस वर्ष जुलाई तक प्रति बूंद अधिक फसल योजना के अंतर्गत 115 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को लघु सिंचाई प्रणाली में लाया गया है। योजना का उद्देश्य खेत स्तर पर पानी के प्रयोग में दक्षता लाना और उसमें सुधार करना है। यह योजना जनवरी 2006 में केंद्र सरकार ने लघु सिंचाई के लिए शुरू की थी। वर्ष 2015-16 से 2021-22 तक इसका आधिकारिक नाम प्रति बूंद अधिक फसल किया गया और इसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के प्रमुख घटक के रूप में लागू किया गया। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो CBN की मध्य प्रदेश इकाई ने ऑपरेशन वज्र 2 के अंतर्गत एक बड़े अंतर्राज्यीय औषधि तस्करी मामले में 66 लाख से अधिक मनोरोगी गोलियां जब्त की हैं। ये खेप मादक औषधि और मनोरोगी पदार्थ अधिनियम 1985 की संबंधित धाराओं के तहत जब्त की गई है। इस अभियान में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी और एक ट्रक भी जब्त हुआ है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि CBN ने पंजाब, हिमाचल प्रदेश गलियारे के साथ मनोरोगी दवाओं की एक बड़ी अवैध खेप की आवाजाही के संबंध में विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर कार्रवाई की। मौसम विभाग ने उड़ीसा में अगले दो दिनों के लिए वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में कल मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। इसके अलावा बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और विदर्भ में भी कल तेज बरसात की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल के गंगा के तटवर्ती क्षेत्र और उड़ीसा में बिजली चमकने तथा आंधी तूफान के आसार जताए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Nina Rakel. Prime Minister Narendra Modi arrived in Tashkent, the capital of Uzbekistan, this evening on a two-day visit aimed at further strengthening bilateral ties between India and Uzbekistan. He was warmly received by Uzbek President Shavkat Mirziyoyev at the airport. Our correspondent covering the Prime Minister's visit reports that the entire Tashkent city has been decked up with Indian flags and colourful hoardings to welcome Prime Minister Modi on his fourth visit to the Central Asian country.
1: The Indian diaspora, comprising mostly of medical students in Tashkent, gathered for a special welcome for Prime Minister Modi. Tomorrow, Prime Minister Narendra Modi and President of Uzbekistan, Mr. Shavkat Mirziyoyev, will reflect upon the entire spectrum of bilateral relationship that are based on civilizational ties and built over centuries and strengthened by strong people-to-people ties. The two leaders would review cooperation in trade and investment, defense, digital connectivity, energy, education and people-to-people domains at the Presidential Palace. They will also share perspectives on advancing the shared development vision of Viksit Bharat 2047 and Uzbekistan 2030. Prime Minister Modi is also expected to visit

0: Good evening and welcome to the Saturday edition of Market Mantra. Today we'll also be taking calls from you, our listeners, on market-related queries. But do remember that we do not address stock or company-specific queries. The numbers to call us on are 2331-4444, 2331-0481, and 2371-7106. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
1: Namaskar. मार्केट मंत्र में आपका अभिनंदन श्रोताओं. व्यापार, अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी प्रश्न पूछने के लिए आप डायल कीजिए 2331-4444, 2331-0481 और 2371-7106. दिल्ली से बाहर के श्रोता

0: IT, pharma, healthcare did pretty well. So which are the sectors that you would recommend that we should keep our eye on?
1: After this NVIDIA latest result and their commentary on the result, now we are seeing a good recovery in the IT sector. I mean, if you can remember last month we were talking about that how IT sector is going to be affected. Now because NVIDIA is saying that infrastructure investment will be continue to be more, and that is good news for the IT sector. So my first priority would be IT sector because it's slightly on the valuation side. The second will be of course the PSU banks. I think the PSU banks are very undervalued. There should be more and more opportunity there. And the third one, all-time hit, फार्मास्यूटिकल सेक्टर.
2: आपसे और भी बातें करेंगे और भी सवाल पूछेंगे हम, मगर उससे पहले आइए पहला सवाल लेते हैं कोलकाता से. अनिमेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं. अनिमेश जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए.
3: गुड इवनिंग मार्केट मंत्र.
2: गुड इवनिंग,
3: दिस इज अनिमेश भट्टाचार्य फ्रॉम कोलकाता.
2: बहुत स्वागत है आपका.
3: आई हैव वन क्वेश्चन.
0: प्लीज गो अहेड.
3: वुड इट बी सेफ टू इन्वेस्ट ए ह्यूज अमाउंट in the market of smartphone? Thank you, sir.
2: Smartphones को लेकर के वो पूछ रहे हैं कि क्या ये वाजिब होगा अभी यहाँ पर निवेश करना?
1: देखिए, स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियां जो हैं, जो गिनती की कंपनियां हैं जो कि शेयर बाजार में हैं, और अभी एक चर्चा ये चल रही है कि जो 25,000 रुपए से कम के स्मार्टफोन है उस पर जीएसटी की दर 18% से घटा करके 5% कर दिया जाए. तो इस समय में जो मोबाइल हैंडसेट का मार्केट है उसमें थोड़ी हमने गिरावट देखी है. करीबन मतलब बीते कुछ समय में बहुत तेजी थी, लेकिन अभी कुछ समय से गिरावट आ रही है क्योंकि कीमतें बढ़ी हैं. और कीमत बढ़ने की एक बड़ी वजह यह है कि मोबाइल हैंडसेट में लगने वाले जो एक खास कलपुर्जा होता है वो उसकी कमी दुनिया के बाजारों में देखने को मिल रही है. तो अब 12 सितंबर को जब जीएसटी काउंसिल की बैठक बुलाई गई है, और अगर मोबाइल हैंडसेट में दरें कम की जाती हैं जीएसटी की, तो वो उन कंपनियों के लिए बेहतर होगा. तो मुझे लगता है कि 2 सप्ताह इंतजार कर लें, उसके बाद अगर उसमें आप जाते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा.
2: ये तो रही मोबाइल की बात, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं ईवी पर, तो ईवी पर आपकी क्या राय रहेगी?
1: देखिए, ईवी को लेकर के थोड़ा सा बुलिश मैं इसलिए हूँ क्योंकि कई तरह के प्रोत्साहन की बात चल रही है, कई तरह की योजनाओं की बात चल रही है. यहाँ तक कि अगर मैं दिल्ली सरकार की बात करूँ, उन्होंने भी प्रोत्साहन योजनाएं की बात की है. तो ईवी सेक्टर से जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं या जो भी हमारी ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं उनके लिए स्थिति बेहतर तो नजर आ रही है. लेकिन एक चीज अभी ध्यान में रखना है कि जो हमने कहा कि चिप की बात है और कीमतों को लेकर के बढ़ाने का सिलसिला चल रहा है, और अभी भी हमारे यहाँ ईवी में एक कंसर्न आता है इंफ्रास्ट्रक्चर
2: की बात.
1: तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो थोड़ा सा उसको पीछे खींचती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे लगता है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर और खासतौर पे जो ईवी बनाने वाली कंपनियां हैं उनके लिए स्थिति बेहतर है.
2: और ईवी का विजन खाली यही तो नहीं है ना कि हम अभी वो बुलिश हो रहा है या वो नया इंट्रोड्यूस हुआ है, तो हम एक ग्लोबल लेवल पर भी देखते हैं अगर.
1: बिल्कुल.
2: तो ईवी बहुत किफायती भी है हाउसहोल्ड के लिए.
1: नहीं, कीमत के लिहाज से अगर आप सोचेंगे तो ईवी आपको एक सामान्य जो फॉसिल फ्यूल बेस्ड है उससे थोड़ा महंगा होता है
2: शुरुआत में.
1: हाँ, लेकिन आप ये भी देखिए कि उसकी जो उसके लिए एक बड़ी चुनौती होती है इंफ्रास्ट्रक्चर की. आप गाड़ी तो ले आते हैं, चार्जिंग कहाँ करेंगे?
2: जी.
1: और खासतौर पर अगर मैं टियर 2 टियर 3 सिटीज की बात करूँ, वहां पर एक समस्या है अभी भी. तो एक कॉशस है, लेकिन चूंकि ये ईवी बनाने वाली जो कई कंपनियां हैं वो फॉसिल फ्यूल भी बनाती हैं, और जहां पर हम अच्छी खासी बिक्री देख रहे हैं, तो इसीलिए मैंने कहा कि वो स्थिति अच्छी है. वो
2: दिल्ली से हमारे साथ वत्स राज जुड़ रहे हैं. महोदय, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए.
4: नमस्कार.
2: नमस्कार
4: मार्केट मंत्रा. नमस्कार सुशील सिन्हा जी. सर, मेरा सवाल है कि क्या एक कंपनी का कोई शेयर होल्डर जो है वो सिक्योर्ड क्रेडिटर होता है या अनसिक्योर्ड क्रेडिटर होता है? और अगर वो सिक्योर्ड क्रेडिटर होता है तो जब कंपनी डीलिस्ट होती है तो क्या उसको उसके पैसे कुछ वापस मिलते हैं जो उसकी शेयर होल्डिंग होती है उस समय की मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग? प्लीज, थैंक यू.
1: देखिए, कंपनी में दो तरह के शेयर होल्डर होते हैं, एक जिनको हम लोग ऑर्डिनरी शेयर होल्डर कहते हैं और जिनको हम लोग प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर कहते हैं. तो जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर होते हैं उनकी स्थिति कह सकते हैं कि जब कंपनी अगर मान लीजिए कि बंद हो गई, कंपनी का सारा कुछ बिकने की स्थिति में आ गया, तो पहला वहां पर हक क्रेडिटर का बनता है. तो जो आपका मूल सवाल था कि क्या वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है या सिक्योर्ड क्रेडिटर है,

0: एक ऑर्डिनरी शेयर होल्डर जो है वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के कैटेगरी में आएगा। पहली बात, उसको हम क्रेडिटर नहीं कह सकते हैं क्योंकि उसने कर्ज नहीं दिया है, उसने शेयर खरीदे हैं, तो वो क्रेडिटर की कैटेगरी में नहीं आता है। वो उसको पैसा तभी मिलता है जब कंपनी पहले कर्जदारों ने जिससे पैसे लिए उसको चुका दिया, सरकार का जो बकाया है उसको चुका दिया, कर्मचारियों का बकाया है उसको चुका दिया, उसके बाद अगर पैसा बचा तो जो फेस वैल्यू है उस शेयर का, जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर है उसके, मान लीजिए 1, 2, 5, 10 जो भी फेस वैल्यू, उतने ही पैसे उसको मिलेंगे। अब दूसरा जो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर है वो एक तरीके से उसका इंटरेस्ट पे भी हक बनता है, और जब कभी भी कंपनी बंद हो जाए या कंपनी डिसॉल्व हो जाए तो उसका हक जो है वो इन ऑर्डिनरी शेयर होल्डर के मुकाबले में आगे रहता है, उनको सबसे पहले भुगतान किया जाता है।
1: दिल्ली से हमारे साथ अमित झा जुड़ रहे हैं। अमित जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
2: जी मैं दिल्ली से अमित झा बात कर रहा हूँ सर।
0: जी अमित जी बोलिए।
2: सिन्हा सर से मेरा प्रश्न ये है सर कि हमने, बड़ी अच्छी बात है कि हम विकसित भारत की परिकल्पना कर रहे हैं 2047 तक हम विकसित अर्थव्यवस्था बन जाए सर, परंतु सर पिछले 4-5 साल का अगर हम डेटा उठा के देखें तो सर हमारी जीडीपी की रफ्तार वही है, उतनी ही रफ्तार से हम बढ़ रहे हैं। उसके बाद इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन जो है औद्योगिक उत्पादन का आंकड़ा भी कोई खास उत्साहजनक है नहीं सर। तीसरी चीज सर, ग्रोस सॉरी ये करेंट अकाउंट डेफिसिट जो चालू खाता घाटा है, अगर हम निर्यात बढ़ता है हमारा निर्यात हमें खुशी मिलती है तो साथ में आयात भी बढ़ जाता है तो ट्रेड बैलेंस वहीं पे रह जाता है जस के तस है। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस गति से अगर हम वृद्धि कर रहे हैं जीडीपी और आईआईटी में, तो क्या चमत्कारी कोई होने वाला है कि 2047 में हम एकदम से विश्व में अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ जाए? हमारी कोई जादू की छड़ी है इस हिसाब से रफ्तार से? तो मुझे लग नहीं रहा कि सर हम,
0: अमित जी आपकी आशंकाएं गलत नहीं है कि इस तरह के विकास की रफ्तार से क्या हम 2047 में 30 अरब डॉलर, माफ कीजिएगा 30 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी हम बन सकते हैं कि नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरीके से विकास हमारी रही है कि देखिए 6% के ऊपर या 6.5% के ऊपर, फिर से अगर आप 6.5% की दर से विकास करते हैं तो वो एक संतोषजनक स्थिति है। ये ध्यान जरूर रखिए कि जो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां हैं वो बहुत ही प्रतिकूल हैं, और उनके बावजूद भी अगर हम 7% या उससे ऊपर की दर से विकास करते हैं तो हमारे लिए एक बेहतर स्थिति है। अब रहा सवाल कि क्या इसी रफ्तार से हम 2047 में 30 ट्रिलियन डॉलर, 30 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बन पाएंगे? मेरा जवाब होगा नहीं। यहां पर आपको विकास की रफ्तार ऊंची चाहिए, आपको 8% या 8% के ऊपर चाहिए, 9% का चाहिए, लेकिन वो केवल आपके हाथ में नहीं है। अगर कोई कहे कि केवल और केवल सरकार ही सब कुछ करेगा, जो वैश्विक परिस्थितियां हैं वो अगर आपके हिसाब से नहीं है, कच्चे तेल के भाव काफी ऊपर चल रहे हैं तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है, लेकिन फिर भी मैं आपकी आशंकाओं से सहमति रखता हूं। मैं
3: जॉइनिंग अस फ्रॉम बेंगलुरु इज एनआर प्रसाद, अ वार्म वेलकम।
4: Hi, good evening, Market Tantra. This is Anar Prasad from Bangalore. Hello, Rajesh ji. Hello, Prachi ji.
3: Hello, hello, how are you?
4: Mr. Sinha, just one question. What is exactly this CAS starting from the SEBI closing action session and from 3:15 to 3:30 p.m. And in that first 5 minutes is called IEP. Really, I don't know how it works. My broker is starting this new session from Monday onwards. Can you just detail on this, what exactly how it works? Thank you. This is my question.
0: Mr. Prasad, I may not be able to give you much detail about the CAS, but I can tell you that CAS is basically all talking about the price discovery during the last 15 minutes of the session, trading session, which is between 3:15 and 3:30. And that is based on the future, and that's basically on the derivative trading. So that is one thing. There are a lot of, differences are there. There are a lot of issues are there because this is a new system. So of course, there will be some teething problem, and what we have seen during last 15 days. But when we were talking to SEBI chairperson, he made it very clear that we are not going to make much change into that. But of course, all the views and all the suggestions are most welcome. So if I just summarize it into just one sentence, it is a new mechanism for the price discovery. There are some issues because the brokers are not very much aware about this new system, so there are some problems like what happened on Friday also.

0: But trust me that within 15 days or within a month or so, we believe that this system will stabilize and there will be a proper price discovery which is going to benefit the market.
1: दिल्ली से योगेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं. योगेश जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन है, कृपया अपना सवाल पूछिए.
2: जी नमस्कार डॉक्टर जी को. मेरा सवाल ये है कि जैसे कहा जाता है कि मार्केट में, शेयर मार्केट में खासतौर पे, कि जो लार्ज कैप है उनका ग्रोथ रेट स्मॉल कैप और मिड कैप थोड़ा कम रहता है, और आने वाले 10 साल या 15 साल या 12 साल में स्मॉल कैप और मिड कैप लार्ज कैप को बीट कर देते हैं. तो एक डिटेल इन्वेस्टर के लिए क्यों जरूरी है कि वो लार्ज कैप में एलोकेशन ले, यानी कि क्यों ना वो अपना 50% ज्यादा एलोकेशन मिड और स्मॉल कैप में ले, अगर उसने निश्चित कर ही लिया है कि उसको 15 से 20 साल के इन्वेस्टेड रहना है.
0: योगेश जी, यहाँ पर मुद्दा यह है कि आप खरगोश की रफ्तार से रखना चाहते हैं या कछुए की रफ्तार से चलना चाहते हैं. बाजार में बहुत तेज उतार चढ़ाव अगर आए वो आपके लिए अच्छी बात नहीं है. स्मॉल कैप और मीडियम कैप के साथ, मिड कैप के साथ एक बड़ी समस्या क्या आती है कि उसमें बहुत ज़्यादा हम तेजी से उतार चढ़ाव देखते हैं, और इसीलिए आपको लगता है कि उसमें जो फ़ायदा हो रहा है या उसकी जो कीमतों में अंतर है वो लार्ज कैप के मुकाबले ज़्यादा बेहतर है. ध्यान रखिए कि लार्ज कैप के रास्ते में बैरिक जो कहते हैं ना कि स्पीड ब्रेकर्स उस तरीके के नहीं होते हैं जैसे आपको स्पीड ब्रेकर्स मिड कैप और स्मॉल कैप में देखने को मिलता है. तो मिड कैप और स्मॉल कैप गलत नहीं है, अगर गलत होते तो बाजार में उसकी अनुमति ही नहीं होती. बाजार में वो हैं यानी कि वो सही हैं, लेकिन एक निवेशक के लिहाज से और एक कहते ना कि आप एक लंबे समय के लिए आप बने रहना चाहते हैं, तो वहां पर आपके लिए ये एक बेहतर होता है कि आप लार्ज कैप में ज्यादा एक्सपोजर लेते हैं और मिड कैप और स्मॉल कैप में कम रखते हैं.
3: जितेंद्र फ्रॉम दिल्ली जॉइंस अस नाउ. अ वार्म वेलकम जितेंद्र.
4: जयपुर से, नॉट दिल्ली. ठीक है. हेलो
0: जी, जयपुर से ही है आप जितेंद्र जी, बताएं.
4: अच्छा अच्छा, हाँ हाँ. अच्छा सर, ये पिछले बार आपने बहुत अच्छा बताया कि टुकड़े टुकड़े में प्रॉफिट भी बुक करिए और इंस्टॉलमेंट पे परचेज भी करिए, बहुत अच्छा लगा. और आपने हिंट भी दे दिया था लार्ज कैप फंड का. ठीक है, तो आप हमसे सर बस ये दो चीज बताइए कि सर जैसे अभी कौन सा सेक्टर मतलब थोड़ा सा भी सस्ता है हम लॉन्ग टर्म के लिए ले. ऐसे तो मैंने आईटी में शुरू कर दिया है, आईटी में. इसके अलावा
0: तो आपका ये पहला प्रश्न है, आपने कहा दो प्रश्न पूछने हैं.
4: नहीं,
0: अच्छा एक ही प्रश्न है. अच्छा अच्छा जितेंद्र जी, देखिए आपने बहुत अच्छा किया है कि आईटी में आपने शुरू किया है, क्योंकि मेरी अपने व्यक्तिगत तौर पे जो है वो राय रही है कि आईटी सेक्टर एक बेहतर दिशा में बढ़ रहा है, संभावनाएं काफी अच्छी बन रही है, तो उसमें आप किस्तों में आप निवेश करते हैं तो वो एक अच्छा विकल्प है. दूसरा, जैसा पब्लिक सेक्टर बैंक्स मुझे लगता है कि इस समय में आकर्षक हैं, और तीसरा फार्मा भी है, और इसके साथ साथ अगर डिफेंस में भी आप थोड़ा कर सकते हैं, क्योंकि डिफेंस को लेकर के बहुत सारी योजनाएं आई हैं. और अभी आपको बताएं, कुछ दिन पहले DRDO की तकनीक जो है वो प्राइवेट सेक्टर को देने की बात कही गई थी, यानी कि वहां पर भी डिफेंस सेक्टर्स की कंपनियों के लिए एक अच्छे दिन है. तो आप ये चार सेक्टर्स को ध्यान में रख करके आप निवेश कर सकते हैं. लेकिन हमेशा आपको मैं एक छोटा सा सुझाव जरूर दूंगा, पैसा आपका अपना है, थोड़ा सा पैसे पे मेहनत जरूर करिएगा, अपने स्तर पर भी थोड़ा शोध करिएगा. हमने आपको शुरुआती सुझाव दिए हैं, अंतिम स्वरूप आपको खुद देना है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको अतिरिक्त मेहनत करनी है.
1: शिशिर जी, लेकिन गौरतलब बात यह भी है कि अभी जब जितेंद्र जी हमसे सवाल पूछ रहे थे तो उन्होंने कहा कि कौन सा क्षेत्र सस्ता है, यानी उनके शायद कहने का अर्थ ये हो कि सस्ते इवैल्यूएशन के जो शेयर होते हैं वो कहाँ है. तो ये कितना सही है कि हम किसी को कोई अगर शेयर 17 रुपए का हमें मिल रहा है तो हम इस इंटाइंसमेंट में चले जाएं कि इस लालच में चले जाएं कि यार ये तो 17 रुपए का है, चलो खरीद लो इसे.
0: नहीं नहीं,
1: क्या ये सही है?
0: नहीं नहीं, बिल्कुल सही नहीं है. मुझे लगता है कि आप उसकी जिसको कहते हैं ना उस कंपनी और उस क्षेत्र की संभावनाओं को ध्यान में रख करके उस कंपनी की कीमत को आप आंके,
1: क्योंकि हो सकता है कि 17 रुपए आपने जो लगाए हैं वो भी आपके डूब जाए.
0: बिल्कुल. और आपको एक चीज बताऊं कि हमारे जो शेयर बाजार है उसमें 68 जो है वो सरकारी कंपनियों के शेयर है. सरकारी कंपनियों के शेयर अपने बराबर के जो दूसरे उसी क्षेत्र में काम करने वाले निजी कंपनियों के जो शेयर है उससे काफी सस्ते में मिल जाते हैं. तो क्या सरकारी कंपनियों के शेयरों में स्थिति अच्छी नहीं है? वो स्थिति अच्छी है, क्योंकि वहां पर संभावनाएं अगर अच्छी बन रही है तो मुझे लगता है कि कीमत उसी हिसाब से आंकिए. केवल और केवल आप ये मत देखिए कि वो 4 रुपए का है, 5 रुपए का, 6 रुपए का है, तो उसके हिसाब से तो आप चेन्नई शेयर में चले जाइए, जिसको लोग पेनी स्टॉक्स कहते हैं.
3: मूविंग ऑन, मेजर US स्टॉक इंडेक्सेस एंडेड लोअर यस्टरडे एज इन्वेस्टर्स टर्न कॉशियस आफ्टर द फेडरल रिजर्व चेयर केविन वॉश रिइटरेटेड द सेंट्रल बैंक्स फोकस ऑन फाइटिंग इन्फ्लेशन इंक्रीजिंग प्रॉस्पेक्ट्स फॉर अ रेट हाइक. The Nasdaq Composite Index slipped over 0.5%. The S&P 500 dipped more than 0.2%, while the Dow Jones Industrial Average ended almost flat with a negative bias. However, for the week, the Nasdaq rose 0.8%, the Dow climbed over 0.5%, and S&P 500 gained 0.5%. Meanwhile, in his debut speech at the Central Bank's annual symposium in Jackson Hole, Fed Chair Kevin Warsh said that the Fed's predominant focus should be on prices, noting that inflation remains above its target. He added, better than expected inflation readings over the summer had not convinced him that underlying price pressures had meaningfully improved. The Fed Chair said the central bank needs to be confident that the underlying price pressures are moving towards its 2% target at a sufficient pace, or further policy action may be required. We will discuss if time permits on this. In the meantime, we are joined in by Shankar from Bhopal. A warm welcome, Shankar.
5: Good evening, sir.
3: Good evening.
5: So my question is about interest rate, which you have said it is likely to go up. Is the interest low interest rate era will be over, because RBI thought it will be good to have a lower interest rate, ministry thought, government thought lower interest rate will boost the business thoda bahut to boost hua hoga, but jyada tar to real estate prices have gone up like anything, because necessity commodities have been under control more or less, but the real estate prices have gone up by leaps and bounds. So is this the reason they are controlling, going to increase interest rate, number one? Number two, sir, ये NCLT के क्या laws अभी इतने tight नहीं है कि people are able to get away with again with easily without having actually paid the responsibility? I'm talking about the recent case which is in the limelight. सर थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे तो अच्छा होगा.
0: Going by your first question about the lower interest rate, see, I mean, the primary responsibility of Reserve Bank of India is to control the inflation. And if the inflation is high, that where there are various tools, and one of the important tools is the interest rate. And not just in India, but if you talk about any country, and I believe you are taking cue from what Federal Reserve Chief has said. So he has talked about indicated that interest rate could go up because of the inflation. And in India, we are seeing that now the inflation is, of course, below 5%. It is around 4.5%. But because of the monsoons and because of the some other regions, we are likely to see some hike or some rise in the interest rate. If it happens, then of course there will be some issue on that. Going to your second question, of course I don't have any comment to offer about that particular case, but I can say you that NCLT has a set rules and regulation, and it decides on that only.
3: Global crude oil prices logged weekly losses amid hopes of a possible agreement to facilitate shipping through the Strait of Hormuz. Meanwhile, the traders also assessed comments from the US Fed Chair on inflation. During the week at the Intercontinental Exchange, Brent crude October futures fell by 5.4% to settle at $89.31 per barrel. West Texas Intermediate crude October futures dropped 4.2% to end at $83.40 per barrel.
1: Mumbai se hamare saath Ratnakar jud rahe hain. Ratnakar ji, karyakram mein aapka abhinandan. Kripya apna sawal poochiye.
6: Hello. मेरा सवाल है कि आने वाले समय में एफएमसीजी, डिफेंस और फार्मा सेक्टर, कौन से सेक्टर में निवेश करना उचित रहेगा? थैंक यू.
0: हम रत्नाकर जी के सवाल के जवाब के पहले एक छोटी सी बात जोड़ना चाहेंगे जो एनसीएलटी की बात की थी. एनसीएलटी से कोई भी अगर नाराज है या उनको लगता है कि शायद उनके प्रश्नों का समाधान नहीं हुआ है तो एनसीलैट में जा सकते हैं, जो एपिलेट है. वहां से भी अगर उनको संतोषजनक उनकी जो निर्णय है वो नहीं है तो उनके पास सुप्रीम कोर्ट का रास्ता होता है, जो इस मामले में हम देख रहे हैं. अब आपका जो प्रश्न है रत्नाकर जी, आपने एफएमसीजी की बात करी, आपने डिफेंस की बात की,
1: फार्मा
0: की बात की. दो जो बात के हैं, डिफेंस और फार्मा, मैंने अभी दो श्रोताओं के प्रश्न के जवाब में खास तौर पर उसका जिक्र किया था कि आप फार्मा में और डिफेंस में जा सकते हैं. इसके अलावा आईटी सेक्टर है और पब्लिक सेक्टर बैंक है, तो फाइनेंशियल सेक्टर में स्थिति थोड़ी अच्छी मुझे लग रही है. तो ये चार क्षेत्र हैं जहां पर आप मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं.
3: Prime Minister Narendra Modi has arrived in Tashkent, Uzbekistan today on a two-day visit. The business between both the countries has increased manifold in recent years, and the visit of PM Modi is expected to further increase

0: the business opportunity. We have a report from a correspondent.
1: India is among top 10 partners of Uzbekistan with bilateral trade of around 1 billion. Both countries want to double this figure in the next 3 years. Talking to Akashvani News, Alisher Shaikhov, advisor to the chairman of the Chamber of Commerce and Industry of Uzbekistan, said that both countries have the potential to double their business in the coming years.
2: With India, of course, the first is the pharmaceutical, healthcare, tourism, and medical tourism especially, and also IT, AI, and digital transformation. Because all the countries now are just moving to the digital transformation, and that's the where is we easily can find a lot of the potential to realize and just to get a huge profit just providing services, not only to Uzbekistan, Central Asia, CIS countries, but also to Europe, where, and also it can be Japan, South Korea, this where is the aging society is giving potential for us just to be present there.
1: Speaking to Akashvani News, Smita Pant, the ambassador of India in Uzbekistan, said that both countries will also discuss off-connectivity issues.
3: Despite connectivity bottlenecks, India or Uzbekistan natural markets hain. Hum zyada niryat kar sakte hain. Hum equipment, machinery, textile machinery, chemical, dyes, surgical equipments, isko hum export kar sakte hain. Hum unse zyada import bhi kar sakte hain. Because ye resource rich nation hai. Stumbling block jo hai, wo hai connectivity. To isko leke dono leaders baat karenge, dekhenge ki kya kiya ja sakta hai.
1: For Market Mantra, this is Sushil Chandra Tiwari from Tashkent, Uzbekistan.
4: केंद्रीय वित्त और कंपनी मामलों की मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक कंपनियों को अपनी आपूर्ति श्रृंखला और पूंजी आवंटन का फिर से आकलन करना चाहिए क्योंकि भारत न केवल विशाल बाजार उपलब्ध कराता है बल्कि दीर्घकालीन निवेश और संचालन मंच का भी आधार है। उन्होंने अमरीका के शिकागो में प्रमुख निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ एक उच्च स्तरीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। ये किस तरीके से हम इसके प्रोस्पेक्ट्स देख पा रहे हैं?
5: अभी आपने एक प्रश्न आया था कि हम जो परिस्थितियां देख रहे हैं उसमें विकास की स्थिति क्या रहेगी। आप देखिए, एक मंत्री निर्मला सीतारमण जी और पीयूष गोयल जी दोनों ही बाहर से ज्यादा निवेश लाने में जुटे हुए हैं। ये उसी दिशा में उठाया गया एक कदम है।
4: शिशिर जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जितने भी श्रोता जुड़े हैं उनके सवालों के जवाब देने के लिए, मेरे और राजेश के सवालों के जवाब देने के लिए।
5: धन्यवाद, नमस्कार।
0: बिफोर वी क्लोज द हेडलाइंस वंस अगेन, benchmark domestic indices fall for the third consecutive week. Sensex and Nifty drops over 0.3%. US stock market indices register weekly gains and global crude oil prices decline this week. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye.
6: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
7: You were listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 p.m.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज प्रोग्राम गीत मेरे मन मीत पहुंचेंगे आप तक कुछ एवरग्रीन फिल्म सॉन्ग्स। ये गीत है फिल्म दो रास्ते से, पहुंच रहा है आप तक। एंजॉय कीजिए।

संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

तो दिल की ये बेकरारी बनी रहे और ऐसे ही आप एफएम गोल्ड से जुड़े रहें, यही हम चाहते हैं। आप सुनते रहिए एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब से कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे समाचार और समाचारों के बाद आपकी हम सफर बनेंगी माधुरी। फिलहाल नूपुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन की उज्बेकिस्तान की यात्रा पर कल राजधानी ताशकंद पहुंचे। राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव ने उनका स्वागत किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी के स्वागत के लिए ताशकंद शहर में विशेष प्रबंध किए गए हैं।
1: पूरा ताशकंद शहर भारतीय झंडों और होर्डिंग से सजा हुआ है। हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चौथी यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव सदियों पुराने आपसी संबंधों को और मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। दोनों नेता राष्ट्रपति भवन में व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और जन संबंधों के क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे। वे विकसित भारत 2047 और उज्बेकिस्तान 2030 के साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर भी अपने विचार साझा करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
0: उज्बेकिस्तान के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की दो दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादोर जापारोव के निमंत्रण पर बिश्केक में 26वें शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। नेपाल में आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या 669 हो गई है और 2000 से अधिक लोग लापता हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बंद सड़कों को साफ करने का काम भी तेजी से चल रहा है। नेपाल के बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे हुए लोगों की तलाश और बचाव में भारत की मदद जारी है। 11 सदस्यीय भारतीय तकनीकी दल ने कल हाइड्रो पावर सुरंग का मौके पर जायजा लिया। डॉक्टरों, पैरामेडिक्स और इंजीनियरों वाली यह टीम शुक्रवार को काठमांडू पहुंची थी। कल वे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की सुरंग में फंसे मजदूरों को बचाने के काम में मदद के लिए नोवाकोट जिले के त्रिशूली पहुंचे।

0: पहुंचे। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक चिली में और लांगटांग इलाकों का हवाई सर्वे करने के बाद भारतीय टीम ने सुरंग के आसपास बचाव से जुड़ा जरूरी काम शुरू कर दिया। नेपाल की सेना, सशस्त्र पुलिस बल और नेपाल पुलिस के जवानों वाले 82 सदस्यों की एक संयुक्त रक्षा टीम कल से ही मलबा हटाने और सुरंग के अंदर फंसे माने जा रहे लोगों तक पहुंचने के काम में जुटी है। नेपाल की सेना के अनुसार नेपाली सुरक्षा बलों ने अब तक देश के विभिन्न पन बिजली परियोजनाओं की सुरंगों से 191 कर्मचारियों को बचाया है। हालांकि सुरंगों के अंदर और लोगों के फंसे होने की खबरों के बाद नेपाली अधिकारियों ने भारत से मदद मांगी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक कंपनियों को अपनी आपूर्ति श्रृंखला और पूंजी आवंटन का फिर से आकलन करना चाहिए, क्योंकि भारत न केवल विश्व बाजार उपलब्ध कराता है बल्कि दीर्घकालीन निवेश और संचालन मंच का भी आधार है। अमेरिका के शिकागो में प्रमुख निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ एक उच्च स्तरीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भारत में निवेश का तात्पर्य व्यापक बाजार, सतत आर्थिक विकास, कौशल युक्त प्रतिभा, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और एक दशक के सुधार से है। उन्होंने कहा कि देश का अगला आर्थिक विकास AI, इंजीनियरिंग, एनालिटिक्स, उत्पाद विकास, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स में निहित है। सरकार ने कहा है कि इस वर्ष जुलाई तक प्रति बूंद अधिक फसल योजना के अंतर्गत 115 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को लघु सिंचाई प्रणाली में लाया गया है। योजना का उद्देश्य खेत स्तर पर पानी के प्रयोग में दक्षता लाना और उसमें सुधार करना है। यह योजना जनवरी 2006 में केंद्र सरकार ने लघु सिंचाई के लिए शुरू की थी। वर्ष 2015-16 से 2021-22 तक इसका आधिकारिक नाम प्रति बूंद अधिक फसल किया गया और इसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के प्रमुख घटक के रूप में लागू किया गया। मौसम विभाग ने ओडिशा में अगले दो दिनों के लिए वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गंगा के तटवर्ती क्षेत्र में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। इसके अलावा बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और विदर्भ में भी तेज बरसात की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल के गंगा के तटवर्ती क्षेत्र और ओडिशा में बिजली चमकने तथा आंधी तूफान के आसार बचताए हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Neena Arakil. Prime Minister Narendra Modi arrived in Tashkent, the capital of Uzbekistan, last evening on a two-day visit aimed at further strengthening bilateral ties between India and Uzbekistan. He was warmly received by Uzbek President Shavkat Mirziyoyev at the airport. A correspondent covering the Prime Minister's visit reports that the entire Tashkent city has been decked up with Indian flags and colourful hoardings to welcome Prime Minister Modi on his fourth visit to the Central Asian country.
2: The Indian diaspora, comprising mostly of medical students in Tashkent, gathered for a special welcome for Prime Minister Modi. Tomorrow, Prime Minister Narendra Modi and President of Uzbekistan, Mr. Shavkat Mirziyoyev, will reflect upon the entire spectrum of bilateral relationship that are based on civilizational ties and built over centuries and strengthened by strong people-to-people ties. The two leaders would review cooperation in trade and investment, defense, digital connectivity, energy, education and people-to-people domains at the Presidential Palace. They will also share perspectives on advancing the shared development vision of Viksit Bharat 2047 and Uzbekistan 2030. Prime Minister Modi is also expected to visit the Shastri Memorial in Tashkent and the Mahatma Gandhi Center at the Tashkent State University of Oriental Studies. Sushil Chandra Tiwari, Akashvani News, Tashkent, Uzbekistan.
1: The death toll from devastating flash floods in Nepal and Tibet has risen to 669, with over 2,000 people remain missing. Search and rescue operations are underway across the affected districts of the Himalayan nation. Officials said the police are coordinating with residents and other agencies to locate missing people and assist those stranded by the floods. An 11-member technical team from India carried out on-site reconnaissance of hydropower tunnels in Nepal's flood-affected areas yesterday to facilitate search and rescue of stranded individuals. The team, comprising doctors, paramedics and tunnel engineers, had arrived in Kathmandu Friday. Yesterday, they reached Trishuli in Novakot district to assist in efforts to rescue workers trapped in a tunnel belonging to a hydropower project. In a social media post, the Indian Embassy in Kathmandu said yesterday a specialized technical team from India carried out on-site reconnaissance of hydropower tunnels in the area affected by the flash flood, which will help in facilitating early search and rescue of stranded individuals. Nepali security forces have so far rescued 191 workers from tunnels at various hydropower projects in the country, according to the Nepal Army. Union Finance and Corporate Affairs Minister Nirmala Sitharaman has said that as global companies reassess their supply chains and capital allocation, India offers not only the scale of a vast market but also the depth of a long-term investment and operating platform. She made these remarks while addressing a high-level business roundtable with leading investors and business leaders in Chicago, United States. Ms. Sitharaman also emphasized that India's investment appeal lies in the convergence of scale, sustained economic growth, skilled talent, world-class infrastructure. The United Nations Department of Peace Operations has said that Indian peacekeepers with the United Nations Interim Force for ABE, UNISFA, continue to assist internally displaced people in ABE. In a social media post, the UN department said Indian peacekeepers with UNISFA continue their commitment to assisting internally displaced persons in ABE. The mission's support includes critically needed basic services, educational initiatives, and community engagement. The government has said that more than 115 lakh hectares of farmland have been brought under micro-irrigation under the Per Drop More Crop scheme as of July this year. The initiative aims to promote efficient use of water at the farm level and improve water use efficiency in agriculture. India Meteorological Department has issued a red alert for rainfall conditions over Odisha for the next 2 days. And that is the end of this news bulletin.

जी हाँ, ये सुबहें, ये शामें, ये रातें, आते जाते कोई कहानी ही तो कह रहे हैं। कहानी मेरी, आपकी, हम सबकी। ये कहानी भी हमारी ही जिंदगी के किसी आते जाते लम्हे से टूटकर बनी है। ये कहानी बयां करती है एक बहन के दिल में उसके भाई के लिए उमड़ते स्नेह प्यार की, एक ऐसे इंसान की जिसे हालातों ने जीते जी मार डाला, लेकिन बहन ने उसे बचा लिया। आइए सुनते हैं कहानी प्यारा बंधन।

वो फुटपाथ के एक कोने में दीवार के सहारे दुबका बैठा था। कंबल लेने वालों की लाइन लगी थी, लेकिन वो उठकर नहीं आ रहा था। और जाने क्यों, सीमा की नजर बार बार उसकी ओर जा रही थी। उसने एक मैली कुचैली चादर में खुद को लपेट रखा था, सिर्फ आंखें ही नजर आ रही थी। जाने क्यों सीमा को लगा कि शायद वो वही होगा। सभी को कंबल देने के बाद सीमा उसकी ओर बढ़ गई। सीमा को अपनी ओर आती देखकर वो डर के मारे सिमट गया। ना जाने किस बात का डर था उसे, लेकिन जितना जितना वो खुद को छिपाता जा रहा था, उसे देखने की इच्छा सीमा के भीतर उतनी ही बलवती होती जा रही थी। जैसे ही सीमा उसके पास पहुंची, वो चुपचाप उठकर दूसरी ओर चला गया। सीमा ने उसे आवाज दी, लेकिन उसने अनसुना कर दिया। मन में हजारों अनसुलझे सवाल लेकर सीमा एक बार फिर से निराश मन और भारी कदमों से वापस घर की ओर मुड़ चली। उसके मन में ख्याल आ रहा था कि फुटपाथ पर बैठे इन लोगों में कोई किसी का पिता होगा, कोई किसी का बेटा, तो कोई किसी का भाई होगा। अनेक दयनीय निगाहें सीमा को उम्मीद भरी नजरों से

उस दिन के बाद सीमा जब भी उस रोड से गुजरती तो एक अनजानी आस जागती और निगाहें फिर उसी इंसान को खोजने लगती। उसे जाने क्यों बार बार लगता कि ये वही है जिसे वो ढूंढ रही है। इस महानगर की गलियों ने बरसों पहले निगल लिया था सीमा के छोटे भाई को। तब से गाहे बगाहे कंबल या खाना देने के बहाने वो इन फुटपाथों पर आ जाती और हर चेहरे में तलाशने लगती उसे, जिससे बचपन से एक प्यारा बंधन जुड़ा हुआ था। जब भी सावन का महीना और राखी का त्योहार आता तो भाई की याद में सीमा की आंखें सावन बन जाती। दिन भर उसकी राह निहारने के बाद जब रात को आसमान में चांद निकलता तो अनायास ही उसके होठों पर

उस दिन राखी का त्योहार था। भाई के लिए स्नेह प्रेम हर दीवार को तोड़ता हुआ महसूस हो रहा था और सीमा के कदम अनायास ही उस तरफ चल पड़े जहां उसने उस अजनबी को देखा था। सीमा ने मन ही मन में ये तय कर लिया कि हो ना हो आज मैं जरूर उससे बात करूंगी। वहां पहुंची तो वो अजनबी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी देर ढूंढने के बाद एक अंधेरे कोने में वो बैठा हुआ दिखाई दे ही गया। वही फटे कंबल में लिपटी उसकी आकृति बहुत डरावनी लग रही थी, लेकिन सीमा ने महसूस किया कि जब दिल में दया करुणा स्नेह प्रेम का भाव उठ रहा हो तो डर कहीं गायब हो जाता है। शायद दया करुणा प्रेम के भाव हर भाव से कहीं ज्यादा मजबूत होते हैं। सीमा उसकी ओर बढ़ चली। सीमा को देखते ही वो उठकर जाने लगा तो सीमा ने सामने जाकर उसे रोक लिया। वो ठिठका लेकिन रुका नहीं। सीमा ने उसे आवाज दी, सुनो भैया, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो रुक गया लेकिन बोला कुछ नहीं, बस सिर झुकाए खड़ा रहा। सीमा पूरे अपनत्व को समेट कर फिर बोली, कहाँ चले गए थे तुम? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। सीमा को इस तरह अपने सामने पाकर वो घबरा रहा था और खुद को भरसक छिपाने की कोशिश कर रहा था। सीमा बोली, डरो मत, मैं तुम्हारी बहन हूँ, पहचाना नहीं मुझे? उसने अपनी आंखों से थोड़ा सा कंबल हटाया और धीरे से बोला, मुझे कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। सीमा ने जल्दी से अपना बैग खोला, उसमें कुछ बिस्कुट पड़े थे। उसे पकड़ाते हुए बोली, अभी यही है मेरे पास। उसने जल्दी से बिस्कुट लिया और मुंह दूसरी तरफ करके इस तरह खाने लगा जैसे कई दिनों का भूखा हो। ये देखकर सीमा की आंखों में आंसू आ गए और वो सोचने लगी, किस्मत के खेल कितने निराले हैं, ना जाने किसको कौन सा दिन दिखा दे।

बिस्कुट खाने के बाद वो फिर मुड़कर जाने लगा तो सीमा बोली, सुनो मुझे तुमसे बात करनी है। उसने कहा, मुझसे क्या बात करनी है, मैं आपको नहीं जानता। लेकिन मुझे लगता है मैं आपको जानती हूँ, आप मेरे भाई हो। सीमा ने कहा तो उसने मुंह दूसरी ओर घुमाकर कहा, मैं किसी का भाई नहीं, आप जाइए यहाँ से। और हाँ, यहाँ बार बार मत आया कीजिए, ये जगह आपके लिए अच्छी नहीं। ठीक है मैं चली जाऊंगी, बस ये कंबल हटा दो। क्यों? उसने सवाल किया। क्योंकि मुझे तुम्हें देखना है, मेरा भाई खो गया है, मैं उसे ही ढूंढ रही हूं, मुझ पर दया करो। कौन खो गया है आपका? उसने धीरे से पूछा। मेरा इकलौता भाई, वो दिमागी तौर पर कमजोर है, गांव से यहां दिल्ली लेकर आई थी इलाज कराने, 12 साल का था, यही इसी रोड पर उसकी उंगली छूट गई और ना जाने कहां गुम हो गया मेरा भाई। तब से आज तक ढूंढ रही हूं, दिल्ली की हर गली छान मारी, हर न्यूज़पेपर में उसकी फोटो छपवाई, पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाई, लेकिन वो नहीं मिला, कहीं नहीं मिला। 10 साल हो गए तब से अपने भाई की तलाश में भटक रही हूं। अपनी आप बीती सुनाते सुनाते सीमा रोने लगी थी।

और वो बस चुप था। अब सीमा को उसकी खामोशी खलने लगी थी और उसे गुस्सा आने लगा। उसने चिढ़कर कहा, लगता है कि तुम्हारे भीतर सारी संवेदनाएं मर चुकी हैं, और वैसे भी तुम नकारा लोगों को संवेदनाओं और रिश्तों नातों से क्या, तुम मेरे भाई हो ही नहीं सकते। ये कहकर जैसे ही वापस वो मुड़ने को हुई, उस अजनबी ने ओढ़ा हुआ कंबल गिरा दिया। सीमा की नजर उसके चेहरे पर पड़ी तो उसकी चीख निकल गई। डर के मारे उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसका जला हुआ चेहरा बहुत बदसूरत और भयानक था। कुछ पल बाद सीमा ने नजरें उठाई और सुना कि वो कह रहा था, देख लिया, मैं नहीं हूं आपका भाई। सीमा ने खुद पर नियंत्रण किया और बोली, कौन हो तुम और ये तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? वो धम्म से पास पड़े एक पत्थर पर बैठ गया। उसकी आंखें कहीं अतीत की गहराइयों में जा पहुंची और उसके होठों पर उसकी गुजरी हुई कहानी

सोहन एक संपन्न परिवार का इकलौता बेटा था। पिता सोहन लाल कपड़ों के बिजनेसमैन थे। घर में माँ और एक छोटी बहन थी। किसी चीज की कोई कमी ना थी। माता पिता ने मोहन को बड़े प्यार और दुलार से बड़ा किया। दुख तकलीफ ने मोहन को छुआ भी ना था। मोहन जब बड़ा हुआ तो उसकी शादी उसकी पसंद की एक लड़की कामना से हुई। कामना बेहद खूबसूरत और समझदार थी। दिन बहुत अच्छे से गुजर रहे थे कि अचानक एक दिन सोहन लाल को दिल का दौरा पड़ा और वो अपनी सारी जिम्मेदारी मोहन के कंधों पर डालकर चल बसे। मोहन को तब पहली बार पता चला कि दुख हो या सुख, इंसान को ठहरना नहीं है, बस आगे बढ़ते जाना है।

के हाथों में है। ये जैसे चाहे इंसान को नाचना ही पड़ता है। मोहन की जिंदगी फिर से आगे बढ़ने लगी थी और वो जी जान से अपना परिवार और बिजनेस संभालने लगा। मोहन की पत्नी कामना भी बिजनेस में उसका हाथ बटाने लगी। मोहन अपने परिवार से बहुत प्यार करता था, खास तौर पर अपनी बूढ़ी माँ और छोटी बहन कमला से। जब भी राखी या भाई दूज का त्योहार आता तो मोहन सारे काम छोड़कर छुट्टी ले लेता और दोनों भाई बहन खूब खुशियां मनाते। मोहन अक्सर अपनी बहन को ये गीत गाकर छेड़ा करता।

सुख या दुख, समय कोई भी हो, हमेशा एक सा नहीं रहता। एक दिन मोहन ऑफिस में बैठा काम कर रहा था, तभी पड़ोस के गुप्ता अंकल की कॉल आई। हेलो हेलो मोहन बेटा, तुम्हारे घर से धुआं उठ रहा है, जल्दी घर आ जाओ। मोहन बदहवास घर की ओर भागा। घर पहुंचकर उसने देखा कि घर से लपटें उठ रही हैं। वो माँ माँ चीखता हुआ जलते घर में कूद पड़ा। मोहन को जब हॉस्पिटल में होश आया तो उसकी दुनिया लुट चुकी थी। उसकी माँ और बहन को आग निगल गई थी और वो हमेशा के लिए अपना खूबसूरत चेहरा खो चुका था।

0: वक्त की हर शै गुलाम, वक्त का हर शै फेराज।
1: मोहन निराशा के भंवर में डूबने लगा। न किसी से मिलता, न किसी से बात करता, बस घर के एक कोने में पड़ा रहता। वो इस अपराध बोध से ग्रसित था कि वो अपनी बूढ़ी माँ और छोटी बहन को बचा नहीं पाया। मोहन एक गहरे डिप्रेशन में जा चुका था और फिर एक रात चुपचाप उसने घर छोड़ दिया।

कई बार मर जाने की सोचे, लेकिन जिंदगी मौत से ज्यादा ताकतवर निकली। जाने कब कहां कहां से भटकते भटकते यहां फुटपाथ पर आ बैठा। दिन भर उजाले में छिपकर सोया रहता, रात को खाने की तलाश में निकलता और कहीं कुछ इधर उधर से किसी का फेंका हुआ खाने को मिल जाता तो वो उसी से अपना पेट भर लेता। ये कोई जिंदगी तो नहीं थी, मगर इसके अलावा मोहन के पास कोई और रास्ता भी नहीं था। या यूं कहें कि जब इंसान की जीने की इच्छा ही मर जाए तो रास्ते होते हुए भी खो जाते हैं और इंसान बस एक जिंदा लाश बनकर रह जाता है और जिंदगी एक पहेली।

मोहन अपनी दर्द भरी दास्तां सुनाकर चुप हो चुका था। अब शायद वो सीमा की प्रतिक्रिया जानना चाहता था। सीमा को खामोश देखकर उसने अपना कंबल उठाया और चल दिया। सीमा सोच रही थी कि अब क्या करना है। अचानक उसने पीछे से मोहन का हाथ पकड़ लिया और बोली, भैया घर चलो, माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। आज राखी है ना, देखो तुम्हारी कलाई

साथियों, तो ये थी कहानी प्यारा बंधन। कहानी की प्रस्तुति और निर्देशन रश्मि कुकरेती का। आपको ये कहानी कैसी लगी, आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868867533 पर मैसेज करके बता सकते हैं। इसके अलावा आप अपने सुझाव हमारी मेल आईडी fmgoldairdaily@gmail.com पर भी हमें भेज सकते हैं। तो अब दीजिए इजाजत मुझे यानी कुसुम को। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन की उज्बेकिस्तान की यात्रा पर कल राजधानी ताशकंद पहुंचे। राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव ने उनका स्वागत किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी के स्वागत के लिए ताशकंद शहर में विशेष प्रबंध किए गए हैं।
1: पूरा ताशकंद शहर भारतीय झंडों और होर्डिंग से सजा हुआ है। हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चौथी यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव सदियों पुराने आपसी संबंधों को और मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। दोनों नेता राष्ट्रपति भवन में व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और जन संबंधों के क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे। वे विकसित भारत 2047 और उज्बेकिस्तान 2030 के साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर भी अपने विचार साझा करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
0: उज्बेकिस्तान के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की दो दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादोर जापारोव के निमंत्रण पर बिश्केक में 26वें शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। नेपाल में आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या 669 हो गई है और 2000 से अधिक लोग लापता हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बंद सड़कों को साफ करने का काम भी तेजी से चल रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि बुधवार को नेपाल में अचानक आई बाढ़ की त्रासदी के बाद अब तक 108 भारतीयों को बचाया गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने कहा कि लगभग 50 भारतीय नागरिकों से संपर्क फिर से स्थापित हो गया है, जिनसे पहले संपर्क नहीं हो पा रहा था। मंत्रालय ने कहा कि 275 भारतीय नागरिक लापता बताए जा रहे हैं और भारतीय मूल के लगभग 128 लोग, जिनके पास दूसरे देश की नागरिकता है, वे भी लापता हैं। स्थानीय सरकारी सूत्रों के अनुसार पिछले दो दिनों में 598 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल में दाखिल हुए। इस बीच चीन में रुके 900 भारतीय सुरक्षित हैं और बीजिंग में भारतीय दूतावास उनसे सीधे या स्थानीय सरकार के माध्यम से संपर्क में है। मंत्रालय ने कहा कि भारत सरकार बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए जल्द से जल्द बचाव और राहत कार्यों के लिए नेपाल और चीन के अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रही है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि 11 टन सहायता सामग्री के साथ चौथा विमान C-130J हरक्यूलिस काठमांडू के लिए रवाना हुआ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन

0: ने कहा है कि वैश्विक कंपनियों को अपनी आपूर्ति श्रृंखला और पूंजी आवंटन का फिर से आकलन करना चाहिए, क्योंकि भारत न केवल विशाल बाजार उपलब्ध कराता है बल्कि दीर्घकालीन निवेश और संचालन मंच का भी आधार है। अमेरिका के शिकागो में प्रमुख निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ एक उच्च स्तरीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भारत में निवेश का तात्पर्य व्यापक बाजार, सतत आर्थिक विकास, कौशल युक्त प्रतिभा और विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और एक दशक के सुधार से है। उन्होंने कहा कि देश का अगला आर्थिक विकास AI, इंजीनियरिंग, एनालिटिक्स, उत्पाद विकास, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक से निहित है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज से 2 दिन के दौरे पर केरलम पहुंचेंगे। वे अल्पुझा में प्रमुख मलयालम दैनिक केरल कौमुदी के 115वें स्थापना वर्ष समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति पथनमथिट्टा में केरलम की प्रसिद्ध अरनमुला नौका दौड़ का उद्घाटन करेंगे। पंपा नदी में होने वाली इस वार्षिक नौका दौड़ में 51 स्नेक बोट हिस्सा लेंगी। साथ ही तिरुवनंतपुरम में ओणम पर्यटन सप्ताह के समापन समारोह का उद्घाटन भी करेंगे। श्री राधाकृष्णन सोमवार को लक्षद्वीप के अगत्ती जाएंगे, जहां वे मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के जनसंपर्क कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। केरलम लौटने पर वे कोची के ककनाड में राजगिरी स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की रजत जयंती समारोह में भी शामिल होंगे। मौसम विभाग ने ओडिशा में अगले 2 दिनों के लिए वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। इसके अलावा बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश में भी तेज बरसात की आशंका जताई गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। Prime Minister Narendra Modi arrived in Tashkent, the capital of Uzbekistan, last evening on a 2-day visit aimed at further strengthening bilateral ties between India and Uzbekistan. He was warmly received by Uzbek resident Shavkat Mirziyoyev at the airport. Our correspondent covering the Prime Minister's visit reports that the entire Tashkent city has been decked out with Indian flags and colourful hoardings to welcome Prime Minister Modi on his 4th visit to the Central Asian country. The External Affairs Ministry has said that 108 Indian nationals have been rescued so far in Nepal following flash flood tragedy on Wednesday. In a social media post, the External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said that the contact was re-established with around 50 Indian nationals who were earlier uncontactable. The ministry said that 275 Indian nationals are reportedly missing and around 128 people of Indian origin holding other nationalities also remain missing. As per local government source, 598 Indian nationals crossed into Nepal from China in the last 2 days. Meanwhile, 900 Indian nationals who are yet to depart from China are safe, and an Indian embassy in Beijing is in touch with them directly or through the local government. The ministry added that the government of India has been working in close coordination with the Nepali and Chinese authorities for the early rescue and relief efforts of those affected by the floods. A round-the-clock control room has been established in the Ministry of External Affairs, and the Indian embassies in Kathmandu and Beijing have 24/7 helplines operational. It said both embassies have also remained engaged with all the relevant stakeholders to ensure effective coordination of search, rescue and relief efforts. In the meantime, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said that a 4th aircraft sortie, C-130J Hercules, with 11-ton assistance has departed for Kathmandu today. Union Finance and Corporate Affairs Minister Nirmala Sitharaman has said that as global companies reassess their supply chains and capital allocation, India offers not only the scale of a vast market but also the depth of a long-term investment and operating platform. She made these remarks while addressing a high-level business roundtable with leading investors and business leaders in the United States. Vice President of India CP Radhakrishnan will arrive in Keralam today for a 2-day visit to the state. He will attend the 115th anniversary celebrations of Kerala Kannudi, one of the leading Malayalam dailies, in Alappuzha. The Vice President will thereafter proceed to Pathanamthitta to inaugurate the Aranmula Water Festival, one of the oldest and most prestigious boat races in Keralam.

0: आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। और ये सफर शुरू हो गया है गीत सुहाने का, जिसे लेकर आज की रात माधुरी है आप सभी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्यारे से सफर को।
1: झुमका गिरा रे हाय, झुमका

गीत सुहाने में हम लेकर आए हैं बहुत ही प्यारे प्यारे सुहाने से गीत, और ये गीत सुन रहे थे आप मेरा साया फिल्म से आशा जी की आवाज मदन मोहन के संगीत के साथ।

तो भाई ये प्यारा सा गीत आप सुन रहे थे फिल्म तीसरी मंजिल से, आशा, मोहम्मद रफ़ी, आर डी बर्मन और साथियों की आवाज़ में, और बहुत ही बेहतरीन गीत अभी हम सब ने सुना। और इसके बाद अगला गीत हम लेकर आ रहे हैं फिल्म जब जब फूल खिले से।

तो अभी आपने ये गीत सुना फिल्म जब जब फूल के लिए से, और अगला गीत हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए फिल्म वक्त से। गीत क्या ये कव्वाली है जो बहुत ही मशहूर है और सभी को हमेशा पसंद आती है, तो चलिए आनंद उठाते हैं इसका।

कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

जी आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और रात्रि के 1:30 और हो गए हैं पूरे 30 सेकंड। माधुरी है आपके साथ और हम और आप दोनों मिलकर सुन रहे हैं गीत सुहाने। तो हमें यकीन है कि ये सुहाने सुहाने जो गीत हैं, कव्वालियां हैं, आपको अच्छी लग रही होंगी। तो अगला गाना हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए फिल्म किस्मत से, और इसे गाया है आशा जी ने, शमशाद बेगम ने, साथियों ने मिलकर, ओपी नैयर के संगीत से सजाया ये गाना आप सभी के लिए।

इजहार मोहब्बत पे ये सवाल और उनके ये खूबसूरत जवाब बस इसी कव्वाली में मिलते हैं और सच में दिल को छूने वाले दिल अजीज मतलब सवाल जवाब हैं ये। और इतने मतलब जो इजहार किया है क्या खूबसूरती से किया है, वाह। और इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले गीत की तरफ। अगला गीत हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए फिल्म पड़ोसन से। गीत कौन सा है अभी पता चल जाएगा आपको और इसे गाने वाले हैं लता जी, आशा जी और साथियों की आवाजें आपको सुनाई देंगी। आर डी बर्मन साहब का संगीत है।

तो भाई ये तो लड़कियों की टोली जा रही थी और गाती गुनगुनाती हुई एकदम अपनी मस्ती में। और इस टोली के बाद आगे हम चलते हैं जहां फिल्म है एक मुसाफिर एक हसीना। इसका गीत हम लेकर आए आपके लिए आशा जी और मोहम्मद रफी साहब की आवाजों में, संगीत ओपी नैयर जी का और बोल लिखे हैं राजा मेहंदी अली खान साहब ने।

रंग कोई भी हो, इश्क में सारे रंग एक हो जाते हैं। कितनी प्यारी बात कही है इस गीत में। और इस प्यारे से गीत के बाद बढ़ते हैं अगले गीत की तरफ, जो हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए फिल्म तीसरी कसम से, आशा जी की आवाज में। और संगीत जो है वो दिया है शंकर जयकिशन ने।

भाई इस प्यारे से गीत ने तो एकदम जो झपकियां आ रही थी ना वो भी उड़ा दी हैं। चलिए ये गीत तो आपने सुना, अब इसके बाद अगला गीत कौन सा होने वाला है? वो है फिल्म महबूब मेरे महबूब से, नहीं माफ कीजिएगा, अगला गीत होने वाला है आप सभी के लिए फिल्म अदालत से, लता जी की आवाज में मदन मोहन के संगीत के साथ। और लीजिए पेशी नजर है आपके ये अगला गीत।

तो गीत सुहाने का ये सफर यहीं पर समाप्त होता है। आपसे फिर मिलूंगी 2:10 पर लेकर आऊंगी रात सुरमई कार्यक्रम, और अब से कुछ ही देर में प्रसारित किए जाएंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन की उज्बेकिस्तान की यात्रा पर कल राजधानी ताशकंद पहुंचे। राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेफ ने उनका स्वागत किया। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी के स्वागत के लिए ताशकंद शहर में विशेष प्रबंध किए गए थे।
1: पूरा ताशकंद शहर भारतीय झंडों और होर्डिंग से सजा हुआ है। हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चौथी यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव सदियों पुराने आपसी संबंधों को और मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। दोनों नेता राष्ट्रपति भवन में व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और जन संबंधों के क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे। वे विकसित भारत 2047 और उज्बेकिस्तान 2030 के साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर भी अपने विचार साझा करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
0: उज्बेकिस्तान के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की दो दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादर जापारोव के निमंत्रण पर बिश्केक में 26वें शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। नेपाल में आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या 669 हो गई है और 2000 से अधिक लोग लापता हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बंद सड़कों को साफ करने का काम भी तेजी से चल रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि बुधवार को नेपाल में अचानक आई बाढ़ की त्रासदी के बाद अब तक 108 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि लगभग 50 भारतीय नागरिकों से संपर्क फिर से स्थापित हो गया है, जिससे पहले संपर्क नहीं हो पा रहा था। मंत्रालय ने कहा कि 275 भारतीय नागरिक लापता बताए जा रहे हैं और भारतीय मूल के लगभग 128 लोग जिनके पास दूसरे देश की नागरिकता है वे भी लापता हैं। स्थानीय सरकारी सूत्रों के अनुसार पिछले दो दिनों में 598 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल में दाखिल हुए। इस बीच चीन में रुके 900 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और बीजिंग में भारतीय दूतावास उनसे सीधे या स्थानीय सरकार के माध्यम से संपर्क में है। मंत्रालय ने कहा कि भारत सरकार बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए जल्द से जल्द बचाव और राहत कार्यों के लिए नेपाल और चीन के अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रही है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि 11 टन सहायता सामग्री के साथ चौथा विमान C-130J हरक्यूलिस काठमांडू के लिए रवाना हुआ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक कंपनियों को अपनी आपूर्ति श्रृंखला और पूंजी आवंटन का फिर से आकलन करना चाहिए, क्योंकि भारत न केवल विशाल बाजार उपलब्ध कराता है बल्कि दीर्घकालीन निवेश और संचालन मंच का भी आधार है। अमेरिका के शिकागो में प्रमुख निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ एक उच्च स्तरीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भारत में निवेश का तात्पर्य व्यापक बाजार, सतत आर्थिक विकास, कौशल युक्त प्रतिभा, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और एक दशक के सुधार से है। उन्होंने कहा कि देश का अगला आर्थिक विकास AI, इंजीनियरिंग, एनालिटिक्स, उत्पाद विकास, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स में निहित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम का 137वां एपिसोड होगा। यह कार्यक्रम पूरे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसे AIR न्यूज, DD न्यूज, PMO और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनल पर लाइव स्ट्रीम भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी क्षेत्रीय भाषाओं में भी इस कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज से दो दिन के दौरे पर केरल पहुंचेंगे। वे अल्पुझा में प्रमुख मलयालम दैनिक केरल कौमुदी के 115वें स्थापना वर्ष समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति पथनमिट्टा में केरलम की प्रसिद्ध अरनमुला नौका दौड़ का उद्घाटन करेंगे। श्री राधाकृष्णन सोमवार को लक्षद्वीप के अगत्ती जाएंगे, जहां वे मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के जनसंपर्क कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर सुन रहे हैं आप सभी। राज सुरमई लेकर माधुरी है आप सभी के साथ, और चलिए शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ।

अकेले हम अकेले तुम फिल्म से ये गीत पहुंचा आप सभी तक। हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, उम्रें बीत जाती हैं दिल को दिल बनाने में।

अब ये तो हमें मालूम है कि आप समझ गए हैं कि अभी आपने कौन सी फिल्म का गीत सुना। जी हाँ, साजन फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, नदीम श्रवण का संगीत। और अगला गीत जो हम लेकर

लेकर आए हैं आपके लिए फिल्म राजा हिंदुस्तानी से है, और उससे पहले एक शेर मेरा सुनते जाइए कि तुम्हें जरूर कोई चाहतों से देखता होगा, तुम्हें जरूर कोई चाहतों से देखता होगा, मगर वो आंखें हमारी कहां से लाएगा।

0: जोकर।
1: उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में ये गीत सुन रहे थे आप, फिल्म राजा हिंदुस्तानी से, संगीत नदीम श्रवण का और बोल लिखे समीर साहब ने। और कुछ उसके आगे अब हम बोलेंगे, है मोहब्बत की कैसी ये जादूगरी, है मोहब्बत की कैसी ये जादूगरी, दूर रहकर दिलों में ना दूरी बढ़ी, रास्ते मिलके दो एक सफर हो गए, एक मैं हो गया एक तुम हो गए।

फिल्म बॉम्बे से ये गीत सुना आपने रेमो फर्नांडिस की आवाज में, एआर रहमान का संगीत और बोल महबूब साहब के। रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ, आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ।

जी हाँ, जिंदा रहने के लिए एक मुलाकात जरूरी है सनम। सिर्फ तुम फिल्म से ये गीत सुना आप सभी ने। कलाकार अमीन साबरी और फरीद साबरी थे, संगीत नदीम श्रवण का और बोल समीर के। मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का, उसी को

0: और इसी के साथ रात सुरमई का ये सफर भी यहीं पूरा हुआ जाता है। और दीजिए माधुरी को इजाजत, 3:10 पर हमराही लेकर रूपा होंगे आपके साथ। फिलहाल सुनिए समाचार। आज की
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की उज्बेकिस्तान की यात्रा पर कल राजधानी ताशकंद पहुंचे। राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेफ ने उनका स्वागत किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी के स्वागत के लिए ताशकंद शहर में विशेष प्रबंध किए गए थे।
2: पूरा ताशकंद शहर भारतीय झंडों और होर्डिंग से सजा हुआ है। हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चौथी यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव सदियों पुराने आपसी संबंधों को और मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। दोनों नेता राष्ट्रपति भवन में व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और जन संबंधों के क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे। वे विकसित भारत 2047 और उज्बेकिस्तान 2030 के साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर भी अपने विचार साझा करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
1: उज्बेकिस्तान के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादोर जापारोव के निमंत्रण पर बिश्केक में 26वें शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। नेपाल में आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या 669 हो गई है और 2000 से अधिक लोग लापता हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बंद सड़कों को साफ करने का काम भी तेजी से चल रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि बुधवार को नेपाल में अचानक आई बाढ़ की त्रासदी के बाद अब तक 108 भारतीयों को बचाया गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि लगभग 50 भारतीय नागरिकों से संपर्क फिर से स्थापित हो गया है, जिससे पहले संपर्क नहीं हो पा रहा था। मंत्रालय ने कहा कि 275 भारतीय नागरिक लापता बताए जा रहे हैं और भारतीय मूल के लगभग 128 लोग जिनके पास दूसरे देश की नागरिकता है वे भी लापता है। स्थानीय सरकारी सूत्रों के अनुसार पिछले 2 दिनों में 598 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल में दाखिल हुए। इस बीच चीन में रुके 900 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और बीजिंग में भारतीय दूतावास या उनसे सीधे या स्थानीय सरकार के माध्यम से संपर्क में हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि वैश्विक कंपनियों को अपनी आपूर्ति श्रृंखला और पूंजी आवंटन का फिर से आकलन करना चाहिए, क्योंकि भारत न केवल विशाल बाजार उपलब्ध कराता है बल्कि दीर्घकालीन निवेश और संचालन मंच का आधार भी है। अमेरिका के शिकागो में प्रमुख निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ एक उच्च स्तरीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भारत में निवेश का तात्पर्य व्यापक बाजार, सतत आर्थिक विकास, कौशल युक्त प्रतिभा, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और एक दशक के सुधार से है। उन्होंने कहा कि देश का अगला आर्थिक विकास AI, इंजीनियरिंग, एनालिटिक्स, उत्पाद विकास, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स में निहित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम का 137वां एपिसोड होगा। यह कार्यक्रम पूरे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसे AIR न्यूज, DD न्यूज, PMO और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर लाइव स्ट्रीम भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण करेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि जो हिंदू यह मानता है कि भारत में मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है, वह हिंदू नहीं रह जाता। उन्होंने जोर देकर कहा कि हिंदुत्व हर इंसान की गरिमा को पहचानता है और एक ही सच तक पहुंचने के अलग अलग रास्तों को स्वीकार करता है। न्यूयॉर्क में एक

नमस्कार आप सभी को, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हुआ है 3:11 और 16 सेकंड। हमराही कार्यक्रम के जरिए आज हम आपको लेके चलेंगे एक ऐसे शहर में जहाँ का कोई नक्शा नहीं है। जी हाँ जनाब, हैरान हो गए ना आप। ये और नहीं, ये है हमारे सपनों की सुनहरी और अनकही दुनिया, जहाँ ना कोई नियम है ना ही कोई पाबंदी। तो चलिए हमारे साथ आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर बातें और गीत होंगे सपनों के, और आज आपके साथ रहूंगी मैं, आप ही की दोस्त रूपा धवन। और किसी ने खूब कहा है कि आपकी पलकों के पीछे छुपी हुई है एक पूरी अनकही दास्तान। आइए सुनते हैं इसी दास्तान को इस गीत के जरिए, जिसे हम शामिल कर रहे हैं तलाश फिल्म से।

0: जी हाँ, नैनो ने सपनों की महफिल सजा ली है और आप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और बातें हो रही हैं, आज गीत सुन रहे हैं हम आज सपनों पर। तो दोस्तों, वैसे तो मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि सपने हमारी अवचेतन सोच का आईना है। वो बातें जिन्हें हम दिन के उजाले में खुद से भी छुपाते हैं, वो रात के अंधेरे में सपनों का रूप लेकर आ जाती हैं। क्या आप याद करोगे कि कौन सा आपका अपना वो है जो सपना ऐसा अनकहा है अब तक, जो अब तक पूरा नहीं हुआ, जिसको आप कह नहीं पाए, साझा नहीं कर पाए? तो चलिए इसी एहसास को घोलते हैं संगीत में और सुनते हैं ये सुरीला नगमा सिलसिला फिल्म से।
1: ओ सपनों की रानी,
0: सिलसिला फिल्म का गीत अगली बार सुनवाएंगे। फिलहाल ये गीत आप सभी के लिए बन फूल से।

कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

साथियों, सपने वो अनकहे खत हैं जो हमारा मन खुद को ही लिखता है। सपनों की ये अनकही दुनिया भी कितनी अजीब है। रात के होने पर सपनों के रूप में हमारे मन में छुपी हुई बातें कभी हमें हंसाती हैं तो हमें कभी रुलाती हैं, और साथ ही साथ इन दोनों के अलावा हमें कभी कभी डराती भी हैं। यही नहीं, बरसों पुराने

खोए हुए लम्हों से कभी कभी हमें दोबारा मिला भी देती है। हमराही कार्यक्रम में आप जुड़ चुके हैं अपने ही दोस्त रूपा के साथ। समय हुआ है 3:29 और 25 सेकंड। आप सुन रहे हैं सपनों पर आधारित बातें और उनसे जुड़े गीत।

मोहब्बत और सपनों के इसी खूबसूरत रिश्ते को बयां करता हुआ एक ऐसा ही बेहतरीन गीत सुनते हैं, आइए।

रात ढली तो ख्वाब सजाए, दिल ने चुपके से गीत गाए। थम जाए भले ही दुनिया सारी, मोहब्बत का सफर चलता जाए। हाँ, मोहब्बत का सफर चलता जाए।

तो दोस्तों, बीते दिनों की मीठी बातें सपनों में जगमगाती रातें, कुछ खट्टी मीठी सी पुरानी यादें जैसे पलकों पर ठहरी हो बरसातें। हाँ, सपनों की सुनहरी यादें दिल में कई नई उम्मीद जगा देती हैं। थम जाए भले ही दुनिया सारी, मोहब्बत का ये सफर चलता रहता है, चलता रहता है और चलता रहता है।

जाएगी, क्योंकि कल सुबह इन्हीं ख्वाबों को सच जो बनाना है। तो इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए हमारे साथ, दिन पर दिन गाते रहिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।

और इसी के साथ हमराही से विदा लेते हैं रूपा, लेकिन आप इसी तरह गुनगुनाते रहिए, सपनों को सजाते रहिए। और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार और उसके बाद फिर से आपके लिए लेकर आऊंगी अरुणिमा। तब तक के लिए विदा दीजिए, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन की उज्बेकिस्तान की यात्रा पर कल राजधानी ताशकंद पहुंचे। राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव ने उनका स्वागत किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी के स्वागत के लिए ताशकंद शहर में विशेष प्रबंध किए गए थे।
1: पूरा ताशकंद शहर भारतीय झंडों और होर्डिंग से सजा हुआ है। हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चौथी यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव सदियों पुराने आपसी संबंधों को और मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। दोनों नेता राष्ट्रपति भवन में व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और जन संबंधों के क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे। वे विकसित भारत 2047 और उज्बेकिस्तान 2030 के साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर भी अपने विचार साझा करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
0: उज्बेकिस्तान के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की दो दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादोर जापारोव के निमंत्रण पर बिश्केक में 26वें शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। नेपाल में आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या 669 हो गई है और 2000 से अधिक लोग लापता हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बंद सड़कों को साफ करने का काम भी तेजी से चल रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि बुधवार को नेपाल में आई अचानक बाढ़ की त्रासदी के बाद अब तक 108 भारतीयों को बचाया गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि लगभग 50 भारतीय नागरिकों से संपर्क फिर से स्थापित हो गया है, जिनसे पहले संपर्क नहीं हो पा रहा था। मंत्रालय ने कहा कि 275 भारतीय नागरिक लापता बताए जा रहे हैं और भारतीय मूल के लगभग 128 लोग, जिनके पास दूसरे देश की नागरिकता है, वे भी लापता हैं। स्थानीय सरकारी सूत्रों के अनुसार पिछले दो दिनों में 598 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल में दाखिल हुए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक कंपनियों को अपनी आपूर्ति श्रृंखला और पूंजी आवंटन का फिर से आकलन करना चाहिए, क्योंकि भारत न केवल विशाल बाजार उपलब्ध कराता है बल्कि दीर्घकालीन निवेश और संचालन मंच का भी आधार है। अमेरिका के शिकागो में प्रमुख निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ एक उच्च स्तरीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भारत में निवेश का तात्पर्य व्यापक बाजार, सतत आर्थिक विकास, कौशलयुक्त प्रतिभा, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और एक दशक के सुधार से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम का 137वां एपिसोड होगा। यह कार्यक्रम पूरे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसे AIR न्यूज, DD न्यूज, PMO और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर लाइव स्ट्रीम भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी क्षेत्रीय भाषाओं में भी इस कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज से दो दिन के दौरे पर केरलम पहुंचेंगे। वे अलपुझा में प्रमुख मलयालम दैनिक केरल कौमुदी के 115वें स्थापना वर्ष समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति पथनम थिट्टा में केरलम की प्रसिद्ध अरनमुला नौका दौड़ का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि जो हिंदू ये मानता है कि भारत में मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है, वह हिंदू नहीं रह जाता। उन्होंने जोर देकर कहा कि हिंदुत्व तो हर इंसान की गरिमा को पहचानता है और एक ही सच तक पहुंचने के अलग अलग रास्तों को स्वीकार करता है। मौसम विभाग ने ओडिशा में अगले दो दिनों के लिए वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। इसके अलावा बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और विदर्भ में भी आज तेज बरसात की आशंका जताई गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 4:11 और 17 सेकंड हो चले हैं। आप हैं अपने ही दोस्त रूपा के साथ। जैसा कि मैंने वादा किया था कि अरुणिमा में आपसे फिर से मुलाकात होगी, और लीजिए एक बार फिर से आपके साथ हूँ मैं, और 6 बजे तक आपके साथ ही रहूँगी। तो इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ। और आज अरुणिमा में हम आपको सुनवाएंगे कुछ चुनिंदा गीतों को, और बातें करेंगे आपके साथ कुछ बहुत ही सकारात्मक बातें। तो जनाब, सकारात्मक विचारों का हमारी दुनिया में थोड़ा सा तो कहीं ना कहीं हम कंजूसी करते हैं अपने आप को सकारात्मक रखने में। तो आज इन्हीं सकारात्मक विचारों के साथ आज हम आगे बढ़ेंगे अरुणिमा में। तो स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार, और सुनते हैं एक बहुत ही प्यारी सी मीठी सी ये कहानी।

दोस्तों, सफलता का कोई छोटा रास्ता नहीं होता, लेकिन हाँ, हर छोटा प्रयास आपको अपनी मंजिल के करीब ले जाता है। हर दिन की एक छोटी सी कोशिश ही बड़ी सफलता की एक ना एक दिन नींव रखती है।

साथियों, परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, आपकी सोच तय करती है कि आप उनसे हारेंगे या सीखकर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि कभी कभी अपना नजरिया बदलने से भी हमारी जो मुश्किलें इतनी कठिन लगती हैं वो आसान हो जाती हैं। आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz के साथ। समय हुआ है हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार 4:24 और 44 सेकेंड। आप हैं अपनी दोस्त रूपा के साथ।

जी हाँ, मुश्किल और कठिन समय में अपनों का साथ बहुत अहमियत रखता है। जब अपने साथ हो तो हर मुश्किल से दुनिया जीती जा सकती है। दूसरों की भलाई भी जो करते हैं, उनका किया गया ये छोटा सा काम भी हमारे जीवन में, आपके जीवन में बड़ी शांति और खुशी लेकर आता है। कभी ना कभी आपने किसी ना किसी की छोटी सी मदद की ही होगी, और जो मदद पाने वाला है ना, जब उसकी मदद पूरी हो गई, उसका काम पूरा हो गया, तो उसके चेहरे पर जो मुस्कान होती है, उसे देखकर आपको भी ज़रूर कभी ना कभी खुशी तो मिली ही होगी।

वक्त दस्तक दे रहा है, धीरे धीरे निकल रहा है हाथों से, जैसे हाथों में से मुट्ठी में से, मुट्ठी में से रेत भरी होती है ना, तो जब मुट्ठी को रेत को जितना भी बंद करो

हाथों से फिसलती रहती है और कहती है कि मैं नहीं रुकूंगी, मैं भी समय के साथ साथ बह रही हूँ, आप भी समय के साथ चलिए। इसी तरह हमारे स्टूडियो की घड़ी भी कह रही है, इशारा दे रही है 4:40 आप हैं अरुणिमा के सफर पर रूपा के साथ। साथियों, हमारा आत्मविश्वास ही हमें हरा सकता है, आत्मविश्वास ही हमें ऊंचा उठा सकता है, यानी आत्मविश्वास हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जब तक हम खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक ईश्वर भी हमारा साथ नहीं देते। तो अपने दिल को मजबूत करिए, आत्मविश्वास को मजबूत करिए और चल पड़िए एक नई सफर पर, उस नई राहों पर जो आपको आपकी मंजिलों के मुकाम तक पहुंचाएगी।

मुस्कुराहट एक ऐसा दिया जो दूसरों के दिलों में भी रोशनी कर देता है। आपकी एक छोटी सी मुस्कान किसी का पूरा दिन बदल सकती है। और यकीन मानिए, जब आपके दुखों के बादल छट जाते हैं तब दिल का बोझ कितना हल्का हो जाता है। शायद आप भी कुछ ऐसा ही महसूस करते होंगे।

दिया इसलिए जलता है क्योंकि उसमें तेल है, वो हवाओं की परवाह नहीं करता। आप भी बस अपने कर्म करते रहिए, नतीजे खुद ब खुद दिखेंगे। क्योंकि नतीजों की चिंता किए बिना सिर्फ

अपनी कोशिश पर ही ध्यान देंगे तभी अपने लक्ष्य को पूरा कर सकेंगे। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। वक्त हुआ है 4:50 और 14 सेकंड। आप हैं अरुणिमा के सफर पर अपने ही दोस्त अपने ही हमराही रूपा धवन के साथ।

0: जिंदगी में अगर कभी अंधेरा लगे तो आप समझ लेना कि आप अपने अंदर का दिया जलाना भूल गए हैं। अंदर का दिया यानी आपके मन की सोच, आपकी सकारात्मक सोच ही आपके रास्ते का उजाला बनती है। तो अपने मन को इतना मजबूत बनाए रखिए कि जब भी कभी हिम्मत हारे तो फिर से उसे एक नई ऊर्जा देकर फिर से उसकी लौ को जागृत करें और एक नए विश्वास के साथ उठ खड़े हों।
1: गुड नाइट।
2: हाँ, गुड नाइट।
1: हाँ, गुड नाइट।
2: अच्छा, गुड नाइट।

वैसे ये सोने का नहीं जागने का वक्त है जनाब, और फिलहाल इसी के साथ रूपा को विदा दीजिए। अरुणिमा से भोर सुहानी कार्यक्रम में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की उज़्बेकिस्तान की यात्रा पर कल राजधानी ताशकंद पहुंचे। राष्ट्रपति शफकत मिर्ज़ियोयेव ने उनका स्वागत किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी के स्वागत के लिए ताशकंद शहर में विशेष प्रबंध किए गए थे।
1: पूरा ताशकंद शहर भारतीय झंडों और होर्डिंग से सजा हुआ है। हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

0: की चौथी यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव सदियों पुराने आपसी संबंधों को और मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। दोनों नेता राष्ट्रपति भवन में व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और जन संबंधों के क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे। वे विकसित भारत 2047 और उज्बेकिस्तान 2030 के साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर भी अपने विचार साझा करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
1: उज्बेकिस्तान के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादोर जापारोव के निमंत्रण पर बिश्केक में 26वें शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता राष्ट्रपति भवन में व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल संपर्क, ऊर्जा, शिक्षा और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने जैसे मुद्दों पर सहयोग की समीक्षा करेंगे। नेपाल में आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या 669 हो गई है और 2000 से अधिक लोग लापता हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बंद सड़कों को साफ करने का काम भी तेजी से चल रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नेपाल में बाढ़ की त्रासदी के बाद अब तक 108 भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि लगभग 50 भारतीय नागरिकों से संपर्क फिर से स्थापित हो गया है, जिनसे पहले संपर्क नहीं हो पा रहा था। मंत्रालय ने कहा कि 275 भारतीय नागरिक लापता बताए जा रहे हैं और भारतीय मूल के लगभग 128 लोग, जिनके पास दूसरे देश की नागरिकता है, वो भी लापता हैं। स्थानीय सरकारी सूत्रों के अनुसार पिछले 2 दिनों में 598 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल में दाखिल हुए। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज से 2 दिन के दौरे पर केरलम पहुंचेंगे। वो अलापुजा में प्रमुख मलयालम दैनिक केरल कौमुदी के 115वें स्थापना वर्ष समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति पथनम मथिट्टा में केरलम की प्रसिद्ध अरनमुला नौका दौड़ का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। मन की बात का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, AIR न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी के विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में भी मन की बात का प्रसारण करेगा। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के लिए गुजरात में विभिन्न स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद में, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा गांधीनगर में और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल सूरत में लोगों के साथ मन की बात सुनेंगे। भारत आज महिला क्रिकेट में थाईलैंड के खिलाफ T20 एशिया कप अभियान की शुरुआत करेगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात 8:30 से खेला जाएगा। थाईलैंड ने शुक्रवार को हांगकांग, चीन पर जीत के साथ टूर्नामेंट की शुरुआत की थी। मौसम विभाग ने ओडिशा में अगले 2 दिनों के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में गंगा के तटवर्ती क्षेत्र में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। इसके अलावा बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, नागालैंड सहित कई स्थानों पर बारिश की आशंका जताई गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. Prime Minister Narendra Modi will hold bilateral talks with President of Uzbekistan, Mr. Shavkat Mirziyoyev, today. The two leaders would review cooperation in trade and investment, defense, digital connectivity, energy, education and people-to-people domains at the Presidential Palace. Today, Prime Minister Narendra Modi will first attend a yoga program organized by the Yoga Federation of Uzbekistan. And after that, he will directly go to the palace of Uzbekistan President Shavkat Mirziyoyev, where both the leaders will participate in bilateral talks. Both the leaders will review cooperation in the areas of trade and investment, defense, digital connectivity, energy, education, and people-to-people relations at the presidential palace. The External Affairs Ministry has said that 108 Indian nationals have been rescued so far in Nepal following flash flood tragedy on Wednesday. In a social media post, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said that the contact was re-established with around 50 Indian nationals who were earlier uncontactable. The ministry said that 275 Indian nationals are reportedly missing and around 128 people of Indian origin holding other nationalities also remain missing. As per local government source, 598 Indian nationals crossed into Nepal from China in the last 2 days. Meanwhile, 900 Indian nationals who are yet to depart from China are safe and Indian Embassy in Beijing is in touch with them directly or through the local government. The ministry added that the government of India has been working in close coordination with the Nepali and Chinese authorities for the early rescue and relief efforts of those affected by the floods. Around-the-clock control room has been established in the Ministry of External Affairs and Indian embassies in Kathmandu and Beijing, having 24/7 helplines operational. In the meantime, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said that a fourth aircraft sortie C-130J Hercules with 11-ton assistance has departed for Kathmandu. An 11-member technical team from India carried out on-site reconnaissance of hydropower tunnels in Nepal's flood-affected areas yesterday to facilitate search and rescue of stranded individuals. The team comprising doctors, paramedics and tunnel engineers had arrived in Kathmandu on Friday. Yesterday, they reached Trishuli in Nuwakot district to assist in efforts to rescue workers trapped in a tunnel belonging to a hydropower project. After completing an aerial survey of the Chilini and Langthang areas, the Indian team began necessary rescue-related work around the tunnel area, according to the National Disaster Risk Reduction and Management Authority. An 82-member joint security team comprising Nepal Army, Armed Police Force and Nepal Police personnel has been working since last night to clear debris and reach people believed to be trapped inside the tunnel. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad on the Mann Ki Baat program on Akashvani at 11 a.m. today. It will be the 137th episode of the monthly radio program. The program will be broadcast across the entire Akashvani and Doordarshan network, the AIR News website and the News on AIR mobile app. It will also be live streamed on the YouTube channels of AIR News, DD News, the PMO and the Ministry of Information and Broadcasting. Akashvani will broadcast the program in regional languages immediately after the Hindi broadcast. Defence Minister Rajnath Singh will address the industry conclave in Lucknow today on the third and last day of his 3 days visit to city. The conclave is being organised under the PM Setu Yojana, where discussions will be held on topics related to skill development, entrepreneurship and vocational education. Before attending the conclave, Mr. Singh will listen to the Prime Minister Narendra Modi's Mann Ki Baat program. He will also lay the foundation stones for 12 development projects worth Rs. 101 crore in the Lucknow cantonment area in the presence of Chief Minister Yogi Adityanath. IMD has issued a red alert for rainfall conditions over Odisha for the next 2 days. The weather department also forecast very heavy rainfall in places over Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Chhattisgarh, Karnataka, West Bengal. In women's cricket, India will begin the T20 Asia Cup campaign against Thailand today at Dubai International Cricket Stadium. The match will start at 8:30 p.m. Indian time. Harmanpreet Kaur will lead India, while Shruti Mandhana will be the vice-captain. And that is the end of this news bulletin.

सपनों का सुनहरा रथ तैयार है, सूरज की लालिमा आकाश पर छाने वाली है। इससे पहले कि वो लालिमा आकाश पर छाए, आइए हम सभी उस ईश्वर, उस परमात्मा को प्रणाम करें जिसने इस सृष्टि को बनाया है, हमें जीवन दान दिया है। उस जीवनदाता को हम सभी का बहुत बहुत प्रणाम। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। भोर सुहानी लेकर आपकी सेवा में फिर से हाजिर हूँ मैं, आपकी दोस्त रूपा धवन। नमस्कार, सुप्रभात।

प्रकृति की हरियाली से, हरियाली जिसे अब तक चांद ने ओढ़ रखा था काले अंधेरे के रूप में। उस अंधेरे को दूर करती हुई सूर्य की रोशनी, सूर्य की लालिमा धीरे धीरे अपने पांव पसार रही है। और सुबह सुबह तो कह रही है कि मैं तो आ गई हूं जनाब, लेकिन आप कहाँ खोए हुए हैं। तो जल्दी जल्दी से उठिए और उठकर नमन कीजिए सूर्य भगवान को, आज की नई सुबह को स्वागत कीजिए दोनों हाथों से, बाहें फैलाकर एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ। भोर सुहानी में आपके साथ हूं मैं, आप ही की दोस्त रूपा धवन। पानी का अपना कोई रंग नहीं होता, जिसमें मिला दो उसकी तरह ही वो हो जाता है। इसी तरह हमें भी पानी से सबक लेना चाहिए। जैसी भी जिंदगी की राहें हों या जैसा भी आसपास का वातावरण हो, हमें उसी तरह से उस वातावरण में घुल मिल जाना चाहिए। शोर फिल्म का ये गीत आप सभी के लिए मुकेश साहब और लता